दोस्तों, बचपन भी कितना प्यारा होता है था ना। छुपा छुपी के खेल, वो घर घर खेलना और वो मिट्टी के घरौंदे आज भी महकते हैं दिल के किसी कोने में। कहा करते थे सबसे कि जल्दी बड़े हो जाएं, आज वही बड़े होकर अब हम उस बचपन को ढूंढते हैं।

0: मधुबाला जावेरी की आवाज में अभी आपने गीत सुना फिल्म जग्गू से। आइए अब अगला गीत सुनते हैं मिस्टर एंड मिसेस 55 से शमशाद बेगम की आवाज में। उससे पहले सुनते हैं ये संदेश।
1: मन की बात है जन जन की, सभी की कुछ अपनी सी, संघर्षों के कुछ किस्से, कहानी कुछ सफलताओं की, अनकही विरासत की, उम्मीदें नए भारत की। महीने के आखिरी रविवार का रहता है इंतजार, मलयाचल के आंचल से विंध्याचल के आंगन तक, ब्रह्मपुत्र के घाट से हिमालय के विस्तार तक होती है मन की बात प्रधानमंत्री के साथ। तो सुनिए इस महीने 27 सितंबर सुबह 11 बजे मन की बात आकाशवाणी दूरदर्शन के सभी चैनलों और प्रसार भारती के OTT प्लेटफॉर्म वेव्स पर। इसके अतिरिक्त आकाशवाणी और दूरदर्शन के YouTube चैनल और प्रसार भारती के ऐप न्यूज ऑन एयर और OTT प्लेटफॉर्म वेव्स पर सजीव प्रसारण लाइव स्ट्रीमिंग के माध्यम से। तो याद रखें, रविवार 27 सितंबर सुबह 11 बजे मन की बात।

ये गीत आप सुन रहे हैं येसुदास बाना श्री सेन गुप्ता हेमलता की आवाज़ में, दुल्हन वही जो पिया मन भाई फिल्म से। और इसी के साथ ही दोस्तों भोर सुहानी कार्यक्रम से अब अपनी दोस्त अर्चना को अनुमति दीजिए और आगे भी इसी तरह हमारे कार्यक्रम सुनते रहिए आकाशवाणी दिल्ली के FM गोल्ड चैनल पर। नमस्कार।

ये आकाशवाणी दिल्ली का एफएम गोल्ड चैनल है 100.1 मेगाहर्ट्ज़ पर। आज बुधवार है, शक संवत 1948 के आश्विन मास की पहली तिथि, तदनुसार 23 सितंबर 2026। सुबह के 5:53 हुए हैं। हमारे प्रातःकालीन सभा के कार्यक्रम आरंभ होते हैं।

ये आकाशवाणी दिल्ली का FM गोल्ड चैनल है 100.1 MHz पर। आइए अब आपको आज प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों की जानकारी दे दें। सुबह 6:10 पर सुनिएगा कार्यक्रम अर्पण। सुबह 6:44 का समय रहेगा श्री रामचरितमानस गान का।

सुबह 7:10 पर सुनेगा कार्यक्रम गोल्ड सुप्रभात। 7:30 का समय रहेगा कार्यक्रम आज सवेरे का।

म्यूजिकल दिल लगी, ये कार्यक्रम आप सुन सकेंगे सुबह 8:45 पर और सुबह 9:45 पर। सुबह 9:10 का समय रहेगा स्पेशल सीरीज जन सेवा से देश सेवा।

दिल का मेल बॉक्स, ये कार्यक्रम आप सुनेंगे सुबह 10:30 पर। 11:10 का समय रहेगा कार्यक्रम तस्वीर का, जिसमें आज आप सुनेंगे पटियाला पंजाब के बारे में जानकारी।

ये थी आज प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों की जानकारी। ये आकाशवाणी दिल्ली का FM गोल्ड चैनल है 100.1 MHz पर। कुछ ही पलों में आप सुनेंगे समाचार।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं अलका सिंह। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज वडोदरा में महाराजा सयाजीराव विश्वविद्यालय के 75वें वार्षिक दीक्षांत समारोह में शामिल होंगी। हमारे संवाददाता ने बताया है कि राष्ट्रपति वडोदरा में ब्रह्मा कुमारी के विश्व के नवनिर्माण के लिए आध्यात्मिक जागृति अभियान की शुरुआत और ग्लोबल स्पिरिचुअल पैलेस का उद्घाटन भी करेंगी।
1: 75वें दीक्षांत समारोह में राष्ट्रपति 12,600 से अधिक विद्यार्थियों को डिग्रियां प्रदान करेंगी। समारोह के दौरान 160 विद्यार्थियों को कुल 201 स्वर्ण पदक प्रदान किए जाएंगे। इसके बाद राष्ट्रपति वडोदरा में ब्रह्मा कुमारीज के ग्लोबल स्पिरिचुअल पैलेस रिट्रीट सेंटर का उद्घाटन करेंगी। इस कार्यक्रम के दौरान राष्ट्रपति स्पिरिचुअल अवेकनिंग फॉर द वर्ल्ड रिन्यूअल परियोजना का भी उद्घाटन करेंगी। इसके साथ ही राष्ट्रपति यूथ फॉर विकसित भारत अवेकनिंग इनर स्ट्रेंथ फॉर नेशन बिल्डिंग अभियान का वर्चुअल शुभारंभ करेंगी। मयूर सोलंकी, आकाशवाणी समाचार, बड़ौदा।
0: इससे पहले राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कल गुजरात के एकतानगर में 72वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार प्रदान किए। इस अवसर पर राष्ट्रपति ने कहा कि सिनेमा भारत की विशाल सांस्कृतिक विविधता को दर्शाता है। उन्होंने कहा कि सिनेमा विभिन्न भाषाओं, क्षेत्रीय दृष्टिकोणों और सामूहिक राष्ट्रीय आकांक्षाओं को जोड़ने वाले सेतु का काम करता है। राष्ट्रपति ने कहा कि भारतीय सिनेमा देश के साझा सपनों और सामाजिक यात्रा को प्रदर्शित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है।
2: सभी भाषाओं और क्षेत्रों की फिल्मों में हमारे भारत की छवि दिखाई देती है। भारतीय फिल्मों में भारत के लोगों के सपने, परंपरा,

0: संघर्ष है और भविष्य की संभावनाएं भी है। फिल्म कलाकार बहुत लोकप्रिय होते हैं, उनमें देशवासियों को विशेषकर युवाओं को प्रभावित करने की असीम क्षमता होती है। जो सफल फिल्म कलाकार डिसिप्लिन लाइफस्टाइल के फायदे के बारे में बताते हैं तो करोड़ों बच्चे और युवा उनका अनुकरण करते हैं।
1: इस अवसर पर सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने सभी पुरस्कार विजेताओं को बधाई दी और कहा कि राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कारों को विभिन्न पर्यटन स्थलों पर ले जाने का विचार भारत की G20 अध्यक्षता से प्रेरित है। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं।
2: चलते फिरते खबरों से जुड़े रहिए, expert@AIRNewsHindi को फॉलो करें और PB शब्द पर आकाशवाणी समाचार सुने।
1: वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने भारतीय उद्योग जगत से केवल कारोबार का आकार बढ़ाने की बजाय सुदृढ़ सुशासित और वैश्विक स्तर पर प्रतिस्पर्धी कंपनियां बनाने पर ध्यान देने का आह्वान किया। उन्होंने कहा कि भारत के विकास का अगला चरण गुणवत्ता आधारित होना चाहिए और इसके लिए कॉरपोरेट क्षेत्र को अनुसंधान एवं विकास पर अधिक निवेश करना होगा। ऑल इंडिया मैनेजमेंट एसोसिएशन के कार्यक्रम में कल वित्त मंत्री ने कहा कि कंपनियों को अपने यहां या शैक्षणिक संस्थानों के साथ साझेदारी के माध्यम से R&D पर खर्च बढ़ाना चाहिए। बॉम्बे उच्च न्यायालय ने भगोड़े कारोबारी विजय माल्या को मामला लंबित रहने के दौरान न्यायालय के दस्तावेजों को सोशल मीडिया पर साझा न करने की चेतावनी दी है। प्रवर्तन निदेशालय ने अदालत को बताया कि माल्या ने जांच एजेंसी का हलफनामा औपचारिक रूप से प्रस्तुत होने से पहले ही सोशल मीडिया पर पोस्ट कर दिया था। मिजोरम के लोंगतलाई जिले की एक स्ट्रॉबेरी उत्पादक महिला जेट टी लालरी थांगी को संयुक्त राष्ट्र के खाद्य और कृषि संगठन संस्था द्वारा FAO 100 वीमेन हीरोज इन एग्री फूड सिस्टम्स एंड रूरल डेवलपमेंट के रूप में सम्मानित किया गया है। यह सम्मान अंतर्राष्ट्रीय महिला किसान वर्ष 2026 का हिस्सा है जो संयुक्त राष्ट्र के खाद्य और कृषि संगठन FAO द्वारा शुरू की गई एक पहल है। संयुक्त राष्ट्र उच्चायुक्त वोल्कर तुर्क ने पाकिस्तानी अधिकारियों पर विरोध प्रदर्शनों को दबाने के लिए अत्यधिक बल प्रयोग और मनमाने ढंग से हिरासत में लेने का आरोप लगाया है। मीडिया रिपोर्टों के अनुसार इस महीने की शुरुआत में संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद के 63वें सत्र को संबोधित करते हुए वोल्कर तुर्क ने पाकिस्तान और भारत के सार्वजनिक विरोध प्रदर्शनों पर सरकारों की अलग अलग प्रतिक्रियाओं को उजागर किया। जापान एशियाई खेलों में आज भारत की ओलंपिक पदक विजेता मनु भाकर और मीराबाई चानू पदक के लिए दावेदारी पेश करेंगी। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
3: दिस इज आकाशवाणी, द न्यूज रेड बाय तन्वी खुराना। President Draupadi Murmu will grace the 75th annual convocation ceremony of the Maharaja Sayaji Rao University at Vadodara today. She will also launch Brahma Kumari's campaign and inaugurate the Global Spiritual Palace at Vadodara. More on this from our correspondent.
4: In the 75th convocation ceremony, President Murmu will confer degrees to over 12,600 students. This includes 6,713 from the Faculty of Commerce and 1,102 from the Faculty of Technologies and Engineering. During the ceremony, a total of 201 gold medals will be awarded to 160 students for their academic achievements in the undergraduate and postgraduate courses. After that, the President will inaugurate the Global Spiritual Palace Retreat Center of Brahma Kumaris in Vadodara. During the program, the President will also inaugurate the Spiritual Awakening for the World Renewal Project and will virtually launch the Youth for Viksit Bharat Awakening Inner Strength for Nation Building campaign. Gujarat Governor Acharya Devrat and Chief Minister Bhupendra Patel will be present on the occasion. Mayur Solanki, Akashwani News, Vadodara.
3: Yesterday, President Murmu conferred the 72nd National Film Awards for the year 2024 on top talents of the Indian cinema at a grand ceremony held against the grand backdrop of the Statue of Unity at Ekta Nagar in Gujarat. Addressing the film fraternity, President Murmu said, "Cinema reflects India's rich cultural

समर्पण का अर्थ हार मान लेना नहीं, बल्कि अपनी पूरी कोशिश के बाद परिणाम को ईश्वर पर छोड़ देना है। आप सुन रहे हैं अर्पण 100.1 MHz।

हम बाहर की आवाजों को सुनते सुनते कई बार अपने भीतर की आवाज सुनना भूल जाते हैं। शायद इसीलिए कभी कभी मौन भी जरूरी होता है।

0: मन की बात है जन जन की, सभी की कुछ अपनी सी, संघर्षों के कुछ किस्से, कहानी कुछ सफलताओं की, अनकही विरासत की, उम्मीदें नए भारत की। महीने के आखिरी रविवार का रहता है इंतजार, मलयाचल के आंचल से विंध्याचल के आंगन तक, ब्रह्मपुत्र के घाट से हिमालय के विस्तार तक होती है मन की बात प्रधानमंत्री के साथ। तो सुनिए इस महीने 27 सितंबर सुबह 11 बजे मन की बात आकाशवाणी दूरदर्शन के सभी चैनलों और प्रसार भारती के OTT प्लेटफॉर्म वेव्स पर। आप भी माननीय प्रधानमंत्री के मन की बात का हिस्सा बन सकते हैं। इसके लिए आप अपने सुझाव 25 सितंबर तक टोल फ्री नंबर 1800-11-7800 पर रिकॉर्ड कर सकते हैं या फिर 1922 पर भी कॉल कर सकते हैं। नमो ऐप या MyGov के ओपन फोरम में पोस्ट कर सकते हैं या पोस्ट बॉक्स नंबर 111 आकाशवाणी दिल्ली पर भेज सकते हैं। तो याद रखें, रविवार 27 सितंबर सुबह 11 बजे मन की बात।
1: कैसे चुने सही बीज, कैसे करें फसलों की उचित देखभाल, कीटनाशकों का कैसे करें संतुलित इस्तेमाल, कृषि से जुड़े हर पहलू पर लीजिए हमारे कृषि एक्सपर्ट से सलाह, वो भी लाइव। सुनिए प्रोग्राम हेलो फार्मर्स आकाशवाणी के FM गोल्ड पर हर सोमवार शाम 5:30 बजे। प्रायोजक कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार।
2: बजकर 25 मिनट और 33 सेकंड हो चुके हैं। आप सुन रहे हैं अर्पण 100.1 MHz FM गोल्ड पर। जब मन शांत होता है तो भीतर की कई उलझनों के जवाब बिना शब्दों के ही मिल जाते हैं। कभी जरूरी से समझने की प्रयास करें।

हम जीवन को समझने के लिए बहुत कुछ पढ़ते हैं, बहुत कुछ जानते हैं, बहुत कुछ सीखते हैं, लेकिन जीवन का वास्तविक अर्थ शायद केवल जानने से नहीं, उसे जीने से समझ आता है।

प्रार्थना हमें विश्वास देती है और कर्म हमें आगे बढ़ने की शक्ति। केवल मंजिल के लिए प्रार्थना करना ही पर्याप्त नहीं, बल्कि उसे उसकी तरफ कदम बढ़ाना भी जरूरी है। शायद ईश्वर पर विश्वास का सबसे सुंदर रूप यही है कि हम अपना कर्म पूरी निष्ठा से करते रहें।

जीवन में हर चीज का उत्तर तुरंत मिल जाए ये जरूरी नहीं। कुछ रास्ते ऐसे भी होते हैं जहां आगे क्या है दिखाई नहीं देता, फिर भी कदम बढ़ते जाते हैं, और शायद इसी को विश्वास कहते हैं। ये विश्वास हम में यूं ही बना रहे, इसी के साथ चलिए चलते हैं अर्पण में आगे इस भजन की ओर।

अवध का राजपद अस्वीकार करते हुए भरत पश्चाताप के आंसुओं में डूब जाते हैं। राज सिंहासन पर बैठने का प्रस्ताव सुनकर उन्हें उस प्राणी का स्मरण हो आता है जिसकी ग्रह दशा विपरीत हो गई हो, जो वायु रोग से पीड़ित हो और ऊपर से जिसको बिच्छू ने डंक मार दिया हो, और इन सब लक्षणों से मुक्ति पाने के लिए जिसे मदिरा पिलाई जा रही हो, ये कैसा उपचार है भला? कैकई का पुत्र होने के नाते संसार में जो कुछ उनके योग्य था, विधाता ने उन्हें सब कुछ दे दिया। विडंबना ये है कि दशरथ का पुत्र और श्रीराम का छोटा भाई होने का गौरव उन्हें व्यर्थ ही मिला। उनके मन में प्रश्न उठना स्वाभाविक ही है कि कुमाता कैकई को छोड़ और कौन कहेगा कि जो कुछ हुआ वो अच्छा ही हुआ है। भरत को ये भय नहीं कि जगत उन्हें बुरा कहेगा, उन्हें अपना परलोक बिगड़ने की भी चिंता नहीं। उनके हृदय में तो बस एक ही आग प्रज्वलित है कि वो श्री राम तथा सीता के दुख का कारण बने। भरत लक्ष्मण के भाग्य की सराहना करते हैं जिन्होंने सब कुछ त्याग कर श्री राम के चरणों में मन लगाया और इस प्रकार अपना जीवन सार्थक किया।

0: इयम् आकाशवाणी सम्प्रति वार्ताः श्रूयन्ताम् प्रवाचिका ऋचा झा। अथ वार्ताः। राष्ट्रपति पदासीना द्रौपदी मुर्मू अद्य गुजरातस्य वडोदरा नगरे महाराजा सयाजीराव विश्वविद्यालयस्य 75वें वार्षिके दीक्षांत समारोहे भागं भजिष्यति। समारोहावधौ राष्ट्रपति पदासीनया मुर्मू वर्यया 600-12,000 विद्यार्थिभ्यः उपाधयः प्रदास्यति। स्नातक स्नातकोत्तर कार्यक्रमेषु शैक्षणिकोपलब्धिभ्यः सा विद्यार्थिभ्यः सुवर्ण पदकानि अपि प्रदास्यति। तदनन्तरम् असौ वडोदरा नगरे ब्रह्मकुमारीज इति संस्थायाः ग्लोबल स्पिरिचुअल पैलेस रिट्रीट सेंटर इत्यस्य उद्घाटनं करिष्यति। कार्यक्रमस्य अन्तर्गते सा विश्वस्य नवनिर्माणाय आध्यात्मिक जागरणम् इति परियोजनायाः उद्घाटनं करिष्यति तथा विकसित भारताय युवा राष्ट्र निर्माणाय आन्तरिक शक्तेः जागरणम् इति अभियानस्य दृश्य श्रव्य परान्तर्जालीय माध्यमेन शुभारम्भं करिष्यति। राष्ट्रपतिः गुजरातस्य त्रिदिवसीय यात्रायाम् अस्ति। राष्ट्रपति पदासीना द्रौपदी मुर्मू ह्यः गुजरातस्य एकता नगरे स्टैच्यू ऑफ यूनिटी इत्यस्य भव्य पृष्ठभूमौ आयोजिते समारोहे भारतीय चलचित्र क्षेत्रस्य प्रमुख प्रतिभाभ्यः 24,000 वर्षस्य 270वें राष्ट्रीय चलचित्र पुरस्कारान् प्रदत्तवती। चलचित्र जगतः जनान् संबोधयन्ती राष्ट्रपतिः मुर्मू उक्तवती यत् चलचित्रं भारतस्य समृद्धां सांस्कृतिक वैविध्यतां प्रतिबिम्बयति तथा विभिन्न भाषाणां प्रादेशिक परिप्रेक्ष्यानां राष्ट्रियाभिलाषाणां च मध्ये सेतु रूपेण कार्यं करोति।
1: यहाँ अनेक भाषाओं एवं विभिन्न क्षेत्रों में बनी फिल्मों से जुड़े लोग उपस्थित थे। सभी भाषाओं और क्षेत्रों की फिल्मों में हमारे भारत की छवि दिखाई देती। भारतीय फिल्मों में हम भारत के लोगों के सपने परंपरा संघर्ष और भविष्य की संभावनाएं भी है। उत्कृष्ट फिल्मों को सम्मानित करने का ये समारोह स्टैच्यू ऑफ यूनिटी के प्रांगण में वॉल ऑफ यूनिटी के समीप आयोजित हो रहा है। ऐसा लगता है कि भारत की सांस्कृतिक एकता के इस महोत्सव को स्वाधीन भारत की एकता के शिल्पकार लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल स्वयं आशीर्वाद दे रहे हैं।
0: समारोहे सूचना प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव घोषितवान् यत् राष्ट्रीय चलचित्र पुरस्कार समारोह अधुना देशस्य प्रमुखेषु पर्यटन स्थलेषु आयोजयिष्यते। सः राज्येभ्यः केन्द्र शासित प्रदेशेभ्यश्च भविष्ये पुरस्कार समारोहाणाम् आतिथ्याय प्रमुख स्थलानां चयनं कर्तुम् आह्वानं कृतवान्। समारोहे राष्ट्रपति वर्यया देशस्य आहत्य विभिन्नेभ्यः भागेभ्यः आगतेभ्यः 92 पुरस्कार विजेतृभ्यः सम्माननं प्रदत्तम्। प्रसिद्धः कन्नड अभिनेता अनंत नागः भारतीय चलचित्र क्षेत्रे 5 दशकाधिककालपर्यन्तं प्रदत्तस्य उत्कृष्ट योगदानस्य कृते प्रतिष्ठितेन दादा साहब फाल्के पुरस्कारेण सम्मानितः। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ह्यः नवदिल्ल्यां उडुपी इत्यत्र श्री पेजावर अधोक्षज मठस्य श्री श्री विश्व प्रसन्न तीर्थ स्वामिना अन्यैः गणमान्यैः च सह मिलितवान्। अस्मिन् अवसरे श्री मोदिना पद्म विभूषण यतिकुला चक्रवर्ती श्री विश्वेश तीर्थ स्वामिनः जन्म शताब्दी समारोहस्य प्रतीक चिह्नस्य अनावरणं कृतम्। सामाजिक संचार पटले प्रकाशिते एकस्मिन् संदेशे प्रधानमंत्री उक्तवान् यत् श्री विश्वेश तीर्थ स्वामिनः भक्त्या ज्ञानार्जनेन सेवया च परिपूर्णं जीवनम् असंख्य जनान् निरन्तरं प्रेरयति। सः उक्तवान् यत् तस्य जन्मशताब्द्याः उपलक्ष्ये क्रियमाणाः विविधाः उपक्रमाः तस्य महनीयादर्शान् अग्रे नेतुम् अधिकं साहाय्यं करिष्यन्ति। भारतर्तु विज्ञान विभागेन आगामिषु द्विदिवसेषु छत्तीसगढ़ ओडिशा तटीय आन्ध्रप्रदेश तेलंगानानां पृथक पृथक स्थलेषु प्रबलाति प्रबल वृष्टेः संभावनां दृष्ट्वा रक्त वर्णपरा संचेतना प्रसारिता अस्ति। इति वार्ताः।
2: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं प्रियंका अरोड़ा। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज गुजरात के वडोदरा में महाराजा सयाजीराव विश्वविद्यालय के 75वें वार्षिक दीक्षांत समारोह में शामिल होंगी। हमारे संवाददाता ने बताया है कि राष्ट्रपति वडोदरा में ब्रह्म कुमारी के विश्व के नव निर्माण के लिए आध्यात्मिक जागृति अभियान के शुभारंभ के साथ ग्लोबल स्पिरिचुअल पैलेस का उद्घाटन भी करेंगी।
3: 75वें दीक्षांत समारोह में राष्ट्रपति 12,600 से अधिक विद्यार्थियों को डिग्रियां प्रदान करेंगी। समारोह के द्वारा 160 विद्यार्थियों को कुल 201 स्वर्ण पदक प्रदान किए जाएंगे। इसके बाद राष्ट्रपति वडोदरा में ब्रह्मा कुमारीज के ग्लोबल स्पिरिचुअल पैलेस रिट्रीट सेंटर का उद्घाटन करेंगी। इस कार्यक्रम के दौरान राष्ट्रपति स्पिरिचुअल अवेकनिंग फॉर द वर्ल्ड रिन्यूअल परियोजना का भी उद्घाटन करेंगी। इसके साथ ही राष्ट्रपति यूथ फॉर विकसित भारत अवेकनिंग इनर स्ट्रेंथ फॉर नेशन बिल्डिंग अभियान का वर्चुअल शुभारंभ करेंगी। महेश सोलंकी, आकाशवाणी समाचार, बड़ौदा।
2: इससे पहले राष्ट्रपति मुर्मू ने कल गुजरात के एकता नगर में 72वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार प्रदान किए। इस अवसर पर राष्ट्रपति ने कहा कि सिनेमा भारत की विशाल सांस्कृतिक विविधता को दर्शाता है। उन्होंने कहा कि सिनेमा विभिन्न भाषाओं, क्षेत्रीय दृष्टिकोणों और सामूहिक राष्ट्रीय आकांक्षाओं को जोड़ने वाले सेतु का काम करता है। राष्ट्रपति ने कहा कि भारतीय सिनेमा देश के साझा सपनों और सामाजिक यात्रा को प्रदर्शित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है।
1: सभी भाषाओं और क्षेत्रों की फिल्मों में हमारे भारत की छवि दिखाई देती है। भारतीय फिल्मों में भारत के लोगों के सपने, परंपरा, संघर्ष और भविष्य की संभावनाएं भी है। फिल्म कलाकार बहुत लोकप्रिय होते हैं, उनमें देशवासियों को, विशेषकर युवाओं को प्रभावित करने की असीम क्षमता होती है। जो सफल फिल्म कलाकार डिसिप्लिन लाइफस्टाइल के फायदे के बारे में बताते हैं तो करोड़ों बच्चे और युवा उनका अनुकरण करते हैं।
2: इस अवसर पर सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने सभी पुरस्कार विजेताओं को बधाई दी और कहा कि राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कारों को विभिन्न पर्यटन स्थलों पर ले जाने का विचार भारत की G20 अध्यक्षता से प्रेरित है। आयुष मंत्रालय आज महाराष्ट्र के नागपुर में 11वां आयुर्वेद दिवस मनाएगा। इस वर्ष का विषय है बेहतर कल के लिए आयुर्वेद।

0: मंत्रालय ने बताया कि ये समारोह आयुर्वेद से जुड़े प्रमुख हितधारकों को एक साथ लाएगा और ज्ञान के आदान प्रदान तथा व्यापक जुड़ाव के लिए मंच प्रदान करेगा। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं।
1: चलते फिरते खबरों से जुड़े रहिए। expert@AIRNewsHindi को फॉलो करें और PB शब्द पर आकाशवाणी समाचार सुने।
0: वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा है कि बड़े शहरों में ऐसे एकीकृत वाणिज्य और उद्योग कार्यालय बनाने की योजना है, जहां व्यवसायों को कई सरकारी विभागों तथा एजेंसियों तक पहुंच की सुविधा एक ही स्थान पर मिल सके। उन्होंने कल नई दिल्ली में उद्योग और आंतरिक व्यापार संवर्धन विभाग द्वारा आयोजित हितधारकों की कार्यशाला में ये बात कही। श्री गोयल ने कहा कि सरकार भौतिक और डिजिटल दोनों तरीकों से निर्यात को सुगम बनाने के लिए कार्यरत है। उन्होंने कहा कि अलग अलग स्थानों पर विभिन्न विभागों के कार्यालय बनाने के बजाय एकीकृत कार्यालय व्यवसायों को विभिन्न सेवाओं तक पहुंच में मदद करेंगे। कनाडा के प्रधानमंत्री मार्क कार्नी ने कहा है कि भारत के साथ व्यापार वार्ता अच्छी प्रगति कर रही है और दोनों देश दिसंबर के मध्य में होने वाले G20 शिखर सम्मेलन तक बातचीत पूरी करने का लक्ष्य लेकर चल रहे हैं। श्री कार्नी ने कल न्यूयॉर्क में संयुक्त राष्ट्र महासभा से इतर संवाददाता सम्मेलन में कहा कि वे अगले दशक में अमरीका छोड़कर अन्य देशों के साथ कनाडा का व्यापार दोगुना करना चाहते हैं। उन्होंने भारत को उस व्यापक प्रयास का हिस्सा बनाया है जिसका उद्देश्य कनाडा की अमरीका पर निर्भरता कम करना है। जापान एशियाई खेलों में आज भारत की ओलंपिक पदक विजेता मनु भाकर और मीराबाई चानू पदक के लिए दावेदारी पेश करेंगी। मनु भाकर, सुरुचि सिंह और ईशा सिंह महिलाओं की 10 मीटर एयर पिस्टल स्पर्धा में चुनौती पेश करेंगी। वहीं मीराबाई चानू महिलाओं की 49 किलोग्राम भारोत्तोलन के फाइनल में प्रतिस्पर्धा करेंगी। बैडमिंटन में लक्ष्य सेन और भारतीय पुरुष टीम सेमीफाइनल में चीन का सामना करेंगी। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: This is Akashvani, the news read by Anuja Kumar. President Draupadi Murmu will grace the 75th annual convocation ceremony of the Maharaja Sayaji Rao University at Vadodara today. She will also launch Brahma Kumari's campaign and inaugurate the Global Spiritual Palace at Vadodara. More from our correspondent.
3: In the 75th convocation ceremony, President Murmu will confer degrees to over 12,600 students. This includes 6,713 from the Faculty of Commerce and 1,102 from the Faculty of Technology and Engineering. During the ceremony, a total of 201 gold medals will be awarded to 160 students for their academic achievements in the undergraduate and postgraduate courses. After that, the President will inaugurate the Global Spiritual Palace Retreat Center of Brahma Kumaris in Vadodara. During the program, the President will also inaugurate the Spiritual Awakening for the World Renewal Project and will virtually launch the Youth for Viksit Bharat Awakening Inner Strength for Nation Building campaign. Gujarat Governor Acharya Devrat and Chief Minister Bhupendra Patel will be present on the occasion. Mayur Solanki, Akashvani News, Vadodara.
2: Yesterday, President Murmu conferred the 72nd National Film Awards for the year 2024 on top talents of the Indian cinema at a grand ceremony held against the grand backdrop of the Statue of Unity in Ekatanagar in Gujarat. Addressing the film fraternity, President Murmu said, "Cinema reflects India's rich cultural diversity and acts as a bridge, bringing together different languages, regional perspectives and shared national aspirations." Speaking at the event, Information and Broadcasting Minister Ashwini Vaishnaw announced that the National Film Awards will be taken to major tourist destinations across the country. External Affairs Minister Dr. S. Jayashankar has called for greater cooperation among Global South countries to address rising geopolitical tensions, economic challenges, climate shocks and pressures on the multilateral system. The minister was addressing the meeting of Global South countries on the sidelines of the 81st UN General Assembly in New York yesterday. He said Global South countries should work together to address key challenges, including supply chain, finance and connectivity bottlenecks. Dr. Jaishankar also met Italy's Deputy Prime Minister and Foreign Minister Antonio

7:24 और 42 सेकंड हो चुके हैं। आप सुन रहे हैं गोल्ड सुप्रभात उर्वशी के साथ 100.1 मेगा हर्ज पर। और आज है 23 सितंबर 2026 और आज आसमान में एक इंटरेस्टिंग सा बदलाव होता है जो सुबह 5:35 पर हो चुका है। आज है सितंबर इक्विनॉक्स। अब ये क्या होता है? ये होता है वो दिन जहां पर सूर्य सेलेस्टियल इक्वेटर को क्रॉस करता है और नॉर्दर्न हेमिस्फेयर में एस्ट्रोनॉमिकल ऑटम की शुरुआत मानी जाती है। और आज के दिन लगभग जो दिन और रात है ना वो लगभग बराबर होते हैं। और इसके बाद से अब नॉर्दर्न हेमिस्फेयर के देशों में जैसे भारत जैसे देशों में अब दिन छोटे और रातें लंबी होने लगेंगी। मतलब मौसम का जो ये बदलाव है ना वो सिग्नल सिर्फ हवा और तापमान से ही नहीं आता, कभी कभी आसमान भी बता रहा होता है कि अब जो सीजन है वो बदलने वाला है।

0: सुप्रभात। आकाशवाणी एफएम गोल्ड पर एक नई सुबह और नई आशाओं के साथ हम एक बार फिर उपस्थित हैं आज सवेरे का नया अंक लेकर। आधे घंटे के इस कार्यक्रम में देश दुनिया के समाचार होंगे, महानगरों की खबरें होंगी, खेलों के मैदान की हलचल भी होगी, जानेंगे मौसम का हाल, इतिहास के पन्नों पर भी नजर डालेंगे और जानेंगे आज के दिन की विशेषता। उन विशिष्ट व्यक्तित्वों की भी बात करेंगे जो आज के दिन इस दुनिया में आए या जिन्होंने आज ही के दिन इस दुनिया को अलविदा कहा। आज सवेरे के इस अंक में मैं हूं अलका सिंह और मेरे साथ हैं तन्वी खुराना। नमस्कार तन्वी।
1: नमस्कार अलका। गुड मॉर्निंग एंड अ वेरी वार्म वेलकम टू ऑल आवर लिसनर्स ट्यून्ड इनटू आकाशवाणी एफएम गोल्ड ऑन 100.1 मेगाहर्ट्ज एंड द एंटायर आकाशवाणी नेटवर्क। यस, दिस इज आवर डेली न्यूज मैगजीन प्रोग्राम आज सवेरे एंड टिल 8 o'clock। लाइक अलका सेड, वी हैव अ लॉट इन स्टोर फॉर ऑल ऑफ यू, बी इट द इंटरनेशनल और नेशनल न्यूज एंड मेनी मोर थिंग्स। टुडे इज 23rd of September 2026 एंड इट्स अ वेंसडे, सो वेरी हैप्पी वेंसडे to all of you. Let's begin our program with the news headlines.
0: बिल्कुल। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज वडोदरा में महाराजा सियाजी राव विश्वविद्यालय के 75वें दीक्षांत समारोह में शामिल होंगी। हमारे संवाददाता ने बताया है कि राष्ट्रपति वडोदरा में ब्रह्मा कुमारी के विश्व के नव निर्माण के लिए आध्यात्मिक जागृति अभियान की शुरुआत और ग्लोबल स्पिरिचुअल पैलेस का उद्घाटन भी करेंगी।
2: 75वें दीक्षांत समारोह में राष्ट्रपति 12,600 से अधिक विद्यार्थियों को डिग्रियां प्रदान करेंगी। समारोह के दौरान 160 विद्यार्थियों को कुल 201 स्वर्ण पदक प्रदान किए जाएंगे। इसके बाद राष्ट्रपति वडोदरा में ब्रह्मा कुमारीज के ग्लोबल स्पिरिचुअल पैलेस रिट्रीट सेंटर का उद्घाटन करेंगी। इस कार्यक्रम के दौरान राष्ट्रपति स्पिरिचुअल अवेकनिंग फॉर द वर्ल्ड रिन्यूअल परियोजना का भी उद्घाटन करेंगी। इसके साथ ही राष्ट्रपति यूथ फॉर विकसित भारत अवेकनिंग इनर स्ट्रेंथ फॉर नेशन बिल्डिंग अभियान का वर्चुअल शुभारंभ करेंगी। महेश सोलंकी, आकाशवाणी समाचार, बड़ौदा।
1: External Affairs Minister Dr. S. J. Shankar has called for greater cooperation among Global South countries to address rising geopolitical tensions, economic challenges, climate shocks and pressures on the multilateral system.

0: system. The minister was addressing the meeting of Global South countries on the sidelines of the 81st UN General Assembly in New York yesterday. Dr. Jaishankar said the global situation was marked by increasing conflicts, pressure on supply chains and trade, fragmented investment flows, growing debt vulnerabilities and inadequate development finance. He said Global South countries should work together to address key challenges, including supply chain, finance and connectivity bottlenecks.
1: India sees CELAC not just as a regional grouping but as a very important partner in shaping a more representative, balanced and inclusive global order. We have much to learn from each other, we have much to offer each other, and above all, we have a shared interest in ensuring that the Global South has a stronger voice in determining the future of the international system. I look forward to hearing your views and to a constructive discussion on how India and CELAC can take our partnership forward.
2: आयुष मंत्रालय आज महाराष्ट्र के नागपुर में बेहतर कल के लिए आयुर्वेद थीम पर 11वां आयुर्वेद दिवस मनाएगा। मंत्रालय ने कहा कि भारत और विश्व भर में आयुर्वेद संस्थाएं और इससे जुड़े लोग इससे जुड़े समारोह में भाग लेंगे। मंत्रालय ने बताया कि समारोह आयुर्वेद के परिवेश से जुड़े प्रमुख हितधारकों को एक साथ लाएंगे और ज्ञान के आदान प्रदान तथा व्यापक जुड़ाव के लिए मंच प्रदान करेंगे। 11वें आयुर्वेद दिवस समारोह में आयुर्वेद को मजबूत करने और समुदाय की भलाई को आगे बढ़ाने के प्रमाण, अनुसंधान और नवाचार के महत्व पर बल दिया जाएगा। और तन्वी, सबसे अच्छी बात यह होती है कि जो आयुर्वेद है वो बिल्कुल चीजों को जड़ से समाप्त कर देता है।
0: बिल्कुल।
2: और ये जो इसका प्रचार प्रसार हो रहा है, ये निश्चित रूप से भारत के लिए भी और दुनिया के लिए भी बहुत अच्छी बात है।
0: एब्सोल्युटली। Moving towards the next news that we have, Canadian Prime Minister Mark Carney has said trade negotiations with India are making good progress and the two countries are aiming to conclude talks by the G20 summit in mid-December. Mr. Carney also said to his understanding Prime Minister Narendra Modi would visit Canada around that time, though the precise date had not been finalized. The Canadian Prime Minister stated this at a press conference on the sidelines of the UN General Assembly in New York City yesterday. The G20 summit is scheduled to take place on 14th and 15th of December in Miami. India and Canada formally launched negotiations on a comprehensive trade agreement in March this year, with both governments committing to conclude talks by the end of 2026. And moving towards our next news, expressing her happiness upon receiving her first National Film Award for Article 370, actress Yami Gautam called the recognition the ultimate validation for an artist. She added that receiving the country's highest cinematic honor for a film that gave her immense creative fulfillment made years of dedication and patience truly worthwhile.
3: For a film like Article 370, which gave me so much as an artist, as an actor, everything that I had been wanting to do as an actor for the longest time, that, you know, kai bar bahut saalon ki mehnat, bahut saalon ki challenges, patience, they trickle down to one moment, and I think for me that was Article 370.
0: Bollywood actor Kartik Aaryan expressed his deep gratitude upon receiving his first National Film Award for Chandu Champion. He described the honor as a milestone in his artistic journey.
4: मैं बहुत बहुत खुश हूँ कि मुझे ये 72वें नेशनल अवार्ड में राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार में सम्मानित किया जा रहा है, और वो भी मेरे बहुत ही करीबी फिल्म, दिल के बहुत करीब है मेरे फिल्म चंदू चैंपियन। पहली बार नेशनल अवार्ड यहाँ पर स्टैचू ऑफ यूनिटी केवड़िया में हो रहा है, सो आई एम रियली ओवरवेल्म्ड सीइंग ऑल दिस एंड आई एम रियली ग्लैड टू बी अ पार्ट ऑफ दिस। इट्स लाइक अ ड्रीम कम ट्रू फॉर मी एंड माई फैमिली।
0: Expressing his happiness on receiving his first national award for his debut directorial venture, Randeep Hooda highlighted the significance of bringing the story of Veer Savarkar and the armed revolution to the screen.
5: बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत प्रेस्टिजियस अवार्ड है, मेरा पहला अवार्ड है और मेरी पहली फिल्म के लिए मुझे मिला है, तो मुझे बेहद खुशी है, ना सिर्फ मेरे लिए बाकी बल्कि मेरी पूरी टीम, प्रोड्यूसर्स और सब। तो इस मूवी के थ्रू मैं लोगों को बताना चाहता था कि सशस्त्र क्रांति भी एक हमारे देश की आज़ादी के संग्राम के लिए बहुत बड़ी चीज थी। सावरकर जी उस संग्राम के इन्फ्लुएंसर थे।
2: जापान में चल रहे एशियाई खेलों में आज भारतीय खिलाड़ियों के कई पदक जीतने की संभावना है। दो बार के ओलंपिक पदक विजेता मनु भाकर और मीराबाई चानू आज भारत के

0: सेमीफाइनल में इंडोनेशिया की थानिया कुसुम निंगस्यांग का सामना होगा। हॉकी में भारतीय महिला टीम आज सुबह पूल बी के अपने तीसरे मैच में थाईलैंड का सामना करेंगी। ये मैच सुबह 11:30 पर होगा।
1: And in view of the rising cases of PMOS among school-going adolescents, AIIMS New Delhi organized a press conference in association with its departments of pediatrics, psychology and anatomy yesterday. Doctors from these departments led insightful sessions on the causes of PMOS and debunked associated myths. Addressing the press conference, Dr. Rajni Sharma of the Department of Pediatrics informed about polyendocrine metabolic ovarian syndrome, that is PMOS. PMOS is a multifactorial endocrine disorder characterized by chronic anovulation. It refers to a condition where a woman's body produces extra male hormones, androgens, and struggles with sugar and energy regulation. Polycystic ovary syndrome, PCOS, was renamed PMOS earlier this year. Dr. Sharma said its early diagnosis can avert multiple complexities.
2: So basically हर level पे brain के pituitary level पे ovarian level पे और liver हर जगह पे effect करता है. So why does it happen? एक तो genetic, difference in family system में होना, multifactorial होता है, early life differences जैसे मैम ने बताया low birth weight, weight less than 2.5 kg, then environment lifestyle, highly refined carbohydrates, junk food, lack of exercise, sedentary lifestyle, screen, कुछ environmental exposure भी होते हैं like plastic and all which may be implicated. फिर इस तरह से ये सारे manifestation होते हैं. puberty में ज़्यादा ये effect क्योंकि puberty में hormones बन रहे होते हैं, उस समय अगर ये सब imbalance होगा तो PCOS का risk बढ़ जाएगा.
0: आज सवेरे आप सुन रहे हैं तन्वी और अलका के साथ और अब समय है महानगरों की खबरों का। तो सबसे पहले हम दिल्ली की बात कर लें तो दिल्ली के उपराज्यपाल तरनजीत सिंह संधू ने कल नई दिल्ली क्षेत्र के पुनर्विकास और दिल्ली की जल व्यवस्था से जुड़े महत्वपूर्ण मुद्दों की समीक्षा की। इसी संबंध में नई दिल्ली नगर पालिका परिषद के अध्यक्ष मनोज कुमार द्विवेदी ने उपराज्यपाल से मुलाकात कर चुनिंदा क्षेत्रों की पुनर्विकास योजनाओं की जानकारी दी। दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने कल सेवा संकल्प अभियान के अंतर्गत नजफगढ़ विधानसभा क्षेत्र में 25 करोड़ रुपए की लागत से 7 विकास कार्यों की शुरुआत की। इन कार्यों से क्षेत्र में सड़क, नालियों और जल निकासी जैसी बुनियादी सुविधाओं को सुदृढ़ किया जाएगा। राजधानी में चल रहे विशेष गहन पुनरीक्षण SIR प्रक्रिया के दौरान लोगों को मिल रहे नोटिस से संबंधित सवालों का कल दिल्ली सरकार में मंत्री परवेश साहिब सिंह ने जवाब दिया। श्री सिंह ने मीडिया से बातचीत में कहा कि मतदाता सूची या दस्तावेजों में किसी तरह की कमी या जानकारी के अभाव की स्थिति में निर्वाचन आयोग संबंधित व्यक्ति को नोटिस जारी करता है और उससे आवश्यक जानकारी मांगी जाती है। उन्होंने इस प्रक्रिया को सामान्य बताया और कहा कि निर्वाचन आयोग पारदर्शी और निष्पक्ष तरीके से प्रक्रिया आगे बढ़ा रहा है। श्री सिंह ने कहा कि नोटिस मिलने का मतलब मतदाता का नाम मतदाता सूची से हटना नहीं है, बल्कि संबंधित मतदाता को अपने दस्तावेजों या विवरण से जुड़ी कमी स्पष्ट करने का अवसर दिया जाता है। इस मामले में उन्होंने विपक्षी दलों और विभिन्न संगठनों पर आरोप लगाते हुए कहा कि वे झूठ फैला रहे हैं और लोगों को भ्रमित कर रहे हैं।
1: And moving towards Chennai, the regional round of South NTPC's prestigious electron quiz was successfully conducted at Chennai. A total of 230 teams comprising 2 members each participated in the preliminary round, demonstrating an impressive breadth of knowledge, intellectual curiosity and competitive spirit. Following a keenly contested preliminary round, 6 teams advanced to the grand finale. The grand finale witnessed an intense and intellectually stimulating battle with teams demonstrating remarkable presence of mind, depth of knowledge and composure under pressure. At the conclusion of the fiercely competitive final round, IIT Madras emerged as the winners while IIT Madras secured the second position.
0: बात कर लें मुंबई की तो महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने कहा कि सरकार MPSC के माध्यम से भरे जाने वाले पदों में पर्याप्त वृद्धि करने पर विचार कर रही है। कल मुंबई में पत्रकारों से बात करते हुए श्री फडणवीस ने कहा कि पदों की संख्या विशेष रूप से ग्रुप सी में पिछले सभी रिकॉर्ड तोड़ सकती है। उन्होंने ये भी कहा कि MPSC सुधारों की जांच कर रही उच्च स्तरीय समिति द्वारा सिफारिश किए जाने पर सरकार वस्तुनिष्ठ परीक्षा पद्धति को बहाल करने पर सकारात्मक रूप से विचार करेगी। वहीं बॉम्बे उच्च न्यायालय ने भगोड़े कारोबारी विजय माल्या

0: मामला लंबित रहने के दौरान न्यायालय के दस्तावेजों को सोशल मीडिया पर साझा न करने की चेतावनी दी है। प्रवर्तन निदेशालय ने अदालत को बताया कि माल्या ने जांच एजेंसी का हलफनामा औपचारिक रूप से प्रस्तुत होने से पहले ही सोशल मीडिया पर पोस्ट कर दिया था और न्यायालय ने इस मामले की सुनवाई अगले महीने की 13 तारीख तक स्थगित कर दी है।
1: And let's talk about Bangalore now. Karnataka Deputy Chief Minister and Revenue Minister Dr. G. Parmeshwar has called for a comprehensive, non-partisan discussion in the legislature on the Kasturi Rangan report and the state's severe drought situation. Speaking in the Legislative Council, he said Karnataka must submit its views on the seventh draft of the Kasturi Rangan report to the centre within the stipulated time and stressed the need for a consensus in the larger interest of the state. Dr. Parmeshwar said the number of drought-hit taluks has now risen to 177 based on the Union Government's drought declaration guidelines.
0: और बात कर लें कोलकाता की तो मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी आज कोलकाता के विधाननगर पुलिस आयुक्त कार्यालय में आयोजित नशा मुक्ति भारत कार्यक्रम में भाग लेंगे और साथ ही रेड रोड पर नए अग्निशमन वाहनों का उद्घाटन भी करेंगे। इसके बाद वे शहर के मिलल मेला मैदान में उद्योग के लिए भूमि आवंटन हेतु आयोजित कार्यक्रम में शामिल होंगे। मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने घोषणा की कि राज्य सरकार अलीपुरद्वार तराई और द्वारथ को वैश्विक पर्यटन स्थलों में परिवर्तित करेगी।
1: And about Hyderabad, financial constraints should not come in the way of students pursuing education, Governor of Telangana Shiv Pratap Shukla said yesterday. Distributing scholarship checks worth 5 lakh rupees to 28 underprivileged students at Lok Bhavan, he stated that assisting meritorious students helps them build a better future. The scholarship distribution program was organized by the Mahamana Malviya Mission, Hyderabad, under the Mahamana Shiksha Seva Prakalp. Addressing the gathering, the governor highlighted that Bharat Ratna Pandit Madan Mohan Malviya regarded education as a powerful instrument for nation building, proving through his own life that determination and perseverance can overcome any limitation.
0: और तन्वी, अब समय है मौसम का हाल जानने का। और आजकल का जो मौसम है उसमें बहुत संभल के रहने की जरूरत है, क्योंकि गर्मी भी है और शाम को कभी कभी थोड़ी हल्की सी ठंड भी हो जाती है। तो सबसे पहले बात करें राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली की, तो आज मुख्यतः आसमान साफ रहेगा। अधिकतम तापमान 35 डिग्री और न्यूनतम 24 डिग्री सेल्सियस रहने का अनुमान है। और मुंबई में आसमान आमतौर पर वहां पे बादल छाए रहेंगे, हल्की बारिश होगी। अधिकतम तापमान करीब 31 डिग्री और न्यूनतम 26 डिग्री सेल्सियस रहने की संभावना है। और बात करें कोलकाता की तो कोलकाता में भी बादल छाए रहेंगे और बीच बीच में हल्की बारिश या गरज के साथ बौछारें पड़ने की संभावना है। अधिकतम तापमान लगभग 30 डिग्री और न्यूनतम 24 डिग्री सेल्सियस के आसपास रहेगा।
1: एंड इफ वी टॉक अबाउट चेन्नई, बेंगलुरु एंड हैदराबाद, ऑल आर एक्सपेक्टेड टू हैव समवॉट cloudy sky. So Chennai is likely to see a partly cloudy sky. The temperatures are expected to range between minimum of 26 degrees and maximum of 36 degrees Celsius. And Hyderabad is likely to see a generally cloudy sky with moderate rain. Temperatures are expected to range from 23 degrees to 31 degrees Celsius. And Bangalore is forecast to experience generally cloudy sky with one or two spells of rain or even thunder showers. The minimum temperature is expected to be 20 degrees while maximum may reach 30 degrees Celsius.
0: और बिल्कुल अब समय है इतिहास के पन्नों को पलटने का और जानने का कि आज 23 सितंबर को क्या कुछ खास हुआ था। तो बात कर लें 1929 की, तो बाल विवाह निरोधक विधेयक आज ही पारित हुआ था, शारदा कानून।
1: लेट्स गो अ लिटिल बैक एंड टॉक अबाउट 1846 व्हेन एस्ट्रोनॉमर जोहान गॉटफ्रिड गेल बिकेम द फर्स्ट पर्सन एवर टू ऑब्जर्व द प्लैनेट नेपच्यून।
0: और 1979 में सोमालिया के संविधान को राष्ट्रपति ने मंजूरी दी।
1: In 1965, the Indo-Pak War ended with a ceasefire following a United Nations resolution.
0: और तन्वी, गुलाब आपको जरूर पसंद होगा, तो आज ही के दिन 1986 में अमेरिकी कांग्रेस ने गुलाब को अमेरिका का राष्ट्रीय फूल चुना था।
1: ओके। In 1974, first NCC Air Force Squadron Women was established at Vanasthali Vidyapeeth, Rajasthan.
0: और 2009 में भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो ने भारतीय उपग्रह

0: ओशन सेट 2 समेत 7 उपग्रह कक्षा में स्थापित किए थे।
1: एंड इन 1997 इंडिया वन सहारा कप क्रिकेट सीरीज बाय 4-1 विक्ट्री ओवर पाकिस्तान।
0: और अब समय है उन विशेष व्यक्तित्वों के बारे में जानने का जो आज के दिन इस दुनिया में आए या जिन्होंने आज के दिन दुनिया को अलविदा कहा। तो तन्वी, कुछ लाइनें हैं कि कलम आज उनकी जय बोल, जला अस्थियां बारी बारी छिटकाई जिसने चिंगारी, जो चढ़ गए पुण्य वेदी पर लिए बिना गर्दन की मोल। कलम आज उनकी जय बोल। आज हम याद कर रहे हैं वीरस के ओजस्वी राष्ट्रीय कवि साहित्यकार लेखक रामधारी सिंह दिनकर जी को। आज इनकी जयंती है। सिमरिया गांव, जिला बेगूसराय, बिहार में इनका जन्म हुआ था और 23 सितंबर 1908 को। और मुजफ्फरपुर कॉलेज में हिंदी विभाग के अध्यक्ष, भागलपुर विश्वविद्यालय के कुलपति और राज्यसभा के सदस्य भी रहे ये 1952 से 1964 तक। और इन्होंने क्या खूब कहा कि उठे जहां भी घोष शांति का, भारत स्वर तेरा है, धर्म दीप हो जिसके कर में, वो नर ही तेरा है। तेरा है वो वीर सत्य पर जो अड़ने जाता है, किसी न्याय के लिए प्राण अर्पित करने जाता है। मानवता के इस ललाट चंदन को नमन करूं मैं, किसको नमन करूं मैं भारत, किसको नमन करूं मैं। और वहीं दूसरी तरफ वो कहते हैं कि सच पूछो तो शर में ही बसती है दीप्ति विनय की, संधि वचन संपूर्ण उसी का, जिसमें शक्ति विजय की। सहनशीलता क्षमा दया को तभी पूजता जग है, बल का दर्प चमकता उसके पीछे सब जगमग है। रश्मि रथी, उर्वशी, कुरुक्षेत्र, संस्कृति के चार अध्याय, बहुत सारी कविताएं हैं जो हम सब ने स्कूल में जरूर पढ़ी होगी और लोगों को याद भी आ गई होगी। तो साहित्य सेवा के लिए 1959 में पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया इन्हें, और 1959 में ही संस्कृति के चार अध्याय के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला, और 1972 में महाकाव्य उर्वशी के लिए ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित हुए, और 24 अप्रैल 1974 को अपने शब्दों का समृद्ध संसार छोड़कर दिनकर अनंत यात्रा में विलीन हो गए।
1: Absolutely, you rightly said that who hasn't read Dinkar, and in our childhood we have read multiple writings of his and were inspired by him as well.
0: Bilkul.
1: And when we are talking about writers, poets, the next name in the list is Pablo Neruda. Today is his death anniversary, a Chilean poet who won the 1971 Nobel Prize in Literature. Neruda became known as a poet when he was only 13 years old and wrote in a variety of styles, including surrealist poems, historical epics, political manifestos, a prose autobiography, and passionate love poems, and many more. So the collection that was popular was 20 love poems and a song of despair that came in 1924. He's often considered as the national poet of Chile, and his works have been popular and influential worldwide. The Colombian novelist Gabriel Garcia Marquez once called him the greatest poet of the 20th century in any language, and the critic Harold Bloom, including Neruda as one of the writers central to the Western tradition in his book The Western Canon.
0: और तन्वी, बड़ी खूबसूरत लाइनें हैं कि तुम्हारे साथ रहकर अक्सर मुझे महसूस हुआ है कि हर बात का एक मतलब होता है, घास के हिलने का भी, हवा का खिड़की से आने का, और धूप का दीवार पर चढ़कर चले जाने का। तुम्हारे साथ रहकर अक्सर मुझे लगा है हम असमर्थताओं से नहीं संभावनाओं से घिरे हैं, हर दीवार में द्वार बन सकता है। और ये पंक्तियां कवि और साहित्यकार सर्वेश्वर दयाल सक्सेना की हैं, जिनकी आज पुण्यतिथि है। वे तीसरे सप्तक के महत्वपूर्ण कवियों में से एक थे। कविता के अतिरिक्त उन्होंने कहानी, नाटक और बाल साहित्य भी रचा। उनकी रचनाओं का अनेक भाषाओं में अनुवाद भी हुआ, और वे आकाशवाणी में सहायक निर्माता, दिनमान के उप संपादक और पराग के संपादक रहे। उनकी प्रमुख रचनाओं की अगर बात करें तो पागल कुत्तों का मसीहा, बकरी, बतूता का जूता आदि प्रमुख है। और सन 1983 में कविता संग्रह खूटियों पर टंगे लोक के लिए सर्वेश्वर दयाल सक्सेना को साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया।
1: And let me ask you, Alka, before taking the next person's name, do you see dreams?
0: बिल्कुल बिल्कुल, सपने हर किसी को देखने चाहिए, क्योंकि सपने नहीं होंगे तो ये संसार नहीं होगा।
1: Absolutely. And what about the dreams that we see when we are asleep, when we are fast asleep?
0: दरअसल वो सपना है कि ये जो चल रहा है, ये सपना है, ये बहुत बड़ा सवाल है। और कुछ लोग जो हैं, कभी ये भी देखा, ये भी कहा जाता है कि जो सपने हम रात में देखते हैं ना, वो तो सपने होते हैं, लेकिन जो दिन में सपने देखते हैं ना, वो हमें बेचैन करते हैं।
1: True. So let's talk about Sigmund Freud. Today is his death anniversary, and you must have read some

0: और तन्वी आज जन्मदिन है हिंदी फिल्मों की मासूम सी सूरत वाली चुलबुली अभिनेत्री तनुजा का।
1: नाम है मेरा प्रेम चोप
0: तनुजा। चलिए, इन्होंने फिल्मों की शुरुआत बाल कलाकार के रूप में किया और फिल्म थी 1960 में आई हमारी बेटी। दो फिल्मफेयर पुरस्कारों से सम्मानित तनुजा को हिंदी फिल्मों में मेम दीदी, चांद और सूरज, बहारें फिर भी आएंगी, ज्वेल थीफ, नई रोशनी, जीने की राह, हाथी मेरे साथी, अनुभव, मेरे जीवन साथी और दो चोर जैसी भूमिकाओं के लिए जाना जाता है।

0: अभिनेता संजीव कुमार, राजेश खन्ना और धर्मेंद्र के साथ इनकी जोड़ी 60 के दशक की शुरुआत से लेकर 70 के दशक के अंत तक बहुत ही लोकप्रिय रही। और
1: प्रेम नाम है मेरा, प्रेम चोपड़ा।
0: तन्वी, आप समझ ही गई होंगी, और वैसे ये थोड़ा पहले भी बज गया था क्योंकि ये डायलॉग ही इतना मशहूर है कि शायद ही कोई बॉलीवुड का लवर हो जिसको ये डायलॉग नहीं याद हो। और आज ही के दिन 1935 में बॉलीवुड के इस डैशिंग विलन का जन्म हुआ था। और शिमला में पले बढ़े चोपड़ा ने शुरुआत में पत्रकारिता की और पंजाबी फिल्मों में अभिनय किया, फिर हिंदी सिनेमा की ओर इन्होंने रुख किया। और इनकी जो पहली सफल फिल्म थी वो शहीद थी, और उसके बाद उपकार, बॉबी, दो अनजाने और क्रांति जैसी फिल्मों में इन्होंने अभिनय किया। और बॉबी फिल्म का मशहूर डायलॉग जो हमने अभी सुन ही लिया है। और इन वर्षों में चोपड़ा ने कई प्रमुख अभिनेताओं के साथ भी काम किया, और 2023 में फिल्म फेयर लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार से इन्हें सम्मानित किया। और 2014 में अपने अभिनय करियर के बारे में उन्होंने आत्मकथा प्रेम नाम है मेरा, प्रेम चोपड़ा लिखी।
2: That was such a wonderful dialogue, and everyone knows Prem Chopra.
0: Bilkul.
2: And today is the birth anniversary of Ray Charles, an American singer, songwriter, and pianist. He is regarded as one of the most influential musicians of the 20th century, and was often referred to as the genius by his contemporaries. He lost his vision as a child, possibly due to glaucoma, and consequently wore dark glasses. And his 1960s hit, Georgia on My Mind, was the first of his three career numbers.

और आज हम याद कर रहे हैं पलाश सेन को, जिनका आज जन्मदिन है। और तन्वी ये गायक, गीतकार, संगीतकार, अभिनेता और चिकित्सक भी हैं, और जिन्हें मशहूर रॉक बैंड यूफोरिया के संस्थापक और मुख्य गायक के रूप में भी जाना जाता है।

0: और अब घड़ी की सुइयां कह रही हैं कि अपने श्रोताओं से हम अनुमति लें, तो अलका सिंह और तन्वी खुराना को अनुमति दीजिए। स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और सुनते रहिए आकाशवाणी। आज सवेरे कार्यक्रम दोबारा सुनने के लिए आप लॉग इन कर सकते हैं हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर।
1: Stay tuned for coming up next is Samachar Prabhat, our Hindi news bulletin, followed by morning news in English at 8:15 a.m. Thanks for tuning in. Have a superb day. Namaskar.
2: Namaskar. Akashvani se Samachar Prabhat ke saath main Priyanka Arora. मुख्य समाचार। विदेश मंत्री डॉ एस जयशंकर ने संघर्षों, व्यापार दबावों और जलवायु चुनौतियों के बीच विकासशील और अल्प विकसित देशों के बीच सहयोग मजबूत करने पर बल दिया। उन्होंने लातिन अमेरिका और कैरिबियाई देशों के साथ संबंध और मजबूत करने का आह्वान किया। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने भारत पश्चिम एशिया यूरोप आर्थिक गलियारे का समर्थन किया। ऊर्जा से जुड़ी बुनियादी व्यवस्था को ईरान की चौकियों से दूर स्थानांतरित करने की आवश्यकता पर बल दिया। 11वां आयुर्वेद दिवस आज देश भर में मनाया जाएगा। छत्तीसगढ़, तटीय आंध्र प्रदेश, उड़ीसा और तेलंगाना में आज मूसलाधार वर्षा का अनुमान। और जापान एशियाई खेलों में भारतीय रोवर्स ने पुरुष सिंगल्स और डबल्स कल स्पर्धा के फाइनल में जगह बनाई। अब समाचार विस्तार से। विदेश मंत्री डॉ एस जयशंकर ने बढ़ते भू राजनीतिक तनाव, आर्थिक चुनौतियों, जलवायु संबंधी आपदाओं और बहुपक्षीय व्यवस्था पर बढ़ते दबाव से निपटने के लिए विकासशील और अल्प विकसित देशों के बीच अधिक सहयोग की अपील की है। श्री जयशंकर कल अमेरिका के न्यूयॉर्क में संयुक्त राष्ट्र महासभा की 81वीं बैठक से अलग विकासशील और अल्प विकसित देशों की बैठक को संबोधित कर रहे थे। इस दौरान उन्होंने कहा कि वैश्विक स्थिति में बढ़ते संघर्ष, आपूर्ति श्रृंखला और व्यापार पर दबाव, निवेश के बिखरे हुए प्रवाह, बढ़ते ऋण के जोखिम और विकास के लिए अपर्याप्त वित्त की समस्याएं देखी जा रही हैं।
3: India's engagement with the Global South.
4: ग्लोबल साउथ के साथ भारत का जुड़ाव सिर्फ अपने राष्ट्रीय हितों तक ही सीमित नहीं है, बल्कि यह एक जुटता और साझा समृद्धि के प्रति उसकी प्रतिबद्धता को भी दिखाता है। यह रिश्ता आपसी सीख और सहयोग पर आधारित है, साथ ही इसमें अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था के भविष्य को तय करने में ग्लोबल साउथ की आवाज को मजबूत करने का साझा हित भी शामिल है।
2: श्री जयशंकर ने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से होने वाले बदलावों का सही ढंग से प्रबंधन करने के महत्व पर भी बल दिया, ताकि विभाजन को रोका जा सके और विकासशील तथा अल्प विकसित देशों को प्रभावित करने वाले मुद्दों पर निर्णय लेने की प्रक्रियाओं में अधिक भागीदारी सुनिश्चित की जा सके। डॉ जयशंकर ने संयुक्त राष्ट्र महासभा से इतर इटली के उप प्रधानमंत्री और विदेश मंत्री एंटोनियो तयानी से भी मुलाकात की। उन्होंने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि उनकी बातचीत खाड़ी क्षेत्र की स्थिति, भारत पश्चिम एशिया यूरोप आर्थिक गलियारे और यूक्रेन संघर्ष पर केंद्रित थी। कनाडा के प्रधानमंत्री मार्क कार्नी ने कहा है कि भारत के साथ व्यापार वार्ता अच्छी प्रगति पर है और दोनों देशों का दिसंबर में G20 शिखर सम्मेलन तक बातचीत पूरी करने का लक्ष्य है। श्री कार्नी ने कहा

0: साथ ही उनके अनुसार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उस समय कनाडा की यात्रा करेंगे, हालांकि इसकी सटीक तारीख अभी तय नहीं हुई है। G20 सम्मेलन 14 और 15 दिसंबर को अमेरिका के मियामी में होगा। श्री कानी ने कल न्यूयॉर्क में संयुक्त राष्ट्र महासभा सेतर संवाददाता सम्मेलन में कहा कि वे अगले दशक में अमरीका के अलावा अन्य देशों के साथ कैनेडा का व्यापार दोगुना करना चाहते हैं। उन्होंने भारत को उस व्यापक प्रयास का हिस्सा बनाया है जिसका उद्देश्य कनाडा की अमेरिका पर निर्भरता कम करना है। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने भारत पश्चिम एशिया यूरोप आर्थिक गलियारे का समर्थन किया है। उन्होंने कहा कि युद्ध के दौरान पश्चिम एशियाई देशों पर हो रहे कई हमलों को देखते हुए पश्चिम एशिया में ऊर्जा से जुड़े अवसंरचना को ईरानी सीमा क्षेत्रों से दूर ले जाने की आवश्यकता है। राष्ट्रपति ट्रंप ने कल न्यूयॉर्क में संयुक्त राष्ट्र महासभा परिषद और अरब नेताओं के साथ बैठक को संबोधित करते हुए ये बात कही। राष्ट्रपति ट्रंप ने कहा कि पड़ोसी देशों में वाणिज्यिक जहाजों पर हुए हमलों ने इस क्षेत्र में ऊर्जा संबंधी अवसंरचना को बदलने की आवश्यकता को उजागर किया है। राष्ट्रपति ट्रंप ने कहा कि अमरीका ने आर्थिक कदमों के माध्यम से ईरान को वित्तीय रूप से अलग थलग कर दिया। उन्होंने ईरान को चेतावनी देते हुए कहा कि एक समय ऐसा आ सकता है जब स्थिति को सुलझाने में बहुत देर हो जाएगी। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा है कि बड़े शहरों में ऐसे एकीकृत वाणिज्य और उद्योग कार्यालय बनाने की योजना है जहां व्यवसायियों को विभिन्न सरकारी विभागों तथा एजेंसियों तक पहुंच की सुविधा एक ही स्थान पर मिल सके। उन्होंने कल नई दिल्ली में उद्योग और आंतरिक व्यापार संवर्धन विभाग की ओर से आयोजित एक कार्यशाला में ये बात कही। श्री गोयल ने कहा कि सरकार भौतिक और डिजिटल दोनों तरीकों से निर्यात को सुगम बनाने के लिए कार्यरत है। ये समाचार हमारे न्यूज ऑन AIR ऐप और हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in पर भी उपलब्ध हैं।
1: चलते फिरते खबरों से जुड़े रहिए। expert@airnewshindi को फॉलो करें और PB शब्द पर आकाशवाणी समाचार सुने।
0: समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज गुजरात के वडोदरा में महाराजा सयाजीराव विश्वविद्यालय के 75वें दीक्षांत समारोह में शामिल होंगी। हमारे संवाददाता ने बताया है कि राष्ट्रपति वडोदरा में ब्रह्म कुमारी के विश्व के नव निर्माण के लिए आध्यात्मिक जागृति अभियान के शुभारंभ के साथ ग्लोबल स्पिरिचुअल पैलेस का उद्घाटन भी करेंगी।
2: 75वें दीक्षांत समारोह में राष्ट्रपति मुर्मू 12,600 से अधिक विद्यार्थियों को डिग्रियां प्रदान करेंगी। इसमें कॉमर्स फैकल्टी के 6,713 और टेक्नोलॉजी और इंजीनियरिंग फैकल्टी के 1,102 विद्यार्थी शामिल हैं। समारोह के दौरान स्नातक और स्नातकोत्तर पाठ्यक्रमों में उनकी शैक्षणिक उपलब्धियों के लिए 160 विद्यार्थियों को कुल 201 स्वर्ण पदक प्रदान किए जाएंगे। इसके बाद राष्ट्रपति वडोदरा में ब्रह्मा कुमारीज के ग्लोबल स्पिरिचुअल पैलेस रिट्रीट सेंटर का उद्घाटन करेंगी। इस कार्यक्रम के दौरान राष्ट्रपति स्पिरिचुअल अवेकनिंग फॉर द वर्ल्ड रिन्यूअल परियोजना का भी उद्घाटन करेंगी। इसके साथ ही राष्ट्रपति यूथ फॉर विकसित भारत अवेकनिंग इनर स्ट्रेंथ फॉर नेशन बिल्डिंग अभियान का वर्चुअल शुभारंभ करेंगी। इस अवसर पर गुजरात के राज्यपाल आचार्य देवव्रत और मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल भी उपस्थित रहेंगे। महेश सोलंकी, आकाशवाणी समाचार, बड़ौदा।
0: इससे पहले राष्ट्रपति मुर्मू ने कल गुजरात के एकता नगर में 72वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार प्रदान किए। इस अवसर पर राष्ट्रपति ने कहा कि सिनेमा भारत की विशाल सांस्कृतिक विविधता को दर्शाता है। राष्ट्रपति ने कहा कि भारतीय सिनेमा देश के साझा सपनों और सामाजिक यात्रा को प्रदर्शित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है।
3: सभी भाषाओं और क्षेत्रों की फिल्मों में हमारे भारत की छवि दिखाई देती है। भारतीय फिल्मों में भारत के लोगों के सपने, परंपरा, संघर्ष और भविष्य की संभावनाएं भी है। फिल्म कलाकार बहुत लोकप्रिय होते हैं, उनमें देशवासियों को, विशेषकर युवाओं को प्रभावित करने की असीम क्षमता होती है। जो सफल फिल्म कलाकार डिसिप्लिन लाइफस्टाइल के फायदे के बारे में बताते हैं तो करोड़ों बच्चे और युवा उनका अनुकरण करते हैं।
0: इस अवसर पर सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने सभी पुरस्कार विजेताओं को बधाई दी और कहा कि राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कारों को विभिन्न पर्यटन स्थलों पर ले जाने का विचार भारत की G20 अध्यक्षता से प्रेरित है। आयुष मंत्रालय आज महाराष्ट्र के नागपुर में 11वां आयुर्वेद दिवस मनाएगा। इस वर्ष का विषय है बेहतर कल के लिए आयुर्वेद। मंत्रालय ने बताया कि ये समारोह आयुर्वेद से जुड़े प्रमुख हितधारकों को एक साथ लाएगा और ज्ञान के आदान प्रदान तथा व्यापक जुड़ाव के लिए मंच प्रदान करेगा।

0: ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
1: 11वें आयुर्वेद दिवस कार्यक्रम का उद्घाटन नागपुर के कविवर्य सुरेश भट्ट सभागार में आज सुबह 9 से 10 के बीच होगा। इस संबंध में जानकारी देते हुए राष्ट्रीय आयुर्वेद संस्थान जयपुर के कुलपति डॉक्टर संजीव शर्मा ने बताया कि इस वर्ष आयुर्वेद दिवस में प्रमाण, अनुसंधान और नवाचार के माध्यम से आयुर्वेद को सशक्त बनाने के साथ साथ सामुदायिक स्वास्थ्य और कल्याण को बढ़ावा देने पर विशेष जोर दिया जाएगा। जामनगर स्थित ग्लोबल ट्रेडिशनल मेडिसिन सेंटर की यूनिट हेड डॉक्टर गीता कृष्णन पिल्लई शाश्वतम से विश्वास तक स्वस्थ भविष्य के लिए आयुर्वेद और 2047 की ओर मार्ग इस विषय पर मार्गदर्शन करेंगी। कार्यक्रम के दौरान पारंपरिक ज्ञान से वैश्विक नेतृत्व तक आयुष विजन 2030 रिपोर्ट, भारत में आयुष संबंधित आविष्कारों पर स्थिति रिपोर्ट CCRAS अग्नि इस आकलन स्केल वेब पोर्टल का भी शुभारंभ होगा। धनंजय वानखेड़े, आकाशवाणी समाचार, नागपुर।
0: आयुष मंत्री प्रताप जाधव ने कहा है कि आयुर्वेद बेहतर और स्वस्थ जीवन का आधार है।
2: हमारे आयुष मंत्रालय ने जो थीम चुनी है वो है बेहतर कल के लिए आयुर्वेद, यानी कि अगर बुढ़ापे में भी अगर हम अच्छा स्वास्थ्य रखना चाहते हैं, जिंदगी हम वहां पर जीना चाहते हैं, तो अभी से आयुर्वेद और आयुष को, योगा को अपनाइए।
0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जनसेवा में 25 वर्ष पूरे कर रहे हैं। उनकी यात्रा जनसेवा से देश सेवा के संकल्प और निरंतर जनसेवा की भावना से प्रेरित रही है। इसी सेवा और सुशासन की सोच के साथ सरकार वर्ष 2047 तक विकसित भारत के लक्ष्य की दिशा में कार्य कर रही है। समावेशी विकास और सामाजिक सशक्तिकरण के जरिए लोगों के जीवन में बदलाव लाने का प्रयास किया जा रहा है। आज इस विशेष श्रृंखला में हम आपको बताएंगे कि कैसे दृष्टिकोण को भारत की सौर क्रांति में साकार किया गया है।
3: भारत की सौर क्रांति गुजरात के राज्य स्तरीय प्रयासों से शुरू होकर आज एक विशाल राष्ट्रीय अभियान बन चुकी है, जो देश को स्वच्छ ऊर्जा, आर्थिक अवसर और ऊर्जा आत्मनिर्भरता की ओर ले जा रही है। वर्ष 2014 में मात्र 2.8 गीगावाट की स्थापित सौर क्षमता से आगे बढ़ते हुए भारत वर्ष 2026 तक लगभग 165 गीगावाट की सौर क्षमता हासिल कर चुका है। सौर ऊर्जा को हर घर तक पहुंचाने के लिए शुरू की गई प्रधानमंत्री सूर्यघर मुफ्त बिजली योजना के तहत अब तक 51 लाख से अधिक परिवार जुड़ चुके हैं और 14.8 गीगावाट क्षमता के रूफटॉप सोलर प्लांट स्थापित हो चुके हैं। इसने जहां लाखों परिवारों को बिजली बिल शून्य कर दिया है, वहीं युवाओं के लिए रोजगार और स्वरोजगार के भी नए अवसर सृजित किए हैं। इस योजना के माध्यम से जमीनी स्तर पर आ रहे बदलाव और कौशल विकास का उल्लेख करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुजरात की एक लाभार्थी की प्रेरक कहानी साझा करते हुए कहा,
4: आज पीएम सूर्यघर मुफ्त बिजली योजना का प्रभाव देश के कोने कोने में दिखने लगा है। इस योजना की वजह से गुजरात के सुरेंद्रनगर जिले की पायल मुजपरा के जीवन में बहुत बड़ा बदलाव आया है। उन्होंने सूर्य पहल के माध्यम से सोलर पावर टेक्नोलॉजी की ट्रेनिंग ली और 4 महीने का सोलर पीवी टेक्नीशियन का कोर्स पूरा किया। वो आसपास के जिलों में सोलर रूफटॉप इंस्टॉलेशन का काम करती है और इससे उन्हें हर महीने हजारों रुपए की आय होती है।
3: सुरेंद्रनगर के निवासी दिनेश भाई मकवाड़ा ने बताया कि कैसे इस योजना ने उनके जीवन को सुगम बनाया है।
5: मैंने पास PGVCL का बिजली कनेक्शन था, लेकिन उसके बाद पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना शुरू होने पर मैंने उसके आवेदन करके अपने घर की छत पर सोलर पैनल लगवा लिया। इसमें सरकार की तरफ से मुझे 78,000 रुपए की सब्सिडी भी मिली।
3: आज गुजरात प्रधानमंत्री सूर्यघर मुफ्त बिजली योजना के तहत सोलर इंस्टॉलेशन में देश के अग्रणी राज्यों में से एक है। अपर्णा खुंट, आकाशवाणी समाचार, अहमदाबाद।
0: मौसम विभाग ने आज छत्तीसगढ़, तटीय आंध्र प्रदेश, उड़ीसा और तेलंगाना में मूसलाधार वर्षा का अनुमान व्यक्त किया है। अरुणाचल प्रदेश, असम, मेघालय, सिक्किम, बिहार, झारखंड, आंतरिक कर्नाटका, केरलम, माहे, कोंकण, गोवा, महाराष्ट्र और पश्चिम बंगाल में तेज बारिश की संभावना है। जापान एशियाई खेलों में आज भारतीय खिलाड़ियों के पास पदक जीतने के कई अवसर होंगे। ओलंपिक पदक विजेता मनु भाकर और मीराबाई चानू आज भारत के अभियान का नेतृत्व कर रही हैं। मनु भाकर ने निशानेबाजी में महिलाओं के 10 मीटर एयर पिस्टल स्पर्धा के फाइनल में जगह बना ली है। भारोत्तोलक मीराबाई चानू महिलाओं के 49 किलोग्राम वर्ग के फाइनल में भाग लेंगी। नौकायन में भारत की पुरुष टीम ने सिंगल्स और टीम स्कल्स इवेंट के फाइनल में जगह बना ली है। और अब आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ हैं अलका सिंह।
6: धन्यवाद प्रियंका। भारतीय बेटियों की स्वर्णिम उड़ान, एशियाई खेल 2026 में भारतीय महिला क्रिकेट खिलाड़ियों द्वारा देश के लिए पहला स्वर्ण पदक लाने की खबर को आज दैनिक

0: जागरण और जनसत्ता सहित सभी अखबारों ने सचित्र दिया है। दैनिक भास्कर ने लिखा है, जापान में इस टूर्नामेंट में अब तक देश के कुल 7 में से 4 पदक महिलाओं के नाम हैं। अमर उजाला की खबर है, मोबाइल में इंटरनेट नहीं बल्कि सिर्फ वॉइस कॉल और मैसेज की सुविधा चाहने वालों के लिए अच्छी खबर। भारतीय दूरसंचार नियामक प्राधिकरण ने दूरसंचार कंपनियों से मोबाइल रिचार्ज में बिना डेटा वाले सस्ते प्लान बढ़ाने को अनिवार्य किया। अब 30 दिन की वैधता लागू की जाएगी। नवभारत टाइम्स लिखता है, मोबाइल स्क्रीन गार्ड यानी स्क्रीन प्रोटेक्टर अब बिना गुणवत्ता जांच के नहीं बिकेंगे। नया नियम 1 अप्रैल 2027 से लागू होगा। टूथपेस्ट साबुन शैम्पू पर लाल हरा बिंदु अनिवार्य, देखते ही पता चलेगा कि उत्पाद शाकाहारी है या नहीं। दैनिक भास्कर के अनुसार केंद्र सरकार ने इस संबंध में जारी की अधिसूचना।
1: और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। विदेश मंत्री डॉ एस जयशंकर ने संघर्षों, व्यापारिक दबावों और जलवायु चुनौतियों के बीच विकासशील और अल्पविकसित देशों के बीच सहयोग मजबूत करने पर बल दिया। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने भारत पश्चिम एशिया यूरोप आर्थिक गलियारे का समर्थन किया। ऊर्जा आपूर्ति से जुड़ी बुनियादी व्यवस्था को ईरान की चौकियों से दूर स्थानांतरित करने की आवश्यकता पर बल दिया। 11वां आयुर्वेद दिवस आज देश भर में मनाया जा रहा है। छत्तीसगढ़, तटीय आंध्र प्रदेश, उड़ीसा और तेलंगाना में आज मूसलाधार वर्षा का अनुमान। और जापान एशियाई खेलों में भारतीय रोवर्स ने पुरुष सिंगल्स और डबल स्कल्स स्पर्धा के फाइनल में जगह बनाई। इसके साथ ही समाचार प्रभात का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
2: आकाशवाणी प्रेजेंट्स मॉर्निंग न्यूज। गुड मॉर्निंग, आई एम अनुजा कुमार। द हेडलाइंस। External Affairs Minister Dr. S. Jayashankar calls for Global South cooperation amid conflicts, trade pressures and climate challenges. Also stresses for stronger ties with Latin American, Caribbean states as trade crosses $50 billion. US President Donald Trump backs India, Middle East, Europe economic corridor. Stresses on shifting energy infrastructure away from Iranian checkpoints. 11th Ayurveda Day being observed across the country today. Forecast of heavy to very heavy rain in Chhattisgarh, coastal Andhra Pradesh, Odisha and Telangana today. And at Asian Games in Japan, Indian rowers qualify for finals of men's singles and doubles sculls event. And now the news in detail. External Affairs Minister Dr. S. Jayashankar has called for greater cooperation among Global South countries to address rising geopolitical tensions, economic challenges, climate shocks and pressures on the multilateral system. The minister was addressing the meeting of Global South countries on the sidelines of the 81st UN General Assembly in New York yesterday. Dr. Jayashankar said the global situation was marked by increasing conflicts, pressure on supply chains and trade, fragmented investment flows, growing debt vulnerabilities and inadequate development finance. He said Global South countries should work together to address key challenges including supply chain, finance and connectivity bottlenecks.
3: We can see that in conflicts and geopolitical tensions, in the disruption of supply chains, in increasing trade barriers, fragmented investment flows, climate shocks and the fact that international law and rules are under great pressure.
2: Dr. Jayashankar also met Italy's Deputy Prime Minister and Foreign Minister Antonio Tajani on the sidelines of the United Nations General Assembly. In a social media post, the minister said their discussions focused on the Gulf situation, the India-Middle East-Europe Economic Corridor, IMEC, and the Ukraine conflict. He said the two countries aim to expand collaboration and increase trade ties. Addressing the India-CELAC Foreign Ministers meeting during the UN High-Level Week 2026 in New York, the External Affairs Minister called for stronger economic and development partnership between India and the Community of Latin American and Caribbean States, CELAC. He said India-CELAC trade has now crossed $50 billion annually. Dr. Jayashankar said India emerged as one of the world's major economies over the past decade, with its GDP more than doubling and growth remaining robust. He added that India today combines a large and increasingly

0: matters, the paper writes, do not endorse harmful products. India joins a new international platform, P4M, for multilateralism amidst growing global tensions, cites the Pioneer. PM Modi announces Project Rhino, hails Assam's conservation success on World Rhino Day, is the headline in the Statesman. Financial Express cites a report by World Economic Forum saying 98% chief economists see India having strongest growth outlook. Toiletries must now reveal origin of ingredients with distinct symbols for vegetarian and non-vegetarian ingredients, says a headline in the Pioneer. And finally, all the dailies have covered the news of Indian women cricketers clinching first gold in Japan Asiad in an emphatic fashion. And with that, it's back to you, Anuja.
1: Thank you, Tanvi. And now, before we end the bulletin, the headlines once again. External Affairs Minister Dr. S. Jaishankar calls for Global South cooperation amid conflicts, trade pressures and climate challenges, also stresses for stronger ties with Latin American, Caribbean states as trade crosses $50 billion. U.S. President Donald Trump backs India, Middle East, Europe economic corridor, stresses on shifting energy infrastructure away from Iranian checkpoints. 11th Ayurveda Day being observed across the country today. Forecast of heavy to very heavy rain in Chhattisgarh, coastal Andhra Pradesh, Odisha and Telangana today. And at Asian Games in Japan, Indian rowers qualify for finals of men's singles and doubles sculls event. And with that, we end the morning news. Have a nice day.
2: आकाशवाणी से पेश है खबरनामा। आदाब, खबरनामे के साथ मैं असलम बेग। पहले इस वक्त की खास खास खबरें। वजीर खारजा डॉक्टर एस जयशंकर ने तनाज़ात, तजारती दबाव और आबो हवा को दरपेश चैलेंजों के पेश नज़र आलमी जुनूब तआवुन के लिए कहा है। उन्होंने लातिनी अमरीका और बहरे रोम के मुल्कों के साथ मजबूत तर ताल्लुकात पर जोर दिया, क्योंकि तिजारत 50 अरब अमरीकी डॉलर से तजावुज़ कर गई है। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने भारत मशरक़ वस्ती यूरोपीय राहदारी की हिमायत की है। उन्होंने तवानाई से मुतालिक बुनियादी ढांचे को ईरानी चौकियों से दूर ले जाने की ज़रूरत पर जोर दिया। आज मुल्क भर में 11वां यौम आयुर्वेद मनाया जा रहा है। छत्तीसगढ़, साहिली आंध्र प्रदेश, ओडिशा और तेलंगाना में आज शदीद से बहुत शदीद बारिश की पेशगोई की है। और जापान में एशियन गेम्स में भारतीय मल्लाहों ने मर्दों के सिंगल्स और डबल्स के चप्पुओं के मुकाबले के फाइनल में जगह बना ली है। अब खबरें तफसील से। वजीर खारजा डॉक्टर एस जयशंकर ने आलमी जुनूब मुल्कों के माबेन मजीद तआवुन के लिए कहा है, ताकि बढ़ती हुई जोग्राफियाई और सियासी कशीदगी, इक्तसादी चैलेंज, आबो हवा में अचानक तब्दीलियों और कसीर मुल्की निज़ाम पर दबाव से निपटा जा सके। वजीर मौसूफ कल न्यूयॉर्क में अक्वामे मुत्तहिदा की 81वीं जनरल असेंबली से अलग आलमी जुनूब मुल्कों की मीटिंग से खिताब कर रहे थे। उन्होंने कहा कि आलमी सूरत हाल, बढ़ते हुए तनाज़ात, सप्लाई चेन और तिजारत पर दबाव, सरमायाकारी जिसकी राह में रुकावटें हायल हैं, बढ़ते हुए कर्ज के नताइज और तरक्की के लिए नाकाफी मालियात का शिकार है। उन्होंने कहा कि आलमी जुनूब मुल्कों को चाहिए कि सप्लाई चेन, मालियात और कनेक्टिविटी के लिए किए जाने वाले कामों समेत अहम चैलेंजों से निपटने के लिए मिलकर काम करें। वजीर खारजा ने तवानाई की दस्तयाबी और कीमतों से नाजायज फायदा उठाए जाने की रोकथाम, अनाज और कीमियावी खादों की सप्लाई को दरपेश चैलेंजों से निमटते हुए सबके लिए खुराक की यकीनी फराहमी की कोशिशों, नीज इक्तसादियात और तिजारत के सही तौर तरीकों को फरोग देने के लिए कहा। न्यूयॉर्क में अक्वामे मुत्तहिदा के 2026 के आला सतह के हफ्ते के दौरान इंडिया सीलैक वज़राए खारजा की मीटिंग से खिताब करते हुए वजीर खारजा ने भारत और लातिनी अमरीका, नीज बहरे रोम के मुल्कों, सीलैक की बिरादरी के दरमियान मजबूत तर इक्तसादी और तरक्याती शराकत दारी के लिए कहा। उन्होंने कहा कि भारत सीलैक तिजारत अब सालाना तौर पर 50 अरब अमरीकी डॉलर से तजावुज़ कर गई है। डॉक्टर जयशंकर ने कहा कि भारत पिछली दहाइयों में दुनिया की बड़ी मईशतों में से एक बनकर उभरा है और इसकी मजमूई घरेलू पैदावार तकरीबन दोगुना हो गई है और शरे तरक्की भी जबरदस्त रही। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि उनकी इंतजामिया भारत मशरक़ वस्ती यूरोपी इकतसादी राहदारी की पुरजोर हिमायत करती है। उन्होंने कहा कि

0: के दौरान मगरबी एशियाई मुल्कों पर मुख्तलिफ हमलों के तनाजुर में मशरक वस्ती में तवानाई से मुतालिक बुनियादी ढांचे को ईरानी चेक पॉइंट से हटाने की जरूरत है। सदर ट्रंप ने कल न्यूयॉर्क में अक्वामे मुत्तहिदा की जनरल असेंबली के इजलास के मौके पर खलीज तआवुन काउंसिल और अरब लीडरों के साथ एक मीटिंग से खिताब करते हुए ये बात कही। सदर ट्रंप ने कहा कि पड़ोसी ममालिक में तजारती जहाजरानी पर हमलों से ये बात उजागर हो गई है कि इस खित्ते में तवानाई से मुतालिक बुनियादी ढांचे को मुंतकिल करने की ज़रूरत है। उन्होंने कहा कि यह खित्ता देरीना चैलेंजेस से निमटने में कामयाबी हासिल करने वाला है जिसने दहाइयों से इस खित्ते को तबाह किया हुआ है। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी के अवामी खिदमत के 25 साल मुकम्मल हो रहे हैं। जन सेवा से देश सेवा के मंत्र और पुख्ता अहद के साथ ये सफ़र आगे बढ़ा है और ये सिलसिला आज भी जारी है। सेवा और सुशासन के उनके नज़रिए से रहनुमाई हासिल करते हुए सरकार 2047 तक विकसित भारत के मकसद को हासिल करने की समत लगातार काम कर रही है। अपनी खसूसी सीरीज़ के तहत आज हम इस बात का तस्करा कर रहे हैं कि ये विजन किस तरह भारत के शमसी इनकलाब में तब्दील हुआ।
1: भारत के शमसी इनकलाब गुजरात में रियासती सतह की पहल से एक बड़ी कौमी मुहिम में तब्दील हो गया है जो इक्तसादी तरक्की, तवानाई से मुतल्लिक खुद इनसारी और माहौलियात के लिए साजगार वसाइल से बिजली के हिस्सों में तहरीक दे रही है। साल 2014 में नस्ब शुदा शमसी सलाहियत महज 2.8 गीगावाट थी जबकि साल 2026 के निस्ब तक मुल्क ने तकरीबन 165 गीगावाट की सलाहियत हासिल कर ली है। शमसी बिजली को बराह रास्त घरों तक पहुंचाते हुए पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना ने 51 लाख से ज़्यादा कुंभों को बाख्तियार बनाया है और मुल्क भर में घरों के छतों पर 14.8 गीगावाट सलाहियत की शमसी तनसीबात से इस्तेफादा किया गया है। इससे लाखों लोगों के बिजली के बिल सिफर हो गए हैं और मकामी सतह पर रोज़गार के लाखों मौके पैदा हुए हैं। कारोबारी सलाहियत और हुनरमंदी से मुतालिक इस स्कीम के ज़मीनी सतह पर इनकलाब अंगेज असरात को उजागर करते हुए वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने गुजरात के एक मुस्तफीद के मुतासिर कुन सफ़र के बारे में बताया।
2: आज पीएम सूर्यघर मुफ्त बिजली योजना का प्रभाव देश के कोने कोने में दिखने लगा है। इस योजना की वजह से गुजरात के सुरेंद्रनगर जिले की पायल मुजपरा के जीवन में बहुत बड़ा बदलाव आया है। उन्होंने सूर्य पहल के माध्यम से सोलर पावर टेक्नोलॉजी की ट्रेनिंग ली और 4 महीने का सोलर पीवी टेक्नीशियन का कोर्स पूरा किया। अब वो एक कुशल सोलर टेक्नीशियन बन गई है। पायल एक सोलर उद्यमी के तौर पर अपनी पहचान बना रही है। वो आसपास के जिलों में सोलर रूफटॉप इंस्टॉलेशन का काम करती है और इससे उन्हें हर महीने हजारों रुपए की आय होती है।
1: इस स्कीम से न सिर्फ मकामी सतह पर माहौलियात के लिए साजगार तवानाई के तकनीकी माहिरों और सनअतकारों को फ़रोग मिला है बल्कि इससे गुजरात में हर घर को बड़ी माली राहत भी मिली है। सुरेंद्र नगर के रहने वाले दिनेश भाई मकवाना ने बताया कि किस तरह उनके कुंबे को इस पहल से बराह रास्त फायदा पहुंचा है।
3: मेरा नाम दिनेश भाई मकवाना है। मैं सालों से गुजरात के सुरेंद्रनगर शहर में रहता हूँ। मैंने पास पीजीवीसीएल का बिजली कनेक्शन था लेकिन उसके बाद भारत सरकार की पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना शुरू होने पर मैंने उसके आवेदन करके अपने घर की छत पर सोलर पैनल लगवा लिया। इसमें सरकार की तरफ से मुझे 78,000 रुपए की सब्सिडी भी मिली और अब मेरे घर का बिल 0 हो गया है।
1: आज पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना के तहत गुजरात शमसी तनसीबात के हामिल सरकर्दा रियासतों में से एक है। अहमदाबाद से अपर्णा खुंड की रिपोर्ट के साथ खबरनामे के लिए मैं फहीम अहमद।
0: सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू आज वडोदरा में महाराजा सयाजी राव यूनिवर्सिटी की 75वीं सालाना तकसीम असनाद तकरीब में शिरकत करेंगी। वो वडोदरा में ब्रह्म कुमारियों की मुहिम का आगाज और ग्लोबल स्पिरिचुअल पैलेस का इफ्तिताह भी करेंगी। तफसील हमारे नामा निगार से।
4: 75वीं तकसीम असनाद तकरीब में सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू 12,600 से ज्यादा तलबा को डिग्रियां तफवीज करेंगी। इनमें फैकल्टी ऑफ कॉमर्स के 6,712 और फैकल्टी ऑफ टेक्नोलॉजी एंड इंजीनियरिंग के 1,102 तलबा शामिल हैं। तकरीब के दौरान अंडर ग्रेजुएट और पोस्ट ग्रेजुएट कोर्सेज में उनकी तालीमी कामयाबियों के लिए 160 तलबा को कुल 201 गोल्ड मेडल दिए जाएंगे। इसके बाद सदर जमहूरिया वडोदरा में ब्रह्मा कुमारीज के ग्लोबल स्पिरिचुअल पैलेस रिट्रीट सेंटर का इफ्तिताह करेंगी। प्रोग्राम के दौरान सदर जमहूरिया स्पिरिचुअल अवेकनिंग फॉर वर्ल्ड रिन्यूअल प्रोजेक्ट का

0: ग्यारहवें योम आयुर्वेद की तकरीबात नागपुर में कवि वैर्य सुरेश भट्ट ऑडिटोरियम में आज सुबह 9 बजे से 10 बजे के दरमियान मुनक़िद होंगी। आयुर्वेद के जयपुर के कौमी इदारे के वाइस चांसलर डॉक्टर संजीव शर्मा ने तकरीबात के बारे में बताया कि इस साल के योम आयुर्वेद के दौरान शवाहिद तहकीक व इख्तरा के जरिए आयुर्वेद को मुस्तहकम बनाने और समाजी सेहत और खुशहाली को फ़रोग देने पर तवज्जो मरकूज़ की जाएगी। प्रोग्राम में रिवायती दानिशमंदी से आलमी क़्यादत तक आयुष विज़न 2030 से मुतालिक रिपोर्ट भी जारी की जाएगी। ग्यारहवें योम आयुर्वेद की तकरीबात पे मुल्क और दुनिया भर के आयुर्वेद इदारे मौलिज और मुख्तलिफ मुतालिक फरीकन शिरकत करेंगे। नागपुर से धनंजय वानखेड़े की रिपोर्ट के साथ खबरनामे के लिए मैं फहीम अहमद।
1: वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने आज योम आयुर्वेद के मौके पर लोगों को मुबारकबाद दी है। एक सोशल मीडिया पोस्ट में जनाब मोदी ने कहा कि आयुर्वेद एक तरीक़े इलाज ही नहीं बल्कि सेहतमंद और मुतवाजन तर्ज ज़िंदगी का एक ताकतवर वसीला है। वज़ीर आज़म ने लोगों से अपील की कि वो इस ग्रां कदर विरसे को मज़ीद मजबूती से अपनाने का अज़्म करें। भारतीय महकमे मौसमियात IMD ने छत्तीसगढ़, साहिली आंध्र प्रदेश, ओडिशा और तेलंगाना में आज शदीद से बहुत शदीद बारिश की पेशगोई की है। IMD ने अरुणाचल प्रदेश, आसाम, मेघालय, सिक्किम, बिहार, झारखंड, अंदरूनी कर्नाटक, केरलम, माहे, कोंकण, गोवा, महाराष्ट्र और मगरबी बंगाल में तेज बारिश का इम्कान जाहिर किया है। मध्य प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा और रायलसीमा में आज गरज चमक के साथ छींटे पड़ने का इम्कान है। मगरब वस्ती और इससे मुलाका शिमाल मगरबी खलीज बंगाल के ऊपर बना हुआ गहरा दबाव मगरबो शिमाल मगरब की तरफ बढ़ रहा है और ये ओडिशा के गोपालपुर से तकरीबन 150 किलोमीटर जुनूब और जनूब मशरक में वाक़ है। इसके आज रात विशाखापट्टनम और गोपालपुर के दरमियान साहिल पार करने की तवक्को है। ओडिशा के कई हिस्सों में शदीद से इंतहाई शदीद बारिश जारी है, जबकि रियासती हुकूमत ने हसास ज़िलों में तैयारियाँ तेज़ कर दी हैं। तफसील हमारे नामेकार से।
2: महकमे मौसमियात का कहना है कि यह गहरा दबाव मगरबी व शिमाल मगरब की तरफ बढ़ रहा है और आज रात या कल सुबह के इब्तदाई औकात में विशाखापट्टनम और गोपालपुर के दरमियान शिमाली आंध्र प्रदेश और जनूबी ओडिशा के साहिल को पार करने का इम्कान है। गंजाम, गजपति और कोरापुट के लिए शदीद से इंतहाई शदीद बारिश और दूर दराज के मकाम पर रेड वार्निंग जारी की गई है। अगले 2 दिनों के लिए कालाहांडी, नबरंगपुर, कोरापुट और मलकानगिरी भी रेड वार्निंग के तहत हैं। कई अजला में स्कूल बंद कर दिए गए हैं, जबकि गंजाम, कोरापुट और कालाहांडी में सरकारी मुलाजमीन की छुट्टियां मनसूख कर दी गई हैं। भुवनेश्वर से प्रकाश दास की रिपोर्ट के साथ खबरनामे के लिए कौनैन हैदर।
1: एशियाई खेलों में आज भारत की नज़रें जापान के आइची नागोया में चौथे दिन अपने तमगों की तादाद बढ़ाने पर मरकूज होगी, क्योंकि बहुत से एथलीट्स और टीमें मुख्तलिफ जुमरों में मुकाबला करेंगी। भारतीय तैराक बेनिस्टन बेनेडिक्शन ने मर्दों के 100 मीटर बटरफ्लाई मुकाबले में फाइनल के लिए क्वालिफाई कर लिया है। फाइनल में जगह बनाने के लिए वो हीट्स में मजमूई तौर पर 9वें मुकाम पर रहे। फाइनल मुकाबले आज 1:38 पर होगा। भारतीय कश्तीरां बलराज पंवार ने मर्दों के सिंगल्स स्कल्स मुकाबले में फाइनल के लिए क्वालिफाई कर लिया है। फाइनल मुकाबला कल होगा। भारत मर्दों के डबल्स स्कल्स मुकाबले में भी फाइनल में पहुंच गया है। सतनाम सिंह और सलमान खान अपनी हीट में दूसरे नंबर पर रहे। उन्होंने 6 मिनट में 15:63 का वक्त लिया। वो 2 हीट्स में मजमूई तौर पर 4थे नंबर पर रहे और फाइनल के लिए क्वालिफाई कर लिया। सेपक टकराव में भारतीय मर्दों की रेकू टीम ने फिलीपींस को ग्रुप बी के पहले मैच में 2-0 से हराया। इस तरह उन्होंने 15-7, 15-10 से जीत हासिल की। वेटलिफ्टर मीराबाई चानू खवातीन के 49 किलोग्राम जुमरे के फाइनल में हिस्सा लेंगे। ये मुकाबला सुबह 10 बजे होगा। निशानेबाजी में ओलंपिक में 2 तमगे जीतने वाली मनु भाकर, खवातीन के 10 मीटर एयर पिस्टल की टीम और इनफरादी क्वालिफिकेशन मुकाबलों में सुरुचि सिंह और ईशा सिंह के साथ हिस्सा लेंगे। ये थी खबरें। अब अखबार के आईने के साथ हैं फहीम अहमद।
0: शुक्रिया असलम। कौमी राजधानी दिल्ली से शाया होने वाले आज के उर्दू अखबारात ने अलग अलग खबरों को अपनी शह सुर्खी बनाया है। अखबार इनकलाब ने मारूफ अदाकार अनंतनाग को सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू के जरिए दादा साहब फाल्के अवार्ड पेश किए जाने से मुतल्लिक खबर को अहमियत के साथ शाया किया है। अखबार प्रताप ने इत्तला नशरियात के वजीर अश्विनी वैष्णव के हवाले से लिखा है, नेशनल फिल्म अवार्ड्स अब अहम सियासी मकाम पर मुनक़िद होंगे। अखबार ने वजीर खारजा SJ के इस बयान को नुमाया किया है कि आलमी कशीदगी के वक्त कसीर जहती को मजबूत करना जरूरी। मईशत में निजी सरमाकारी रफ्तार पकड़ रही है। इनकलाब ने

0: वज़ीर ख़ज़ाना निर्मला सीतारमन के इस बयान को कौमी सफ़े पर जगह दी है। अखबारात की कुछ आलमी अहम खबरें इस तरह हैं। अमरीका के वस्त मुद्दती इंतखाबात के बाद ईरान के साथ मुआहदा हो जाएगा, ट्रंप का बयान।
1: और आखिर में खास खास खबरें एक बार फिर। वजीर खारजा डॉक्टर एस जयशंकर ने तनाज़ात, तजारती दबाव और आबो हवा को दरपेश चैलेंजों के पेश नज़र आलमी जनूब तआवुन के लिए कहा है। उन्होंने लतीनी अमरीका और बहरे रोम के मुल्कों के साथ मजबूत तर ताल्लुकात पर जोर दिया क्योंकि तजारत 50 अरब अमरीकी डॉलर से तजावज़ कर गई है। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने भारत मशरिक़ वुस्ता यूरोपीय राहदारी की हिमायत की है। उन्होंने तवानाई से मुतालिक बुनियादी ढांचे को ईरानी चौकियों से दूर ले जाने की ज़रूरत पर जोर दिया। आज मुल्क भर में 11वां यौम आयुर्वेद मनाया जा रहा है। छत्तीसगढ़, साहिली आंध्र प्रदेश, ओडिशा और तेलंगाना में आज शदीद से बहुत शदीद बारिश की पेशगोई की गई है। और जापान में एशियन गेम्स में भारतीय मल्लाहों ने मर्दों के सिंगल्स और डबल्स के चप्पुओं के मुकाबले के फाइनल में जगह बना ली है। इसी के साथ ये खबरनामा ख़त्म हुआ।

सितंबर खत्म होने को है, अब बस कुछ ही दिन बचे हैं और इसके बाद तो साल ऐसे भागता है कि बस पता ही नहीं चलता। फेस्टिवल्स आ जाते हैं, मौसम बदलता है, रूटीन बदलने लगता है और इन सब के बीच देखते देखते दिसंबर आ खड़ा होता है। तो क्यों ना अभी एक बार रुककर जरा देख लें साल जो करना था उसमें कितना हुआ, जो बाकी है उसके लिए कितना वक्त बचा हुआ है। तो प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड करते रहिए और चलते रहिए। 100.1 मेगाहर्ट्ज़ एफएम गोल्ड पर आप हैं उर्वशी के साथ म्यूजिकल दिल्लगी में।

0: आप सब ये बॉक्स देख रहे हो, इस बॉक्स में आप सबके लिए कुछ एनवेलप्स हैं। आप सब यहाँ आओ और ये एनवेलप्स ले लो।
1: मैम, मेरे वाले में तो HIV से रिलेटेड अलग अलग मैसेजेस हैं और इसमें लिखा है कि असुरक्षित यौन संबंध से HIV हो सकता है।
2: मेरे वाले में नीडल या इंजेक्शन शेयर करने से HIV फैलने की बात लिखी है
3: और इसमें लिखा है कि संक्रमित रक्त और रक्त उत्पादों से HIV हो सकता है।
4: मल्टीपल पार्टनर्स मतलब HIV का ज्यादा रिस्क।
0: हम अपनी जिंदगी में अच्छा बुरा सब जानते हैं लेकिन फिर भी कुछ बातें इग्नोर कर देते हैं, तो मैंने सोचा जाते जाते याद दिला जाओ ताकि पूरी जिंदगी इग्नोर नहीं याद रखोगे।
5: HIV/AIDS से संबंधित अधिक जानकारी के लिए नजदीकी सरकारी अस्पताल के ICTC में संपर्क करें या नेशनल टोल फ्री AIDS हेल्पलाइन 1097 पर कॉल करें। नैको स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा जनहित में जारी।
6: पर्सनल लोन ऑफर
7: फिर से ब्लॉक करता हूँ।
6: फ्री ट्रिप टू दुबई
7: ये भी ब्लॉक। कितना ब्लॉक करूं यार?
8: सिर्फ फोन पे ब्लॉक करने से स्पैम खत्म नहीं होता, हर बार नया नंबर आ जाता है।
7: तो क्या करूं?
8: कॉल उठाओ फिर ट्राई DND ऐप पर रिपोर्ट करो, कैटेगरी सेलेक्ट करो, बैंकिंग, ट्रैवल, इंश्योरेंस और सबमिट। बस कुछ सेकंड्स का काम।
7: मतलब सबका स्पैम कम होगा?
8: हाँ, रिपोर्ट्स मिलते ही एक्शन होता है। सिर्फ ब्लॉक नहीं, रिपोर्ट जरूर करें। ट्राई DND ऐप, डाउनलोड नाउ फ्रॉम प्ले स्टोर और ऐप स्टोर एंड स्टार्ट रिपोर्टिंग।
9: मन की बात है जन जन की, सभी की कुछ अपनी सी, संघर्षों के कुछ किस्से, कहानी कुछ सफलताओं की, अनकही विरासत की, उम्मीदें नए भारत की। महीने के आखिरी रविवार का रहता है इंतजार, मलयाचल के आंचल से विंध्याचल के आंगन तक, ब्रह्मपुत्र के घाट से हिमालय के विस्तार तक होती है मन की बात प्रधानमंत्री के साथ। तो सुनिए इस महीने 27 सितंबर सुबह 11 बजे मन की बात आकाशवाणी दूरदर्शन के सभी चैनलों और प्रसार भारती के OTT प्लेटफॉर्म वेव्स पर। इसके अतिरिक्त आकाशवाणी और दूरदर्शन के YouTube चैनल और प्रसार भारती के ऐप न्यूज ऑन एयर और OTT प्लेटफॉर्म वेव्स पर सजीव प्रसारण लाइव स्ट्रीमिंग के माध्यम से। तो याद रखें, रविवार 27 सितंबर सुबह 11 बजे मन की बात।

0: 8:52 हो चुके हैं, आप हैं म्यूजिकल दिल्ली में और वशी के साथ। और दोस्तों, क्या कभी ऐसा हुआ है कि सामने वाली से कुछ बोलने की जरूरत ही ना पड़ी हो, बस एक नजर मिली और बात समझ आ गई? क्योंकि हर कम्युनिकेशन के लिए वर्ड जरूरी नहीं होते। 23 सितंबर है आज, इंटरनेशनल डे ऑफ साइन लैंग्वेजेस। सांकेतिक भाषा भी ये बताती है कि बिना बोले भी अपनी बात कही और समझी जा सकती है, और रिश्तों में भी शायद यही चीज काम आती है। हर बार हर बात को सुनने की जरूरत नहीं होती, कुछ बातें समझनी जरूरी होती हैं।
1: सुनो,
2: कहो,
1: कहा,
2: सुना,
1: कुछ हुआ क्या?
2: अभी तो नहीं, कुछ भी नहीं।
1: सुनो,
2: कहो,
1: अरे कहा,
2: सुना,
1: कुछ हुआ।

हमारे डेली रूटीन में कई बार ऐसा होता है ना, कुछ चीजें साफ साफ नहीं दिखाई देती हैं, लेकिन कुछ रूटीन से हटकर जरूर दिखाई देता है। अगर थोड़ा सा ऑब्जर्व करें ना, तो उसके क्लूज मिल सकते हैं। शायद वही क्लू जो है हमें किसी वजह या किसी नई इन्फॉर्मेशन तक पहुंचा दे, लेकिन हम इतने बिजी होते हैं कि कई बार ये छोटे छोटे क्लूज नोटिस नहीं कर पाते और पता ही नहीं चलता जो इन्फॉर्मेशन हमने मिस कर दी वो कितनी इंपॉर्टेंट हो सकती थी। क्योंकि ऐसा ही कुछ हुआ 23 सितंबर 1846 को नेपच्यून की खोज में। एस्ट्रोनॉमर्स ने नेपच्यून को सीधे नहीं देखा था, उन्होंने यूरेनस की मूवमेंट में कुछ अनयूजुअल नोटिस किया और फिर कैलकुलेशंस की और अंदाजा लगाया कि वहां कोई और प्लैनेट हो सकता है। तो फिर उसके बाद टेलीस्कोप से उस अंदाजे को सच साबित कर दिया गया। और हाँ, नेपच्यून आज भी हमारे सोलर सिस्टम का 8वां और सबसे दूर का प्लैनेट है। तो देखा कि कुछ चीजें बस अंदाजा लगता है और फिर उनके बारे में खोजा जाता है और पता चल जाता है। ऐसे हमारे बारे में भी हम बहुत कुछ अंदाजा लगा सकते हैं और खोज सकते हैं।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं प्रियंका अरोड़ा। विदेश मंत्री डॉ एस जयशंकर ने बढ़ते भू राजनीतिक तनाव, आर्थिक चुनौतियों, जलवायु संबंधी आपदाओं और बहुपक्षीय व्यवस्था पर बढ़ते दबाव से निपटने के लिए विकासशील और अल्पविकसित देशों के बीच अधिक सहयोग की अपील की है। श्री जयशंकर कल न्यूयॉर्क में संयुक्त राष्ट्र महासभा की 81वीं बैठक से अलग विकासशील और अल्पविकसित देशों की बैठक को संबोधित कर रहे थे। इस दौरान उन्होंने कहा कि वैश्विक स्थिति में बढ़ते संघर्ष, आपूर्ति श्रृंखला और व्यापार पर दबाव, निवेश के बिखरे हुए प्रवाह, बढ़ते ऋण के जोखिम और विकास के लिए अपर्याप्त वित्त की समस्याएं देखी जा रही हैं।
1: India's engagement with the Global South.
2: ग्लोबल साउथ के साथ भारत का जुड़ाव सिर्फ अपने राष्ट्रीय हितों तक ही सीमित नहीं है, बल्कि यह एक जुटता और साझा समृद्धि के प्रति उसकी प्रतिबद्धता को भी दिखाता है। यह रिश्ता आपसी सीख और सहयोग पर आधारित है, साथ ही इसमें अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था के भविष्य को तय करने में ग्लोबल साउथ की आवाज को मजबूत करने का साझा हित भी शामिल है।
0: अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने भारत पश्चिम एशिया यूरोप आर्थिक गलियारे का समर्थन किया है। उन्होंने कहा कि युद्ध के दौरान पश्चिमी एशियाई देशों पर हो रहे कई हमलों को देखते हुए पश्चिम एशिया में ऊर्जा अवसंरचना को ईरानी सीमा क्षेत्रों से दूर ले जाने की आवश्यकता है। राष्ट्रपति ट्रंप ने कल न्यूयॉर्क में संयुक्त राष्ट्र महासभा परिषद और अरब नेताओं के साथ बैठक को संबोधित करते हुए कहा कि पड़ोसी देशों में वाणिज्यिक जहाजों पर हुए हमलों ने इस क्षेत्र में ऊर्जा संबंधी अवसंरचना को बदलने की आवश्यकता को उजागर किया है। कनाडा के प्रधानमंत्री मार्क कार्नी ने कहा है कि भारत के साथ व्यापार वार्ता अच्छी प्रगति पर है और दोनों देशों का दिसंबर में G20 शिखर सम्मेलन तक बातचीत पूरी करने का लक्ष्य है। श्री कार्नी ने कहा कि उनके अनुसार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उस समय कनाडा की यात्रा करेंगे, हालांकि इसकी सटीक तारीख अभी तय नहीं हुई है। G20 सम्मेलन 14 और 15 दिसंबर को अमेरिका के मियामी में होगा। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा है कि बड़े शहरों में ऐसे एकीकृत वाणिज्य और उद्योग कार्यालय बनाने की योजना है, जहां व्यवसायों को विभिन्न सरकारी विभागों तथा एजेंसियों तक पहुंच की सुविधा एक ही स्थान पर मिल सके। उन्होंने कल नई दिल्ली में उद्योग और आंतरिक व्यापार संवर्धन विभाग की ओर से आयोजित कार्यशाला में ये बात कही। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं।
3: चलते फिरते खबरों से जुड़े रहिए। expert@AIRNewsHindi को फॉलो करें और PB शब्द पर आकाशवाणी समाचार सुने।
0: राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज गुजरात के वडोदरा में महाराजा सयाजीराव विश्वविद्यालय के 75वें दीक्षांत समारोह में शामिल होंगी। राष्ट्रपति वडोदरा में ब्रह्म कुमारी के विश्व के नव निर्माण के लिए आध्यात्मिक जागृति अभियान के शुभारंभ के साथ ग्लोबल स्पिरिचुअल पैलेस का उद्घाटन भी करेंगी। आयुष मंत्रालय आज महाराष्ट्र के नागपुर में 11वां आयुर्वेद दिवस मनाएगा। इस वर्ष का विषय है बेहतर कल के लिए आयुर्वेद। मंत्रालय ने बताया है कि ये समारोह आयुर्वेद के परिवेश से जुड़े प्रमुख हितधारकों को एक साथ लाएंगे और ज्ञान साझा करने तथा व्यापक जुड़ाव के लिए मंच प्रदान करेंगे। आयुष मंत्री प्रताप जाधव

0: ये आकाशवाणी है। विशेष श्रृंखला जन सेवा से देश सेवा के छठे संस्करण में प्रस्तुत है वित्तीय समावेशन और सामाजिक सुरक्षा विषय पर परिचर्चा। इसमें भाग ले रहे हैं सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया के पूर्व महाप्रबंधक रमेश कुमार अरोड़ा और आर्थिक विश्लेषक शिशिर सिन्हा। कार्यक्रम का संचालन कर रहे हैं हर्ष रंजन।
1: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन सेवा के रूप में यानी पब्लिक सर्विस में 25 साल पूरे हो चुके हैं। इस दौरान उन्होंने बहुत कई ऐसे काम किए जिससे आम लोगों का बहुत फायदा हुआ और खास तौर पे वित्तीय समावेशन और सामाजिक सुरक्षा के क्षेत्र में। पिछले एक दशक में इसे एक व्यापक जन अभियान का रूप मिला है। 2014 के बाद से खास करके वित्तीय समावेशन की दिशा में बहुत बड़े बड़े बदलाव देखने को मिले हैं। इसी बारे में आज हम अपनी विशेष सीरीज जन सेवा से देश सेवा में वित्तीय समावेशन और सामाजिक सुरक्षा पर बात करेंगे। हमारे साथ दो खास मेहमान हैं। हमारे साथ हैं रमेश कुमार अरोड़ा, जो पूर्व जीएम हैं, यानी वो फॉर्मर जनरल मैनेजर हैं सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया के। बहुत बहुत स्वागत आपका अरोड़ा साहब।
2: धन्यवाद, सभी श्रोताओं को भी मेरा नमस्कार।
1: और हमारे साथ हैं शिशिर सिन्हा, जो आर्थिक विशेषज्ञ हैं। शिशिर, आपका भी बहुत बहुत स्वागत आकाशवाणी में।
3: नमस्कार, धन्यवाद।
1: तो जैसा कि हमने अपने इंट्रो में कहा कि पिछले 25 वर्षों में जन सेवा के रूप में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पहले मुख्यमंत्रित्व काल में और फिर पिछले 12 वर्षों में प्रधानमंत्री के तौर पर आम लोगों को देश की कई बड़ी सामाजिक हो या आर्थिक हो, वित्तीय हो, ऐसी परियोजनाओं से योजनाओं से जोड़कर वित्तीय समावेशन की दिशा में बहुत बड़ा काम किया है। अरोड़ा साहब, आपसे हम चर्चा की शुरुआत करते हैं। 2014 के बाद से वित्तीय समावेशन की दिशा में और दृष्टिकोण में क्या कुछ प्रमुख खास बदलाव आपको देखने को मिले हैं जिसका आप उल्लेख करना चाहेंगे?
2: सबसे बढ़िया जो वित्तीय समावेशन की बात है, इसका मतलब ये है कि हर सिटीजन का पास एक बैंक का अकाउंट हो जिसमें उसे क्रेडिट की सुविधा भी दी जाए, इंश्योरेंस की सुविधा भी दी जाए, पेंशन की सुविधा भी दी जाए और डिजिटल ट्रांजेक्शन की भी पेमेंट की उसकी सुविधा दी जाए। यानी कि हर एक सिटीजन के पास एक यूजफुल और कन्वीनियंट एक अकाउंट हो जिससे कि वो सारी फैसिलिटीज को कर सके। जहां तक 2014 के बाद की बात है, आप सब जानते ही हैं कि जनधन खातों की शुरुआत जो है 2014 से लार्ज स्केल पर हुई है, जिसमें कि हमारे प्रधानमंत्री जी ने 15 अगस्त 2014 को लाल किले की प्राचीर से इसका बात कही थी। और ये हमारे एक बैंकिंग के लिए और सभी सिटीजन के लिए खाता खोलने की दिशा में एक बहुत बड़ा काम हुआ, जिसमें जीरो बैलेंस के ऊपर सबके अकाउंट खोले गए, साथ में रुपए डेबिट कार्ड की सुविधा दी गई, साथ में एक्सीडेंट इंश्योरेंस 2 लाख का दिया गया और लाइफ इंश्योरेंस कवर 30,000 रुपए का, जो 15/8/14 से 31/1/2015 तक खाते खुले थे उनमें 30,000 रुपए का एलिजिबल अकाउंट्स में लाइफ इंश्योरेंस कवर भी दिया गया। ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी एक नई स्कीम साथ में दी गई, जनधन खातों में 10,000 रुपए तक का ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी, अगर वो 6 महीने अगर एक्टिव अकाउंट रहता है, सही अकाउंट चलता है, तो उसमें वो भी फैसिलिटी है और साथ में पेंशन और इंश्योरेंस प्रोडक्ट्स इसकी भी सुविधा है और डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर। सबसे बड़ा जो फायदा एक हुआ है, जो गवर्नमेंट की डिफरेंट हमारी स्कीम्स हैं, जो पैसा है वो डायरेक्ट बेनिफिशियरी के खाते में जाए, तो डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर का बहुत बड़ा ये फायदा हुआ है ये जनधन खाते खुलने से।
1: बिल्कुल शिशिर, आपसे मेरा सवाल ये है, केवल बैंक खाता खोलना और व्यक्ति को वास्तव में वित्तीय व्यवस्था में शामिल करना दोनों दो अलग अलग चीजें हैं, आपको क्या लगता है आज हम किस चरण में हैं?
3: जनधन योजना में एक चूंकि कंप्यूटर और डिजिटल माध्यमों का इस्तेमाल हुआ,

0: तो बैंक उनके घर पे आ गया। देखिए वित्तीय समावेशन की बात हम क्यों कर रहे हैं, वित्तीय समावेशन केवल ये नहीं कि आपको हमने एक बैंकिंग सुविधा दी है या हमने आपको एक बीमा की सुविधा दी है या पेंशन की सुविधा दी है। दरअसल वित्तीय समावेशन अर्थव्यवस्था के औपचारिकरण की दिशा में बढ़ाया गया पहला कदम है, क्योंकि अगर आप देखिए कि एक व्यक्ति जो कि बैंक में खाता खुलवाता है, जैसा कि अरोड़ा साहब ने कहा कि उसको ओवरड्राफ्ट की फैसिलिटी है। अब अपने श्रोताओं के लिए समझना बहुत जरूरी है कि ओवरड्राफ्ट का मतलब क्या होता है। ये एक तरीके का आपके लिए कर्ज है। आप सामान्य तौर पर जब कर्ज लेने जाते हैं तो तमाम तरह के प्रावधान है जो देखे जाते हैं कि आपका सिविल स्कोर क्या है, आपका वेतन क्या है, आप क्या इस स्थिति में है कि नहीं, आप कर्ज का पुनर्भुगतान कर पाएंगे। वहां पर एक व्यक्ति का खाता खुला हुआ है प्रधानमंत्री जनधन योजना में, उसमें 6 महीने का परफॉर्मेंस देखना है कि वो 6 महीने में उसकी जो निकासी हुई या उसका जो जमा हुआ वो सही तरीके से है कि नहीं, फिर उसके आधार पर उसको 10,000 रुपए का ओवरड्राफ्ट दिया गया। अब आप कहेंगे 10,000 रुपए में किसी के लिए क्या होता है, लेकिन आप ये सोचिए कि जिस देश में एक बड़ी आबादी के पास जिसे कहा जाए कि 10,000 रुपया उसका वेतन होता हो, उसे 10,000 रुपए का एक कर्ज मिले जिससे कि वो अपने व्यक्तिगत तौर के अलावा अगर वो किसी उत्पादक कार्यों में लगा सके, छोटे मोटे कार्य कर रहा है उसमें वो लगा सके, तो कितना फायदा होगा। तो मेरे लिए वित्तीय समावेशन का मतलब एक व्यक्ति का अनौपचारीकरण से औपचारीकरण में आना है, अर्थव्यवस्था का विस्तार होना है, सकल घरेलू उत्पाद व्यवस्था बेहतर होनी है, और सबसे बड़ी बात है कि उसको एक ऐसी सुरक्षा दी जाती है वित्तीय सुरक्षा में जहां पर संगठित क्षेत्र से उसको मदद मिलती है। अब देखिए जनधन में एक और बात आपको गौर करने की है, जनधन से जन सुरक्षा की तरफ हम है। हमने केवल जनधन की बात नहीं की है, जन का धन आ गया
1: सुरक्षा,
0: और उसके बाद सुरक्षा देना, तो चाहे वो प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना हो या प्रधानमंत्री दुर्घटना बीमा योजना हो या फिर अटल पेंशन योजना हो, ये तीनों का महत्व इसलिए बढ़ जाता है क्योंकि हमारे देश में सामाजिक सुरक्षा की स्थिति बहुत अच्छी नहीं है। ये एक सार्वजनिक तथ्य है, इसमें मैं कोई अलग से फिगर्स नहीं ला रहा हूं। अगर ऐसी स्थिति में आपको एक पेंशन की सुविधा मिल जाए, आपको कहा जाए कि आप मामूली रकम देकर के दुर्घटना बीमा करा सकते हैं, मामूली रकम देकर के जीवन बीमा आप करा सकते हैं, तो कहीं ना कहीं सामाजिक सुरक्षा की धारणा मजबूत होती है। मेरे लिए एक व्यक्तिगत तौर पर वित्तीय समावेशन यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ एक व्यक्ति को बैंक से जोड़ना नहीं है, बल्कि उसके लिए एक वित्तीय सुरक्षा, वित्तीय व्यवस्था में मजबूती और अर्थव्यवस्था के औपचारीकरण की तरफ बढ़ाया गया एक कदम है।
1: बिल्कुल अरोड़ा साहब, जैसा बताया शिशिर जी ने, बहुत बारीकी से इन्होंने एक महत्वपूर्ण बात कही कि 10,000 रुपए की रकम का ओवरड्राफ्ट मिलना, यानी किसी को बड़े आसान शर्तों पर बिना किसी कोलेटरल के कर्ज मिल जाना। खास बात यह है कि लोग पेपर देने से, कोई कोलेटरल रखने से घबराते हैं, नहीं होता है उनके पास, मिल जाना। क्योंकि मेरे पास ऐसे उदाहरण है, सब्जी बेचने वाले जिन्हें सुबह का पैसा चाहिए कि वो मंडी से जाकर सब्जी खरीदें या खेतों से जाकर खरीदें और शाम तक बेच दें, उन्हें सुबह 5,000 रुपए भी मिल गए तो वो शाम तक वो 7,000-7,500 रुपए बना लेते हैं, उनका पहिया जो है जीवन का वो चल जाता है। और ऐसे एक नहीं अनेक उदाहरण हमने देखे हैं। तो शिशिर आपने ये बहुत महत्वपूर्ण बात कही है कि 10,000 रुपए की भी रकम अगर किसी को मिल रही है तो न सिर्फ उसका बल्कि उसके पूरे परिवार का पहिया चल पड़ता है और उससे एक परिवार की शिक्षा दीक्षा हो जाती है। और यही एक जो स्तंभ बन रहे हैं शायद विकसित भारत 2047 के स्तंभों में बड़े महत्वपूर्ण साबित होंगे। अरोड़ा साहब, एक सवाल आपसे भी है और यही सवाल शिशिर मैं आपसे भी फिर करने वाला हूं कि हम जैम ट्रिनिटी की बात करते हैं, यानी जनधन खाते जिसकी हमने अभी चर्चा की, आधार नंबर और मोबाइल नंबर, अब ये तीनों हो गए हैं। और भारत के डिजिटल और वित्तीय समावेशन का जो मॉडल रहा है इसमें जैम ट्रिनिटी का बहुत महत्वपूर्ण एक आधार रहा है। इस व्यवस्था ने सरकार और लाभार्थी जो एक आम नागरिक है उसके बीच के संबंधों को कैसे बदला है और कैसे एक आम आदमी सशक्त हुआ है, खास करके महिलाएं।
2: जैसे आपने जैम की बात कही, जैम का है जय से जनधन, ए से आधार और एम से मोबाइल, यानी कि इन तीनों को कंबाइन करके सबसे बड़ा इसका जो फायदा है वो डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर। जैसे मैंने पहले बात की, जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की जो स्कीम्स हैं खाते में जानी है उसके लिए विदाउट मिडिल मैन ये खाते में कैसे जैम के थ्रू जाए, यानी जनधन खाता होना चाहिए सबसे पहला बात, जिसमें मैंने जैसे पहले बताया जीरो बैलेंस के ऊपर भी खुल सकता है। उसके बाद आधार आइडेंटिटी के लिए कि ये पार्टिकुलर पर्सन यही है, उसकी आइडेंटिटी दे अगर फिक्स करनी है तो आधार के थ्रू है, और मोबाइल से कल को फ्रॉड ना हो जाए, ओटीपी वगैरह उसकी जो कम्युनिकेशन है वो उसके थ्रू मोबाइल है। यानी कि जब डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर का बात आती है उसको जैम जनधन खाता हो, आधार उसके लिंक होना चाहिए और मोबाइल होना चाहिए, इसके थ्रू वो डायरेक्ट जो उसके खाते में पैसा जमा कर दिया जाता है। तो ये जो फाइनेंशियल इंक्लूजन है, डिजिटल फाइनेंशियल के ऊपर ये जैम जो है बहुत बड़ा एक कार्य कर रहा है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का बहुत बड़ा इसमें योगदान है। अब जहां तक बात है इसमें कि कैसे काम करता है, तो जनधन में सबसे

0: बेनिफिशियरी का अकाउंट खुल गया, उसके बाद आधार से उसका लिंक हो गया और मोबाइल नंबर के थ्रू उसके पास जो SMS आएंगे, आपके अकाउंट में पैसा क्रेडिट हो गया, जो गवर्नमेंट की स्कीम्स हैं, जो बेनिफिट्स हैं वो हो गए, तो इस हिसाब से उसको जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की जो स्कीम्स है उसका बेनिफिट पूरा मिल जाता है और कोई मिडिलमैन नहीं, कोई उतने ट्रांसपेरेंसी के थ्रू ये काम होता है।
1: बिल्कुल शिशिर, यही सवाल आपसे भी है, लेकिन आपसे मैं ये भी खास तौर पर जानना चाहूंगा कि महिलाओं को किस तरीके से जैम ने सशक्त बनाया है और पारदर्शी सिस्टम को बनाया है, क्योंकि आम तौर पर होता क्या था कि उन्हें अगर किसी रकम कोई मिलती थी, चाहे कहीं से मिले, सरकार के इससे मिले, कैश होता था, तो गिद्ध दृष्टि जो होती थी घरों में भी कई लोगों की होती थी, कई बार उनके पैसे गुम हो जाते थे, ठीक से गिन नहीं पाती थी, कहीं रख दिया, भूल गए, बच्चों ने चुरा लिया, तो बाहर से भी सुरक्षा, अंदर से भी सुरक्षा और सामने पारदर्शिता, अपने पैसे को बढ़ते हुए देखना, इस पर आपकी क्या टिप्पणी?
2: पहले अगर आप जैम की अवधारणा देखिए, मुझे याद है कि पूर्व मुख्य आर्थिक सलाहकार अरविंद सुब्रमण्यम साहब ने आर्थिक सर्वेक्षण जो 2015-16 का दिया था, उसका शीर्षक था उस चैप्टर का कि कैसे लोगों के आंसू पूछे जाए, और उसी में, उसी शीर्षक के तले अध्याय में जैम का जिक्र किया गया था। तो पहली बार जब जैम शब्द आया तो हम लोग थोड़े से सोचे कि जैम होता क्या है भाई, हम तो ब्रेड पे लगा के खाने वाले की बात कर रहे हैं। फिर जब मुझे उसके ठीक एक दिन के बाद जब बजट में इस बात का जिक्र किया गया कि हम जैम ट्रिनिटी के जरिए, यानी कि जनधन आधार और मोबाइल के जरिए प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरण करेंगे। अब देखिए, आपने महिलाओं के सशक्तिकरण की बात की है, जनधन खाते में एक बड़ी संख्या किसकी? महिलाओं की है, और महिलाएं भी कौन? जो ग्रामीण इलाके में है। तो अब देखिए, देश के कई हिस्से ऐसे हैं जहां पर ग्रामीण इलाकों में महिलाओं की जो श्रम भागीदारी है वो पुरुषों से कई गुना ज्यादा है। अब वहां पर जो कुछ भी उनको भुगतान होता है, चाहे वो बीबीजी रामजी के जरिए हो, चाहे वो किसी और योजना के जरिए हो, उस योजना का पैसा जो उनके खाते में जा रहा है, बीच में कोई आदमी शामिल नहीं है। तो आप ये भी याद करें कि एक पूर्व प्रधानमंत्री जी का बयान था कि रुपए का 15 पैसा ही गांव तक पहुंचता है। अब उसमें से अगर एक ग्रामीण महिला के पास अगर बैंक खाता नहीं है तो जाहिर सी बात है कि वो 15 पैसे भी पहुंचेगा, इस बात की कोई गारंटी नहीं है। तो ऐसी सूरत में अगर आपके पास खाता है और उस खाते के जरिए आप लेन देन करते हैं, वो सशक्त हैं, क्योंकि वहां पर वो श्रम शक्ति में बड़ी भागीदारी कर रही हैं। लेकिन हमको आर्थिक तौर पर सशक्त बनाना है तो वहां पर जनधन खाते में उनकी मदद हो रही है, और जनधन खाता केवल आपके लिए पैसा लेन देन का माध्यम नहीं है, बल्कि वहां से जन सुरक्षा का रास्ता खुलता है, ये आपके सशक्तिकरण का दूसरा रास्ता है। आपको बीमा सुरक्षा मिलती है, आपको ओवरड्राफ्ट की फैसिलिटी मिलती है, आपके पास एक सबसे बड़ी बात है कि रुपए कार्ड मिल रहा है, जो कि अमूमन क्या होता है कि हम लोग एक महत्वाकांक्षी व्यक्ति होने के नाते हम सोचते हैं कि हमारे पास क्रेडिट कार्ड नहीं है, हमारे पास कार्ड नहीं है। कार्ड कहीं ना कहीं हमारे एक महत्वाकांक्षा से जुड़ा हुआ है। एक महिला जो ग्रामीण इलाके में काम करे, उसको हमने कार्ड दिया, अब उस कार्ड के जरिए वो कहीं भी जाकर के खरीदारी कर सकती है, क्या ये सशक्तिकरण नहीं है? तो पहली श्रम सशक्तिकरण हुआ, फिर उसके बाद उनका आर्थिक सशक्तिकरण हुआ, फिर उनका जो विश्वास है वो और बेहतर होगा, तो यही तो सशक्तिकरण की दिशा में बढ़ाया गया कदम है। और मुझे लगता है कि जनधन एक पहला कदम था, और जनधन के बाद अब जो दूसरा कदम है, जिसपे काफी अच्छे से बातचीत भी हुई है, चर्चा भी हुई है, काम भी हो रहा है, वो है वित्तीय साक्षरता का। और मुझे लगता है कि महिलाओं के सशक्तिकरण में, महिलाओं की हम बात क्यों करें, पुरुषों में भी, महिलाओं और पुरुषों के दोनों के सशक्तिकरण में जो वित्तीय साक्षरता की भूमिका होगी वो कम नहीं है। और एक बात मैं कहना चाहूंगा कि महिलाएं आर्थिक तौर पर जितनी ज्यादा कहते ना कि तर्कसंगत फैसले लेती हैं, वो शायद पुरुष नहीं लेते हैं। हम तीन पुरुष यहाँ बैठ करके इस बात पे सहमति जता सकते हैं कि महिलाएं आर्थिक रूप से ज्यादा अच्छी सोच रखती हैं पुरुषों के मुकाबले में।
1: मैं बिल्कुल आपकी बात से इत्तफाक रखता हूँ। अच्छी सोच और समझ के साथ साथ वो दूर दृष्टा भी होती हैं वित्तीय मामलों में, और भविष्य भी सुरक्षित रखना चाहती हैं अपने परिवार का। और जब एक परिवार का भविष्य सुरक्षित होता है तो समाज और फिर देश का भविष्य भी उसी तरीके से सुरक्षित रहता है। जनधन खातों की हमने बात की, जैम ट्रिनिटी की बात की, 54 करोड़ आपने बताया कि जनधन में खाते खुले हैं, 3 लाख करोड़ से अधिक की राशि उसमें जमा हुई है। आइए सुनते हैं जनधन से संबंधित एक खास रिपोर्ट।
3: श्रोताओं, वित्तीय समावेशन को अगर बहुत आसान भाषा में समझें तो इसका मतलब है देश के हर व्यक्ति तक बैंक खाता, बचत, बीमा, पेंशन और दूसरी जरूरी वित्तीय सेवाओं की पहुंच। इसी दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है प्रधानमंत्री जन धन योजना। इस योजना की शुरुआत 28 अगस्त 2014 को हुई थी। इसका उद्देश्य उन लोगों को बैंकिंग व्यवस्था से जोड़ना था जो अब तक बैंकिंग सुविधाओं से दूर थे। आज इस योजना का दायरा काफी बढ़ चुका है। 19 अगस्त 2026 तक देश में 59 करोड़ 9 लाख से अधिक जन धन खाते खोले जा चुके थे। इनमें करीब 56% खाते महिलाओं के हैं, जबकि लगभग 78% खाते ग्रामीण और अर्ध शहरी क्षेत्रों में हैं। श्रोताओं, जन धन खाता एक सामान्य बैंक खाते की

0: रही है, लेकिन इसका महत्व इसलिए अधिक है क्योंकि इसके माध्यम से लोगों को कई दूसरी वित्तीय सेवाओं से जोड़ा जा सकता है। खाता धारकों को रुपे डेबिट कार्ड दिया जाता है और पात्र खाता धारक ओवरड्राफ्ट की सुविधा भी प्राप्त कर सकते हैं। पात्र खातों के लिए दुर्घटना बीमा कवर की सुविधा भी उपलब्ध है। अब बात करते हैं JAM की। JAM का मतलब है जनधन, आधार और मोबाइल। इन तीनों को जोड़कर सरकार ने लाभार्थियों तक सरकारी सहायता सीधे पहुंचाने की व्यवस्था को मजबूत किया है। इसी से जुड़ा है प्रत्यक्ष लाभ अंतरण यानी DBT। आसान शब्दों में कहें तो अगर किसी सरकारी योजना का पैसा किसी व्यक्ति को मिलना है तो पात्र होने पर वो राशि सीधे उसके बैंक खाते में पहुंचाई जा सकती है। इससे बीच के लोगों की भूमिका कम हो जाती है और लाभ सीधे लाभार्थी तक पहुंचता है। 10 अगस्त 2026 तक DBT के माध्यम से 320 योजनाओं के अंतर्गत 56 मंत्रालयों द्वारा कुल 52,89,19 करोड़ रुपए के अंतरण दर्ज किए गए थे। लेकिन वित्तीय समावेशन केवल बैंक खाता खोलने तक सीमित नहीं है। इसके साथ लोगों को बीमा और पेंशन जैसी सामाजिक सुरक्षा योजनाओं से भी जोड़ना महत्वपूर्ण है। उदाहरण के लिए प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना के अंतर्गत पात्र लोगों को जीवन बीमा कवर मिलता है। वहीं प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना दुर्घटना से जुड़े बीमा कवर की सुविधा देती है। अटल पेंशन योजना पात्र लोगों के लिए पेंशन की व्यवस्था से जुड़ी है। जुलाई 2026 तक PMJJBY में 27.84 करोड़ संचयी नामांकन, PMSBY में 58.78 करोड़ संचयी नामांकन और जून 2026 तक APY में 9.29 करोड़ संचयी नामांकन दर्ज किए गए थे। इसके अलावा ई श्रम के माध्यम से असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों का पंजीकरण, आयुष्मान भारत PMJAY के माध्यम से स्वास्थ्य सुरक्षा और PM स्वनिधि के माध्यम से रेहड़ी पटरी वालों को ऋण जैसी पहले भी सामाजिक और आर्थिक सुरक्षा के व्यापक ढांचे का हिस्सा हैं। श्रोताओं, इन योजनाओं को एक साथ देखें तो तस्वीर साफ होती है। जन धन से बैंक खाता, JAM और DBT से सरकारी लाभ का सीधा अंतरण और बीमा योजनाओं से आर्थिक सुरक्षा, पेंशन से भविष्य की सुरक्षा और दूसरी योजनाओं से स्वास्थ्य तथा आजीविका को सहारा मिलता है। यानी वित्तीय समावेशन का मतलब केवल बैंक में खाता होना नहीं, इसका उद्देश्य है देश का आम नागरिक बैंकिंग व्यवस्था से जुड़े, अपने पैसे को सुरक्षित रखे, जरूरत के समय वित्तीय सहायता और बीमा जैसी सुविधाओं का लाभ ले और भविष्य के लिए भी तैयारी कर सके। यही प्रयास वित्तीय समावेशन को सामाजिक सुरक्षा से जोड़ता है और आम नागरिक को औपचारिक वित्तीय व्यवस्था का हिस्सा बनाता है।
1: अगला सवाल शिशिर, मैं आपसे ही पूछ रहा हूँ। जनधन पर हमने ये एक रिपोर्ट सुनी और बड़े चौंकाने वाले आंकड़े हमने देखे कि किसी भी देश के लिए इतने बड़े पैमाने पर खातों का खुल जाना अचंभा।
2: उस समय गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में उसको जगह दी गई थी जो पहले दिन खाते खुले थे।
1: बिल्कुल बिल्कुल। साथ में हमने ये भी देखा कि किस तरीके से प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना से लोगों का लाभ हुआ है, लोग सशक्त हुए हैं और क्लेम सेटलमेंट भी ठीक ठाक बढ़िया से अच्छे तरीके से हो रहा है। इसमें कहीं कोई बहुत झंझट लोगों को पेश नहीं आ रही है जहां उसकी जरूरत पड़ रही है। अब बात करेंगे पेंशन और वृद्धावस्था की सुरक्षा की। इस मामले में सरकार ने पिछले खासतौर पे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में मार्गदर्शन में क्या क्या काम किया है?
2: सबसे पहले तो हम अटल पेंशन योजना की बात करेंगे। देखिए, पेंशन योजना की उपयोगिता क्या है? अब देखिए, जो लोग सरकारी नौकरी में हैं उनके लिए एक सहूलियत ये रही कि उनको रिटायरमेंट के बाद पेंशन मिलता रहा है। यहाँ तक कि जब पहली जनवरी 2004 से पेंशन की व्यवस्था बदली, डिफाइंड बेनिफिट से हम लोग डिफाइंड कंट्रीब्यूशन पे आ गए, वहां पर भी आपको एक निश्चित रकम तो मिलनी है। लेकिन आप ये भी ध्यान में रखिए कि कितने लोग सरकारी नौकरी में है, दूसरा कितने लोग हैं जो नियमित तनख्वाह पाने वाले जॉब में है। तो श्रम मंत्रालय के आंकड़े बताते हैं कि 22% है ये संख्या, यानी कि 78% वो लोग हैं जिनके पास नियमित वेतन नहीं है। और उनके लिए, चाहे वो ग्रामीण क्षेत्र में हो, चाहे वो अर्धशहरी क्षेत्र में हो या शहरी क्षेत्र में हो, क्या हम उनके लिए रियायती दर पर पेंशन की व्यवस्था कर सकते हैं? तो अटल पेंशन योजना में क्या कही गई कि भाई आपको 18 वर्ष से 40 वर्ष की उम्र तक आपको योगदान करना है, 60 वर्ष की उम्र में आपको पेंशन मिलेगा, जो कि उस समय कहा गया 3,000 रुपए मिलेंगे। अब फिर वही बात आती है कि क्या 3,000 रुपए पर्याप्त है? हो सकता है कि आपको आगे चल करके और बड़ी रकम मिल जाए, और ज्यादा रकम मिले आप जितना योगदान करते हैं। लेकिन शुरुआत में ही अगर हम संशय जता दें कि 3,000 रुपए में कुछ नहीं होने वाला है, तो वो शायद उस योजना के ऊपर ही आप प्रश्न चिन्ह उठाते हैं। तो पहला जो मुझे लगता है कि बड़ा जो सुधार हुआ वो था पेंशन को लेकर के। दूसरा अगर आप देखें तो कई जो वृद्धावस्था की जो पेंशन योजनाएं हैं, चाहे जीवन बीमा की कुछ पॉलिसीज हैं जो कि खास तौर पर बुजुर्गों के लिए बनाई गई है, और इसीलिए आपने महसूस किया होगा कि हमारे देश में सिल्वर इकोनॉमी बहुत तेजी से बढ़ रही है। सिल्वर इकोनॉमी का मतलब है कि जो 60 वर्ष से उम्र से ज्यादा लोग हैं वो किस तरीके से अर्थव्यवस्था में उनकी हिस्सेदारी क्या उनके लिए किया जा सकता है, और वो इसीलिए संभव हो पाया क्योंकि इस तरह की पेंशन योजनाएं या वयोवृद्ध बीमा योजनाएं जो हम लोग की बात कर रहे हैं उसने कहीं ना कहीं सिल्वर इकोनॉमी को बढ़ावा दिया है। और इन्हीं सब का एक असर ये भी हुआ है कि खास तौर पे रियलिटी प्रोजेक्ट्स आने लगे जो कि सीनियर सिटीजन के लिए खास तौर पे लाए जाने, क्योंकि उनका एश्योरेंस हो गया। मैं एक और बात आपको कहना चाहता हूं, शायद अरोड़ा साहब उसको और अच्छे से एक्सप्लेन करेंगे, जिसको हम लोग रिवर्स मॉर्गेज स्कीम कहते हैं। यानी कि आपने जिंदगी भर कुछ कमाई करी, आपने घर बनाया, और आप जब 60 वर्ष की उम्र में पहुंचते तो जाहिर सी बात है कि हमारे कार्य करने की क्षमता कम हो जाती है। उसके बाद हमारे पास जो आमदनी का स्रोत है वो हमारे लिए सीमित हो जाता है, उस समय हमें ज्यादा जरूरत है। तो हमने जो बना रखा है उसको हम किस तरीके से इस्तेमाल करके हम बाकी के दिनों के लिए हम उससे संसाधन का इंतजाम कर सके। ध्यान रखिए कि रिवर्स मॉर्गेज स्कीम पहले भी था, लेकिन अब उसकी जो जिस तरीके से इसको कहा जाना कि समय के हिसाब से बदलाव करके उसको उपयोगी बनाया गया, ये महत्वपूर्ण है। तो जैसा आपने शुरू में कहा था कि वित्तीय समावेशन की अवधारणा पहले भी थी, कोई नई बात नहीं है, या फिर अगर हम खाते की बात करें वो पहले भी थी, लेकिन सवाल ये उठता है कि हम बदलते समय के हिसाब से क्या कुछ बदलाव करते हैं। तो चाहे वो अटल पेंशन योजना हो, वयोवृद्ध बीमा योजना की हम लोग बात करें, या फिर हम लोग रिवर्स मॉर्गेज स्कीम के नवीकरण की बात करें, ये तीन ऐसे मामले हैं जहां पर मुझे लगता है कि जो हमारे 60 वर्ष से ज्यादा उम्र के लोग हैं उनकी बेहतरी के लिए इंतजाम किए गए।
1: बिल्कुल, और अरोड़ा साहब हम वित्तीय समावेशन की बात कर रहे हैं। दरअसल प्रधानमंत्री अपने जीवन के 25 साल जो जन सेवा में दिए, तो मुझे लगता है कि मुख्यमंत्री रहते हुए जिस तरीके से आम लोगों से, गांव के लोगों से, कई विषम परिस्थितियों से जब वो निपटे, तो उसमें जो आम लोगों से उनकी चर्चा हुई, आम लोगों को जो समझने की कोशिश की, उससे बहुत बड़ी मदद मिली है कि कौन सी स्कीम्स देश में लाई जाएं। और सिर्फ एक स्कीम लाना ही नहीं, जैसे शिशिर अभी बता रहे थे कि सिर्फ जनधन योजना खोल देने से ही काम नहीं चलेगा, उसके साथ आपको बहुत सारी चीजें उसकी सुरक्षा के लिए, सामाजिक सुरक्षा के लिए देनी होगी, तभी जाकर वो सफल हो पाएगा। तो हमने जीवन ज्योति बीमा योजना की बात की, लेकिन जब तक हम स्वास्थ्य सुरक्षा की बात नहीं करेंगे तब तक वित्तीय समावेशन की चर्चा दरअसल पूरी होगी नहीं। पूरी तभी होगी जब हम इसमें स्वास्थ्य सुरक्षा को भी इसमें शामिल करेंगे। आयुष्मान भारत और पीएम जय ने गरीब परिवारों के लिए हेल्थ केयर फाइनेंसिंग की तस्वीर एक तरीके से बदल दी है। व्यक्ति जब स्वस्थ रहेगा तो वो एक स्वस्थ सोच के साथ आगे बढ़ेगा और फिर देश आगे बढ़ेगा। आपकी नजर में किस तरीके का बदलाव आपने देखा है पिछले 10-12 वर्षों में?
3: आयुष्मान जो भारत स्कीम है, इसमें दो पार्ट हैं। पहला है आयुष्मान आरोग्य मंदिर, जिसमें जो हेल्थ केयर स्कीम है, प्रिवेंटिव केयर की है, स्क्रीनिंग की है, या मेडिसिन है, या बेसिक डायग्नोस्टिक है, उसकी फैसिलिटी वहां दी जाती है। और दूसरा है प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना PMJAY, इसमें जो है कैशलेस हॉस्पिटलाइजेशन की सुविधा दी जाती है। इसमें भी दो पार्ट है, एक तो वो जो गरीब या वल्नरेबल पर्सन है उनके लिए पहले उनको रजिस्ट्रेशन किया गया, तो एक परिवार को 5,00,000 रुपए तक का वो कैशलेस जो है, जो डेजिग्नेटेड जो पैनल में हॉस्पिटल्स हैं उनमें उनको सुविधा दी जाएगी। दूसरा उसमें अब चेंज किया गया, 70 साल एंड अबो उनके लिए भी 5,00,000 रुपए की ये सुविधा दी गई है, उसमें इरेस्पेक्टिव इनकम, उसमें कोई इनकम का कोई क्राइटेरिया नहीं है। तो ये एक बहुत बड़ा बदलाव आया है, खासतौर से मेडिकल फैसिलिटी में। जैसा हम देखते हैं जो गरीब लोग हैं वो बीमार भी पड़ते ही हैं, लेकिन उनके पास ऐसी कोई सुरक्षा की गारंटी नहीं थी कि वो किसी तरह से भी हॉस्पिटल जा पाए। तो उनके लिए एक तो आयुष्मान आरोग्य मंदिर खुल गए, जहां वो ओपीडी में अपना दिखा सकते हैं, अपना टेस्ट वगैरह करा सकते हैं, और लगता है अगर उनकी रिकमेंडेशन है कि उन्हें हॉस्पिटलाइजेशन होना है तो 5,00,000 तक का उनके लिए सुविधा कैशलेस फैसिलिटी पर ईयर तक की है। और 70 साल से ऊपर लगे सीनियर सिटीजन जो लोग हैं उनके लिए फैसिलिटी है कि उनको भी इसमें जोड़ा गया है। तो एक बहुत बड़ी चेंज आई है। उधर आप अटल पेंशन योजना की अभी आपने बात की, जिसमें जो पेंशन की स्कीम है उसमें ऑप्शन है 18 से 40 साल तक के लिए आपने एंट्री लेनी है, उसमें 1,000 से 5,000 तक की ऑप्शन है, 1,000, 2,000, 3,000, 4,000, 5,000, जो भी आपकी ऑप्शन है उसमें आप जो है उस हिसाब से पेंशन 60 साल के बाद आपको मिल जाएगी। और सबसे बड़ी बात इसमें क्या है कि अगर डेथ हो जाती है बेनिफिशियरी की तो उसकी स्पाउस को वही सेम पेंशन अगेन स्टार्ट हो जाएगी। अगर वो भी उसमें एनरोल है तो उसकी अपनी पेंशन भी होगी, मान ली 5,000 की हुई है, 5,000 की उनको 10,000 होनी शुरू हो जाएगी। तो ये बहुत बड़ा एक बदलाव है। साथ में जैसा अभी बात की थी सोशल सिक्योरिटी स्कीम में प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना, प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना, इसमें बहुत बड़ा बदलाव आया है। 2,00,000 रुपए तक का आपका अगर एक्सीडेंटल डेथ होती है तो सुरक्षा बीमा योजना में आपको 2,00,000 तक का, या डिसेबिलिटी फुल डिसेबिलिटी तो 2,00,000, पार्शियल डिसेबिलिटी होती है तो 1,00,000 रुपए। इसमें जो प्रीमियम है वो बहुत नॉमिनल है, 20 रुपए सालाना केवल, और 31 मई को कटता है, 1 जून से पॉलिसी शुरू हो जाती है 31 मई के लिए, तो 20

0: बीस के ऊपर 2 लाख रुपए तक का 20 रुपए होता ही कितना है, बहुत नॉमिनल अमाउंट है। और आपको अगर डेथ हो जाती है या फुल डिसेबिलिटी होता है 2 लाख रुपए, पार्शियल डिसेबिलिटी होती है तो 1 लाख रुपए। और 18 से 70 साल के लोग इसमें पार्टिसिपेट कर सकते हैं। सिमिलरली जो प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना है उसमें अगर नेचुरल डेथ होती है उसमें 2 लाख रुपए 436 रुपए सालाना, ओनली 436 रुपीज सालाना देकर आपको 2 लाख का बीमा मिल जाता है। तो और इसमें भी एक कंडीशन रखी गई है कि 18 से 50 साल तक की इसमें एंट्री है, लेकिन अगर आप रिन्यूअल कराते रहते हैं तो 55 साल के बीच में भी अगर डेथ हो जाती है तो भी 2 लाख रुपए आपके नॉमिनी को मिल जाएंगे। तो एक बहुत बड़ा सुधार आया है प्रधानमंत्री 2014 के बाद से, कि खासतौर से हमारी जो बिल्कुल गरीब लोग हैं, तबके लोग हैं जिनको कुछ भी सुरक्षा की वो नहीं है, उनके लिए पेंशन स्कीम है, एक्सीडेंटल पेंशन स्कीम है, साथ में ये अटल पेंशन योजना होगी, और साथ में उसके बाद आयुष्मान कार्ड 5 लाख रुपए तक का आपको मुफ्त में कैशलेस, वो भी आपको जाना है, खाना है, इलाज कराना है और सीधा आप साइन करके आप वापस घर आ सकते हैं, कोई पैसा कोई पेमेंट कुछ नहीं होगी। तो बहुत बड़ा बदलाव आया है खासतौर से 2014 के बाद से।
1: बिल्कुल शिशिर, जैसा अरोड़ा साहब ने बताया कि अगर किसी परिवार में किसी को कोई गंभीर बीमारी हो जाती है तो वो परिवार बहुत साल पीछे चला जाता है आर्थिक फ्रंट पर, और अगर वो परिवार निम्न आय वर्ग का हो तो फिर तो और भी मुश्किल खड़ी हो जाती है। इस संदर्भ में अगर देखें तो स्वास्थ्य सुरक्षा को सामाजिक सुरक्षा का अनिवार्य हिस्सा बनाना इस सरकार की सोच का एक बेहद महत्वपूर्ण हिस्सा रहा है। साथ ही ये देखें कि चेकअप के साथ इलाज के साथ साथ प्रिवेंटिव हेल्थ केयर पर भी सरकार का बहुत जोर रहा है। आपने तो कई यूज केस देखे और लगातार आप उस पे स्टडी करते रहते हैं, क्या आप बता सकते हैं कि किस तरीके से इसने निम्न आय वर्ग के लोगों को खास करके प्रिवेंटिव हेल्थ केयर में भी मजबूत किया है, उनकी सोच विकसित की है और उन्हें नए जमाने के हिसाब से अपने स्वास्थ्य की देखभाल के लिए प्रेरित किया है।
2: एक बड़ा बदलाव जो 2014 के बाद हमने देखा है वो है जिसको हम लोग कहते हैं कि बॉटम्स अप अप्रोच, टॉप्स डाउन नहीं है। बॉटम्स अप अप्रोच और टॉप्स डाउन अप्रोच अपने श्रोताओं के लिए समझना बहुत जरूरी है कि आपके पास जमीनी स्तर से सुझाव आते हैं और सुझाव के आधार पर आप अपनी नीतियों में बदलाव करते हैं, और टॉप्स डाउन का मतलब है कि आप ऊपर बैठे, आपने जो फैसला किया नीचे डाल दिया, चाहे नीचे उसकी जरूरत है या नहीं है। आप याद करिए 2015 के बाद जब पहली बार स्वच्छ भारत अभियान की बात की गई थी तो लोगों ने कहा स्वच्छ भारत अभियान क्या, झाड़ू लगाना है क्या। लेकिन एक वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन या वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट है जो ये बताती है कि आदमी अगर स्वच्छता से नहीं जीता है तो अर्थव्यवस्था में उस कितने हद तक वो नुकसान पहुंचा सकता है, यानी कि उसकी उत्पादकता कम होती है। जब उसकी उत्पादकता कम होती है तो जाहिर सी बात है कि पूरी अर्थव्यवस्था को उसका नुकसान होता है। यही प्रिवेंटिव हेल्थ केयर है। देखिए प्रिवेंटिव हेल्थ केयर का मतलब ये नहीं कि साल भर में आप हर साल जाकर के बॉडी चेकअप कराते हैं। प्रिवेंटिव हेल्थ केयर में ये भी है कि आप उसके लिए आधार ऐसा तैयार करते हैं कि आपको अस्पताल जाने की जरूरत ना पड़े। तो आपके पास अगर हर, जैसे कहते हैं कि हर विद्यालय में शौचालय की बात की गई, घर में शौचालय की बात की गई या फिर स्वच्छता अभियान चलाया गया, ये प्रिवेंटिव हेल्थ केयर का पहला स्टेप था। उसके बाद भी भाई देखिए बीमारी कोई बता के तो आती नहीं, और बीमारी कभी किसी को आ जाती है, तो आपके पास आप एक सुविधा दे दी कि आप आरोग्य मंदिर में जाकर के आप अपनी स्क्रीनिंग करा लीजिए, आपको जो जरूरत है उस हिसाब से इलाज करवा लीजिए। फिर भी अगर आपको इलाज की जरूरत पड़ती है तो आपके पास प्रधानमंत्री जो जय है, आपके पास आयुष्मान कार्ड है, 5 लाख रुपए तक की सुरक्षा ले लीजिए। इसका सबसे ज्यादा फायदा किसको है, जो हमारे निम्न आय वर्ग है, क्योंकि देखिए मध्यम आय वर्ग और उच्च आय वर्ग के पास कई तरह के विकल्प मौजूद हैं, निम्न आय वर्ग के पास विकल्प नहीं के बराबर है,
0: लिमिटेड।
2: अब ऐसी सूरत में अगर हम उनको कहते हैं कि पहले स्वच्छता अभियान में आप आओ, फिर शौचालय की बात आप करो, फिर आप आरोग्य मंदिर जाओ, फिर आप आयुष्मान कार्ड का इस्तेमाल करो, यानी कि आपके पास कई सुविधाएं दी गई जिससे कि आप बीमारी से बचें, बीमारी हो जाए तो उसका इलाज कैसे कराएं। तो मुझे लगता है कि ये जो जिसको कहते हैं ना कि बॉटम्स अप अप्रोच है, कि जमीनी स्तर पर आपने उन परेशानियों को समझा, उसके हिसाब से आपने क्रमबद्ध तरीके से आपने योजनाएं बनाई और फिर जाकर के समाज के उन हिस्सों को जो सबसे जल्दी प्रभावित हो सकते हैं, सबसे ज्यादा प्रभावित हो सकते हैं, उनके लिए आपने काम किया।
1: अरोड़ा साहब, पीएम स्वनिधि की हम बात करेंगे। पीएम स्वनिधि जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की दूर दृष्टि सोच को प्रदर्शित करता है, दिखाता है, आज हम इसे हकीकत में देख पा रहे हैं। पीएम स्वनिधि ने इस स्थिति में किन बदलावों का प्रयास किया है और कहां तक हम सफल रहे हैं?
0: पीएम स्वनिधि स्कीम जो है जून 2020 से लागू हुई है, और इसमें सबसे बड़ा जो है कोलेट्रल फ्री जो है वर्किंग कैपिटल मिलता है स्ट्रीट वेंडर्स के लिए। अब इसमें सब है, जैसे वेजिटेबल या फ्रूट वेंडर्स हैं, फूड स्टॉल्स वाले हैं, टी स्टॉल वाले हैं, कोबलर्स हैं, बार्बर हैं, लॉन्ड्री वाले हैं, आर्टिशन हैं, ये जो लोग हैं कैसे इनको आर्थिक मदद दी जाए, तो उनके लिए लोन की स्कीम की गई है जिसमें बैंकों द्वारा पहले ट्रांजिट में

0: है कि इनको लोन मिल जाता है। और ये स्कीम अब 2030 तक के लिए एक्सटेंड की गई है, 2020 से लागू की गई थी, अब ये 2030 तक जो है इसको एक्सटेंड की गई है। और इसके लिए आउटले भी अलग से किया गया, 7,332 करोड़ का गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से इसमें आउटले रखा गया। तो एक बहुत बड़ा इसमें बदलाव लाया गया है, जो एक कभी ये बैंक की तरफ आई नहीं पाते, इन्हें कोई क्रेडिट की सुविधा वो नहीं थी, या वो मनी लेंडर के पास जाते थे जहां 28%, 30%, 40% तक ब्याज मिलता था। आज वो उनको सस्ते दरों पर बैंक से लोन की सुविधा भी हो रही है, लेकिन हाँ ये जरूर है कि उन्हें टाइम से वापस करना पड़ेगा। और तभी ये पहली भाग, सेकंड भाग, थर्ड भाग रखा गया कि रिपेमेंट अगर सही है तो हो गया। अब इसके साथ साथ एक नई अभी यूनियन बजट में घोषणा की गई है कि 30,000 तक का जो एक है क्रेडिट कार्ड की वो फैसिलिटी भी इनको दे दी जाएगी। यानी कितना बड़ा बदलाव हो गया, उनके जेब में क्रेडिट कार्ड होगा, 30,000 तक का वो अमाउंट जो है जब चाहे उसको यूज कर सकते हैं। और ये रिवॉल्विंग टाइप हुआ, जब चाहे उन पर पैसा है जमा कर दे, उसके बाद फिर 30,000 तक ले लें। यानी एक तरह से एक सुविधा होगी, 30,000 रुपए तक का वो कभी भी उसको अपना यूज।
1: बिल्कुल, आपने बहुत महत्वपूर्ण बात की पीएम स्वनिधि के बारे में। लेकिन शिशिर, मैं आपसे ये भी जानना चाहूंगा कि ये तमाम चीजें हुई हैं और कुछ चुनौतियां भी, जाहिर सी बात है कुछ आप अच्छे काम करेंगे कुछ चुनौतियां भी रहेंगी। डिजिटल वित्तीय व्यवस्था ने, हम सब देख रहे हैं कि जो ये समावेशन है इसको बहुत तेज किया है। आपने शुरू में इस बात का जिक्र भी किया कि अब बैंक जो है घर पर आ गया है, क्योंकि मोबाइल है आपके पास, इंटरनेट है, और मोबाइल तो अब सबके पास है, निम्न आय वर्ग के हों और जनधन आधार मोबाइल के नाते सबके पास एक नंबर होना तो जरूरी ही है। लेकिन इसके साथ साथ डिजिटल लिटरेसी, साइबर फ्रॉड और सुरक्षित डिजिटल ट्रांजैक्शन जैसी चुनौतियां भी कुछ सामने आई हैं। इससे निपटने के लिए आगे क्या कदम जरूरी है, या लोगों में फाइनेंशियल लिटरेसी, डिजिटल लिटरेसी पढ़ाने के लिए क्या कुछ और करने की जरूरत है?
2: देखिए, मेरे हिसाब से एक चुनौती तो बहुत बड़ी है, खासतौर पे जो डिजिटल फ्रॉड होते हैं, क्योंकि अचानक आपके पास एक फोन आता है और कहा जाता है कि आपके बैंक के खाते में गड़बड़ी हुई है, या आपका बैंक का खाता अभी कुछ समय के लिए रोका जा रहा है। एक जो व्यक्ति जो कि कम पढ़ा लिखा है वो बहुत जल्दी घबरा जाता है, यहाँ तक कि पढ़े लिखे लोग भी घबरा जाते हैं। आपने देखा होगा डिजिटल फ्रॉड में बहुत सारे पढ़े लिखे लोग भी फंसे हैं।
1: जी जी,
2: तो वो घबराहट तो हो जाती है। अब हमारा काम क्या है, हमने उनको 5-4 प्रिवेंटिव मेजर्स बताने हैं कि आपके पास कोई बैंक आपको फोन करता है तो बैंक आपसे कोई ओटीपी नहीं मांगता, बैंक आपसे किसी तरह की जानकारी नहीं मांगता, वो सारी जानकारी एक गोपनीय जानकारी जो कि सिर्फ आपके पास होगी। और जब आप लॉगिन भी करते हैं, या आपने अगर आप उसमें कहीं पे आप इंटर भी कर रहे होते हैं, तो वो एस्टिक्स में होता है, यानी कई लोग देख भी नहीं सकते हैं कि आपने कौन सा उसमें नंबर डाला है। तो हमें इसमें सबसे बड़ी इस चुनौती से निपटने के लिए, जो आपने शब्द इस्तेमाल किया, डिजिटल साक्षरता, वित्तीय साक्षरता और डिजिटल साक्षरता का मेल होना चाहिए। दूसरी चीज हमें ये बताना चाहिए उनको कि आपको क्या नहीं करना है, क्या करना है उनको पता है
1: जी,
2: क्या नहीं करना है, अपने ओटीपी शेयर नहीं करना है। हम देखिए आकाशवाणी पर रोज कई बार इस बात का प्रसारण किया जाता है कि कोई व्यक्ति आपको अगर आपसे ओटीपी मांगे तो बिल्कुल ना दे। दूसरा उनको ये बताना है कि बैंक आपके लिए जो सुविधाएं मुहैया करा रहा है उसकी लागत क्या है, क्योंकि उसके ऊपर भी कई बार गड़बड़ियां होती हैं, कई लोग कहते हैं कि ये लागत है और उस तरह की लागत है। तीसरा, बैंक अगर वसूली करना चाहता है वहां पर किस तरीके से आपके पास व्यवस्था है, वहां पर कौन से चीजें आती हैं। तो वित्तीय और डिजिटल साक्षरता अगर आपके पास होगी तो ये सारी योजनाएं जो हमने जिक्र की, चाहे वो प्रधानमंत्री जनधन की बात करें, पीएम स्वनिधि की बात करें, मुद्रा की बात करें, या ऐसी जितनी भी योजनाएं हैं, उन योजनाओं की कामयाबी तभी हो सकती है जब सामने वाला व्यक्ति इस विश्वास के साथ बैंकिंग व्यवस्था से जुड़ सके कि हमारा कोई नुकसान नहीं हो।
1: अरोड़ा साहब, चलते चलते अब वक्त बहुत कम बचा है, संक्षेप में आप इन चुनौतियों से निपटने के लिए क्या कुछ उपाय बताना चाहेंगे?
0: पहली बात तो आपको प्रिकॉशन पूरी लेनी है, कोई आपको लिंक नहीं खोलना, अननोन लिंक, कोई ओटीपी नहीं देना, कोई पासवर्ड नहीं देना और पिन नहीं देना किसी को। और अगर मोबाइल चेंज किया है तो मोबाइल बैंक को जरूर इन्फॉर्म करें। और फिर भी अगर फ्रॉड किसी वजह से हो गया है तो नेचुरल है आपके पास ये नंबर है 1930112, या आप रिपोर्टिंग पोर्टल है इनका, उसके ऊपर लॉगिन कर
2: और जल्द से जल्द करें।
1: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 25 साल अब जन सेवा को दिए हैं और उनका अनुभव गवर्नेंस के तौर पर और विभिन्न योजनाओं के तौर पर देश के समक्ष है, जिसका लाभ आम जनता उठा रही है। और अगर हम पिछले एक दशक की यात्रा को ही देखें तो वित्तीय समावेशन और सामाजिक सुरक्षा के क्षेत्र में एक बहुत बड़ा स्ट्रक्चरल चेंज सामने आया है। शिशिर सिन्हा और अरोड़ा साहब, आप दोनों का आकाशवाणी के इस विशेष कार्यक्रम जन सेवा से देश सेवा में जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।
3: धन्यवाद,
4: धन्यवाद,
3: नमस्कार।
5: विशेष श्रृंखला जन सेवा से देश सेवा के 6th संस्करण में अभी आप सुन रहे थे वित्तीय समावेशन और सामाजिक सुरक्षा विषय पर परिचर्चा। इसमें भाग ले रहे थे सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया के पूर्व महाप्रबंधक रमेश कुमार अरोड़ा और आर्थिक विश्लेषक

शिशिर सिन्हा कार्यक्रम का संचालन कर रहे थे हर्ष रंजन। ये कार्यक्रम आकाशवाणी के समाचार सेवा प्रभाग द्वारा प्रस्तुत किया गया। इसे आप हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR और यूट्यूब चैनल न्यूज ऑन AIR ऑफिशियल पर भी सुन सकते हैं। कार्यक्रम के बारे में अपनी प्रतिक्रिया आप हमें ईमेल या व्हाट्सएप के जरिए भेज सकते हैं। ईमेल का हमारा पता है airnsdtalks@gmail.com और व्हाट्सएप नंबर है 9289094044।

मन की बात है जन जन की, सभी की कुछ अपनी सी, संघर्षों के कुछ किस्से, कहानी कुछ सफलताओं की, अनकही विरासत की, उम्मीदें नए भारत की। महीने के आखिरी रविवार का रहता है इंतजार, मलयाल के आंचल से विंध्याचल के आंगन तक, ब्रह्मपुत्र के घाट से हिमालय के विस्तार तक होती है मन की बात प्रधानमंत्री के साथ। तो सुनिए इस महीने 27 सितंबर सुबह 11 बजे मन की बात आकाशवाणी दूरदर्शन के सभी चैनलों और प्रसार भारती के OTT प्लेटफॉर्म वेव्स पर। आप भी माननीय प्रधानमंत्री के मन की बात का हिस्सा बन सकते हैं। इसके लिए आप अपने सुझाव 25 सितंबर तक टोल फ्री नंबर 1800117800 पर रिकॉर्ड कर सकते हैं या फिर 1922 पर भी कॉल कर सकते हैं। नमो ऐप या MyGov के ओपन फोरम में पोस्ट कर सकते हैं या पोस्ट बॉक्स नंबर 111 आकाशवाणी दिल्ली पर भेज सकते हैं। तो याद रखें, रविवार 27 सितंबर सुबह 11 बजे मन की बात।

अक्सर हम यही बातें करते हैं नसीबों की, लेकिन मैं आपको बता दूं कि बातें हम जरूर करते हैं पर हमें भी मालूम है कि हम उसके लिए कितनी मेहनत करते हैं और क्या है जो मिसिंग है और किस पे हमें और ज्यादा काम करना है। 9:51 हो चुके हैं, ये है म्यूजिकल दिल्ली, आकाशवाणी दिल्ली के FM गोल्ड चैनल 100.1 MHz पे। 23 सितंबर है और इस वक्त जो मौसम है बहुत ही प्यारा सा है, कभी हमें लगती है ठंडी और कभी लगती है गर्मी, कभी समझ में आता है कि क्या करें तो कभी लगता है कि क्या ना करें। फिलहाल तो हम आपको बता सकते हैं कि चारों तरफ कुछ न कुछ ऐसा जरूर हो रहा है हमारे आसपास जिसमें हम बड़ी सारी चीजें अपने लिए कर सकते हैं, जैसे कि जाइए रंगे फुर्सत यमुना के संग मनाइए वासुदेव घाट पे, क्योंकि यमुना को सिर्फ देखने नहीं बल्कि उसके साथ संवाद करना भी हम सबको हो सकता है कि आ जाए। कल यानी कि वासुदेव घाट पे 24 सितंबर को 7 बजे से लेकर के 10 बजे तक ये होगा कार्यक्रम। यमुना के घाट पर नदी के प्रवाह को देखिए, उसे महसूस कीजिए और जल रंगों से अपनी अपनी यमुना को अपने अपने साथ संवाद कीजिए, क्योंकि जब हम नेचर के पास होते हैं ना तो बड़ा अच्छा लगता है। फिलहाल आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना भारत सरकार की एक स्वास्थ्य बीमा योजना है जो आर्थिक रूप से कमजोर परिवारों को प्रतिवर्ष 5 लाख रुपए तक का कैशलेस इलाज देती है। और इस योजना की जो मेन बातें हैं उसको आप जान सकते हैं, पोर्टल पे जाइए और देखिए कौन सी चीज़ है जो हमारे काम आ सकती है।

और अभी भी हमें बहुत सारी चीजें नहीं पता कि क्या है जो पता है और क्या है जो हमें ये भी नहीं पता कि हमें पता नहीं है। वेल, इस दुनिया में बस पता लगाने के लिए तो हम आए हैं। आकाशवाणी दिल्ली की एफएम गोल्ड चैनल 100.1 मेगाहर्ट्ज़ पे आप यूं ही बने रहिए हमारे साथ, सुनते रहिए और करते रहिए हमसे बातें।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं मुकेश कुमार। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने विद्यार्थियों से एआई की नई तकनीक, इंटरनेट और डेटा का उचित उपयोग करने का आह्वान किया है। राष्ट्रपति ने आज गुजरात के वडोदरा में महाराजा सयाजी राव विश्वविद्यालय के 75वें दीक्षांत समारोह में विद्यार्थियों से कहा कि डेटा आपको सूचना दे सकता है, लेकिन निर्णय आपका होगा।
1: टेक्नोलॉजी को अपनाने समय आपका विवेक होना चाहिए। आपको ये याद रखना चाहिए कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस समाधान दे सकता है, लेकिन सही प्रश्न पूछना आपका कर्तव्य होना चाहिए। टेक्निक आपको गति दे सकती है, लेकिन ये तय करना है, आपका काम है कि आपको किस दिशा में जाना। डेटा आपको सूचना दे सकता है, लेकिन उस सूचना के नैतिक उपयोग कैसे करना है ये निर्णय आपको ही करना है।
0: राष्ट्रपति ने कहा कि एआई से सही सवाल पूछना चाहिए और आपको कभी कभी असफलता का सामना भी करना पड़ सकता है। राष्ट्रपति ने जियो और जीने दो की सोच के साथ आगे बढ़ने को कहा। उन्होंने विद्यार्थियों से वर्ष 2047 तक विकसित भारत के लक्ष्य को प्राप्त करने में योगदान देने का भी आह्वान किया।
1: वर्ष 2047 तक विकसित भारत के निर्माण के राष्ट्रीय लक्ष्यों को लेकर देशवासी आगे

0: बढ़ रहे हैं। ऐसा भारत जहां गुणवत्तापूर्ण शिक्षा और स्वास्थ्य सुविधाएं सभी तक पहुंचे, ऐसा भारत जहां विज्ञान और प्रौद्योगिकी का उपयोग मानव कल्याण के लिए हो।
1: आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के आज 8 वर्ष पूरे हो गए हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सितंबर 2018 में झारखंड के रांची से इस योजना का शुभारंभ किया था। ये विश्व की सबसे बड़ी सरकारी स्वास्थ्य बीमा योजना बन गई है। प्रधानमंत्री ने कहा कि इस योजना से चिकित्सा खर्च में रिकॉर्ड बचत हुई है और गरीब तथा मध्यम वर्ग को लाभ मिला है। श्री मोदी ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि 8 वर्ष पहले यह योजना प्रत्येक भारतीय को उच्च गुणवत्ता वाली और किफायती स्वास्थ्य सेवा प्रदान करने के लिए शुरू की गई थी। उन्होंने कहा कि आज 6 करोड़ से अधिक लाभार्थियों को 5 लाख रुपए तक का स्वास्थ्य बीमा लाभ मिल रहा है। आयुष मंत्रालय आज महाराष्ट्र के नागपुर में 11वां आयुर्वेद दिवस मना रहा है। इस वर्ष का विषय है बेहतर कल के लिए आयुर्वेद। आयुष मंत्री प्रतापराव जाधव ने आयुर्वेद दिवस पर सभी नागरिकों, आयुर्वेदाचार्यों और वैद्यों को शुभकामनाएं दी हैं। श्री जाधव ने नागरिकों से देश की प्राचीन चिकित्सा प्रणाली अपनाने और एक स्वस्थ, समृद्ध और आत्मनिर्भर भारत के निर्माण में योगदान देने का आह्वान किया। वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने कहा है कि कर प्रशासन कागजी प्रक्रियाओं से हटकर डेटा आधारित डिजिटल माध्यमों से संचालित प्रणाली की ओर बढ़ रहा है। नई दिल्ली में आज ब्रिक्स कर प्रमुखों की बैठक के उद्घाटन सत्र में श्रीमती सीतारामन ने कहा कि भारत के फेसलेस आकलन, पहले से भरी हुए रिटर्न, रियल टाइम इनवॉइस प्रमाणीकरण और AI सक्षम करदाता सहायता के अनुभव ने ब्रिक्स साझेदारों के बीच रुचि पैदा की है। मेघालय में यूनाइटेड डेमोक्रेटिक पार्टी UDP के 8 विधायक आज नई दिल्ली में भारतीय जनता पार्टी में सम्मिलित हो गए। इनमें लक्ष्मण रिम्बोई, पीयूष मार्विन, किरमेन शाला और मायराल बोन सीएम प्रमुख हैं। भाजपा मुख्यालय में केंद्रीय मंत्री और वरिष्ठ भाजपा नेता किरेन रिजिजू, भाजपा प्रवक्ता संबित पात्रा और अनिल एंटनी की मौजूदगी में इन विधायकों को पार्टी में सम्मिलित किया गया। भारत की मीराबाई चानू ने एशियाई खेलों की भारोत्तोलन प्रतियोगिता में महिलाओं के 49 किलोग्राम वर्ग में रजत पदक जीत लिया है। भारत के जय मीणा ने आज सॉफ्ट टेनिस के पुरुष सिंगल्स का कांस्य पदक जीतकर इतिहास रचा। भारत ने एशियाई खेलों में निशानेबाजों की स्कीट स्पर्धा के महिला और पुरुष वर्ग के कांस्य पदक भी जीत लिए हैं। अनंत जीत सिंह नरुका, मेहराज अहमद खान, भवतेज सिंह गिल की टीम ने 346 अंक प्राप्त कर तीसरा स्थान हासिल किया। महिला वर्ग में महेश्वरी सिंह, परिणाज धालीवाल और राइजा ढिल्लो की भारतीय तिकड़ी ने तीसरा स्थान हासिल किया। भारतीय टीम ने महिला कबड्डी में आज दूसरे ग्रुप मैच में ईरान को 23-37 अंक से हराया। इससे पहले भारतीय टीम ने बांग्लादेश को 21-42 अंक से मात दी। प्रतियोगिता में कल भारत का सामना जापान से होगा। घरेलू शेयर बाजार का सूचकांक आज दोपहर तक 0.5% की बढ़त के साथ कारोबार कर रहा है। ताजा समाचार मिलने तक सेंसेक्स 383 अंक बढ़कर 74,912 पर और निफ्टी 115 अंक की बढ़त के साथ 23,444 पर था। इसके साथ ही समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: This is Akashwani, the news read by Anubha Rohatgi. Union Finance Minister Nirmala Sitharaman has said tax administrations are moving from paper-based and relationship-dependent processes to data-driven and digitally mediated systems. Addressing the inaugural session of the BRICS tax heads meeting in New Delhi today, Ms. Sitharaman said that India's experience with faceless assessment, pre-filled returns, real-time invoice authentication and AI-enabled taxpayer assistance has generated interest among the BRICS partners. The minister identified 3 broad areas emerging from the BRICS tax track this year, which are technology, administration and people.
3: Look at what has emerged from the BRICS tax track this year. Technology, the use of data and digital infrastructure to make tax administration more precise, more accessible and less dependent on the discretionary powers of individuals. Administration, the governance structures, the shared standards and the practical tools that give a cooperation like ours a durable institutional shape.
2: President Draupadi Murmu today graced the 75th annual convocation of Maharaja Sayaji Rao

एक अभिनेत्री जिनकी माँ ही नहीं नानी भी एक जानी मानी अभिनेत्री थी और उनकी बेटी भी एक लोकप्रिय अदाकारा है। अपने अलहर और चुलबुले अंदाज से दर्शकों के दिलों में जगह बनाने वाली तनुजा है हमारी आज की कलाकार बेमिसाल। 100.1 मेगाहर्ट्ज पर आपके साथ है रजनी। कलाकार बेमिसाल की शुरुआत करते हैं एक बेहद लोकप्रिय गीत के साथ। फिल्म का नाम है हाथी मेरे साथी और आवाजें हैं किशोर कुमार और लता मंगेशकर की।

23 सितंबर 1943 को फिल्म निर्माता कुमार सेन समर्थ और शोभना समर्थ की बेटी के रूप में जन्म हुआ तनुजा का। उनकी बड़ी बहन नूतन के अलावा उनकी दो और बहनें और एक भाई भी हैं। शोभना समर्थ तो अपने समय की जानी मानी अभिनेत्री थी ही, उनकी माँ रतनबाई भी 30 और 40 के दशक की सफल अभिनेत्री थी। अगला गीत आप तक पहुंच रहा है फिल्म मेरे जीवन साथी से, आवाज है किशोर कुमार की।

अपनी दूसरी पारी में तनुजा ने कुछ टीवी सीरियल्स में भी काम किया, जैसे खानदान, जुनून और आरंभ। इनके अलावा वो एक डांस रियलिटी शो में जज के रूप में भी दिखाई दी। तनुजा आज 83 बरस की हो चुकी हैं, लेकिन आज भी वो सामाजिक जीवन में पूरी तरह सक्रिय हैं।

0: ये आकाशवाणी है, खबरों के साथ मैं शगुफ्ता यास्मीन। वजीर खजाना निर्मला सीतारमन ने नई दिल्ली में ब्रिक्स टैक्स सरबराहान के इजलास का इफ्तिताह किया और आलमी सतह पर होने वाले टैक्स मुजाकरात में ब्रिक्स की मजबूत आवाज की जरूरत पर जोर दिया। भारतीय रेलवे ने पहली मर्तबा जनूब वस्ती रेलवे पर कोच 4.2 नस्ब करने का अमल शुरू किया। आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना ने पूरे मुल्क में अवामी सेहत की सहूलियात तक रसाई को तब्दील करने के 8 साल मुकम्मल कर लिए हैं। वजीर खारजा डॉ एस जयशंकर ने मुत्तहिदा अरब अमारात और फ्रांस के हम मनसबों के साथ मसनूई जहानत एआई खला और तवानाई के शोबों में तआवुन के बारे में तबादला ख्याल किया। खलीज बंगाल के ऊपर बना हवा का गहरा दबाव साहिल के करीब आ रहा है, उड़ीसा और आंध्र प्रदेश के साहली इलाकों में शदीद बारिश जारी है। और एशियाई खेलों 2026 में जापान में भारतीय मर्दों और खवातीन की स्कीट टीमों ने कांसे के तमगे जीते, मीरा भाई चानू ने वेट लिफ्टिंग में चांदी का तमगा हासिल किया। खबरें तफसील से। मरकजी वजीर खजाना निर्मला सीतारमन ने कहा है कि टैक्स इंतजामिया कागज पर मबनी और रिवायती बाहमी राबते पर मुनहसर तरीक़ेकार से निकलकर डेटा से चलने वाले डिजिटल तौर पर मुनज्जम सिस्टम की तरफ बढ़ रही है। आज नई दिल्ली में ब्रिक्स टैक्स सरबराहान के इजलास के इफ्तिताही सेशन से खिताब करते हुए मोहतरमा सीतारमन ने कहा कि फेसलेस असेसमेंट, पहले से भरे हुए रिटर्न, बरवक्त इनवाइस तस्दीक और एआई पर मबनी टैक्स दहिंदगान की मदद जैसे इकदाम ने ब्रिक्स के शराकत ममालिक की तवज्जो हासिल की है। वजीर खजाना ने कहा कि इस साल ब्रिक्स टैक्स ट्रैक से 3 अहम शोबे उभर कर सामने आए हैं जिनमें टेक्नोलॉजी, इंतजामिया और इंसानी वसाइल शामिल हैं। भारतीय रेलवे ने रेलवे की हिफाजत के शोबे में एक अहम संगमील हासिल किया है। जनूबी वस्ती रेलवे पर पहली मरतबा कवच वर्जन 4.0 को कामयाबी के साथ फआल किया गया है। वजारत रेलवे के मुताबिक हैदराबाद डिवीजन के मलकाजगिरी कामरेडी में 108 किलोमीटर के हिस्से पर कवच वर्जन 3.2 से वर्जन 4.0 में अपग्रेडेशन कामयाबी के साथ मुकम्मल कर ली गई है। कवच 4.2 में ज्यादा बेहतर हिफाजती खसूसियात, जदीद टेक्नोलॉजी, ज्यादा काबिल एतमाद निज़ाम और ट्रेनों की महफूज आमद रफ्त की सहूलत मौजूद है। वजारत ने बताया कि इस जदीद तरीन वर्जन में कवच 3.2 को जनूबी वस्ती रेलवे के 1,465 से ज्यादा रूट किलोमीटर पर नस्ब करने के तजुर्बे की बुनियाद पर मजीद तकनीकी बेहतरियां शामिल की गई हैं। तफसील हमारे नामानिगार से।
1: कवच अंदरून मुल्क तैयार करदा एक खुदकार ट्रेन हिफाजती निज़ाम है जिसका मकसद ट्रेनों के ऑपरेशन को ज्यादा महफूज बनाना है। ये निज़ाम लोको पायलट को मुकर्रर रफ्तार की हद के अंदर ट्रेन चलाने में मदद देता है और ज़रूरत पड़ने पर अगर लोको पायलट ऐसा ना करे तो खुदकार तौर पर ब्रेक भी लगा सकता है। कवच को इस तरह डिज़ाइन किया गया है कि ये खतरे के सिग्नल को उबूर करने के वाकयात को रोकने में मदद दे और ट्रेनों के टकराव के खतरे को भी कम करे। ये निज़ाम नाजुक हालात में ट्रेन की रफ्तार को कंट्रोल करने के साथ साथ मौसम के ख़राब हालात में भी ट्रेनों के ज़्यादा महफूज ऑपरेशन में मदद फराहम करता है। जनूब वस्ती रेलवे पर कवच 4.0 की कामयाब तनसीब भारतीय रेलवे की घरेलू हिफाजती टेक्नोलॉजी को मजबूत बनाने और भारतीय रेलवे के मुकम्मल नेटवर्क में जदीद खुदकार ट्रेन हिफाजती निज़ाम की सलाहियतों को वसअत देने की जानिब एक अहम कदम है। नई दिल्ली से दीपेंद्र कुमार की रिपोर्ट के साथ उर्दू खबरों के लिए मैं मोहम्मद अम्मार।
0: आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना ने आज 8 साल मुकम्मल कर लिए हैं। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने ये स्कीम सितंबर 2018 में झारखंड के रांची से शुरू की थी। ये दुनिया की सबसे बड़ी सरकारी माली एयानत से चलने वाली सेहत बीमा स्कीम बन चुकी है। वजीर आजम मोदी ने कहा कि इस स्कीम ने तिब्बी अखराजात में रिकॉर्ड बचत करने और गरीब और मुतवस्सित तबके को फायदा पहुंचाने में अहम रोल अदा किया है। एक सोशल मीडिया पोस्ट पर वजीर आजम ने कहा कि 8 साल कबल आयुष्मान भारत इस मकसद के लिए शुरू किया गया था कि हर भारतीय को मयारी और काबिल इस्तेताअत तिब्बी सहूलियात तक रसाई हासिल हो। उन्होंने बताया कि आज 60 करोड़ से ज्यादा मुस्तफीद अफराद को सालाना 5 लाख रुपए तक का सेहत बीमा कवरेज हासिल है, जिसकी वजह से ये दुनिया की सबसे बड़ी सेहत देखभाल की स्कीम बन गई है। वजीर आजम ने मजीद कहा कि आयुष्मान आरोग्य मंदिर में अब तक 500 करोड़ से ज्यादा अफराद आ चुके हैं, जिससे बुनियादी सेहत की सहूलियात को जमीनी सतह तक मजबूत बनाने में मदद मिली है। हमारे नुमाइंदे ने खबर दी है कि अब तक 48 करोड़ 54 लाख से ज्यादा आयुष्मान कार्ड बनाए जा चुके हैं। आयुष की वजारत आज महाराष्ट्र के शहर नागपुर में 11वें यौमे आयुर्वेद का एहतमाम करेगी, जिसका मौजू है सेहतमंद मुस्तकबिल के लिए आयुर्वेद। वजारत ने कहा कि इस तकरीब में भारत और दुनिया भर के आयुर्वेद इदारे, माहिरीन, मुआलिजीन और दीगर मुतालिका अफराद शिरकत करेंगे। इस तकरीब के जरिए आयुर्वेद के मुख्तलिफ शोबों से वाबस्ता अहम अफराद को एक प्लेटफार्म पर यकजा किया जाएगा, जहां मालूमात के तबादले और वसी तर बाहमी तआवुन को फरोग दिया जाएगा। 11वें यौमे आयुर्वेद की तकरीबात में आयुर्वेद को मजबूत बनाने और मौशरे की फलाह बहबूद को आगे बढ़ाने में साइंसी शवाहिद, तहकीक और जिद्दत तराजी की अहमियत को उजागर किया जाएगा। इस मौके पर पहली मर्तबा आयुष खिदमात के सेक्टर से मुतालिक रिपोर्ट भी जारी की जाएगी। इसके अलावा गौकशुरा और चंद्रसूरा से मुतालिक हिफाजती मालूमाती दस्तावेजात और जल्दी अमराज के म्यारी इलाज के लिए रहनुमा उसूल भी जारी किए जाएंगे। वजीर खारजा डॉक्टर एस जयशंकर ने आलमी खत्ते जनूब के मुल्कों के दरमियान मजीद तआवुन के लिए कहा है, ताकि बढ़ती हुई जोग्राफियाई और सियासी कशीदगी, इकतसादी चैलेंजेस, आबोहवा में अचानक तब्दीलियों और कसीर मुल्की निजाम पर दबाव से निपटा जा सके। वजीर मौसूफ कल न्यूयॉर्क में अक़वामे मुत्तहिदा की 81वीं जनरल असम्बली से अलग आलमी खत्ते जनूब के मुल्कों की मीटिंग से खिताब कर रहे थे। उन्होंने कहा कि आलमी हालात, बढ़ते हुए तनाज़ात, सप्लाई चेन और तिजारत पर दबाव, सरमायाकारी जिसकी राह में रुकावटें हायल हैं, बढ़ते हुए कर्ज के नतायज और तरक्की के लिए नाकाफी मालियात का शिकार हैं। उन्होंने कहा कि आलमी खत्ते जनूब के मुल्कों को चाहिए कि सप्लाई चेन, मालियात और कनेक्टिविटी के लिए किए जाने वाले इकदाम समेत अहम चैलेंजों से निपटने के लिए काम करें। ये खबरें आकाशवाणी से नशर की जा रही हैं। इन्फोर्समेंट डायरेक्टोरेट ईडी कोलकाता, दिल्ली और बेंगलुरु में 16 मकामात पर तलाशी की कार्रवाई अंजाम दे रही है, जिसका ताल्लुक इंजीनियरिंग फर्म मैकनिली भारत इंजीनियरिंग कंपनी लिमिटेड MBECL से है। ईडी ने बताया कि तलाशी की यह कार्रवाई गैर मुल्की जर मुबादला इंजिबाती एक्ट 1999 फेमा के तहत की जा रही है। यह कार्रवाई फेमा के खिलाफ वर्जी और MBECL का कंट्रोल हासिल करने में इस्तेमाल होने वाले फंड्स के जराए और लेन देन से ताल्लुक रखती है। खारजी उमूर के वजीर डॉक्टर एस जयशंकर, मुत्तहिदा अरब अमारात UAE के वजीर खारजा शेख अब्दुल्ला बिन जायद अल नहयान और फ्रांस के वजीर खारजा जॉ नोएल बेरोज ने न्यूयॉर्क में अक़वामे मुत्तहिदा जनरल असेंबली के 81वें इजलास से अलग भारत UAE फ्रांस सह फरीकी मीटिंग में शिरकत की। तीनों रहनुमाओं ने खला, तवानाई, मसनूई ज़हानत और तहजीब व सकाफत समेत मुश्तरक फवायद के मामलों में हुई पेशरफ्त का जायजा लिया। ढाका की एक अदालत ने कल अदम पार्टी अवामी लीग के 3 रहनुमाओं को जेल भेज दिया है। इस केस का ताल्लुक 11 सितंबर को राजधानी के गुलशन इलाके में अचानक निकाले गए जुलूस से है। ढाका के एडिशनल चीफ मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट का यह ऑर्डर पुलिस की तरफ से अदालत में तीनों मुलजिमों को पेश करने और तहकीक मुकम्मल होने तक उनकी गिरफ्तारी का मुतालबा करने के बाद सामने आया है। खलीज बंगाल के ऊपर बना हवा का गहरा दबाव शिमाली आंध्र प्रदेश, जनूबी ओडिशा के करीब बढ़ रहा है, जिसकी वजह से ओडिशा में मौसम की खराब सूरत हाल का सामना है। मजीद तफसील हमारे नामानिकार से।
2: भारतीय मौसमियात महकमे ने जनूबी ओडिशा के हिस्सों में आज और कल शदीद से इंतहाई शदीद बारिश होने की वार्निंग जारी की है। आज कलाहांडी, नवरंगपुर, कोराहाट और मलकानगिरी के लिए रेड वार्निंग जारी की गई है और नवरंगपुर के लिए कल भी वार्निंग जारी की गई है। लोगों से अपील की गई है कि वो इंतजामिया की जानिब से जारी की गई एडवाइजरी पर अमल दरामद करें। भुवनेश्वर से प्रकाश दास की रिपोर्ट के साथ उर्दू खबरों के लिए नीतिका त्यागी।
0: जापान में एशियाई खेलों में ओलंपिक में तमगा जीतने वाली मीराबाई चानू ने खवातीन के 49 किलोग्राम जुमरे के वेटलिफ्टिंग मुकाबले में चांदी का तमगा हासिल करते हुए एशियाई खेलों का अपना पहला तमगा जीता। इसके साथ ही भारत के तमगों की मजमूई तादाद 9 हो गई। भारत की 3 खिलाड़ियों महेश्वरी चौहान, प्रीनाज धालीवाल और रायसा ढिल्लों ने खवातीन की टीम के स्कीट निशानेबाजी के मुकाबले में कांसे का तमगा जीता। एक दूसरे मुकाबले में मर्दों के सॉफ्ट टेनिस में भारत के जयमीना ने इस खेल में अपना पहला तमगा जीतकर तारीख रकम की। और आखिर में खास खबरें एक बार फिर। वजीर खजाना निर्मला सीतारमन ने नई दिल्ली में ब्रिक्स टैक्स सरबराहान के इजलास का इफ्तिताह किया और आलमी सतह पर होने वाले टैक्स मुजाकरात में ब्रिक्स की मजबूत आवाज की जरूरत पर जोर दिया। भारतीय रेलवे ने पहली मरतबा जनूब वस्ती रेलवे पर कवच 4.0 नस्ब करने का अमल शुरू किया। आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना ने पूरे मुल्क में अवामी सेहत की सहूलियत तक रसाई को तब्दील करने के 8 साल मुकम्मल कर लिए हैं। खलीज बंगाल के ऊपर बना हवा का गहरा दबाव साहिल के करीब आ रहा है। उड़ीसा और आंध्र प्रदेश के साहली इलाकों में शदीद बारिश जारी है और एशियाई खेलों 2026 में जापान में भारतीय मर्दों और खवातीन की स्की टीमों ने कांसे के तमगे जीते। मीराबाई चानू ने वेट लिफ्टिंग में चांदी का तमगा हासिल किया। इसके साथ ही खबरों का ये बुलेटिन खत्म हुआ।
3: गुड आफ्टरनून, दिस इज आकाशवाणी एंड आई एम अनुभा रोहतगी विद द मिड डे न्यूज। द हेडलाइंस। प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू सेज यूथ एफर्ट्स विल प्रोपेल इंडिया टू अ डेवलप्ड नेशन बिफोर 2047। Finance Minister Nirmala Sitharaman inaugurates BRICS tax heads meeting in Delhi, calls for stronger BRICS voice in global tax negotiations. Indian Railways commissions coverage 4.0 for the first time on South Central Railway. Ayushman Bharat Pradhan Mantri Jan Arogya Yojana marks 8 years of transforming public healthcare access across India. External Affairs Minister Dr. S. Jaishankar discusses collaboration in AI, space, energy with counterparts from UAE and France. Deep depression over Bay of Bengal moves closer. Heavy rain lash coastal Odisha and Andhra Pradesh. And in Asian Games 2026, Indian men's and women's skeet teams win bronze medals in Japan. Mirabai Chanu wins silver in weightlifting. President Draupadi Murmu has expressed confidence that India will become a developed nation even before 2047 through the efforts of the youth. Addressing the 75th convocation ceremony of the Maharaja Sayaji Rao University of Baroda in Vadodara today, she said that education becomes meaningful only when it is put to use for the nation and society.
4: मैंने देखा कि इस दीक्षांत समारोह में उपाधि प्राप्त करने वाले विद्यार्थियों में बेटियों की संख्या ज्यादा है। ये बदलते हुए भारत की तस्वीर है जो देश के अधिकांश उच्च शिक्षण संस्थानों में दिखाई दे रहा है। हर क्षेत्रों में महिलाओं की बढ़ती भागीदारी इस बात का शुभ संकेत है कि हमारे देश समावेशी विकास की दिशा में आगे बढ़ रहा है।
3: The president said that technological transformation is taking place in every field today. She added that a multidisciplinary approach is the solution to many of the challenges being faced today. She also appreciated the increasing participation of women in various fields, including education. Finance Minister Nirmala Sitharaman has said that the decisions taken in the ongoing multilateral tax negotiations over the next few years would shape cross-border taxation for a generation. Addressing the inaugural session of the BRICS tax heads meeting in New Delhi today, Ms. Sitharaman said, "The BRICS countries are large developing economies and source jurisdictions that have built significant domestic tax capacity from a low base, and their perspective is essential to making these negotiations fair and lasting." Talking about tax administrations, Ms. Sitharaman said they are moving from paper-based and relationship-dependent processes to data-driven and digital systems. She added that India's experience with faceless assessment, pre-filled returns, real-time invoice authentication, and AI-enabled taxpayer assistance has attracted interest from BRICS partners.
5: Look at what has emerged from the BRICS tax track this year. Technology, the use of data and digital infrastructure to make tax administration more precise, more accessible, and less dependent on the discretionary powers of individuals. Administration, the governance structures, the shared standards, and the practical tools that give a cooperation like ours a durable institutional shape.
3: Indian Railways has achieved a significant milestone in railway safety with the successful commissioning of Kavach version 4.0 for the first time on South Central Railway. Railway Ministry said the upgradation from Kavach version 3.2 to version 4.0 has been successfully completed. Over 108 route kilometres on the Malkajgiri-Kamareddy section of Hyderabad Division. Kavach 4.0 brings enhanced safety, advanced technology, higher reliability and safer train options. More from our correspondent.
6: Kavach is an indigenously developed automatic train protection system designed to enhance operational safety. The system assists the loco pilot in maintaining trains with prescribed speed limits and can automatically apply brakes when required if the loco pilot fails to do so. Kavach is designed to help prevent signal passing at danger, control train speed in critical situations and reduce the risk of collisions. The system also supports safer train operations during inclement weather conditions. The successful commissioning of Kavach 4.0 on South Central Railway represents an important step towards strengthening indigenous railway safety technology and expanding advanced automatic train protection capabilities across the Indian Railways network. With Dipendra Kumar, this is Ankit Kumar, Akashwani News, Delhi.
3: Minister for Ayush, Pratap Rao Jadhav, today said Ayurveda offers a holistic approach for preventing lifestyle-related diseases and maintaining health through balanced diet, disciplined routine, sound sleep, yoga and harmony with nature. Addressing the national celebrations of the 11th Ayurveda Day in Nagpur, Mr. Jadhav said the theme of this year's Ayurveda Day is Ayurveda for a healthier tomorrow. Stressing upon the importance of our Ayurveda-aligned lifestyle, Mr. Jadhav said the first center of healthcare is the home and the first foundation of health is a healthy lifestyle rather than medicines alone. 8 MLAs of United Democratic Party from Meghalaya joined the Bharatiya Janata Party at the party headquarters in New Delhi today. They were inducted into the party in the presence of Union Minister and senior BJP leader Kiran Rijiju, BJP spokesperson Sambit Patra and Anil Antony. This is Akashwani giving you the news.
7: Stay connected with AIR News. Follow us on X at AIR News Alerts and visit newsonair.gov.in for the latest updates.
3: The Ayushman Bharat Pradhan Mantri Jan Arogya Yojana has completed 8 years today. Prime Minister Narendra Modi launched the scheme in September 2018 from Ranchi, Jharkhand, which has become the world's largest government-funded health assurance scheme. In a social media post, the Prime Minister said, 8 years ago, Ayushman Bharat was rolled out with the idea that every Indian should have access to top quality and affordable health care. He said, today, more than 60 crore beneficiaries have access to a 5 lakh annual health cover, making it the largest health care scheme in the world. Our correspondent reports that more than 48 crore, 54 lakh Ayushman cards have been created so far.
8: Over the past 8 years, around 13 crore beneficiaries have availed cashless treatment and the government has spent more than 2 lakh crore rupees on it. Under the scheme, a total of 38,000 government and private hospitals have been empaneled. The scheme is now being implemented across all 36 states and union territories. This marks a significant milestone in expanding healthcare access and strengthening the delivery of secondary and tertiary care services across the country. Recently, the Modi government extended the benefits of this scheme to senior citizens of 70 years and 37 lakh families of Asha and Anganwadi workers. The main aim of the scheme is to provide universal health care to the poor, needy and vulnerable sections of the country. With Dipendra Kumar, Aman Yadav, Akashwani News, Delhi.
3: Space sector reforms have been a key part of the reforms undertaken by Prime Minister Narendra Modi, with public welfare as the goal. These reforms were approved by the Union Cabinet in June 2020. Speaking on the occasion, Prime Minister Modi said this decision was taken as part of the long-term goal of making the country self-reliant and technologically stronger.
9: As part of these reforms, a new organization called the Indian National Space Promotion and Authorization Center was set up. Its main responsibility is to provide private companies equal opportunities to use the country's space infrastructure and offer them proper guidance. An example of these reforms is Hyderabad-based Skyroot Aerospace, founded in 2018 by former ISRO scientist Pavan Kumar Chandana and Nagabharat Daka. The company made history in 2022 by launching the country's first private rocket, Vikram S, Recently, Prime Minister Narendra Modi virtually inaugurated the company's Infinity campus in Hyderabad and unveiled its first orbital rocket Vikram 1. Skyroot's Vice President of Branding, Marketing and Communications, Tejasvi Bhagavatula, said these reforms have been very useful for them.
10: India's space sector reforms are a powerful example of how policy can unlock the potential of our young people and the private enterprise. By opening the space sector to private participation, government has created opportunities for companies like Skyroot to build world-class technology here at home. We have seen what becomes possible when policy, entrepreneurship and young talent come together. As we head towards Vikshit Bharat 2047, India has the opportunity to emerge as one of the world's leading spacefaring nations.
9: Saptagiri Gopaguni, Akashvani News, Hyderabad.
3: External Affairs Minister S. Jaishankar, UAE Foreign Minister Sheikh Abdullah bin Zayed Al Nahyan and French Foreign Minister Jean-Noël Barrot participated in the India-UAE-France trilateral on the sidelines of the 81st session of the United Nations General Assembly in New York. The three ministers reviewed progress in trilateral cooperation across agreed areas of mutual interest, including space, energy, artificial intelligence and culture and heritage. According to the statement released by the Ministry of External Affairs, the leaders also discussed the situation in West Asia. A deep depression over the Bay of Bengal is approaching the North Andhra Pradesh, South Odisha coast, bringing intense weather to Odisha. Several southern and coastal districts are witnessing heavy rain, with the system expected to cross the coast tonight. More from our correspondent.
11: The India Meteorological Department has warned of very heavy to extremely heavy rainfall in parts of southern Odisha today and tomorrow. Red warnings are in force for Kalahandi, Navarangpur, Koraput and Malkangiri today, with Navarangpur also under red warning tomorrow. The system is expected to move inland through Koraput and Raigada after crossing the coast. Gusty winds of up to around 60 kilometers per hour are likely in southern Odisha. The state government has deployed 33 Odisha Disaster Rapid Action Force teams, while cyclone and flood shelters have been kept ready. Schools and Anganwadi centers have been closed in several vulnerable districts. The Kalinga Ghat in Kandhamal has been closed to traffic as a precaution against landslides and flash floods. People have been advised to avoid swollen rivers and streams and follow local administration advisories. Prakash Das for Akashvani News, Bhubaneswar.
3: The India Meteorological Department, IMD, has issued a red colour alert for heavy to very heavy rainfall conditions over Telangana, Chhattisgarh, coastal Andhra Pradesh and Odisha during the day. Arunachal Pradesh, Assam, Meghalaya, Bihar and interior Karnataka will experience heavy rainfall today. Similar conditions will also prevail over Jharkhand, Keralam, Mahe, Konkan, Goa, Maharashtra, West Bengal and Sikkim. Meanwhile, in Delhi, there will be a mainly clear sky. The maximum and minimum temperatures in the national capital will hover around 34 degrees Celsius to 24.8 degrees Celsius. Moving on to sports, India continued

0: its strong performance at the Asian Games in Aichi, Nagoya today, adding several medals across weightlifting, soft tennis and shooting. We have a report.
1: The Indian men's and women's ski teams bagged bronze medals today. The women's team of Raisa Dhillon, Maheshwari Chauhan and Parinaz Dhaliwal finished third with 331 points, while the men's team of Ananjit Singh Naruka, Mehraj Ahmed Khan and Bhavtek Singh Gill also bagged bronze with a total score of 346. Olympic medalist and three-time Commonwealth Games champion Mirabai Chanu won her maiden Asian Games medal, securing silver in the women's 49 kg weightlifting category at Aichi Nagoya. She lifted 87 kg in the snatch and 111 kg in the clean and jerk, finishing with a total of 198 kg. North Korea's Ri Songam won gold with 215 kg. Chanu has now become only the second Indian weightlifter after Karnam Maleshwari to win medals across all major international competitions. Jay Meena secured India's first ever Asian Games medal in soft tennis, winning bronze after losing 2-4 to Japan's Takuya Kurosaka in the men's singles semi-final. With Shivam, this is Jigyasa Pandey for Akashwani News, Delhi.
0: President Draupadi Murmu and Prime Minister Narendra Modi have congratulated Parinaz Dhaliwal, Raisa Dhillon and Maheshwari Chauhan on winning the bronze medal in the women's skeet team event at the Asian Games. Prime Minister Modi also congratulated Mirabai Chanu on winning silver medal in the women's 49-kilogram weightlifting event. The International Day of Sign Languages is being observed today. The Union's Social Justice and Empowerment Minister, Dr. Virendra Kumar, said that the sign language is a powerful bridge for communication, expression and inclusion. And now, before we end the bulletin, the headlines once again. President Draupadi Murmu says youth efforts will propel India to a developed nation before 2047. Finance Minister Nirmala Sitharaman inaugurates BRICS tax heads meeting in Delhi, calls for stronger BRICS voice in global tax negotiations. Indian Railways commissions coverage 4.0 for the first time on South Central Railway. Ayushman Bharat Pradhan Mantri Jan Arogya Yojana marks 8 years of transforming public health care access across India. External Affairs Minister Dr. S. Jaishankar discusses collaboration in AI, space, energy with counterparts from UAE and France. And in Asian Games 2026, Indian men's and women's skeet teams win bronze medals in Japan. Mirabai Chanu wins silver in weightlifting. And with that, we end the midday news.
2: नमस्कार, आकाशवाणी से दोपहर समाचार के साथ मैं मुकेश कुमार। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कहा, युवाओं के प्रयासों से भारत वर्ष 2047 से पहले विकसित राष्ट्र बन जाएगा। वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने ब्रिक्स कर प्रमुखों की बैठक का उद्घाटन किया। वैश्विक करदाताओं से ब्रिक्स की मजबूत भूमिका का आह्वान। भारतीय रेलवे ने दक्षिण मध्य रेलवे पर पहली बार कवच के चौथे चरण की शुरुआत की। आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के देश भर में सार्वजनिक स्वास्थ्य सेवाओं में 8 वर्ष पूरे। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने संयुक्त अरब अमीरात और फ्रांस के विदेश मंत्रियों के साथ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, अंतरिक्ष और ऊर्जा क्षेत्रों में सहयोग पर चर्चा की। बंगाल की खाड़ी में बने गहरे दबाव से उड़ीसा और आंध्र प्रदेश के तटीय क्षेत्रों में मूसलाधार वर्षा। और जापान एशियाई खेलों में मीराबाई चानू ने भारोत्तोलन स्पर्धा में रजत पदक जीता। भारतीय पुरुष और महिला इसकी टीमों को कांस्य पदक। जय मीणा ने सॉफ्ट टेनिस का कांस्य पदक हासिल कर इतिहास रचा। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने विश्वास व्यक्त किया है कि युवाओं के प्रयासों से भारत वर्ष 2047 से पहले ही विकसित राष्ट्र बन जाएगा। वडोदरा में आज महाराजा सयाजी राव बड़ौदा विश्वविद्यालय के 75वें दीक्षांत समारोह में राष्ट्रपति ने ये बात कही।
3: वर्ष 2047 तक विकसित भारत के निर्माण के राष्ट्रीय लक्ष्यों को लेकर देशवासी आगे बढ़ रहे हैं। ऐसा भारत जहां गुणवत्तापूर्ण शिक्षा और स्वास्थ्य सुविधाएं सभी तक पहुंचे, ऐसा भारत जहां विज्ञान और प्रौद्योगिकी का उपयोग मानव कल्याण के लिए हो।
2: राष्ट्रपति ने कहा कि आज हर क्षेत्र में तकनीकी परिवर्तन हो रहे हैं। उन्होंने विद्यार्थियों से AI की नई तकनीक, इंटरनेट और डेटा का उचित उपयोग करने का आह्वान किया।
3: टेक्नोलॉजी को अपनानी समय आपका विवेक होना चाहिए। आपको ये याद रखना चाहिए कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस समाधान दे

0: लेकिन सही प्रश्न पूछना आपका कर्तव्य होना चाहिए। टेक्निक आपको गति दे सकते हैं, लेकिन ये तय करना है, आपका काम है कि आपको किस दिशा में जाना है।
1: राष्ट्रपति ने शिक्षा सहित विभिन्न क्षेत्रों में महिलाओं की बढ़ती भागीदारी की प्रशंसा की।
0: बेटी देश के लिए काम कर रहे हैं, आगे पीढ़ी को बनाने में, घर पे रह करके अपने बाल बच्चों को पढ़ना, उनके भविष्य तैयार करना, ये भी तो देश का काम है। चाहे वर्कफोर्स में आप दिखाई दे या ना दिखाई दे, लेकिन देश को आगे बढ़ाने के लिए ये प्रयासरत है।
1: राष्ट्रपति मुर्मू ने 12,600 से अधिक विद्यार्थियों को उपाधियां प्रदान की और 160 विद्यार्थियों को कुल 201 स्वर्ण पदक प्रदान किए। राज्यपाल आचार्य देवव्रत ने भी उपाधि प्राप्त करने वाले सभी विद्यार्थियों को बधाई दी। राष्ट्रपति मुर्मू आज वडोदरा में ब्रह्म कुमारी संस्थान के वैश्विक आध्यात्मिक पैलेस रिट्रीट सेंटर का उद्घाटन करेंगी। कार्यक्रम के दौरान राष्ट्रपति विश्व नवीकरण के लिए आध्यात्मिक जागरण परियोजना का शुभारंभ करेंगी। वे विकसित भारत के लिए युवा राष्ट्र निर्माण के लिए आंतरिक शक्ति का जागरण अभियान का वर्चुअल माध्यम से उद्घाटन करेंगी। वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने कहा है कि आगामी कुछ वर्षों में बहुपक्षीय कर वार्ताओं में लिए गए निर्णय एक पीढ़ी के लिए सीमा पार कराधान को आकार देंगे। नई दिल्ली में आज ब्रिक्स कर प्रमुखों की बैठक के उद्घाटन सत्र में वित्त मंत्री ने यह बात कही। उन्होंने वैश्विक करदाताओं से ब्रिक्स की मजबूत भूमिका का आह्वान किया। श्रीमती सीतारामन ने कहा कि इन वार्ताओं को निष्पक्ष और स्थायी बनाने के लिए उनका दृष्टिकोण आवश्यक है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने कहा कि कर प्रशासन कागजी प्रक्रियाओं से डेटा आधारित और डिजिटल प्रणालियों की ओर बढ़ रहा है। वित्त मंत्री ने इस वर्ष ब्रिक्स कर सत्र से उभरने वाली तीन व्यापक क्षेत्रों प्रौद्योगिकी, प्रशासन और लोगों की पहचान के बारे में जानकारी दी।
2: Look at what has emerged from the BRICS.
3: इस साल ब्रिक्स के टैक्स ट्रैक में विशेष रूप से टेक्नोलॉजी, डेटा का इस्तेमाल और डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर पर विशेष ध्यान दिया गया है, जिससे टैक्स एडमिनिस्ट्रेशन को ज्यादा सटीक और आसान बनाया जा सके और ये लोगों के मनमाने फैसलों पर कम निर्भर रहे। प्रशासन, गवर्नेंस का ढांचा, साझा मानक और व्यावहारिक टूल्स, ये सब मिलकर सहयोग को एक मजबूत संस्थागत रूप प्रदान करते हैं।
2: A durable institutional shape.
1: श्रीमती सीतारामन ने कहा कि बैठक में दो नए कार्य समूहों, अंतर्राष्ट्रीय कराधान और हस्तांतरण मूल्य निर्धारण तथा राजस्व सांख्यिकी के लिए प्रारंभिक दस्तावेजों पर विचार विमर्श किया गया। भारतीय रेलवे ने दक्षिण मध्य रेलवे पर पहली बार कवच का चौथा चरण की शुरुआत करते हुए रेल सुरक्षा के क्षेत्र में महत्वपूर्ण उपलब्धि हासिल की है। रेल मंत्रालय ने बताया कि हैदराबाद मंडल के मलकानगिरी कामारेड्डी रेलखंड पर 104 किलोमीटर से अधिक मार्ग पर कवच संस्करण को अपग्रेड करते हुए चौथा चरण सफलतापूर्वक पूरा हो गया है। एक रिपोर्ट।
4: कवच भारत में विकसित की गई एक स्वचालित ट्रेन सुरक्षा प्रणाली है, जिसका उद्देश्य रेल संचालन को अधिक सुरक्षित बनाना है। यह प्रणाली लोको पायलट को ट्रेन की निर्धारित गति सीमा में चलाने में मदद करती है। यदि किसी स्थिति में लोको पायलट समय पर ब्रेक नहीं लगाता तो जरूरत पड़ने पर कवच अपने आप ब्रेक लगा सकता है। इस तकनीक का मुख्य उद्देश्य खतरनाक परिस्थितियों में ट्रेन की गति को नियंत्रित करना, ट्रेनों के बीच टक्कर के जोखिम को कम करना और खराब मौसम और कम दृश्यता जैसी परिस्थितियों में ट्रेन संचालन को अधिक सुरक्षित बनाना है। दक्षिण मध्य रेलवे पर कवच 4.0 का सफलतापूर्वक संचालन शुरू होना भारतीय रेलवे की स्वदेशी सुरक्षा तकनीक को मजबूत करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। दीपेंद्र कुमार के साथ अमन यादव, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
1: ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं।
5: आपको हर खबर से रखे अपडेट, expert@AIRnews हिंदी और पब्लिक पर @AIRnews अलर्ट्स को फॉलो करें।
1: दोपहर समाचार में आपका फिर स्वागत है। आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के आज 8 वर्ष पूरे हो गए हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सितंबर 2018 में झारखंड के रांची में इस योजना का शुभारंभ किया था। ये विश्व की सबसे बड़ी सरकारी स्वास्थ्य बीमा योजना बन गई है। प्रधानमंत्री ने कहा कि इस योजना से चिकित्सा खर्च में रिकॉर्ड बचत हुई है और गरीब तथा मध्यम वर्ग को लाभ मिला है। श्री मोदी ने कहा कि 8 वर्ष पहले यह योजना प्रत्येक भारतीय को उच्च गुणवत्ता वाली और किफायती स्वास्थ्य सेवा प्रदान करने के लिए शुरू की गई थी। उन्होंने कहा कि आज 6 करोड़ से अधिक लाभार्थियों को 5 लाख रुपए तक का स्वास्थ्य बीमा लाभ मिल रहा है। एक रिपोर्ट।
6: आयुष्मान भारत योजना के तहत पिछले 8 वर्षों में 13 करोड़ से अधिक लोगों ने मुफ्त इलाज का लाभ उठाया है, जिस पर सरकार ने 2 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा खर्च किए हैं। इस योजना के तहत 38,000 सरकारी और निजी अस्पतालों को जोड़ा गया है और यह योजना देश के सभी 36 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में लागू है। इससे देश भर में लोगों को स्वास्थ्य सेवाएं आसानी से मिल रही है और गंभीर बीमारियों के इलाज की सुविधा भी मिल रही है। हाल ही में मोदी सरकार ने इस योजना का लाभ 70 वर्ष और उससे अधिक उम्र के बुजुर्गों के साथ साथ 37 लाख से अधिक आशा कार्यकर्ताओं और आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं के परिवारों तक भी बढ़ाया है। इस योजना का मुख्य उद्देश्य गरीब, जरूरतमंद और कमजोर वर्ग के लोगों को बेहतर स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध कराना है। दीपेंद्र कुमार, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
1: आयुष मंत्री प्रताप राव जाधव ने कहा है कि आयुर्वेद जीवन शैली से जुड़ी बीमारियों की रोकथाम और संतुलित आहार, अनुशासित दिनचर्या, अच्छी नींद, योग और प्रकृति के साथ सामंजस्य के माध्यम से स्वास्थ्य बनाए रखने का एक समग्र दृष्टिकोण प्रदान करता है। नागपुर में 11वें आयुर्वेद दिवस के राष्ट्रीय समारोह में श्री जाधव ने कहा कि इस वर्ष के आयुर्वेद दिवस का विषय एक स्वस्थ भविष्य के लिए आयुर्वेद है। आयुर्वेद से जुड़ी जीवन शैली के महत्व पर बल देते हुए श्री जाधव ने कहा कि स्वास्थ्य देखभाल का पहला केंद्र घर है और स्वास्थ्य की पहली नींव केवल दवाओं से नहीं बल्कि एक स्वस्थ जीवन शैली है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जनसेवा में 25 वर्ष पूरे कर रहे हैं। यह यात्रा जनसेवा से देश सेवा के मंत्र और निरंतर प्रतिबद्धता से प्रेरित है। सेवा और सुशासन के दृष्टिकोण से प्रेरित सरकार 2047 तक विकसित भारत के लक्ष्य को प्राप्त करने की दिशा में निरंतर कार्य कर रही है। समावेशी विकास और सामाजिक सशक्तिकरण के माध्यम से ये समर्पण लोगों के जीवन में बदलाव ला रहा है। आज हम अपनी विशेष श्रृंखला में लोगों के जीवन में महत्वपूर्ण बदलाव ला रही प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना के बारे में जानकारी दे रहे हैं।
3: पीएम स्वनिधि योजना से तेलंगाना में विक्रेताओं को आर्थिक विकास और वित्तीय समावेशन में मदद मिली है। ये योजना आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय द्वारा शुरू की गई। मार्च 2023 तक बढ़ाई गई इस पहल के तहत 10,000, 20,000 और 50,000 रुपए की तय किश्तों में बिना गारंटी के ऋण दिए जाते हैं। शहरी स्थानीय निकायों और राज्य स्तरीय बैंकर समिति के माध्यम से स्थानीय स्तर पर लागू की गई इस योजना में तेलंगाना लगातार देश में बेहतर प्रदर्शनकर्ताओं में शामिल रहा है। राज्य में लगभग 4,47,000 विक्रेताओं तक 1,240 करोड़ रुपए से ज्यादा की राशि पहुंची है। खास बात यह है कि स्थानीय लाभार्थियों में महिलाओं की हिस्सेदारी लगभग 65% है, जो राष्ट्रीय औसत से ज्यादा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस योजना की प्रशंसा की है क्योंकि इसने विक्रेताओं के परिवारों की आय में 20% से ज्यादा की बढ़ोतरी की है और लाखों लोगों को औपचारिक बैंकिंग सिस्टम से जोड़ा है।
7: पीएम स्वनिधि ने देश के लाखों स्ट्रीट वेंडर्स को फॉर्मल सिस्टम से जोड़ा और अब इन साथियों के पास भी स्वनिधि क्रेडिट कार्ड है, यानी इनके पास एक फॉर्मल क्रेडिट एक्सेस का टूल है। और स्टडीज बताती है कि स्वनिधि के इन बेनिफिशियरीज की एवरेज एनुअल इनकम 20% से ज्यादा बढ़ी है। यही नहीं, इससे इन परिवारों की हाउसिंग, न्यूट्रिशन, हेल्थ केयर एक्सेस और बच्चों की एजुकेशन, इनमें भी बहुत सुधार हुआ है।
3: करीमनगर के सब्जी विक्रेता रमेश ने पीएम स्वनिधि के तहत मिलने वाले लोन का इस्तेमाल करके अपने छोटे से कारोबार को बढ़ाया और अब वे रोजाना 1,00,000 रुपए का स्टॉक रखते हैं।
8: माय नेम इज रमेश।
9: मेरा नाम रमेश है। पिछले 3 सालों से मैं करीमनगर में सब्जी का कारोबार कर रहा हूँ। पीएम स्वनिधि योजना की मदद से मुझे 10,000 रुपए का पहला लोन मिला। मैंने इसे 12 महीनों के अंदर सफलतापूर्वक चुका दिया। इसके बाद 20,000 रुपए का दूसरा लोन मंजूर हुआ, मैंने उसे भी 22 महीनों में चुका दिया। अभी 50,000 रुपए का लोन चल रहा है। मैं हर महीने बैंक की किस्तें समय पर चुका रहा हूँ। जिस कारोबार को मैंने 10,000 रुपए से शुरू किया था, वो अब इतना बढ़ गया है कि मैं रोजाना 1,00,000 रुपए का स्टॉक रखता हूँ।
8: स्टॉक वर्थ 1,00,000 रुपए।
3: लचीले और बिना ब्याज वाली पूंजी के लिए UPI लिंक्ड रुपे स्वनिधि क्रेडिट कार्ड शुरू करने के साथ ये कार्यक्रम अनौपचारिक कर्ज के चक्र को खत्म कर वित्तीय सम्मान और सतत विकास को बढ़ावा दे रहा है। हैदराबाद से श्रीनिवास एम की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से जागृति शर्मा।
1: ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं।
10: खबरों और अपडेट्स के लिए कभी भी कहीं भी expert@AIRNewsHindi और फेसबुक पर ऑल इंडिया रेडियो न्यूज को फॉलो करें।
1: ये आकाशवाणी है। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर, संयुक्त अरब अमीरात के विदेश मंत्री शेख अब्दुल्ला बिन जायद अल नहयान और फ्रांस के विदेश मंत्री जान नोएल बेरोट ने न्यूयॉर्क में त्रिपक्षीय बैठक में भाग लिया। संयुक्त राष्ट्र महासभा के 81वें सत्र के दौरान इस बैठक में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, अंतरिक्ष, स्वास्थ्य विज्ञान, ऊर्जा और संस्कृति के क्षेत्र में सहयोग पर चर्चा की गई। तीनों नेताओं ने संस्कृति और विरासत सहित आपसी हित के क्षेत्रों में त्रिपक्षीय सहयोग

0: प्रगति की समीक्षा की। बंगाल की खाड़ी के ऊपर बने गहरे निम्न दबाव के कारण उड़ीसा में मौसम खराब है। यही स्थिति उत्तर आंध्र प्रदेश दक्षिण उड़ीसा तट की ओर बन रही है। इसके चलते राज्य के दक्षिणी और तटीय जिलों में तेज बारिश हो रही है।
1: राज्य सरकार ने उड़ीसा डिजास्टर रैपिड एक्शन फोर्स की 33 टीमें तैनात की है और चक्रवात और बाढ़ आश्रय स्थलों को तैयार रखा गया है। कई संवेदनशील जिलों में स्कूल और आंगनवाड़ी केंद्र बंद कर दिए गए हैं। भूस्खलन और अचानक बाढ़ के खतरे को देखते हुए एहतियात के तौर पर कंधमाल में कलिंगा घाट को यातायात के लिए बंद कर दिया गया है। लोगों को सलाह दी गई है कि वो उफान पर चल रही नदियों और नालों से दूर रहे और स्थानीय प्रशासन की सलाह का पालन करे। प्रकाश दास, आकाशवाणी समाचार, भुवनेश्वर।
0: भारत की मीराबाई चानू ने एशियाई खेलों की भारोत्तोलन प्रतियोगिता में महिलाओं के 49 किलोग्राम वर्ग में रजत पदक जीत लिया है। भारत के जय मीणा ने आज सॉफ्ट टेनिस के पुरुष सिंगल्स का कांस्य पदक जीतकर इतिहास रचा। भारत ने एशियाई खेलों में निशानेबाजी की स्कीट स्पर्धा के महिला और पुरुष वर्ग के कांस्य पदक भी जीते। अनंतजीत सिंह नरुका, मेहराज अहमद खान और भवतेज सिंह गिल की टीम ने 346 अंक प्राप्त कर तीसरा स्थान हासिल किया। महिला वर्ग में महेश्वरी सिंह, परिनाज धालीवाल और रायजा ढिल्लों की भारतीय टिकड़ी ने तीसरा स्थान प्राप्त किया। भारतीय टीम ने महिला कबड्डी में आज दूसरे ग्रुप मैच में ईरान को 23 के मुकाबले 37 अंक से हराया। इससे पहले भारतीय टीम ने बांग्लादेश को 21 के मुकाबले 42 अंक से मात दी थी। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और खेल मंत्री मनसुख मांडविया ने एशियाई खेलों में महिला स्कीट टीम स्पर्धा में कांस्य पदक जीतने पर परिनाज धारीवाल, रायजा ढिल्लो और महेश्वरी चौहान को बधाई दी है। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कहा, युवाओं के प्रयासों से भारत 2047 से पहले विकसित राष्ट्र बन जाएगा। वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने ब्रिक्स कर प्रमुखों की बैठक का उद्घाटन किया। वैश्विक करदाताओं से ब्रिक्स की मजबूत भूमिका का आह्वान। भारतीय रेलवे ने दक्षिण मध्य रेलवे पर पहली बार कवच के चौथे चरण की शुरुआत की। आयुष्मान भारत, प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के देश भर में सार्वजनिक स्वास्थ्य सेवाओं में 8 वर्ष पूरे। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने संयुक्त अरब अमीरात और फ्रांस के विदेश मंत्रियों के साथ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, अंतरिक्ष और ऊर्जा क्षेत्रों में सहयोग पर चर्चा की। और जापान एशियाई खेलों में मीराबाई चानू ने भारोत्तोलन स्पर्धा में रजत पदक जीता। इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
2: आकाशवाणी मुंबईची ही आहे अस्मिता वाहिनी। दुपारचे 2:30 वाजलेले आहेत। आता शास्त्रीय संगीताचा कार्यक्रम नादब्रह्म। आज अश्विनी मोरघोडे यांनी गायलेला राग गौड मल्हार आपल्याला ऐकवत आहोत। विलंबित खेळाची बंदिश 3 तालात आणि द्रुतबंदिशही 3 तालात आहे। त्यांना तबल्याची साथ माधव मोडक यांनी आणि हार्मोनियमची साथ मकरंद खरविंदकर यांनी केलेली आहे। ऐकूया अश्विनी मोरघोडे यांनी गायलेला राग गौड मल्हार।

पहरो पचरंगी शर्ट ऊपर बेल बॉटम पैंट, पहरो पचरंगी शर्ट ऊपर बेल बॉटम पैंट, ऊपर थी छाटो थोड़ू इम्पोर्टेड सेंट। हवे ढीला ढीला, हवे ढीला।

0: नहीं चाले जोर,
1: आई पासे के जोर, तारू नहीं चाले जोर।
2: अमे बट बचन वेर वाला आज के सरियो।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं वैष्णवी। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कहा है कि युवाओं के प्रयासों से भारत वर्ष 2047 से पहले ही विकसित राष्ट्र बन जाएगा। वडोदरा में आज महाराजा सयाजीराव बड़ौदा विश्वविद्यालय के 75वें दीक्षांत समारोह में राष्ट्रपति ने ये बात कही।
1: वर्ष 2047 तक विकसित भारत के निर्माण के राष्ट्रीय लक्ष्यों को लेकर देशवासी आगे बढ़ रहे हैं। ऐसा भारत जहां गुणवत्तापूर्ण शिक्षा और स्वास्थ्य सुविधाएं सभी तक पहुंचे, ऐसा भारत जहां विज्ञान और प्रौद्योगिकी का उपयोग मानव कल्याण के लिए हो।
0: राष्ट्रपति ने विद्यार्थियों से नई तकनीक, इंटरनेट और डेटा का उचित उपयोग करने का आह्वान किया। राष्ट्रपति ने शिक्षा सहित विभिन्न क्षेत्रों में महिलाओं की बढ़ती भागीदारी की सराहना की। दीक्षांत समारोह में राष्ट्रपति मुर्मू ने 12,600 से अधिक विद्यार्थियों को उपाधियां और 160 विद्यार्थियों को कुल 201 स्वर्ण पदक प्रदान किए। राज्यपाल आचार्य देवव्रत ने भी सभी विद्यार्थियों को बधाई दी। राष्ट्रपति मुर्मू आज वडोदरा में ब्रह्म कुमारी के वैश्विक आध्यात्मिक पैलेस रिट्रीट सेंटर का उद्घाटन करेंगी। वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने कहा है कि आगामी कुछ वर्षों में बहुपक्षीय कर वार्ताओं में लिए गए निर्णय एक पीढ़ी के लिए सीमा पार कराधान को आकार देंगे। नई दिल्ली में आज ब्रिक्स कर प्रमुखों की बैठक के उद्घाटन सत्र में वित्त मंत्री ने ये बात कही। श्रीमती सीतारामन ने कहा कि इन वार्ताओं को निष्पक्ष और स्थायी बनाने के लिए उनका दृष्टिकोण आवश्यक है। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर, संयुक्त अरब अमीरात के विदेश मंत्री शेख अब्दुल्ला बिन जायद अल नहयान और फ्रांस के विदेश मंत्री जियो न्यूएल बैरोट ने न्यूयॉर्क में त्रिपक्षीय बैठक में भाग लिया। संयुक्त राष्ट्र महासभा के 81वें सत्र के दौरान इस बैठक में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, अंतरिक्ष, स्वास्थ्य विज्ञान, ऊर्जा और संस्कृति के क्षेत्र में सहयोग पर चर्चा की गई। तीनों नेताओं ने संस्कृति और विरासत सहित पारस्परिक हित के क्षेत्रों में त्रिपक्षीय सहयोग की प्रगति की समीक्षा की। पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री भूपेंद्र यादव ने आज नई दिल्ली में ऑस्ट्रेलिया के जलवायु परिवर्तन और ऊर्जा मंत्री तथा COP31 वार्ता के अध्यक्ष क्रिस बोविन से मुलाकात की। श्री यादव ने सोशल मीडिया पोस्ट में बताया कि उन्होंने फिजी में होने वाले आगामी प्री कॉप और तुर्की में होने वाले COP31 के प्रमुख एजेंडा बिंदुओं पर चर्चा की। आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के आज 8 वर्ष पूरे हो गए हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सितंबर 2018 में झारखंड के रांची में इस योजना का शुभारंभ किया था। ये विश्व की सबसे बड़ी सरकारी स्वास्थ्य बीमा योजना बन गई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि इस योजना से चिकित्सा खर्च में रिकॉर्ड बचत हुई है और गरीब तथा मध्यम वर्ग को लाभ मिला है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव का लिखा एक लेख साझा किया। इसमें बताया गया है कि सरकार के प्रयास भारत की संरक्षण यात्रा को कैसे मजबूत कर रहे हैं। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री मोदी ने कहा कि भारत में गैंडों की कहानी इस प्रजाति की जबरदस्त वापसी की कहानी है। उन्होंने कहा कि भारत अब एक सींग वाले गैंडे के सबसे महत्वपूर्ण संरक्षकों में से एक है और इनकी आबादी में लगातार बढ़ोतरी हो रही है। भारतीय रेलवे ने दक्षिण मध्य रेलवे पर पहली बार कवच संस्करण के चौथे चरण की शुरुआत करते हुए रेल सुरक्षा

के क्षेत्र में एक महत्वपूर्ण उपलब्धि हासिल की है। रेल मंत्रालय ने बताया कि हैदराबाद मंडल के मलकाजगिरी कामारेड्डी रेलखंड पर 108 किलोमीटर से अधिक मार्ग पर कवच संस्करण को उन्नत करते हुए चौथा चरण सफलतापूर्वक पूरा हो गया है। बंगाल की खाड़ी के ऊपर बने गहरे निम्न दबाव के कारण ओडिशा में मौसम खराब बना हुआ है। यही स्थिति उत्तर आंध्र प्रदेश दक्षिण ओडिशा तट की ओर बन रही है। इसके चलते राज्य के दक्षिणी और तटीय जिलों में तेज बारिश हो रही है। बाढ़, जलभराव और भूस्खलन की आशंका को देखते हुए सरकार ने आपदा प्रबंधन की तैयारियां तेज कर दी हैं। भारत की मीराबाई चानू ने एशियाई खेलों की भारोत्तोलन प्रतियोगिता में महिलाओं के 49 किलोग्राम वर्ग में रजत पदक जीत लिया है। भारत के जय मीणा ने आज सॉफ्ट टेनिस के पुरुष सिंगल्स का कांस्य पदक जीतकर नया इतिहास रचा। भारत ने निशानेबाजी की स्कीट स्पर्धा के महिला और पुरुष वर्ग के कांस्य पदक भी जीते। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पदक जीतने पर खिलाड़ियों को बधाई दी है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

मन की बात है जन जन की, सभी की कुछ अपनी सी, संघर्षों के कुछ किस्से, कहानी कुछ सफलताओं की, अनकही विरासत की, उम्मीदें नए भारत की। महीने के आखिरी रविवार का रहता है इंतजार, मलयाचल के आंचल से विंध्याचल के आंगन तक, ब्रह्मपुत्र के घाट से हिमालय के विस्तार तक होती है मन की बात प्रधानमंत्री के साथ। तो सुनिए इस महीने 27 सितंबर सुबह 11 बजे मन की बात, आकाशवाणी दूरदर्शन के सभी चैनलों और प्रसार भारती के OTT प्लेटफॉर्म वेव्स पर। आप भी माननीय प्रधानमंत्री के मन की बात का हिस्सा बन सकते हैं। इसके लिए आप अपने सुझाव 25 सितंबर तक टोल फ्री नंबर 1800117800 पर रिकॉर्ड कर सकते हैं या फिर 1922 पर भी कॉल कर सकते हैं। नमो ऐप या MyGov के ओपन फोरम में पोस्ट कर सकते हैं या पोस्ट बॉक्स नंबर 111 आकाशवाणी दिल्ली पर भेज सकते हैं। तो याद रखें, रविवार 27 सितंबर सुबह 11 बजे मन की बात।

0: Welcome to Employment News, your ultimate gateway to career success. I am Lucy Gabriel and I'm here to guide you through the latest job vacancies across various sectors and government recruitment updates to help you navigate the competitive job market. We begin with the Kaveri Water Management Authority invites applications for various posts in CWMA New Delhi and Kaveri Water Regulation Committee Bengaluru on deputation basis. The vacancies include Director Level 13, one post in CWMA and one in CWRC. Deputy Director Level 11, Assistant Director Civil Mechanical Level 10, one post, Accounts Officer 10, one post, and Lower Division Clerk Level 2, one post in CWMA, with the number of vacancies subject to requirements. Eligible candidates should apply through proper channel in the prescribed format within 30 days from the date of publication of this advertisement in the Employment News. For details, kindly look up the website, that is at www.cwc.gov.in, or you could also email at cwma-hq@gov.in for inquiries. The Railway Recruitment Board's Ministry of Railways has issued a centralized employment notification for recruitment of various paramedical categories. The indicative notice mentions 560 vacancies with posts carrying pay level 3 and level 7 as per the 7 CPC. Online applications are tentatively scheduled to close on 14th October 2026. The detailed CEN will specify the post, qualifications, age limits, medical standards and other eligibility conditions. Applications will be accepted online only at RRB Apply. Candidates should also refer to the Common RRB website for the detailed notification, that is at www.rrb.indianrailways.gov.in. National Institute of Technology Goa invites applications from Indian nationals for regular faculty positions comprising Professor, Associate Professor, Assistant Professor Grade 2 and Assistant Professor Grade 1 on contract. The posts carry pay level 14A, 13A2, 12 and 10 respectively, with vacancies across different categories. Online applications are open till 30th September 2026. The hard copies of the completed application along with self-attested supporting documents must reach the institute by 7th October 2026. For detailed qualifications, disciplines, reservation and application procedure, kindly look up the website at www.nitgoa.ac.in. The Office of the Controller General of Patents, Design and Trademarks, Department of Promotion of Industry and Internal Trade, Ministry of Commerce and Industry has invited registrations for the Trademarks Patent Agent Examination 2027. Registrations for qualifying examination to practice before the office of the CGPDTM is open till 30th September 2026 under the relevant positions of Trademark Rules 2017 and Patents Acts and Rules. For eligibility, examination details and registration, kindly look up the website at www.ipindia.gov.in. The Indira Gandhi National Centre for Arts, IGNCA, New Delhi, an autonomous trust under the Ministry of Culture, invites applications for one post of a Deputy Director, Library and Information on deputation basis. The post carries pay level 12 as per the 7 CPC. Eligible candidates should submit their applications within 30 days from the date of publication of this advertisement in the Employment News. Detailed eligibility conditions and vacancy circulars are available on the IGNCA website, that is at www.ignca.gov.in. The Division of Vegetable Science, ICAR, Indian Agricultural Research Institute, IARI Pusa, New Delhi, is conducting a walk-in interview on 28th September 2026 for engagement of two young professionals, YP2 and one young professional, YP1, under the National Mission for High Yielding Seeds, NMHYS, Pitagod project. The positions are purely contractual and in coterminous with the completion of the project. Details regarding enumeration, essential qualification, terms and conditions and the application format is available on the website, that is at www.iari.res.in. And now we have the employment news in Hindi.
1: आकाशवाणी के समाचार सेवा प्रभाग से प्रस्तुत है रोजगार समाचार। नमस्कार, रोजगार समाचार के आज के अंक में मैं हूं मुनीष शर्मा। आइए जानकारी लेते हैं किन रिक्तियों के लिए आप आवेदन कर सकते हैं। FSSAI सहायक निदेशक समूह क के लिए आवेदन आमंत्रित कर रहा है। रिक्तियों की संख्या 4 है, कार्य अवधि रहेगी 2 वर्ष। योग्यता अनुभव आदि के बारे में विस्तृत जानकारी के लिए देखिए वेबसाइट www.fssai.gov.in। राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान गोवा में प्रोफेसर लेवल 14A के कुल 4 पद, एसोसिएट प्रोफेसर लेवल 13A2 के 8 पद और सहायक प्रोफेसर ग्रेड 1 लेवल 12 के कुल 16 पद रिक्त हैं। ऑनलाइन आवेदन प्रपत्र भरने के लिए पोर्टल पर 31 अगस्त से उपलब्ध हो चुका है। आवेदन भरकर जमा करने की आखिरी तारीख रहेगी 30 सितंबर 2026 शाम 5 बजे तक। अधिक जानकारी के लिए देखिए राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी गोवा की वेबसाइट www.nitgoa.ac.in। कावेरी जल प्रबंधन प्राधिकरण CWMA इन पदों के लिए आवेदन आमंत्रित कर रहा है। निदेशक सिविल मैकेनिकल, उपनिदेशक सिविल मैकेनिकल, सहायक निदेशक सिविल मैकेनिकल, लेखाधिकारी तथा अवर श्रेणी लिपिक। योग्यता, वेतनमान, तैनाती के स्थान, आरक्षण आदि की विस्तृत जानकारी के लिए देखिए वेबसाइट www.jalshakti.dowr.gov.in। इसके अतिरिक्त केंद्रीय जल आयोग की वेबसाइट पर भी जानकारियां आपको प्राप्त हो सकती हैं। वेबसाइट है www.cwc.gov.in। सैनिक स्कूल कोरुकोंडा में प्रशिक्षित स्नातक शिक्षक TGT गणित का एक पद रिक्त है। अधिक विवरण जैसे वेतन और भत्ते और अनुलब्धियां, आवेदन पत्र, भर्ती प्रक्रिया आदि की विस्तृत जानकारी के लिए देखिए सैनिक स्कूल कोरुकोंडा की वेबसाइट www.sainikschoolkorukonda.org। केंद्रीय रेशम बोर्ड में इन पदों के लिए आवेदन आमंत्रित किए जा रहे हैं। संयुक्त सचिव तकनीकी 2 पद, उपनिदेशक प्रशासन एवं लेखा 4 पद, उपनिदेशक सांख्यिकी 1 पद, उपनिदेशक राजभाषा 1 पद, उपनिदेशक वित्त 1 पद, सहायक निदेशक प्रशासन एवं लेखा 6 पद, सहायक निदेशक सांख्यिकी 1 और सहायक इंजीनियर 1 पद। विस्तृत जानकारी के लिए देखिए केंद्रीय रेशम बोर्ड कपड़ा मंत्रालय भारत सरकार की वेबसाइट www.csb.gov.in। केंद्रीय विद्यालय संगठन में प्रतिनियुक्ति के आधार पर स्थानांतरण द्वारा अधिशासी अभियंता एवं सहायक निदेशक राजभाषा के पद को भरा जाना है। विस्तृत जानकारी के लिए देखिए वेबसाइट।
2: समाचार सेवा प्रभाग से प्रस्तुत है कार्यक्रम परिक्रमा।

0: नमस्कार, कार्यक्रम परिक्रमा में आपका बहुत बहुत स्वागत है। और चित्रा सिंह और जगजीत सिंह की आवाज में ये खूबसूरत गजल एहसास कराती है कि चेहरा नया एहसास पुराना था, चेहरा नया एहसास पुराना था, नजर मिली तो लगा रिश्ता पुराना था। मैं हूँ आपके साथ फरहत नाज और आज मेरा साथ दे रही हैं मेरी सहयोगी सायरा मुश्ताबा। नमस्कार सायरा।
1: नमस्कार फरहत, आदाब एंड अ वेरी वार्म वेलकम टू ऑल आवर लिसनर्स। और ये रिश्ता हर रोज हम लोग निभाने आ जाते हैं, बहुत पुराना रिश्ता है आपका और परिक्रमा का, एंड इट्स गेटिंग स्ट्रॉन्गर डे बाय डे। एंड ऑफ कोर्स वेलकम टू आवर शो, टू दिस वेरी वेरी ब्रांड न्यू एपिसोड ऑफ परिक्रमा, वेयर वी ब्रिंग यू द न्यूज फ्रॉम द नेशनल न्यूज, इंटरनेशनल न्यूज, एंड ऑफ कोर्स सिंस द नेम ऑफ द शो इज परिक्रमा, सो वी विल गो टू डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द कंट्री, देश की परिक्रमा पे निकलेंगे। क्यों फरहत?
0: जी बिल्कुल सायरा, शाम के 4:32 और 8 सेकंड हो चुके हैं और वक्त हो चला है हमारे अपने कार्यक्रम परिक्रमा कहा, जहां जैसा कि आपने बताया अपने श्रोताओं को कि हम यहां पर देंगे देश और दुनिया के समाचार और वो सभी जानकारी जिनका आपसे है सरोकार। और इसके अलावा हमारे जो क्षेत्रीय संवाददाता हैं उनकी खास रिपोर्ट हम लोग पेश करेंगे और कुछ अंत में याद करेंगे खास शख्सियतों को भी।
1: दैट्स राइट, ये सब कुछ होगा अगले रफली आधे घंटे में। 2 मिनट जा चुके हैं लेकिन चलिए शुरुआत करते हैं, लेट्स स्टार्ट विद द हेडलाइंस फरहत।
0: जी बिल्कुल, सबसे पहले शुरुआत कर लेते हैं राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कहा है कि युवाओं के प्रयासों से भारत 2047 से पहले विकसित राष्ट्र बन जाएगा।
1: फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारामन इनॉग्रेट्स ब्रिक्स टैक्स हेड्स मीटिंग इन दिल्ली, कॉल्स फॉर स्ट्रॉन्गर ब्रिक्स वॉइस इन ग्लोबल टैक्स नेगोशिएशंस।
0: भारतीय रेलवे ने दक्षिण मध्य रेलवे पर पहली बार कवच के चौथे चरण की शुरुआत की।
1: आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना मार्क्स 8 years ऑफ ट्रांसफॉर्मिंग पब्लिक हेल्थ केयर एक्सेस अक्रॉस इंडिया।
0: विदेश मंत्री डॉक्टर सुब्रमण्यम जयशंकर ने संयुक्त अरब अमीरात और फ्रांस के विदेश मंत्रियों के साथ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, अंतरिक्ष और ऊर्जा क्षेत्रों में सहयोग पर चर्चा की।
1: डीप डिप्रेशन ओवर बे ऑफ बंगाल मूव्स क्लोजर, हैवी रेन्स लैश कोस्टल ओडिशा एंड आंध्र प्रदेश।
0: और जापान एशियाई खेलों में मीराबाई चानू ने भारोत्तोलन स्पर्धा में रजत पदक जीता, वहीं भारतीय पुरुष और महिला स्की टीमों को कांस्य पदक, जय मीणा ने सॉफ्ट टेनिस का कांस्य पदक हासिल कर इतिहास रचा।
1: And as always, we start our show with our special segment, Dateline India. And in today's Dateline India, Farhat, of course, we're going to talk about Ayurveda Day. Well, what if I told you that one of the world's oldest systems of healthcare is not just a chapter in India's ancient history, but is increasingly finding its place in the healthcare system of modern India as well as modern world, we can say. Yes, we're talking about Ayurveda, a tradition that goes back more than 5,000 years. Yes, 5,000 years. And from ancient texts to modern research labs, from traditional herbs to contemporary hospitals, Ayurveda is making an interesting journey from the past into the present and towards the future. Today on Ayurveda Day, let's take a journey into this fascinating world of healing and wellness.
0: बिल्कुल सारा, लेकिन सबसे पहले हमें ये समझना होगा कि आयुर्वेद शब्द है क्या। तो हम बात बताएं तो आयुर्वेद शब्द संस्कृत के 2 शब्दों से मिलकर बना है, आयु जिसका अर्थ है जीवन और वेद जिसका अर्थ है ज्ञान। आसान शब्दों में कहें तो आयुर्वेद को अक्सर जीवन का ज्ञान कहा जाता है। आयुर्वेद हमें हजारों वर्षों से स्वस्थ जीवन की दिशा दिखा रहा है। प्राचीन भारत की अगर बात की जाए तो आयुर्वेद को रोगों के उपचार और स्वस्थ जीवन शैली व्यतीत करने का सर्वोत्तम तरीका माना जाता है। आजकल की जीवन शैली को देखते हुए हमें अपने शरीर और मन का ध्यान रखने के लिए आयुर्वेदिक तरीकों की जरूरत है। इससे हम न केवल रोगों को दूर रख सकते हैं बल्कि एक स्वस्थ और संतुलित जीवन भी जी सकते हैं। इसकी जड़ें पारंपरिक रूप से प्राचीन भारतीय ग्रंथों जैसे कि ऋग्वेद से जुड़ी हुई हैं।
1: That's very right, Farhat. And we have seen the pandemic also. और तब तो बहुत ज्यादा you can say लोगों को अहमियत पता चली आयुर्वेद की। Everybody was having those काढ़ास that we have, isn't it? But Ayurveda isn't about medicines alone. At its heart is a much broader idea that health is not simply the absence of disease. It is about maintaining harmony within the body, within the mind, and between the individual and the world around them. Just think about it deeply. Your body is constantly working. We eat, we digest, we sleep, we breathe, our tissues regenerate and our body removes waste as well. Ayurveda developed a framework for understanding ऑल दीज प्रोसेसेस।
0: जी बिल्कुल सारा, और अगर आप सही वजन पाना चाहती हैं या फिर निखरी त्वचा पाना चाहती हैं या फिर खूबसूरत खूबसूरत बाल अपने आप करना चाहती हैं, तो मुझे लगता है आयुर्वेद की जीवन शैली को अपनाना बहुत ही कारगर साबित होगा, क्योंकि आयुर्वेद खान पान में सुधार लाकर एक स्वस्थ वजन को मेंटेन करने में भी मदद करता है। ऑर्गेनिक हो या फिर प्राकृतिक तरीकों से आप स्वस्थ त्वचा पा सकते हैं। सिर्फ यही नहीं, संतुलित भोजन, टोनिंग व्यायाम और आयुर्वेदिक पूरक सप्लीमेंट की मदद से न केवल आपका शरीर स्वस्थ रहेगा बल्कि मन भी खुश रहता है, यानी प्रसन्न रहता है। आयुर्वेद ने दोष, अग्नि, धातु और मल जैसी अवधारणाओं के जरिए इन प्रक्रियाओं को समझने का एक ढांचा भी तैयार किया है, साथ ही मन, इंद्रियों और समग्र स्वास्थ्य का भी ध्यान रखा। इसके मूल सिद्धांत को बहुत सुंदर ढंग से इस तरह बताया जा सकता है, स्वस्थ्य स्वस्थ्य रक्षणम आतुरस्य विकार प्रश्नम। संक्षेप में अगर बात की जाए तो स्वस्थ व्यक्ति के स्वास्थ्य की रक्षा करना और बीमार व्यक्ति की बीमारी को दूर करना होता है।
1: But Farhad, there's also a question that probably everybody, you know, is curious about, that how does a healthcare tradition that originated thousands of years ago fit into the 21st century? Well, the answer is research. Today, efforts are being made to study traditional systems through modern scientific methods, examining their medicines, therapies, safety, effectiveness, and potential applications. This is creating an important conversation. Can traditional knowledge and modern science work together? Rather than seeing the two as necessarily opposites, India's approach is increasingly focused on exploring where they can complement one another. And that brings us to something listeners may notice in their own communities.
0: आयुर्वेद अब सिर्फ पुरानी पांडुलिपियों या पारंपरिक वेलनेस सेंटरों तक ही सीमित नहीं है सारा, सरकारी कार्यक्रमों के जरिए भी पूरे देश में आयुष सेवाओं का विस्तार किया जा रहा है। राष्ट्रीय आयुष योजना की अगर बात की जाए तो वहां पर क्लिनिक, अस्पताल, विभाग और सार्वजनिक स्वास्थ्य सुविधाओं के माध्यम से आयुष प्रणालियों, जिनमें आयुर्वेद भी शामिल है, को काफी मजबूत और एकीकृत करने की कोशिशें की जा रही हैं, और इसके आंकड़े एक अहम कहानियां बयां करते हैं। वित्त वर्ष 2014-15 की अगर बात की जाए या फिर 2025-26 के बीच की, तो केंद्र सरकार ने आयुष हेल्थकेयर के विस्तार में मदद के लिए राष्ट्रीय आयुष योजना के जरिए राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों को 6,406 करोड़ रुपए से ज्यादा की राशि जारी की है।
1: एंड बिल, दैट्स नॉट जस्ट अ स्टोरी अबाउट मनी, इट्स अ स्टोरी अबाउट इंफ्रास्ट्रक्चर एंड अबाउट ब्रिंगिंग ट्रेडिशनल हेल्थकेयर सिस्टम्स क्लोजर टू कम्युनिटीज। द आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना हैज कंप्लीटेड 8 इयर्स टुडे। प्राइम मिनिस्टर मोदी लॉन्च्ड द स्कीम इन सितंबर 2018 from Ranchi, Jharkhand, which has become the world's largest government-funded health assurance scheme. In a social media post, Prime Minister Modi said that 8 years ago, Ayushman Bharat was rolled out with the idea that every Indian should have access to top quality and affordable health care.
0: और सारे, जैसा कि आपने बात करी काढ़े की, तो एक कप हर्बल चाय की भी हम बात कर लेते हैं, या फिर योग की, या फिर ध्यान की, या शायद कोई ऐसा घरेलू नुस्खा जिस पर आपकी दादी नानी को पूरा भरोसा था, वो आयुर्वेद पर ही था।
1: बिल्कुल, आपने सही कहा। मेरे ख्याल से आई थिंक ये तो हम सब लोग जानते हैं ना, कि अगर बच्चे के सर्दी हो जाए तो हम लोग उसको दवा नहीं देते पहले, या तो उसको गर्म तेल में थोड़ा सा लहसुन जला के, थोड़ी सी अजवाइन जला के। सो ऑल दीस हैव बीन पास्ड फ्रॉम जनरेशंस टू जनरेशंस।
0: पूरे किचन में जो आपका सामान है, मुझे लगता है वो आसानी से मिल जाता है आयुर्वेद में बीमारी के लिए। और बहुत से भारतीय परिवारों की अगर बात की जाए तो आयुर्वेद कोई ऐसी चीज नहीं है जिसे उन्होंने किसी किताब में पढ़ा हो, ये शायद उनकी रोजमर्रा की जिंदगी का एक हिस्सा है, एक ऐसा घरेलू नुस्खा जो एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक पहुंचा हो। और यही एक वजह है कि भारत की सांस्कृतिक यादों में आयुर्वेद की जगह आज भी इतनी खास है।
1: That's right, Farhad. But the story doesn't stop at India's borders. Traditional Indian health practices are attracting interest internationally as well. Through global partnerships and international cooperation, India is working to bring traditional knowledge into wider conversations about health and well-being. The bigger question, however, is quite fascinating. What happens when thousands of years of traditional knowledge meet the tools of modern science today? Perhaps the future of healthcare isn't always about choosing between old and new. Perhaps in some areas it's about asking what can each contribute.
0: बिल्कुल सारा, और आपको पता है कि इस साल का जो संदेश है वो बहुत ही सरल और सुंदर भी है, बेहतर कल के लिए आयुर्वेद। और ये संदेश हमें इलाज से आगे बढ़कर सोचने के लिए भी प्रेरित करता है, क्योंकि सेहतमंद रहने का मतलब है रोजमर्रा की जिंदगी में सही चुनाव करना और इस बात पर ध्यान देना कि हम अपनी सेहत में हो रहे बदलावों को कितनी जल्दी पहचानते हैं। आयुर्वेद की सोच सेहत बनाए रखने पर काफी जोर देती है, ना कि अक्सर बीमारी होने के बाद उसका इलाज करने पर।
1: So listeners, as we mark Ayurved Day, here's a thought worth carrying with us. India's healthcare story is not just about looking forward. It's also about looking back and discovering what may have relevance for the world of tomorrow. From ancient manuscripts to modern research, from traditional knowledge to public healthcare, Ayurved continues its journey. Ancient wisdom, modern inquiry, a healthier tomorrow.
0: और श्रोताओं, आइए बढ़ते हैं हम अपने अगले सेगमेंट की ओर। और अब समय हो चुका है क्षेत्रीय संवाददाताओं से जानने का कि उनके पास क्या है खास।
1: एंड वी आर बिगिनिंग आवर परिक्रमा टुडे फरहत फ्रॉम द नॉर्थ ईस्ट, फ्रॉम द ब्यूटीफुल स्टेट ऑफ वेल, वी आर गोइंग टू त्रिपुरा। फॉर मोर देन 5 decades, द वाटर्स ऑफ द डम्बू रिजर्वॉयर हैव बीन पार्ट ऑफ एवरीडे लाइफ ऑफ त्रिपुरा। द वास्ट वाटर बॉडी एट तीर्थमुख इन गोमती डिस्ट्रिक्ट इज नॉट जस्ट अ source of water for drinking, agriculture and fishing. Hidden beneath and around these waters lies a piece of Tripura's power history. The Gomati Hydroelectric Power Project, the state's oldest and only hydel power project. We have a report.
2: For a while, it appeared that the story of Tripura's oldest hydel project might have reached its final chapter. But now, there is an attempt to find out whether the chapter can be rewritten. 2 years after the floods, the Tripura government and Tripura Power Generation Limited, or TPGL, are looking at the possibility of reviving the project. But before a decision can be taken, there is one fundamental question that needs an answer. What is the actual condition of the old structure beneath the water? And to find that answer, authorities have turned to technology. An underwater robotic inspection has been carried out using a remotely operated vehicle, ROV. The ROV was deployed underwater through IROV, a private agency based in Keralam. The machine can go where human inspection can be difficult and potentially dangerous. Its task is to look closely at the submerged infrastructure and provide authorities with a clearer picture of what lies beneath the surface. The inspection is particularly focused on the condition of the dam gates and the possibility of internal leakages. For a project that has been standing for more than 50 years, such an assessment is crucial, because revival is not simply about restarting a turbine. It is about understanding the condition of the entire system. For Parikrama, Shuman Bhattacharjee, Akashvani, Agartala.

0: Sensex rose 299 points to close at 74,828. Nifty jumped 118 points to settle at 23,447. For more updates about market activities, tune in to Akashvani's bilingual program Market Mantra at 6:30 PM this evening.
1: और श्रोताओं, अब आपको लिए चलते हैं आजादी के सफर पर.
2: राव तुलाराम. The day marks the death anniversary of this great leader of the First War of Indian Independence of 1857, who fought against the colonial British forces in Haryana, where he is considered a state hero.
3: In 1857, after the rebellion in Meerut and other places, he rose up to support the uprising.
2: Rao helped Emperor Bahadur Shah and other rebel forces who were waging war against the British in Delhi and sent 45,000 rupees along with large quantities of necessary commodities to him. But this help could not protect Delhi, which fell to the British on 20th September 1857.
3: Soon after, Brigadier General Showers led a column from Delhi to attack and destroy Rao and his followers in Rewari. Showers sent a messenger to Tularam telling him that if he surrenders along with his guns and arms, he would be treated on merits. But Tularam turned down the proposal.
2: British officer then sent a strong column under Colonel Gerard on November 10, 1857, which occupied the abandoned fort of Rampura. On November 16, Colonel Gerard marched to Narnaul, where the rebel forces led by Rao Tularam's cousin, Rao Krishan Singh, fought against them.
3: Tularam's forces fought bravely against the British. As the first charge of rebel forces scattered the British, Colonel Gerard was mortally wounded in the attack. Several other British officers were also killed or injured.
2: But the British forces successfully retaliated with full force and heavy bombardment. The Battle of Narnaul was one of the most decisive battles of 1857.
3: After suffering loss and destruction in the Battle of Narnaul, Rao Tularam moved in to Rajasthan and joined the forces of Tantia Tope. But the forces of Tantia Tope were also defeated by British in the Battle of Sikar in Rajasthan. Thereafter, Rao left India to seek help from the Shah of Iran, Dost Muhammad Khan, the ruler of Emirate of Afghanistan, and Alexander II, the Emperor of Russia, against the British colonial empire.
2: For his defiance, Rao Tularam's estates were confiscated by the British. On 23rd September 1863, he died in Kabul in Afghanistan.
3: A two-day Shahidi Mela is held annually in September at Rampura suburb of Rewari city to commemorate the death anniversary of Tularam. The government of India issued a postage stamp on 23rd September 2001 featuring Rao Tularam.
1: और श्रोताओं, अब हम बढ़ते हैं अपने अगले सेगमेंट की ओर, जहां हम याद करेंगे कुछ जानी मानी शख्सियतों को. सायरा, सबसे पहले हम किसके बारे में बात कर रहे हैं?
0: Well, I think we're going to remember a very renowned poet, Ramdhari Singh Dinkar.
1: जी बिल्कुल, उनकी काव्य रचनाओं के माध्यम से राष्ट्रीय भाव को जनमानस की चेतना में एक नई स्फूर्ति प्रदान करने वाले कवि के रूप में याद किया जाता है. उन्हें हिंदी साहित्य के कालखंड में छायावाद उत्तर काल का एक प्रमुख कवि माना जाता है, और साथ ही उन्हें प्रगतिवादी कवियों में भी उच्च स्थान प्राप्त है. इन्होंने हिंदी साहित्य में गद्य और पद दोनों की धाराओं में अपनी रचनाएं लिखी. वो एक कवि, पत्रकार, निबंधकार होने के साथ साथ स्वतंत्रता सेनानी भी थे. इन्होंने रश्मि रथी, कुरुक्षेत्र और उर्वशी जैसी रचनाओं में अपनी जिस काव्यात्मक प्रतिभा का परिचय दिया, वो हिंदी साहित्य जगत में अविस्मरणीय रहेगा. बिहार की पावन धरती पर जन्मे राष्ट्र कवि रामधारी सिंह दिनकर ने अपने ओजस्वी लेखनी से राष्ट्र प्रेम जगाया, स्वाभिमान और क्रांति की चेतना को जन जन तक पहुंचाया. उनका कहना था, घटा फाड़ कर जगमगाता हुआ आ गया देख ज्वाला का बाण, खड़ा हो जवानी का झंडा उड़ा, खड़ा हो जवानी का झंडा उड़ा, ओ मेरे देश के नौजवान. सहम करके चुप हो गए थे समुंदर, सहम करके चुप हो गए थे समुंदर, अब सुन के तेरी दहाड़, जमी हिल रही थी जहां हिल रहा था, जमी हिल रही थी जहां हिल रहा था, अभी हिल रहे थे पहाड़.
0: Indeed, beautiful lines. And moving on, well, we are also remembering Asifuddaullah today on his birth anniversary. Of course, we know he was the Nawab Wazir of Awadh. And unke bare mein jo bahut zyada cheez famous hai, kaha jata tha that jisko na de maula usko de Asifuddaullah, because he was very generous. And particularly you know, at the time of famine, jo bada imam bada hai Farhat Lucknow ka, to ye kaha jata hai ki unhone दिन में जो है मजदूर काम करते थे, और जो दिन में मजदूर कंस्ट्रक्ट करते थे, रात में उसको वो तुड़वा देते थे, ताकि जो शरीफ लोग हैं, जो लोग शर्मिंदगी से बाहर आके काम नहीं कर पा रहे, वो रात के अंधेरे में आके यू नो उसको तोड़ दें जो दिन में बना है. तो उसको उसके बदले भी उन लोग को यू नो द नवाब यूज्ड टू गिव फूड एंड मनी सो दैट दे डोंट फील दैट दे आर गेटिंग चैरिटी बट दे आर वर्किंग समथिंग एंड दे आर गेटिंग. सो वी आर रिमेंबरिंग आसिफुद्दौला टुडे ऑन हिज बर्थ एनिवर्सरी. एंड अनदर नेम दैट हैज क्रॉप्ड टुडे is of course Prem Chopra's birthday.
1: जी बिल्कुल, प्रेम चोपड़ा की हम बात करते हैं. हिंदी और पंजाबी फिल्मों के ये भारतीय अभिनेता रहे. इन्होंने 50 से अधिक वर्षों के दौरान 320 फिल्मों में अभिनय किया. और वर्ष 1973 की अगर बात की जाए तो फिल्म बॉबी प्रेम चोपड़ा के सिनेमा करियर के लिए मील का पत्थर साबित हुई थी.
4: विक्रम ने भरे पुलिस स्टेशन में देवड़ा के साथ ऐसे थप्पड़ मारा है.
5: प्रेम नाम है मेरा, प्रेम चोपड़ा.
0: Yes, of course, that iconic dialogue, Prem Naam Hai Mera, Prem Chopra. And well, he has also played some positive roles and character. Lekin of course, jo unka villain wala kirdar unne nibhaya hai, wo sabse zyada famous raha. And over the years, he collaborated with many leading actors, notably Rajesh Khanna, appearing together in more than 20 films.
1: और सारा, अब हम यूसुफ मेहर अली को भी याद कर रहे हैं. स्वतंत्रता सेनानी रहे, ये समाज सुधारक रहे. यूसुफ ने मजदूर और किसान संगठन को मजबूत करने में योगदान दिया था. और इसके अलावा क्विट इंडिया और साइमन गो बैक का नारा भी इन्होंने ही दिया था.
0: That's right. And today is also Tanuja's birthday. Of course, an actress who, you know, who gained a lot of popularity and in the Hindi film industry as well. Apart from working in Bengali and Marathi cinema, but predominantly in Hindi cinema. And there are so many films that she did, whether it was Chand Suraj, Bahari Phir Bhi Aayengi, Jewel Thief, Nai Roshni, Jeene Ki Raha, Mere Jeevan Saathi, among others. But there's a very beautiful song that was filmed on her and Sanjeev Kumar, Meri Jaan.

व्हाट अ ब्यूटीफुल सॉन्ग. एंड तनुजा की तो ऐसे बहुत से ऊपर जो फिल्माए गए गाने, दे आर सो ब्यूटीफुल. एंड द वन फ्रॉम हर यू कैन से फिल्म अर्ली फिल्म से बहारें फिर भी आएंगी. लेट्स लिसन टू दिस आपकी हसीन रूह.

0: और बहुत काफी हिट हुआ था ये गाना.
1: That's right. And I think we have given some very beautiful songs for the evening for the listeners. Hopefully they would play it after the show as well. And now it's time to call a wrap for Harth.
0: जी बिल्कुल, अब वक्त हो चला है अपने श्रोताओं से अनुमति कहने का. हम उम्मीद करते हैं कि आज का ये कार्यक्रम आपको जरूर पसंद आया होगा और हम फिर मिलेंगे कल एक और नए अंक के साथ. तो इसके साथ ही फरहत और सारा को दीजिए कार्यक्रम यहीं समाप्त करने की इजाजत.
1: नमस्कार.
2: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं वैष्णवी. राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कहा है कि युवाओं के प्रयासों से भारत वर्ष 2047 से पहले ही विकसित राष्ट्र बन जाएगा. गुजरात के वडोदरा में एक समारोह में राष्ट्रपति ने ये बात कही.
3: वर्ष 2047 तक विकसित भारत के निर्माण के राष्ट्रीय लक्ष्यों को लेकर देशवासी आगे बढ़ रहे हैं. ऐसा भारत जहां गुणवत्तापूर्ण शिक्षा और स्वास्थ्य सुविधाएं सभी तक पहुंचे, ऐसा भारत जहां विज्ञान और प्रौद्योगिकी का उपयोग मानव कल्याण के लिए हो.
2: राष्ट्रपति ने विद्यार्थियों से नई तकनीक, इंटरनेट और डेटा का उचित उपयोग करने का आह्वान किया. राष्ट्रपति ने शिक्षा सहित विभिन्न क्षेत्रों में महिलाओं की बढ़ती भागीदारी की सराहना की. वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने कहा है कि आगामी कुछ वर्षों में बहुपक्षीय कर वार्ताओं में लिए गए निर्णय एक पीढ़ी के लिए सीमा पार कराधान को आकार देंगे. नई दिल्ली में ब्रिक्स कर प्रमुखों की बैठक में उन्होंने कहा कि ब्रिक्स देश बड़ी विकासशील अर्थव्यवस्थाएं हैं और उन्होंने महत्वपूर्ण घरेलू कर क्षमता का निर्माण किया है. वित्त मंत्री ने कहा कि इन वार्ताओं को निष्पक्ष और स्थायी बनाने के लिए उनका दृष्टिकोण आवश्यक है. विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर संयुक्त अरब अमीरात और फ्रांस के विदेश मंत्री के साथ त्रिपक्षीय बैठक में शामिल हुए. न्यूयॉर्क में संयुक्त राष्ट्र महासभा के सत्र से अलग इस बैठक में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, अंतरिक्ष, स्वास्थ्य विज्ञान, ऊर्जा और संस्कृति के क्षेत्र में सहयोग पर चर्चा की गई. तीनों नेताओं ने संस्कृति और विरासत सहित पारस्परिक हित के क्षेत्रों में त्रिपक्षीय सहयोग की प्रगति की समीक्षा की. निर्वाचन आयोग ने कहा है कि मतदाता सूची में संशोधन सहित सभी निर्णय सर्वसम्मति से लिए गए हैं. आयोग ने हाल के महीनों में देश भर में 40 नई पहल शुरू की है और विशेष गहन पुनरीक्षण सहित कई चुनावी सुधार किए हैं. आयोग ने कहा कि उसके सभी अधिकारी चुनाव प्रणाली में सुधार के लिए सुझाव देने के लिए पूरी तरह से अधिकृत हैं. आयोग ने हाल ही में बिहार, केरलम, तमिलनाडु, पुदुचेरी, असम और पश्चिम बंगाल के चुनावों को सफलतापूर्वक सम्पन्न कराया है. भारतीय जनता पार्टी अध्यक्ष नितिन नवीन ने सभी 36 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के लिए पार्टी प्रभारी और सह प्रभारियों की नियुक्ति की है. पूर्व केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी को छत्तीसगढ़ और हरियाणा का और हरीश द्विवेदी को बिहार का प्रभारी बनाया गया है. विनय सहस्रबुद्धे को दिल्ली का प्रभारी और जमयंग सेरिंग नामग्याल तथा दर्शना बेन जरदोश को दिल्ली का सह प्रभारी बनाया गया है. विनोद तावड़े को उत्तर प्रदेश का प्रभारी बनाया गया है. आंध्र प्रदेश में श्रीकाकुलम जिले के रविवलसा के पास रानी एक्सप्रेस की चपेट में आने से 4 विद्यार्थी मारे गए और एक अन्य घायल हो गया. नागर विमानन मंत्री के राममोहन नायडू ने घटना पर दुख व्यक्त किया है. श्री नायडू ने अधिकारियों से दुर्घटना के बारे में जानकारी ली और घायल विद्यार्थियों के बेहतर उपचार के स्वास्थ्य के करने के निर्देश दिए. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि भारत एक सींग वाले गैंडे के सबसे महत्वपूर्ण संरक्षकों में से एक है और इनकी आबादी में लगातार बढ़ोतरी हो रही है. भारत की संरक्षण यात्रा पर केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव का एक लेख सोशल मीडिया पर साझा करते हुए श्री मोदी ने कहा कि भारत में गैंडों की कहानी इसकी जबरदस्त वापसी की कहानी है. एशियाई खेलों में रोशी बिना देवी नावरम वुशो के फाइनल में पहुंच गई हैं. 60 किलो के सेमीफाइनल में उन्होंने इंडोनेशिया की थानिया कुसुम मानिंग थियास को हराया. वहीं भारतीय पुरुष बैडमिंटन टीम ने कांस्य पदक अपने नाम किया. सेमीफाइनल में भारतीय टीम को चीन से हार का सामना करना पड़ा. इससे पहले भारोत्तोलक मीराबाई चानू ने 49 किलोग्राम वर्ग में रजत पदक जीता. जय मीणा ने सॉफ्ट टेनिस के सिंगल्स का कांस्य पदक जीतकर नया इतिहास रचा. निशानेबाजी में स्कीट स्पर्धा की माहेश्वरी सिंह, परिणाज धालीवाल और राइजा ढिल्लों की महिला टीम और अनंतजीत सिंह नरोका, मेराज अहमद खान और भवतेक सिंह गिल की पुरुष टीम ने कांस्य पदक जीते. भारत एक स्वर्ण, 5 रजत और 6 कांस्य सहित 12 पदकों के

सुबह होती है, शाम होती है, उम्र यूं ही तमाम होती है। पर जब पड़ा इस शाम का साया, धीमे से मेरा मन मुस्काया। दिन की सारी थकान करने को दूर, कोई गाया, कोई गुनगुनाया। आकाशवाणी के एफएम गोल्ड चैनल 100.1 मेगाहर्ट्ज़ पर आप सुन रहे हैं गाते गुनगुनाते। आज की शाम हम रूमी मलिक हैं आपके साथ, स्वागत है।

0: पर्सनल लोन ऑफर
1: फिर से ब्लॉक करता हूँ।
0: फ्री ट्रिप टू दुबई
1: ये भी ब्लॉक। कितना ब्लॉक करूं यार?
2: सिर्फ फोन पे ब्लॉक करने से स्पैम खत्म नहीं होता, हर बार नया नंबर आ जाता है।
1: तो क्या करूं?
2: कॉल उठाओ फिर ट्राई डीएनडी ऐप पर रिपोर्ट करो, कैटेगरी सेलेक्ट करो, बैंकिंग, ट्रैवल, इंश्योरेंस और सबमिट। बस कुछ सेकंड्स का काम।
1: मतलब सबका स्पैम कम होगा?
2: हाँ, रिपोर्ट्स मिलते ही एक्शन होता है। सिर्फ ब्लॉक नहीं, रिपोर्ट जरूर करें। ट्राई डीएनडी ऐप, डाउनलोड नाउ फ्रॉम प्ले स्टोर और ऐप स्टोर एंड स्टार्ट रिपोर्टिंग।

फूल खिलते हैं, बहारों का समा होता है, ऐसे मौसम में ही तो प्यार जवां होता है। दिल की बातों को होंठों से नहीं कहते, ये फसाना तो निगाहों से बयां होता है।

सुबह जहाँ ताजगी होती है, सूरज की किरणें हमें उठने करने का प्रेरणा देती हैं, और शाम, ढलती शाम, हमें थमने का, आराम करने का, रिलैक्स करने का संदेश देती हैं। आज का दिन सार्थक हुआ क्योंकि दिन भर आपकी कड़ी मेहनत सफल हुई, और अब आकाशवाणी एफएम गोल्ड 100.1 मेगाहर्ट्ज पर मीठे मीठे गाने सुनकर आप अपनी थकान मिटा रहे हैं। तो प्रॉमिस नाउ, नो थकान, ओनली मुस्कान।

गाते गुनगुनाते सुन रहे हैं आप आकाशवाणी के एफएम गोल्ड चैनल 100.1 मेगाहर्ट्ज़ पर। दोस्त, आज आयुर्वेद दिवस है और विश्व को भारत की देन है आयुर्वेद। और आयुर्वेद में हर ऋतु का अपना ही बहुत ही सुंदर एक रेजिम रहती है, रेजिमेंट रहता है। अब भादो मास चल रहा है, भाद्रपद। हालांकि ट्रेडिशनली देखा जाए तो ये कहा जाता है कि भादो में बहुत गर्मी पड़ती थी, पर अभी मौसम भी बदलने लगा है तो बड़ा ही सर्दी के आने से पहले, जैसे हम कहते हैं कि गुलाबी सर्दी, इतनी सर्दी है भी नहीं वैसे। आयुर्वेद जहाँ पे खान पान पे ध्यान देता है, वहीं पे आयुर्वेद ये भी कहता है कि आपको उचित आराम भी करना चाहिए, टहलना भी चाहिए और कोई भी काम ऐसा नहीं करना चाहिए जिससे आपके मन पे बहुत ही ज़्यादा जोर पड़े। जी हाँ, इसी के लिए एक विधान इत्र का भी होता है, इत्र यानी परफ्यूम लगाने का। अगर आप इत्र लगाएं तो मन सदा प्रसन्न सा रहता है। और इस बारे में भी बताया गया है कि गुलाब और चंदन के इत्र जो हैं वो बहुत ही अच्छे माने जाते हैं, उत्तम श्रेणी के माने जाते हैं। तो अपने रूप को निखारने के लिए, मन को निखारने के लिए एक ये भी तरीका है, अदृश्य सा है ना, जैसे दिखाई नहीं देता सिर्फ महकता है। हम भी तो दिखाई नहीं देते, सिर्फ सुनाई देते हैं। आकाशवाणी का एफएम गोल्ड चैनल, आप सुन रहे हैं गाते गुनगुनाते, आपके साथ हैं हम रूमी मलिक।

0: आप सब ये बॉक्स देख रहे हो, इस बॉक्स में आप सबके लिए कुछ एनवेलप्स हैं। आप सब यहाँ आओ और ये एनवेलप्स ले लो।
1: मैम, मेरे वाले में तो HIV से रिलेटेड अलग अलग मैसेजेस हैं और इसमें लिखा है कि असुरक्षित यौन संबंध से HIV हो सकता है।
2: मेरे वाले में नीडल या इंजेक्शन शेयर करने से HIV फैलने की बात लिखी है
3: और इसमें लिखा है कि संक्रमित रक्त और रक्त उत्पादों से HIV हो सकता है। मल्टीपल पार्टनर्स मतलब HIV का ज्यादा रिस्क।
0: हम अपनी जिंदगी में अच्छा बुरा सब जानते हैं, लेकिन फिर भी कुछ बातें इग्नोर कर देते हैं। तो मैंने सोचा जाते जाते याद दिला जाओ, ताकि पूरी जिंदगी इग्नोर नहीं याद रखोगे।
4: HIV/AIDS से संबंधित अधिक जानकारी के लिए नजदीकी सरकारी अस्पताल के ICTC में संपर्क करें या नेशनल टोल फ्री एड्स हेल्पलाइन 1097 पर कॉल करें। नैको स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा जनहित में जारी।
5: एक कदम लोकतंत्र के नाम।
6: यदि आपका नाम मतदाता सूची में शामिल नहीं है तो फॉर्म 6 भरकर आज ही अपना नाम मतदाता सूची में पंजीकृत कराएं।
5: फॉर्म 7 गलत या अपात्र नाम पर आपत्ति दर्ज करने हेतु प्रावधान।
6: फॉर्म 8 से मतदाता सूची में अपनी जानकारी करें दुरुस्त बार बार।
5: फॉर्म 6, 7 और 8 भरें 30 सितंबर 2026 तक। मतदाता सूची को सही और अद्यतन बनाएं।
6: मुख्य निर्वाचन अधिकारी दिल्ली द्वारा जनहित में जारी।
7: पर्सनल लोन ऑफर
8: फिर से ब्लॉक करता हूँ।
7: फ्री ट्रिप टू दुबई
8: ये भी ब्लॉक। कितना ब्लॉक करूँ यार?
9: सिर्फ फोन पे ब्लॉक करने से स्पैम खत्म नहीं होता, हर बार नया नंबर आ जाता है।
8: तो क्या करूँ?
9: कॉल उठाओ, फिर ट्राई DND ऐप पर रिपोर्ट करो, कैटेगरी सेलेक्ट करो, बैंकिंग, ट्रैवल, इंश्योरेंस और सबमिट। बस कुछ सेकंड्स का काम।
8: मतलब सबका स्पैम कम होगा?
9: हाँ, रिपोर्ट्स मिलते ही एक्शन होता है। सिर्फ ब्लॉक नहीं, रिपोर्ट जरूर करें। ट्राई DND ऐप, डाउनलोड नाउ फ्रॉम प्ले स्टोर और ऐप स्टोर एंड स्टार्ट रिपोर्टिंग।
10: कैसे चुने सही बीज, कैसे करें फसलों की उचित देखभाल, कीटनाशकों का कैसे करें संतुलित इस्तेमाल, कृषि से जुड़े हर पहलू पर लीजिए हमारे कृषि एक्सपर्ट से सलाह, वो भी लाइव। सुनिए प्रोग्राम हेलो फार्मर्स आकाशवाणी के FM गोल्ड पर हर सोमवार शाम 5:30 बजे। प्रायोजक कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार।
11: मन की बात है जन जन की, सभी की कुछ अपनी सी, संघर्षों के कुछ किस्से, कहानी कुछ सफलताओं की, अनकही विरासत की, उम्मीदें नए भारत की। महीने के आखिरी रविवार का रहता है इंतजार, मलयाचल के आंचल से विंध्याचल के आंगन तक, ब्रह्मपुत्र के घाट से हिमालय के विस्तार तक होती है मन की बात प्रधानमंत्री के साथ। तो सुनिए इस महीने 27 सितंबर सुबह 11 बजे मन की बात, आकाशवाणी दूरदर्शन के सभी चैनलों और प्रसार भारती के OTT प्लेटफॉर्म वेव्स पर। माननीय प्रधानमंत्री के प्रसारण के तुरंत बाद मन की बात का प्रादेशिक भाषाओं में अनुवाद आप सुन सकते हैं आकाशवाणी और दूरदर्शन के संबद्ध प्रादेशिक चैनलों पर। मन की बात के प्रादेशिक भाषाओं में अनुवाद का पुनः प्रसारण आप सुन सकते हैं रात 8 बजे आकाशवाणी और दूरदर्शन के सभी प्रादेशिक चैनलों पर। तो याद रखें, रविवार 27 सितंबर सुबह 11 बजे मन की बात।

गाते गुनगुनाते ऑल इंडिया रेडियो के एफएम गोल्ड चैनल 100.1 मेगाहर्ट्ज पर। दोस्त आपको पता है ना कि हमारा शरीर खनिज पदार्थों का खजाना है। इसमें सोना, चांदी, कॉपर, मैंगनीज, आयरन, सभी प्रकार के मिनरल्स और मेटल्स छोटी छोटी मात्रा में पाए जाते हैं। बाहर जो सोना आभूषण बनाने वाला सोना मिलता है वो तो महंगा है, बहुत महंगा है, पर अपना शरीर रूपी सोने का रथ, ये तो अमूल्य है, प्राइसलेस है कि नहीं। तो अपने शरीर से घृणा नहीं करो, प्रेम करो, इसे उच्च प्रेम को कोवल भावनाओं से पुष्ट करो। अच्छे भोजन के साथ अच्छी अच्छी भावनाएं भी शरीर को पुष्ट करती हैं। साथ में काम के बाद विश्राम और अच्छी नींद, सोने पे सुहागा।

गाते गुनगुनाते का सफर चल रहा है। जब जिंदगी अच्छी चल रही होती है तो समय का पता ही नहीं लगता, है ना, है कि नहीं। लेकिन कर्म भूमि की दुनिया में काम तो सबको करना है, कर्म भूमि की दुनिया में श्रम सभी को करना है। भगवान सिर्फ लकीरें देता है, रंग हमी को भरना है। गाते गुनगुनाते में आपके साथ है हम रूमी मलिक।

0: पर्सनल लोन ऑफर।
1: फिर से ब्लॉक करता हूँ।
0: फ्री ट्रिप टू दुबई,
1: ये भी ब्लॉक। कितना ब्लॉक करूं यार?
2: सिर्फ फोन पे ब्लॉक करने से स्पैम खत्म नहीं होता, हर बार नया नंबर आ जाता है।
1: तो क्या करूं?
2: कॉल उठाओ, फिर ट्राई DND ऐप पर रिपोर्ट करो, कैटेगरी सेलेक्ट करो, बैंकिंग, ट्रैवल, इंश्योरेंस और सबमिट। बस कुछ सेकंड्स का काम।
1: मतलब सबका स्पैम कम होगा?
2: हाँ, रिपोर्ट्स मिलते ही एक्शन होता है। सिर्फ ब्लॉक नहीं, रिपोर्ट जरूर करें। ट्राई DND ऐप, डाउनलोड नाउ फ्रॉम प्ले स्टोर और ऐप स्टोर एंड स्टार्ट रिपोर्टिंग।

गाते गुनगुनाते सुन रहे हैं आप आकाशवाणी के एफएम गोल्ड चैनल 100.1 मेगाहर्ट्ज़ पर। और क्या ढूंढते हैं आप, क्या ढूंढ रहे हैं आजकल, ऐसी कौन सी चीज है जो खो गई? मेरी जान, अपनी परवाह करने वाले ढूंढो, अपना मतलब निकालने वाले तो खुद आपको ढूंढ लेंगे, है ना पते की बात। तरक्की हुई नहीं कि मक्खी की तरह भिन भिनाने लगते हैं लोग।

गाते गुनगुनाते आपका सारा जीवन का सफर चले, यही दुआ कामना करते हैं। और प्रोग्राम का इट्स अ रैप नाउ। आप सुन रहे थे गाते गुनगुनाते, आपके साथ हैं हम रूमी मलिक। संपत्ति हो तो उसकी विल बनती है दोस्त, संस्कार हो तो उसकी गुडविल बनती है। तिरस्कार और पुरस्कार से परे होकर अपने लक्ष्य को साधो, जीवन को विराट बना लो। द्वेष नहीं, लोगों से दोस्ती करो, संवाद सहयोग से जीवन आगे बढ़ाओ। इन्हीं शब्दों के साथ रूमी मलिक को दीजिए इजाजत। गाते गुनगुनाते का सफर यहीं तक, सुनते रहिए आकाशवाणी FM गोल्ड, खरा सोना।

0: रक्षा मंत्रालय ने वायुसेना के लिए 160 सैटेलाइट स्मार्ट एंटी एयरफील्ड वेपन और उससे जुड़े उपकरणों की खरीद के लिए भारत डायनेमिक्स लिमिटेड के साथ 810 करोड़ रुपए से अधिक का समझौता किया है। इसकी आपूर्ति वर्ष 2027-28 और 2028-29 के बीच की जाएगी। यह हथियार हवा से जमीन पर मार करने वाला सटीक निर्देशित ग्लाइड बम है। इसे जैगवार, हॉक और सुखोई 30 एमकेआई जैसे विमानों से दागा जा सकता है। ये लंबी दूरी से दुश्मन के हवाई ठिकानों को निष्क्रिय करने में सक्षम है। इस प्रणाली को रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन ने देश में ही डिजाइन और विकसित किया है। इसमें 60% स्वदेशी सामग्री होगी। इससे रक्षा क्षेत्र में आत्मनिर्भरता को और बढ़ावा मिलेगा। रक्षा मंत्रालय ने कहा कि इसके वायुसेना में शामिल किए जाने से उसकी परिचालन क्षमता बढ़ेगी। इससे देश की रक्षा तैयारियों को भी मजबूती मिलेगी। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर संयुक्त अरब अमीरात और फ्रांस के विदेश मंत्रियों के साथ त्रिपक्षीय बैठक में शामिल हुए। न्यूयॉर्क में संयुक्त राष्ट्र महासभा के सत्र से अलग इस बैठक में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, अंतरिक्ष, स्वास्थ्य विज्ञान, ऊर्जा और संस्कृति के क्षेत्र में सहयोग पर चर्चा की गई। तीनों नेताओं ने संस्कृति और विरासत सहित पारस्परिक हित के क्षेत्रों में त्रिपक्षीय सहयोग की प्रगति की समीक्षा की। वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने कहा है कि आगामी कुछ वर्षों में बहुपक्षीय कर वार्ताओं में लिए गए निर्णय एक पीढ़ी के लिए सीमा पार कराधान को आकार देंगे। नई दिल्ली में ब्रिक्स कर प्रमुखों की बैठक में उन्होंने कहा कि ब्रिक्स देश बड़ी विकासशील अर्थव्यवस्थाएं हैं और उन्होंने महत्वपूर्ण घरेलू कर क्षमता का निर्माण किया है। वित्त मंत्री ने कहा कि इन वार्ताओं को निष्पक्ष और स्थायी बनाने के लिए उनका दृष्टिकोण आवश्यक है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने गुजरात के वडोदरा में ब्रह्मकुमारियों के ग्लोबल स्पिरिचुअल पैलेस रिट्रीट सेंटर का लोकार्पण किया। उन्होंने विकसित भारत के लिए युवा राष्ट्र निर्माण के लिए आंतरिक शक्ति के जागृति अभियान का भी शुभारंभ किया। राष्ट्रपति ने कहा कि देश को ऐसी युवा शक्ति की आवश्यकता है जो ईमानदारी, जिम्मेदारी, करुणा, सह अस्तित्व और देशभक्ति की भावना से प्रेरित हो।
1: चुनाव का अवसर सबसे अच्छी स्तर बन आत्मनिर्भर, शांतिपूर्ण और जिम्मेदार बनाना हम सबकी जिम्मेदारी। हमें ऐसे युवा तैयार करना है जो ज्ञान, टेक्निक और कौशल से युक्त हो, साथ ही आत्मविश्वास, आत्मअनुशासन, सकारात्मक सोच, संवेदनशीलता और नैतिक मूल्यों से भी परिपूर्ण।
0: इससे पहले राष्ट्रपति ने वडोदरा के महाराजा सयाजीराव विश्वविद्यालय के दीक्षांत समारोह में शामिल हुई। कार्मिक लोक शिकायत और पेंशन मंत्री जितेंद्र सिंह ने कहा है कि कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग ने पिछले 12 वर्ष में 23,000 से अधिक पदोन्नतियों को स्वीकृति दी है। डॉक्टर सिंह ने कहा कि सरकार कर्मचारियों को काम के लिए एक बेहतर और अनुकूल माहौल देने के लिए प्रतिबद्ध है ताकि वे प्रेरित रहें और अपने दायित्वों को प्रभावी ढंग से निभा सकें। भारतीय जनता पार्टी अध्यक्ष नितिन नवीन ने सभी 36 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के लिए पार्टी प्रभारी और सह प्रभारियों की नियुक्ति की है। पूर्व केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी को छत्तीसगढ़ और हरियाणा का और हरीश द्विवेदी को बिहार का प्रभारी बनाया गया है। विनोद तावड़े को उत्तर प्रदेश का प्रभारी बनाया गया है। आंध्र प्रदेश में श्रीकाकुलम जिले के रविवलसा के पास रानी एक्सप्रेस की चपेट में आने से 4 विद्यार्थी मारे गए और एक अन्य घायल हो गया। नागर विमानन मंत्री के राममोहन नायडू ने घटना पर दुख व्यक्त किया है। श्री नायडू ने अधिकारियों से दुर्घटना के बारे में जानकारी ली और घायल विद्यार्थियों के बेहतर उपचार की व्यवस्था करने का निर्देश दिया। एशियाई खेलों में रोशिबीना देवी नाउरुम वुशु के फाइनल में पहुंच गई हैं। 60 किलो के सेमीफाइनल में उन्होंने इंडोनेशिया की थानिया कुसुम निंगा त्यास को हराया। वहीं भारतीय पुरुष बैडमिंटन टीम ने कांस्य पदक अपने नाम किया। इससे पहले भारतीय उल्लक मीराबाई चानू ने 49 किलो वर्ग में रजत पदक जीता। जय मीणा ने सॉफ्ट टेनिस के सिंगल्स का कांस्य पदक जीतकर नया इतिहास रचा। निशानेबाजी में स्केट स्पर्धा में महिला टीम और पुरुष टीम ने कांस्य पदक जीते। भारत 1 स्वर्ण, 5 रजत और 6 कांस्य सहित 12 पदकों के साथ 13वें स्थान पर है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और खेल मंत्री मनसुख मांडविया ने पदक जीतने वाले भारतीय खिलाड़ियों को बधाई दी है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

0: आकाशवाणी समाचार सेवा प्रभाग की प्रस्तुति विश्लेषण।
1: आकाशवाणी समाचार के कार्यक्रम विश्लेषण के नए अंक में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ फरहत नाज़िर। श्रोताओं, किसी भी देश की आर्थिक प्रगति के लिए निवेश और कारोबार का बढ़ना बेहद जरूरी है, लेकिन किसी व्यवसाय को शुरू करने और चलाने के लिए अलग अलग विभागों और सरकार के स्तरों से कई तरह की मंजूरियां लेनी पड़ती हैं। अगर इन मंजूरियों की प्रक्रिया लंबी और जटिल हो तो कारोबार शुरू करने में समय लग सकता है। ऐसे में जरूरी है कि कारोबार से जुड़ी मंजूरियों की प्रक्रिया सरल हो, पारदर्शी हो और तकनीक आधारित हो। इसी दिशा में सरकार ने नेशनल सिंगल विंडो सिस्टम यानी NSWS शुरू किया है। NSWS एक डिजिटल प्लेटफॉर्म है जो निवेशकों को उनके कारोबार के लिए जरूरी मंजूरियों की पहचान करने के लिए और उनके लिए आवेदन करने और आवेदन की स्थिति पर नजर रखने की सुविधा एक ही जगह उपलब्ध कराता है। इसे वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के उद्योग और आंतरिक व्यापार संवर्धन विभाग यानी DPIIT द्वारा लागू किया जा रहा है। श्रोताओं, आज के कार्यक्रम में हम जानेंगे कि नेशनल सिंगल विंडो सिस्टम क्या है, ये कारोबार से जुड़ी मंजूरियों की प्रक्रिया को किस तरह आसान बनाता है, इसके प्रमुख फीचर क्या हैं और अब तक कितने कारोबार इससे जुड़ चुके हैं। आइए सबसे पहले जानते हैं कि नेशनल सिंगल विंडो सिस्टम किस तरह निवेशकों को जरूरी मंजूरियों की पहचान करने और उनके लिए आवेदन करने में मदद करता है।
2: श्रोता, नेशनल सिंगल विंडो सिस्टम का मुख्य उद्देश्य कारोबार से जुड़ी मंजूरियों की प्रक्रिया को आसान और पारदर्शी बनाना है। इस प्लेटफॉर्म के जरिए निवेशक अपने कारोबार के लिए जरूरी मंजूरियों की पहचान कर सकते हैं और एक ही डिजिटल प्लेटफॉर्म से उनके लिए आवेदन कर सकते हैं। NSWS की एक प्रमुख सुविधा है नो योर अप्रूवल्स यानी KYA मॉड्यूल। इसके जरिए निवेशक अपने प्रस्तावित कारोबार की गतिविधियों के आधार पर ये पता लगा सकते हैं कि उन्हें कौन कौन सी मंजूरी लेनी होगी। हालांकि KYA मॉड्यूल से मिलने वाली जानकारी सलाहकारी प्रकृति की है और इसे कानूनी सलाह नहीं माना जाता। NSWS पर 32 केंद्रीय मंत्रालयों और विभागों तथा 34 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों की मंजूरियों से जुड़े आवेदन उपलब्ध हैं। श्रोताओं, इस व्यवस्था की एक और महत्वपूर्ण सुविधा है कॉमन रजिस्ट्रेशन फॉर्म। इसमें निवेशक एक ही इंटरफेस के माध्यम से अपनी जानकारी दर्ज कर सकते हैं और कई आवेदनों में उस जानकारी का दोबारा इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके अलावा स्टेट रजिस्ट्रेशन फॉर्म के जरिए राज्य स्तर के सिंगल विंडो सिस्टम तक भी पहुंच उपलब्ध कराई गई है। NSWS में आवेदक डैशबोर्ड भी है। इसके माध्यम से निवेशक आवेदन जमा कर सकते हैं, उसकी स्थिति देख सकते हैं और संबंधित विभागों की ओर से पूछे गए सवालों का जवाब दे सकते हैं। किसी मंजूरी के नवीनीकरण की जरूरत होने पर उसे भी प्लेटफॉर्म के जरिए आसानी से किया जा सकता है और आवेदन की स्थिति को रियल टाइम में देखा जा सकता है। श्रोताओं, दस्तावेजों को बार बार जमा करने की समस्या को कम करने के लिए सेंट्रलाइज्ड डॉक्यूमेंट रिपोजिटरी की सुविधा भी दी गई है। इसमें दस्तावेजों को एक बार अपलोड करके अलग अलग मंजूरियों के लिए उनका दोबारा इस्तेमाल किया जा सकता है। वहीं ई कम्युनिकेशन मॉड्यूल के जरिए निवेशक और संबंधित मंत्रालय या राज्य सरकार के बीच सवालों और स्पष्टीकरण का ऑनलाइन आदान प्रदान किया जा सकता है। यानी NSWS के जरिए जानकारी जमा करने, दस्तावेज अपलोड करने, आवेदन करने और उसकी स्थिति देखने की प्रक्रिया को एक डिजिटल व्यवस्था में लाने का प्रयास किया गया है।
1: श्रोताओं, अब सवाल है कि NSWS पर आवेदन करने की प्रक्रिया किस तरह आगे बढ़ती है। आइए इसे आसान भाषा में समझते हैं।
3: श्रोताओं, NSWS पर निवेशक सबसे पहले ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर के जरिए रजिस्ट्रेशन करते हैं। इसके बाद वे नो योर अप्रूवल्स यानी KYA मॉड्यूल की मदद से अपने कारोबार के लिए जरूरी मंजूरियों की पहचान कर सकते हैं या उपलब्ध मंजूरियों की सूची में से आवश्यक मंजूरी खोज सकते हैं। मंजूरियों की पहचान और सत्यापन के बाद निवेशक केंद्रीय और राज्य स्तर की विभिन्न मंजूरियों के लिए आवेदन कर सकते हैं। आवेदन जमा होने के बाद NSWS उसे संबंधित मंत्रालय, विभाग या राज्य सरकार को इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से भेजता है। इसके बाद संबंधित प्राधिकरण अपने बैकएंड सिस्टम के जरिए आवेदन पर कार्यवाही करता है। श्रोताओं, NSWS पर रजिस्ट्रेशन निशुल्क है, लेकिन संबंधित मंजूरी के लिए निर्धारित वैधानिक शुल्क आवेदक को संबंधित प्राधिकरण को देना होता है। आवेदक अपने डैशबोर्ड के जरिए आवेदन की स्थिति देख सकते हैं। अगर विभाग की ओर से कोई सवाल या स्पष्टीकरण मांगा जाता है तो उसका जवाब ई कम्युनिकेशन मॉड्यूल

0: के जरिए दिया जा सकता है। NSWS में पैन यानी परमानेंट अकाउंट नंबर को सिंगल बिजनेस आईडी के रूप में लागू किया गया है। अधिकृत प्रतिनिधियों के यूजर ऑथेंटिकेशन के लिए डिजिटल सिग्नेचर सर्टिफिकेट यानी DSC और एकल स्वामित्व वाले कारोबार के लिए डिजी लॉकर की सुविधा का इस्तेमाल किया जाता है। श्रोताओं, NSWS का विस्तार केवल सामान्य कारोबार की मंजूरियों तक सीमित नहीं, फॉरेन इन्वेस्टमेंट फैसिलिटेशन पोर्टल यानी FIF पोर्टल को भी NSWS से जोड़ा गया है। इससे सरकारी मंजूरी की जरूरत वाले प्रत्यक्ष विदेशी निवेश यानी FDI आवेदनों के लिए सिंगल विंडो व्यवस्था उपलब्ध होती है। इंडस्ट्रियल एंटरप्रेन्योर मेमोरेंडम यानी IEM की प्रक्रिया अक्टूबर 2025 और इंडस्ट्रियल लाइसेंस यानी IL की प्रक्रिया मार्च 2026 से पूरी तरह NSWS पर डिजिटल रूप से स्थानांतरित की जा चुकी है। इन प्रक्रियाओं में संबंधित सरकारी डेटाबेस से जानकारी के एकीकरण के जरिए सूचनाओं का ऑटो पॉपुलेशन होता है। इससे मैनुअल मंजूरी की जरूरत कम होती है और उद्योगों को तुरंत एक्नॉलेजमेंट यानी पावती प्राप्त करने की सुविधा मिलती है। नवंबर 2025 में NSWS पर प्रोडक्शन इन्वेस्टमेंट बिजनेस रजिस्ट्रेशन मॉड्यूल भी शुरू किया गया। इसके जरिए भारतीय कंपनियां विदेशी पेशेवरों को ई प्रोडक्शन इन्वेस्टमेंट बिजनेस वीजा यानी EB4 वीजा के तहत आमंत्रित करने के लिए स्पॉन्सरशिप लेटर जारी करने की प्रक्रिया को डिजिटल रूप से पूरा कर सकती है। इसके अलावा पेट्रोलियम एंड एक्सप्लोसिव सेफ्टी ऑर्गेनाइजेशन यानी PESO ने अपने सभी 74 लाइसेंसिंग मॉड्यूल NSWS के साथ एकीकृत कर दिए हैं। इसके साथ PESO पूरी तरह ट्रांजैक्शन लेवल इंटीग्रेशन हासिल करने वाला पहला विभाग बन गया है।
1: श्रोताओं, हम बात कर रहे हैं नेशनल सिंगल विंडो सिस्टम का दायरा कितना बढ़ चुका है और अब तक कितने कारोबार इससे जुड़े हैं। श्रोताओं, 21 सितंबर 2026 तक के आंकड़ों के अनुसार नेशनल सिंगल विंडो सिस्टम पर हर वर्ष औसतन 3,06,000 से अधिक आवेदन प्राप्त होते हैं और हर वर्ष 2,26,000 से अधिक मंजूरियों की प्रक्रिया को सुगम बनाया जाता है। अब तक 5,69,000 से अधिक कारोबारी संस्थाएं इस प्लेटफॉर्म से जुड़ चुकी हैं। इनमें एकल स्वामित्व वाले कारोबार, कंपनियां, LLP और विदेशी संस्थाएं शामिल हैं। वर्तमान में NSWS पर 327 से अधिक केंद्रीय मंजूरियों और 3,452 राज्य स्तरीय मंजूरियों तक पहुंच उपलब्ध है। इनमें कंपनी गठन, औद्योगिक लाइसेंस, स्टार्टअप मान्यता, FDI मंजूरी और कॉन्ट्रैक्ट लेबर एक्ट के तहत रजिस्ट्रेशन जैसी महत्वपूर्ण नियामकीय मंजूरियां शामिल है। राज्यों में असम में 335, कर्नाटक में 327, तमिलनाडु में 223 और मणिपुर में 190 एकीकृत मंजूरियां उपलब्ध है। NSWS को सरकार की कई महत्वपूर्ण पहलों से जुड़ी मंजूरियों के लिए भी साझा प्लेटफॉर्म के रूप में इस्तेमाल किया जा रहा है। इनमें नेशनल ग्रीन हाइड्रोजन मिशन, एथेनॉल पॉलिसी, व्हीकल स्क्रैपिंग पॉलिसी और इंडियन फुटवेयर एंड लेदर डेवलपमेंट प्रोग्राम शामिल है। श्रोताओं, इन आंकड़ों से पता चलता है कि NSWS का दायरा लगातार बढ़ रहा है और केंद्रीय तथा राज्य स्तर की विभिन्न मंजूरियों को एक डिजिटल प्लेटफॉर्म से जोड़ने का प्रयास किया जा रहा है। श्रोताओं, किसी कारोबार को शुरू करने के लिए कई तरह की मंजूरियों की जरूरत पड़ सकती है। अलग अलग विभागों में एक ही जानकारी और दस्तावेज बार बार जमा करने से समय और संसाधन दोनों लगते हैं। नेशनल सिंगल विंडो सिस्टम एक ही डिजिटल प्लेटफॉर्म पर मंजूरियों की पहचान, आवेदन, दस्तावेजों के प्रबंधन, विभागीय संवाद और आवेदन की स्थिति की निगरानी जैसी सुविधाएं उपलब्ध कराकर इस प्रक्रिया को सरल बनाने का प्रयास करता है। वन टाइम डेटा सबमिशन, ऑनलाइन प्रोसेसिंग और रियल टाइम ट्रैकिंग जैसी सुविधाओं से दोहराव कम करने और अनुपालन तथा मंजूरी की प्रक्रिया में लगने वाले समय को कम करने का प्रयास किया जा रहा है। साथ ही केंद्रीय मंत्रालयों, राज्य सरकारों और नियामकीय प्राधिकरणों के बढ़ते एकीकरण से कारोबार के लिए अधिक समन्वित डिजिटल व्यवस्था तैयार करने की दिशा में काम हो रहा है। इस तरह नेशनल सिंगल विंडो सिस्टम देश में ईज ऑफ डूइंग बिजनेस को मजबूत करने और निवेश के लिए अधिक सुगम वातावरण तैयार करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण डिजिटल पहल है। श्रोताओं, NSWS का लगातार विस्तार और इसमें नई सेवाओं का एकीकरण एक ऐसे कारोबारी माहौल की दिशा में प्रयास है जहां तकनीक और प्रक्रिया के सरलीकरण के माध्यम से मंजूरियों की प्रक्रिया को अधिक आसान और पारदर्शी बनाया जा सके। इसी के साथ कार्यक्रम विश्लेषण में आज के लिए बस इतना ही। इस कार्यक्रम को तैयार किया है हमारे सहयोगी उत्पल कुमार ने, प्रस्तुति सहायक है अलका सिंह। तो मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।
2: इयम् आकाशवाणी सम्प्रति वार्ताः श्रूयन्ताम् प्रवाचकः पुनीत त्रिपाठी। आदौ मुख्य वार्ताः। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकरः एआई अंतरिक्षम ऊर्जायाः विषये यूएई तथा फ्रांस देशयोः समकक्षीयेण सह सहयोग विषये चर्चितवान्। राष्ट्रपतिः द्रौपदी मुर्मुः अवदत् यत् यूनां प्रयत्नाः 47-2000 वर्षात् प्रागेव भारतं विकसित राष्ट्रं करिष्यन्ति। फिच रेटिंग्स इत्यनेन भारतस्य जीडीपी वृद्धेः पूर्वानुमानं 9.6% यावत् वर्धितम्। भाजपेति दलाध्यक्षः नितिन नवीनः सर्वेषु 37 राज्येषु केन्द्रशासित प्रदेशेषु च दलस्य प्रभारी सह प्रभारी च नियुक्तवान्। आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना संपूर्णे भारते सार्वजनिक स्वास्थ्य सेवायाः परिवर्तनस्य 8 वर्षाणि आचरति। अपि च 26-2000 वर्षे एशियन क्रीडासु भारतीय पुरुष महिला स्कीट दलानि जापान देशे कांस्य पदकं विजितवन्तः। मीराबाई चानुः भारोत्तोलने रजत पदकं प्राप्तवती। अथ वार्ताः विस्तरेण। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकरः यूएई विदेश मंत्री शेख अब्दुल्ला बिन जायद अल नाह्यानः फ्रांस विदेश मंत्री जीन नोएल वैरोटः च न्यूयॉर्क नगरे संयुक्त राष्ट्र संघस्य सामान्य सभायाः 81वें सम्मेलनावधौ भारत यूएई फ्रांस त्रिपक्षीय सम्मेलने भागं भजितवन्तः। त्रिभिः मंत्रिभिः अंतरिक्षम ऊर्जा कृत्रिम बुद्धिमत्ता संस्कृति ही परंपरादीनाम परस्पर हितस्य सहमत क्षेत्रेषु त्रिपक्षीय सहयोगस्य प्रगतिम समीक्षितवन्तः। विदेश मंत्रालयेन प्रकाशितस्य वक्तव्यस्य अनुसारं नेतारः पश्चिम एशियायाः स्थितिम् अपि चर्चितवन्तः। राष्ट्रपतिः द्रौपदी मुर्मुः यूनां प्रयत्नेन 47-2000 पूर्वमेव भारतं विकसित राष्ट्रं भविष्यति इति विश्वासः प्रकटितवती। अद्य वडोदरा नगरे महाराजा सयाजीराव वडोदा विश्वविद्यालयस्य 75वें दीक्षांत समारोहं संबोधयन्ती सा उक्तवती यत् शिक्षा तदा एव अर्थपूर्णा भवति यदा सा राष्ट्रस्य समाजस्य च कृते उपयुज्यते। अद्यत्वे प्रत्येकस्मिन् क्षेत्रे प्रौद्योगिकीय परिवर्तनं प्रचलति इति राष्ट्रपतिः अवदत्। सा अग्रे अवोचत् यत् अद्यतनीयानां बहूनां समाह्वानानां समाधाने बहुविषयकविधिः एव उपायः अस्ति। सा शिक्षया सह विविधक्षेत्रेषु महिलानां वर्धमानायाः सहभागितायाः अपि प्रशंसाम् अकरोत्।
3: मैंने देखा कि इस दीक्षांत समारोह में उपाधि प्राप्त करने वाले विद्यार्थियों में बेटियों की संख्या ज्यादा है। ये बदलते हुए भारत की तस्वीर है जो देश के अधिकांश उच्च शिक्षण संस्थानों में दिखाई दे रहा है। आज क्षेत्रों में महिलाओं की बढ़ती भागीदारी इस बात का शुभ संकेत है कि हमारे देश समावेशी विकास की दिशा में आगे बढ़ रहा है।
2: फिच रेटिंग्स इति संस्थया वर्तमान वर्षे भारतस्य जीडीपी वृद्धेः पूर्वानुमानं 4.6%-9.6% यावत् वर्धितम्। स्वस्य जून मासे वैश्विक आर्थिक दृष्टिकोणे संस्थया प्रथम त्रैमासिके प्रबलेन वृद्धिं भारतीय अर्थव्यवस्थायाः स्थिति स्थापकतायाः च कारणात् ऊर्ध्वगामी संशोधनं मानितम्। एतदतिरिच्य S&P ग्लोबल रेटिंग्स इत्यनेन अपि वर्तमान वित्तीय वर्षे भारतस्य कृते स्वस्य जीडीपी वृद्धेः पूर्वानुमानं 7% यावत् वर्धितम्। तस्य पूर्वानुमानात् 6.6% यावत् एशिया प्रशान्तयोः कृते। आर्थिक क्रियाकलापस्य प्रतिवेदने S&P इत्यनेन प्रबलम् औद्योगिक क्रियाकलापं स्वस्थ उपभोक्तृ आग्रहं प्रबलं वस्तुनिर्यातं सर्वकारीय निवेशस्य गतिः च वृद्धेः प्रमुखचालकम् इति स्वीकृतम्। प्रियाः श्रोतारः संस्कृतवार्तायाः संस्करणमिदम् इदानीम् आकाशवाणीतः प्रसार्यते। सममेव अयं कार्यक्रमः आकाशवाण्याः अन्तर्जालपटले www.newsonair.gov.in इत्यत्र अथ न्यूज ऑन एआईआर चलदूरभाषीय तन्त्रांशे अपि उपलब्धो भविष्यति। भाजपेति दलाध्यक्षः नितिन नवीनः सर्वेषु 37 राज्येषु केन्द्रशासित प्रदेशेषु च दलस्य प्रभारी सह प्रभारी च नियुक्तवान्। पूर्व केन्द्रीय मंत्री स्मृति ईरानी छत्तीसगढ़स्य हरियाणा राज्यस्य च भाजपा प्रभारी रूपेण नियुक्ता। हरीश द्विवेदी च बिहारस्य कार्यभारं द्रक्ष्यति। विनय सहस्रबुद्धे इत्यस्मै दिल्ल्याः कार्यभारः प्रदत्तः अस्ति। तत्रैव जम्यांग सेरिंग नामग्यालः दर्शन बेन जरदोष च सह प्रभारी रूपेण नामांकितौ स्तः। विनोद तावड़े उत्तर प्रदेशस्य प्रभारी रूपेण नियुक्तः। जगदीश पटेलः मेधा कुलकर्णी प्रदीप वर्मा अनंत ओझा च सह प्रभारी रूपेण नियुक्ताः। राम माधवाय तमिलनाडु उत्तराखंड राज्ययोः कार्यभारं दत्तं। तरुण चुघ इत्येषः गुजरातस्य निरीक्षणं करिष्यति। सतीश पुनिया इत्येषः जम्मू कश्मीर पंजाब प्रदेशयोः प्रभारी रूपेण नियुक्तः अस्ति। अनिल एंटनी इत्येषः गोवा नागालैंड प्रदेशयोः कार्यं निर्वहिष्यति। आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना अद्य 8 वर्षाणि आचरति। प्रधानमन्त्रिणा नरेन्द्र मोदिना 18,2000 वर्षे सितम्बर मासे झारखण्ड राज्यस्य रांचीतः इयं योजना समारब्धा। या अधुना विश्वस्य बृहत्तमा सर्वकारीय वित्त पोषित स्वस्थ आश्वासन योजना अभवत्। सामाजिक संचार माध्यमे प्रकाशिते संदेशे प्रधानमन्त्रिणा मोदिना उक्तं यत् अद्य 60 कोटि अधिकाः लाभार्थिनः प्रतिवर्षं 5 लक्ष रूप्यकाणि परिमितं स्वास्थ्य संरक्षण लाभं प्राप्तवन्तः। येन इयं विश्वस्य बृहत्तमा स्वास्थ्य योजना अभवत्। अस्माकं संवाददात्रा विज्ञापितं यत् अद्यावधि 45,48,000 कोटि आयुष्मान पत्राणि निर्मितानि सन्ति। भारतीय रेल विभागेन दक्षिण मध्य रेल प्रभागे प्रथमवारं कवच संस्करणं 0.4 इत्यस्य सफलतया कार्यान्वयनेन रेल सुरक्षायाः महत्वपूर्णं सोपानं लब्धम्। रेल मंत्रालयः अवदत् यत् हैदराबाद विभागस्य मलकाजगिरी कामारेड्डी खंडे 80.1 शत किलोमीटर मिते मार्गस्य उपरि कवच संस्करणं 2.3 0.4 संस्करणं यावत् उन्नतीकरणं सफलतया सम्पन्नम्। कवच इति स्वदेशीया विकसिता स्वयंचालित रेल संरक्षण व्यवस्था अस्ति। या परिचालन सुरक्षां वर्धयितुं परिकल्पिता अस्ति। एषा व्यवस्था लोकोचालकाय निर्धारित वेग सीमायां रेलयानानां रक्षणे सहायं करोति। तथा च यदि लोकोचालकः तत्कर्तुम् असफलः भवति तर्हि आवश्यकतानुसारं स्वयमेव ब्रेक इति उपयोक्तुं शक्नोति। कवच इतीदं संकटकाले संकटं निवारयितुं न्यूनीकर्तुं च परिकल्पितमस्ति। मेघालयस्य यूनाइटेड डेमोक्रेटिक पार्टी इति दलस्य 8 विधायकाः अद्य नवदिल्ल्यां भारतीय जनता पार्टी इति दले सम्मिलिताः। केन्द्रीय मंत्री वरिष्ठः भाजपा नेता च किरेन रिजिजुः भाजपा प्रवक्ता संबित पात्रा अनिल एंटनी चेत्येतेषाम् उपस्थितौ ते दले प्रविष्टवन्तः। भारत ऋतु विज्ञान विभागेन तेलंगानायां छत्तीसगढ़े तटीय आंध्र प्रदेशे ओडिशायां च अद्य अतिवृष्टिये रक्तवर्णीया संचेतना प्रसारिता। अद्य अरुणाचल प्रदेशे असम राज्ये मेघालये बिहार राज्ये तथा कर्नाटकस्य आंतरिक प्रदेशेषु च विभिन्नेषु स्थानेषु अतिवृष्टिः भवितुमर्हति। झारखण्डे केरलम राज्ये माहे कोंकणे गोवायां महाराष्ट्रे पश्चिम बंगाले सिक्किम राज्ये चापि एतादृशी स्थितिः संभाव्यते। 26,2000 वर्षे एशियन क्रीडासु भारतीय पुरुष महिला स्कीट दलानि जापान देशे कांस्य पदकं विजितवन्तः। मीराबाई चानुः भारोत्तोलने रजत पदकं प्राप्तवती। भारतस्य पुरुष बैडमिंटन दलेन कांस्य पदकं च विजितम्। इति वार्ताः।

0: Good evening, listeners, and welcome to Market Mantra. Along with my co-anchor Subodh Mishra, I am Sarabjeet Kaur.
1: धन्यवाद सरबजीत और नमस्कार श्रोताओं. कारोबारी खबरों के साथ मार्केट मंत्र हाजिर है. आज की खबरों पर चर्चा करने के लिए स्टूडियो में हमारे साथ हैं वरिष्ठ आर्थिक विशेषज्ञ दीपशिखा सिकरवार. दीपशिखा, कार्यक्रम में आपका स्वागत है.
2: धन्यवाद सुबोध जी. गुड इवनिंग सरबजीत.
0: गुड इवनिंग मैम.
1: पहले हेडलाइंस सरबजीत से.
0: बेंचमार्क डोमेस्टिक इंडिसेस राइज, सेंसेक्स गेन्स 299 पॉइंट्स, निफ्टी सेटल्स नियरली 24,450. Global rating agencies Fitch and S&P Global raise India's GDP growth forecast to 6.9% and 7% respectively for this fiscal year. And global crude oil prices slip to near two-week low. Brent hovers around $100 per barrel.
1: प्रमुख शेयर सूचकांकों में बढ़त. सेंसेक्स 299 अंक बढ़ा. निफ्टी 24,450 के पास पहुंचा. वैश्विक रेटिंग एजेंसियों फिच और S&P ग्लोबल ने चालू वित्त वर्ष के लिए भारत का GDP विकास अनुमान क्रमशः 6.9% और 7% ठहराया. और कच्चे तेल की वैश्विक कीमतें लगभग दो हफ्ते के न्यूनतम स्तर पर. ब्रेंट क्रूड लगभग $100 प्रति बैरल पर.
0: And listeners, before we take you through the economic news of the day, may we remind you that the views and opinions expressed by experts in this program are their own and not those of Akashvani. Akashvani advises its listeners to do their own research or consult a registered professional before taking any investment decision. We also advise our listeners to exercise due diligence and rely on their own judgment for taking any financial decision.
1: चले अब खबरों का सिलसिला शुरू करते हैं. देश के प्रमुख शेयर सूचकांकों में आज बढ़त का रुख रहा. सेंसेक्स 299 अंक यानी 0.4% बढ़कर 74,828 पर बंद हुआ. निफ्टी 118 अंक यानी आधा प्रतिशत ऊपर 23,447 पर आ गया. नेशनल स्टॉक एक्सचेंज के अन्य सूचकांक निफ्टी मिड कैप इंडेक्स में 0.7% और निफ्टी स्मॉल कैप 100 में 0.9% की बढ़त दर्ज की गई. सकारात्मक वैश्विक संकेतों और कच्चे तेल की कीमतों में गिरावट की वजह से आज बाजार बढ़त के साथ खुले और दोपहर में थोड़े उतार चढ़ाव के साथ और ऊपर बढ़ते गए. लेकिन क्लोजिंग ऑक्शन सेशन कैश के बाद बाजारों के बंद स्तर में थोड़ी और बढ़त दिखाई दी.
0: Benchmark domestic equity indices rebounded today. The Sensex rose 299 points or 0.4% to close at 74,828. The Nifty jumped 118 points or 0.5% to settle at 23,447. In the broader market at the National Stock Exchange, the Mid-Cap 100 Index climbed 0.7%, while the Small-Cap 100 Index gained 0.9%. Earlier, markets opened with marginal gains, tracking positive global cues and easing crude oil prices, then extended those gains into the afternoon before pairing some of the advance. However, after the closing auction session, CAS, the benchmark indices closed slightly higher than their pre-CAS levels.
1: जी, और देखें सेंसेक्स में शामिल कंपनियों का क्या हाल रहा है. 30 में से 21 कंपनियों के शेयरों में बढ़त दर्ज की गई. सबसे अच्छा प्रदर्शन करने वाली कंपनियों पर नज़र डालें. टाटा स्टील में 3.3%, बजाज फाइनेंस में 3.1% और ITC के शेयरों में 1.8% की बढ़त हुई. इसके उलट HCL टेक में 1.1%, इन्फोसिस और TCS में 1.1% और टाइटन में 0.6% की गिरावट देखी गई.
0: In the sectoral indices on the BSE, 26 out of 28 sectors edged upward. Among the top gainers, metal climbed 2.4%, commodities increased 1.6% and

0: 8 small private banks rose 1.5%. In contrast, focused IT lost 0.9% and IT fell by 0.8%. The overall market breadth at the BSE was positive as shares of 2,752 companies advanced, 1,655 declined and 190 remained unchanged. Deepshika, after these figures...
1: एक और चीज जोड़ दूं मैं सरबजीत रुपए का हाल हम बता दें
0: जी
1: अंतर बैंकिंग विदेशी मुद्रा बाजार में एक अमेरिकी डॉलर की तुलना में भारतीय रुपया 16 पैसे घटकर 95.75 रुपए पर बंद हुआ
0: दीपशिखा कमिंग बैक टू यू वी जस्ट वेंट इन डिटेल विद द फिगर्स एंड वी स्पोक अबाउट द वेरियस सेक्टर्स सो व्हेन बेंचमार्क इंडिसेस रिबाउंड आफ्टर अ पीरियड ऑफ वीकनेस व्हाट डज दिस मूवमेंट जनरली इंडिकेट अबाउट द मार्केट सेंटिमेंट
2: Sarabjit, if you actually see the way markets have behaved, and today should not be seen in isolation. There has been a pattern, if you see, which has been there for a while. It gets battered continuously, and then there will be some, some upward movement that comes in with some buying interest, you know, which comes around. But I think investors need to make a very cautious call at this juncture in view of what the global factors are. A, there is crude, which is there on the horizon. It has inched up in view of the West Asia crisis. The other crucial factors, what happens in the US? We've seen the Fed has raised rates. There's also indication that there could be another rate increase coming in. Impact of that, which is being felt in the currency markets also. So all these factors need to be sort of taken into account when you actually are betting or buying, particularly for short term.
1: जी दीपशिखा आपने कुछ कारक तो गिना ही दिए अभी जिनका उल्लेख मैं करना चाहता था लेकिन इसके अलावा अगर हम देखें तो बाकी हर जगह के जितने भी हम मार्केट्स पर नज़र डालते हैं जिनको हम मॉनिटर करते हैं लगातार आपने अमेरिका का उल्लेख किया अभी फेड रेट्स का उल्लेख किया आपने इसके बाद हम देख रहे हैं जैसे कल नैसडेक या पिछले दो दिनों में काफी सकारात्मक रहा और बिल्कुल काफी
2: बहुत
1: अच्छा
2: रेजिलियंस
1: भी रहा,
2: बहुत
1: जबरदस्त
2: रेजिलियंस रही है
1: वो हमारे बाजारों पर दिखाई नहीं देता है
2: बिल्कुल जैसा कि मैंने कहा कि हमारी अर्थव्यवस्था जो है एक बहुत अजीब कहना चाहिए बहुत ही एक पैराडॉक्सिकल सिचुएशन है अर्थव्यवस्था अगर आप देखें तो काफ़ी मजबूत स्थिति में है आज भी जिस तरह के प्रोजेक्शंस आ रहे हैं बहुत बेहतर हैं लेकिन जो चुनौतियां हैं अर्थव्यवस्था के सामने खास तौर पे अगर हम देखें क्रूड को लेके या वेस्ट एशिया क्राइसिस को देखें तो वो एक भारत के लिए बहुत बड़ी चुनौती है तो ये ओवरहैंग जो बाजार पर बना हुआ है और ये काफ़ी कुछ समय हो गया है इसको चलते हुए दूसरा कि टेक्नोलॉजी क्षेत्र में आईटी क्षेत्र में जो आशंकाएं हैं वो बराबर बनी हुई हैं एल नीनो का जो है आउटपुट पर कृषि के उस पर क्या असर होगा वो आशंकाएं हैं उस पे अर्निंग्स में कंजम्पशन में हालांकि अभी मजबूत है कंजम्पशन लेकिन कुछ एक ओवरहैंग सेंटिमेंट में ऐसा बिल्ट अप हो रहा है तो मुझे लगता है कि जो फेस्टिव सीजन आने वाला है हो सकता है कि थोड़ा उस तक अगर वैश्विक स्थिति थोड़ी सुधरती है तो शायद बाजार भी थोड़ा मजबूती की तरफ बढ़ेगा
0: Deepshikha, since you touched upon the projections part, let's first see what have been the projections as of now. Fitch Ratings has raised its forecast for India's GDP growth in the current fiscal year to 6.9%, up from its earlier projection of 6.4%. In its June Global Economic Outlook, the agency attributed the upward revision to strong first quarter growth and the resilience of the Indian economy. However, Fitch expects economic momentum to moderate during the second half of the fiscal year. It also anticipates that the Reserve Bank of India may raise interest rates by 25 basis points at its October monetary policy meeting, citing strong domestic demand, rising

0: prices and adverse supply side developments. Consumer spending growth is expected to slow to 5.7% in financial year 27 compared with 7.2% in the previous financial year. Fitch projects India's GDP growth to ease further to 6.5% in financial year 28, while inflation could rise to 5.5% by December 2026.
1: Ji, aur iske saath Standard and Poor's S&P ग्लोबल रेटिंग्स ने भी चालू वित्त वर्ष में भारत की जीडीपी वृद्धि का अपना अनुमान 6.6% से बढ़ाकर 7% कर दिया है। एशिया प्रशांत क्षेत्र के लिए आर्थिक गतिविधि पर अपनी रिपोर्ट में एसएनपी ने बताया कि विकास को बढ़ावा देने वाले प्रमुख कारक हैं मजबूत औद्योगिक गतिविधि, स्वस्थ उपभोक्ता मांग, मजबूत वस्तु निर्यात और बढ़ता सरकारी निवेश। उसका अनुमान है कि वित्त वर्ष 2027 में उपभोक्ता मुद्रास्फीति औसतन 5.1% रहेगी। हालांकि एसएनपी ने चेतावनी दी है कि इस वित्त वर्ष की दूसरी छमाही में विकास कमजोर हो सकता है क्योंकि जीएसटी को युक्तिसंगत बनाने और आयकर कटौती का लाभ धीरे धीरे कम होता जाएगा। एजेंसी ने मौसम संबंधी जोखिमों का भी उल्लेख किया है। उसके आकलन के समय कुल वर्षा सामान्य से 15% कम थी, इसलिए कृषि उत्पादन और खाद्य मुद्रास्फीति पर नजर रखना महत्वपूर्ण होगा। दीपशिखा, अभी आप जिसका उल्लेख कर रही थी मौसम, एलनीनो और अब इसमें जीएसटी का जिक्र आ ही गया है, आयकर कटौती का भी उल्लेख आ गया है। इसके अलावा लेकिन जो खासकर हम फिच रेटिंग्स पर तो बाद में हम चर्चा करेंगे, इसके अलावा भी अगर हम देखें तो कुछ और भी रेटिंग्स आई हैं दुनिया में। माहौल है कि भारत की,
2: हाँ बिल्कुल, अगर आप देखें तो आज जो है ओईसीडी ने भी अपना आउटलुक निकाला है, एशियन डेवलपमेंट बैंक ने, और दोनों ने इंडिया की जो ग्रोथ है उसको बढ़ा दिया है। तो ओईसीडी ने उसको 7.1% कर दिया है 6.3% से, और एडीबी ने भी 7% कर दिया है 6.6% से। और सभी एजेंसियां ये कह रही हैं कि भारत में एक तो सर्विस क्षेत्र जो है, उसके अलावा निर्यात क्षेत्र ने जिस तरह का मजबूती दिखाया है, खासतौर से हम जानते हैं कि किस तरह की चुनौतियां इस क्षेत्र के सामने आई थी, तो उसके अलावा सरकार की तरफ से खासतौर से कैपिटल एक्सपेंडिचर जो है जिस तरह का बढ़ाया गया और जिस क्षेत्रों पे खर्चा किया गया, तो उसका असर जो है अब निजी क्षेत्र के भी निवेश पर नजर आ रहा है, जो कि जीडीपी के आंकड़ों में भी सामने आया था, और इन एजेंसियों ने भी यही चीज दोहराई है आज।
1: जी,
0: so Deepshikha, we'll like to take you back to the Fitch ratings, and we'd like to have your word on this. What does this upward revision tell us about the underlying strength of the Indian economy?
2: Sarabjit, we've been discussing this, and like I said earlier, Indian economy is in a very strong position. The data is clearly showing that there is strong consumption, which the data showed us. Private investment, which was one of the key challenges, is now begin to show some movement there. So which was the greatest news? So despite all the challenges which these agencies have highlighted, it needs to be seen that overall the situation of the economy remains robust despite the risks which have been flagged. There is inflation risk which has been flagged, and also the El Nino risk which can impact farm output, which can therefore have some implications for the demand. Whether this would translate to markets, like I said, maybe you could see the festive season sort of brings in back that kind of strength which the economy is showing in the markets.
1: जी, दीपशिखा, जो जिसका उल्लेख अभी S&P ने किया है, जो चार फैक्टर्स बताए हैं कि मजबूत औद्योगिक गतिविधियां हैं हमारे यहाँ और उपभोक्ता मांग काफ़ी अच्छी है और वस्तुओं का निर्यात

0: सरकार ने खास तौर से इंफ्रास्ट्रक्चर सोशल सेक्टर स्पेंडिंग अपना बढ़ाया, इंफ्रास्ट्रक्चर में खास तौर से निवेश किया गया। अगर आप देखें तो कैपिटल एक्सपेंडिचर जो है हाईवे सेक्टर, रेलवे सेक्टर, सभी क्षेत्रों में कैपिटल एक्सपेंडिचर को काफ़ी हद तक पुश किया गया। अगर आप देखें रेलवे का उदाहरण लें, रेलवे काफ़ी हद तक अपना कैपिटल एक्सपेंडिचर इस साल का जो बजट है उसको काफ़ी हद तक वो टारगेट्स अचीव कर चुका है। तो ये एक जो पुश है बराबर सरकार की तरफ से की जा रही थी और उससे ग्रोथ को काफ़ी बल मिला है। जो क्षेत्र जहाँ पर खासतौर से जो इंफ्रास्ट्रक्चर को सपोर्ट करते हैं वहाँ पर बहुत बल मिला, डिमांड वहाँ क्रिएट हुई है और अब उसका असर जो है फाइनली नज़र आ रहा है। जिस तरह से निजी क्षेत्र का निवेश अब थोड़ा थोड़ा चालू हो गया है कुछ क्षेत्रों में, तो उम्मीद की जाती है कि ये आगे मजबूती पकड़ेगा। और जैसा कि हम कह रहे थे कि हो सकता है आने वाले समय में ये मजबूती जो अर्थव्यवस्था की है वो निवेशकों को बाजार की तरफ और आकर्षित करे और बाजार में मजबूती आए। लेकिन हाँ, बाजार का एक सेंटिमेंट जो है, जैसा कि हम पहले डिस्कस कर रहे थे, उस पर बातचीत कर रहे थे, वैश्विक स्थिति जो है बहुत अनुकूल नहीं है, बहुत चुनौतियां हैं वहां पर। तो अगर वैश्विक स्थिति जो है वो अनुकूल रहती तो हो सकता है भारतीय बाजार बहुत अच्छा परफॉर्मेंस दे रहा होता।
1: जी, हम कह सकते हैं कि हम टिके हुए हैं और खास करके जो जीडीपी के अनुमान हैं ये तमाम संकटों के बावजूद बेहतर है।
0: बिल्कुल, भारतीय अर्थव्यवस्था काफी अच्छी स्थिति में टिकी हुई है, आंकड़े कम से कम यही बता रहे हैं।
1: जी, और अगली खबर है भारत कनाडा व्यापार पर। कनाडा के प्रधानमंत्री मार्क कार्नी ने कहा है कि भारत के साथ व्यापार वार्ता अच्छी प्रगति कर रही है और दोनों देश दिसंबर के मध्य में होने वाले G20 शिखर सम्मेलन तक बातचीत पूरी करने का लक्ष्य लेकर चल रहे हैं। कार्नी ने यह भी कहा कि उनके अनुसार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उस समय के आसपास कनाडा की यात्रा करेंगे, हालांकि इसकी तारीख अभी तय नहीं हुई है। कनाडा के प्रधानमंत्री ने यह बात कल न्यूयॉर्क में संयुक्त राष्ट्र महासभा से अलग आयोजित एक संवाददाता सम्मेलन में कही। प्रधानमंत्री कार्नी अगले दशक में अमेरिका को छोड़कर अन्य देशों के साथ कनाडा के व्यापार को दोगुना करना चाहते हैं। उन्होंने भारत को उस व्यापक प्रयास का हिस्सा बनाया है जिसका उद्देश्य अमेरिका पर कनाडा की निर्भरता को कम करना है। दीपशिखा, ये जो कनाडा और अमेरिका का पुराना रिश्ता था उसके बिल्कुल नए आयाम दिखाई दे रहे हैं अब।
0: बिल्कुल, देखिए जियो पॉलिटिक्स और जियो इकोनॉमिक्स है वो अगर हम देखें तो पिछले कुछ वर्षों से एक नया ही जो जियो पॉलिटिकल कहना चाहिए अलायंसेस जिस तरह के उभर रहे हैं और मतलब जो ग्लोब है उसका स्थिति बदलता जा रहा है, बहुत ही कॉम्प्लेक्स हो गया है उनको मैनेज करना। और इसीलिए सरकार जो है इस तरह के ट्रेड एग्रीमेंट्स जो है उन पे बहुत फोकस कर रही है।
1: जी, और एशियाई शेयर बाजारों में आज दक्षिण कोरिया का कोस्पी 0.9% बढ़ा, जापान का शेयर बाजार आज भी बंद है। यूरोपीय शेयर बाजारों में समाचार तैयार किए जाने तक जर्मनी का डैक्स 0.5% ऊपर चल रहा था जबकि लंदन के फुटसी में मामूली बढ़त थी।
2: In the US stock market yesterday, the Nasdaq composite closed at an all-time high, supported by gains in AI-related stocks as investor sentiment improved on softer crude oil prices and treasury yields. The Nasdaq rose nearly 0.5% to 27,244, while the S&P 500 remained largely unchanged, and the Dow Jones Industrial Average declined 0.4% amid selling pressure in banking stocks. Market participants are now awaiting this week's talks between Washington and Beijing for cues on trade, technology, policy and broader US-China relations that could influence global economic growth. Deepshikha, what's your comment on this piece of news when we are talking about the Nasdaq closing at a record high? What are the broader factors that can drive global equity markets to these kinds of levels?
0: You know, markets are, I think, very closely watching the trip, the visit of Chinese president to the United States. And, you know, what would be watched as clearly would be beyond the

0: between India and the Latin American and Caribbean region?
1: See, like we discussed earlier, you know, India is trying to forge alliances with different countries and global south. Definitely, this was the theme at G20 also. That's a big focus area for India. Latin America, as we know, they have some critical minerals, and we are trying to reach an agreement with them on supply of critical minerals. So definitely a big focus area for India is forging these multiple trade alliances with multiple trade partners to secure resilience of its own supply chains.
2: जी, और नया मर्चेंट डिस्काउंट रेट ढांचा अगले महीने की 15 तारीख से लागू होगा। इस ढांचे के तहत ₹2,000 तक के UPI लेन देन पर शून्य MDR लगेगा। आपको ये शंका हो सकती है कि क्या UPI के माध्यम से दोस्तों या परिवार को पैसे भेजने पर कोई शुल्क लगता है। भारतीय राष्ट्रीय भुगतान निगम ने कहा है कि पर्सन टू पर्सन लेन देन भुगतान करने वाले यानी पैसा भेजने वाले और लाभार्थी यानी पैसा प्राप्त करने वाले दोनों के लिए पूरी तरह से मुफ्त रहेगा। UPI का उपयोग करके किसी भी व्यक्ति द्वारा किसी अन्य व्यक्ति को कोई भी राशि ट्रांसफर करने या प्राप्त करने या यहाँ तक कि खुद के खातों में भी ट्रांसफर करने पर कोई शुल्क नहीं लगेगा। नागरिक बिना किसी लेन देन शुल्क के किसी भी स्वीकृत राशि का UPI पर स्वतंत्र रूप से ट्रांसफर कर सकते हैं।
0: Global crude oil prices rose today but remained near a two-week low as concerns over rising supplies continued to weigh on the market. Brent crude was trading 1% higher at $100.19 per barrel. West Texas intermediate crude was trading 0.1% up at $90.61 per barrel at the time of writing this report.
2: तेल पर छोटी सी बात बता दें दीपशिखा।
1: तेल तो बहुत ही अनसर्टेन हो गया है। हम देख रहे हैं वेस्ट एशिया का कॉन्फ्लिक्ट जब तक रिजॉल्व नहीं होता है तब तक तेल पर प्रेशर बना रहेगा। भारत के लिए थोड़ी चुनौतीपूर्ण स्थिति बन रही है।
2: और भारतीय सराफा बाजार में 24 कैरेट सोने का मूल्य समाचार तैयार किए जाने तक 0.1% गिरकर ₹1,52,016 प्रति 10 ग्राम पर चल रहा था। चांदी मामूली गिरावट के साथ ₹2,32,766 प्रति किलोग्राम पर चल रही थी। और दीपशिखा, आज वक्त इतना ही है, हालांकि चलते चलते हम ज़रूर कहना चाहेंगे कि ये जो सोने और चांदी का हाल था पिछले 1-2 सालों में हमने जो हाल देखा था कई लोगों के लिए बहुत अच्छा निवेश साबित हुआ था, लेकिन अब देख रहा हूँ वो शायद उतनी ज़्यादा संभावना दिखाई नहीं दे रही है या इतने पीक पर पहुँचा हुआ है कि अब लोग बहुत ज़्यादा इस पर भाव नहीं दे रहे।
1: बिल्कुल, जो एकदम तेज़ी जो आई थी दोनों सोने और चांदी के दामों में वो थोड़ी सी ठहर गई है, थोड़ा ठहरा हुआ है। तो अब जो अगर निवेश भी है वो लॉन्ग टर्म और पोर्टफोलियो में डाइवर्सिफिकेशन के लिए, उस पर आपको देखना होगा।
2: जी, देशरेखा कार्यक्रम में आने और महत्वपूर्ण चर्चा के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।
1: धन्यवाद।
0: Listeners, before we wrap up, a reminder of the headlines. Benchmark domestic indices rise, Sensex gains 299 points, Nifty settles nearly 24,450. Global rating agencies Fitch and S&P Global raise India's GDP growth forecast to 6.9% and 7% respectively for this fiscal year. And global crude oil prices slip to near 2-week low. And that's all in today's edition of Market Mantra. See you tomorrow. Goodbye.
3: इस कार्यक्रम में विशेषज्ञों द्वारा विचार उनके अपने हैं। आकाशवाणी अपने श्रोताओं को सलाह देता है कि निवेश का निर्णय करने से पहले स्वयं रिसर्च करें या किसी पंजीकृत सलाहकार से राय लें।
4: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं फरहत नास। रक्षा मंत्रालय ने वायुसेना के लिए 160 सैटेलाइट स्मार्ट एंटी एयरफील्ड वेपन और उससे जुड़े उपकरणों की खरीद के लिए भारत डायनेमिक्स लिमिटेड के साथ 810 करोड़ रुपए से अधिक का समझौता किया है। इसकी आपूर्ति वर्ष 2027-28 और 2028-29 के बीच की जाएगी। ये हथियार हवा से जमीन पर मार करने वाला सटीक निर्देशित ग्लाइड बम है। इसे जगुआर, हॉक और सुखोई 30 MKI जैसे विमानों से दागा जा सकता है। ये लंबी दूरी से दुश्मन के हवाई ठिकानों को निष्क्रिय करने में सक्षम है। इस प्रणाली को रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन

0: ने देश में ही डिजाइन और विकसित किया है। इसमें 60% स्वदेशी सामग्री होगी। इससे रक्षा क्षेत्र में आत्मनिर्भरता को और बढ़ावा मिलेगा। रक्षा मंत्रालय ने कहा कि इसके वायुसेना में शामिल किए जाने से उसकी परिचालन क्षमता बढ़ेगी। इससे देश की रक्षा तैयारियों को भी मजबूती मिलेगी। विदेश मंत्री डॉ सुब्रमण्यम जयशंकर संयुक्त अरब अमीरात और फ्रांस के विदेश मंत्री के साथ त्रिपक्षीय बैठक में शामिल हुए। न्यूयॉर्क में संयुक्त राष्ट्र महासभा के सत्र से अलग इस बैठक में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, अंतरिक्ष, स्वास्थ्य विज्ञान, ऊर्जा और संस्कृति के क्षेत्र में सहयोग पर चर्चा की गई। तीनों नेताओं ने संस्कृति और विरासत सहित पारस्परिक हित के क्षेत्रों में त्रिपक्षीय सहयोग की प्रगति की समीक्षा की। वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने कहा है कि आगामी कुछ वर्षों में बहुपक्षीय कर वार्ताओं में लिए गए निर्णय एक पीढ़ी के लिए सीमापार कराधान को आकार देंगे। नई दिल्ली में ब्रिक्स कर प्रमुखों की बैठक में उन्होंने कहा कि ब्रिक्स देश बड़ी विकासशील अर्थव्यवस्थाएं हैं और उन्होंने महत्वपूर्ण घरेलू कर क्षमता का निर्माण किया है। वित्त मंत्री ने कहा कि इन वार्ताओं को निष्पक्ष और स्थायी बनाने के लिए उनका दृष्टिकोण आवश्यक है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने गुजरात के वडोदरा में ब्रह्म कुमारियों के ग्लोबल स्पिरिचुअल पैलेस रिट्रीट सेंटर का लोकार्पण किया। उन्होंने विकसित भारत के लिए युवा, राष्ट्र निर्माण के लिए आंतरिक शक्ति की जागृति अभियान का भी शुभारंभ किया। राष्ट्रपति ने कहा कि देश को ऐसी युवा शक्ति की आवश्यकता है जो ईमानदारी, जिम्मेदारी, करुणा, सह अस्तित्व और देशभक्ति की भावना से प्रेरित हो।
1: युवाओं को सशक्त बन, आत्मनिर्भर, शांतिपूर्ण और जिम्मेदार बनाना हम सब की जिम्मेदार। अब ऐसे युवा तैयार करना है जो ज्ञान, टेक्निक और कौशल से साथ में आत्मविश्वास, आत्मअनुशासन, सकारात्मक सोच, संवेदनशीलता और नैतिक मूल्यों से परिपूर्ण।
0: इससे पहले राष्ट्रपति वडोदरा के महाराजा सयाजीराव विश्वविद्यालय के दीक्षांत समारोह में शामिल हुए। कार्मिक लोक शिकायत और पेंशन मंत्री जितेंद्र सिंह ने कहा है कि कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग ने पिछले 12 वर्ष में 23,000 से अधिक पदोन्नतियों को स्वीकृति दी है। डॉ सिंह ने कहा कि सरकार कर्मचारियों को काम के लिए एक बेहतर और अनुकूल माहौल देने के लिए प्रतिबद्ध है ताकि वे प्रेरित रहें और अपने दायित्वों की प्रभावी ढंग से निभा सकें। भारत ने इस्लामी सहयोग संगठन IOC के तथाकथित जम्मू कश्मीर संपर्क समूह के संयुक्त घोषणा पत्र में भारत के संदर्भ में की गई निराधार और तथ्यात्मक रूप से गलत टिप्पणियों को सिरे से खारिज कर दिया है। विदेश मंत्रालय ने एक बयान में कहा कि भारत के आंतरिक मामलों पर टिप्पणी करने का IOC को कोई कानूनी अधिकार नहीं है। मंत्रालय ने स्पष्ट किया कि संपूर्ण जम्मू कश्मीर और लद्दाख केंद्र शासित प्रदेश भारत का अभिन्न और अटूट हिस्सा है और राजनीतिक रूप से प्रेरित झूठे प्रचार को बार दोहराने से ये वास्तविकता नहीं बदल सकती। भारतीय जनता पार्टी अध्यक्ष नितिन नवीन ने सभी 36 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के लिए पार्टी प्रभारी और सह प्रभारियों की नियुक्ति की है। पूर्व केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी को छत्तीसगढ़ और हरियाणा का और हरीश द्विवेदी को बिहार का प्रभारी बनाया गया है। विनय सहस्रबुद्धे को दिल्ली का और विनोद तावड़े को उत्तर प्रदेश का प्रभारी बनाया गया है। एशियाई खेलों में रोशिबिना देवी नाउरोम वुशु के फाइनल में पहुंच गई हैं। 60 किलो के सेमीफाइनल में उन्होंने इंडोनेशिया की थानिया कुसुमांग निंगतियास को हराया। भारतीय पुरुष बैडमिंटन टीम ने कांस्य पदक अपने नाम किया। इससे पहले भारतोलक मीराबाई चानू ने 49 किलो वर्ग में रजत पदक जीता। जयमीना ने सॉफ्ट टेनिस के सिंगल्स का कांस्य पदक जीतकर नया इतिहास रचा। निशानेबाजी में स्कीट स्पर्धा में महिला टीम और पुरुष टीम ने कांस्य पदक जीते। भारत 1 स्वर्ण, 5 रजत और 6 कांस्य सहित 12 पदकों के साथ 13वें स्थान पर है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, उपराष्ट्रपति CP राधाकृष्णन, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और खेल मंत्री मनसुख मांडविया ने पदक जीतने वाले भारतीय खिलाड़ियों को बधाई दी है। माई भारत प्लेटफॉर्म पर पंजीकृत युवाओं की संख्या 3 करोड़ से अधिक हो गई है। वर्ष 2023 में शुरू इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से युवा सीखने, स्वयं सेवा, नेतृत्व, नागरिक भागीदारी और युवा केंद्रित गतिविधियों में हिस्सा ले रहे हैं। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: गुड इवनिंग, दिस इज आकाशवाणी, द न्यूज रेड बाय साइरा मुज्तबा। The Defense Ministry has signed a contract of over 810 crore rupees with Bharat Dynamics Limited (BDL) for the procurement of 160 satellite smart anti-airfield weapons (SAT-SAAW) along with associated equipment for the Indian Air Force. The contract was signed in the presence of Defense Secretary Rajesh Kumar Singh in New Delhi today. It is an air-to-ground precision-guided glide bomb which can be launched from platforms like Jaguar, Hawk,

0: ये आकाशवाणी है। विशेष श्रृंखला जनसेवा से देश सेवा के सातवें संस्करण में प्रस्तुत है परिचर्चा स्वच्छता से सम्मान तक। इसमें भाग ले रहे हैं स्वच्छ भारत अभियान के पूर्व महानिदेशक अक्षय राउत और वरिष्ठ पत्रकार रोशन गौड़। कार्यक्रम का संचालन कर रही हैं आकाशवाणी संवाददाता फरहत नाज।
1: नमस्कार, आप सुन रहे हैं हमारा विशेष कार्यक्रम जनसेवा से देश सेवा। सेवा संकल्प अभियान के इस विशेष अंक में आज हम स्वच्छ भारत मिशन के माध्यम से जमीनी स्तर पर हो रहे सामाजिक और स्वास्थ्य संबंधी परिवर्तनों का विश्लेषण करेंगे। और इस विशेष कार्यक्रम में मैं हूं आपके साथ फरहत नाज।

0: आज का विषय है स्वच्छता से सम्मान तक। गांधी जी ने कहा था कि स्वच्छता में ही ईश्वर का वास है और इस एक वाक्य ने भारत में जन आंदोलन का रूप ले लिया। कहानी शुरू हुई निर्मल गुजरात से और बन गई स्वच्छ भारत मिशन। आज इसी विषय पर चर्चा के लिए हमारे साथ स्टूडियो में दो खास मेहमान मौजूद हैं। हमारे पहले मेहमान हैं स्वच्छ भारत मिशन के पूर्व महानिदेशक श्री अक्षय राउत जी। अक्षय जी, कार्यक्रम में आपका बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन।
1: नमस्कार।
0: और आज के हमारे दूसरे मेहमान हैं वरिष्ठ पत्रकार श्री रोशन गौर जी। रोशन जी, आपका भी कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन।
2: बहुत बहुत धन्यवाद।
0: तो श्रोताओं, आइए कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं निर्मल गुजरात के बारे में। तो अक्षय जी, हम आपसे जानना चाहेंगे कि 2007-08 में गुजरात ने स्वच्छता को सिर्फ योजना नहीं, एक अभियान बनाया। इस निर्मल गुजरात में ऐसा क्या था जो बाद में स्वच्छ भारत का आधार बना?
1: आप जिस बात का जिक्र यहाँ कर रहे हैं वो दुनिया की सामने, भारत से तो शुरुआत हुआ ही, गुजरात से बल्कि शुरुआत हुआ। ये एक नया गवर्नेंस मॉडल का एक देखने लायक चीज है, क्योंकि सरकारें जब बनती हैं तरह तरह तरीके से सरकार चलाती हैं। मंत्रियां आते हैं, मुख्यमंत्रियां आते हैं, प्रधानमंत्री आते हैं, और सबका पॉलिसी होता है, प्रोग्राम्स होता है। लेकिन ये एक अनोखा तरीके की काम करने की तरीका जो कि गुजरात से शुरू हुआ 25 साल पहले, और उसमें पूरा स्केल अप जिसको बोलते हैं, पैन इंडिया बोलते हैं, एक मौका मिला जो कि यहाँ भी 12 साल से उस तरह का जो प्रक्रिया है, वो जो एक्सपेरिमेंट गुजरात में हुआ था उसको लाया गया। और आपने स्वच्छता की जिक्र किया, वहाँ जो मेन कैरेक्टर उसका था निर्मल गुजरात का, वो था कि कम्युनिटी को मिलाया जाए। ये जो स्वच्छता कार्यक्रम है या सरकार के कार्यक्रम है नहीं, ठीक है सरकार अगुवाई करेगा, पॉलिसी बनाएगा, मिशन बनाएगा, पैसा कुछ हो सकता है लगाएगा, लेकिन लोग इसको सम्मान के हिसाब से लें। विलेज कम्युनिटी हो, अर्बन कम्युनिटी हो, पंचायत हो, ब्लॉक हो, ग्राम सभा हो, ये सब ऐसे मिलकर जुड़े कि ये उनका कार्यक्रम है, क्योंकि उनके बच्चों की हेल्थ के सवाल है, उनकी महिलाओं की इज्जत के सवाल है, सिक्योरिटी के सवाल है, पूरा समुदाय की हेल्थ के सवाल है। और स्वच्छता जो सामने आ जाकर जान नहीं ले लेता है, उसका बहुत दूरगामी जो परिणति होते हैं, और वो पता लगा है जब ये स्वच्छ भारत मिशन निर्मल गुजरात से शुरू होके। स्वच्छ भारत मिशन का स्केल ही कुछ अलग था, क्योंकि हम लोग 6.5 लाख, गुजरात तो एक स्टेट हुआ, वहां एक प्रयोग हुआ, लेकिन उसको जब देश की जमीन पर लाया गया, पूरा 6.5 लाख उसमें गांव है, करीब 5,000 शहर है और 2.5 लाख ग्राम पंचायत हैं, वो एक कुछ अलग से था। लेकिन ये गवर्नेंस मॉडल के एक और भी एक रूप है कि ये स्केल में बिलीव करता है। ऐसे नहीं कि छोटे छोटे पायलट में करेंगे, फिर 15 साल में करेंगे, फिर 25 साल में करेंगे, ऐसे नहीं है। यहाँ एक सनसेट क्लस डाला गया। 2014 में जो शुरू किया गया स्वच्छ भारत मिशन, चाहे निर्मल गुजरात के प्रयोग से हो, सीकर और भी बहुत सारे प्रयोग है, निर्मल गुजरात उसमें जरूर मुख्य है, क्योंकि वहां के मुख्यमंत्री बाद में प्रधानमंत्री बने मोदी साहब, तो वो इस मिजाज को लेकर आए कि हमें स्केल पर करना है, पूरे शहर में करना है, पूरे गांव में करना है, पूरे देश को स्वच्छ करना है, तो 12 करोड़ टॉयलेट बने। उसमें एक्सेस और यूसेज, ये दोनों मूल मुद्दे थे, और गांव के मुद्दे ज्यादातर थे। ऐसे नहीं कि शहर में समस्या नहीं था, शहर की समस्या में अभी जूझ रहे हैं, सेकंड फेज में वेस्ट मैनेजमेंट में, कचरा का प्रबंधन में, लेकिन जो पहला फेज था जिसमें स्वच्छ भारत मिशन की शुरुआत हुआ, कुछ गुजरात की न्यू बना था, उसमें जो पहले बिल्डिंग ब्लॉक्स आए और स्वच्छ भारत मिशन का अभियान का शुरुआत हुआ 2014 में लाल किला की प्राचीर से लेकर, वहां एक पॉइंट रखा गया था, एक लक्ष्य कि 2019 तक खुले शौच से मुक्त कराना है देश को। उस टाइम आपको अगर सुनकर अभी भी लोगों को ताज्जुब होगा, हमारे श्रोताओं को, कि 60 करोड़ देश में खुले शौच करने वाले थे, जो कि पूरे दुनिया की खुले शौच करने वाले लोगों की 60% था, और 2019 में खुले शौच से देश को मुक्त कर दिया गया। सारे गांव, सारे जिले, 36 स्टेट और यूनियन टेरिटरी अपने को डिक्लेयर किए अक्टूबर 2, 2019 में कि हम शौच से मुक्त है, लेकिन अभी भी रास्ता सफर बाकी है।
0: बिल्कुल। और अब रोशन जी, हम आपसे जानना चाहेंगे कि पहले स्वच्छता को सिर्फ सरकार या सफाई कर्मियों की जिम्मेदारी माना जाता था, लेकिन अब लोग खुद कचरा फैलाने से बचते हैं और आसपास सफाई भी रखते हैं। तो अगर हम बात करें गुजरात में स्वच्छता की, तो जमीनी स्तर पर आपको किस तरह का बदलाव वहां पर देखने को मिला है?
2: देखिए, जो 2007 में निर्मल गुजरात योजना शुरू हुई थी, मुझे लगता है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब उस समय मुख्यमंत्री थे, तो पहला उनका ये अनुभव था कि लोगों को अपने साथ कैसे जोड़ा जाए, और उन्होंने जो निर्मल गुजरात शुरुआत की, तो उन्होंने कहा केवल सफाई नहीं, इसमें कचरा प्रबंधन भी होना चाहिए, स्वच्छ पानी भी होना चाहिए, और लोगों के पार्टिसिपेशन भी होना चाहिए। तो मुझे लगता है कि पूरे राज्य को उन्होंने एक साथ जोड़ा, लोगों को उन्होंने इसमें भागीदार बनाया, और वो इसलिए बनाया कि जैसे आपने कहा कि इसमें केवल

0: सरकारी कर्मचारी और सरकारी सफाई कर्मचारी अगर केवल इसमें भाग लेंगे तो नहीं हो पा रहा था। लोगों की मानसिकता बदली कि ये आपका है, आपको स्वच्छ रहना है, अगर आप स्वच्छ रहेंगे तो आपको बीमारी नहीं होगी, जो खर्चा आपका बीमारी में खर्च होता है वो आपका बच जाएगा। और हमने देखा कि जब वो अभियान चला पूरी हिंदुस्तान में उसकी चर्चा हुई और कुछ राज्यों ने उसको एडॉप्ट किया और उसके बाद भारत सरकार ने भी निर्मल भारत अभियान के नाम से उसको एडॉप्ट किया। और जब प्रधानमंत्री बन गए नरेंद्र मोदी जी 2014 में तो वहां उन्होंने फिर स्वच्छ भारत अभियान की शुरुआत की। तो बेसिकली जो एक्सपेरिमेंट था कि लोगों का पार्टिसिपेशन कैसे हो, जन भागीदारी कैसे हो, इसकी शुरुआत 2007 से निर्मल गुजरात से हुई थी और उसमें जनता की भागीदारी और वो किस बड़े स्तर पर हो सकता है वहां से शुरुआत हुई।
1: जी, तो हम चर्चा को आगे जारी रखेंगे, लेकिन आइए सबसे पहले सुन लेते हैं स्वच्छ भारत मिशन पर हमारी ये खास रिपोर्ट।
2: श्रोताओं, स्वच्छता हमारे जीवन में बहुत आवश्यक है। साफ घर, साफ गली, साफ गांव और साफ शहर का सीधा संबंध हमारे स्वास्थ्य और बेहतर जीवन से है। इसी सोच के साथ 2 अक्टूबर 2014 को स्वच्छ भारत मिशन की शुरुआत की गई। इसका उद्देश्य देश में स्वच्छता को बढ़ावा देना और लोगों को साफ सफाई के प्रति जागरूक करना था। इसकी शुरुआत सबसे पहले लोगों के घरों में शौचालय की सुविधा पहुंचाने और खुले में शौच की समस्या को खत्म करने पर था। वर्ष 2014 में ग्रामीण स्वच्छता लगभग 39% थी। वर्ष 2019 तक ग्रामीण भारत में 100% स्वच्छता हासिल की गई और 2014 से 2019 के बीच 10 करोड़ 28 लाख से अधिक शौचालयों का निर्माण हुआ। लेकिन श्रोताओं, स्वच्छता का मतलब केवल शौचालय बनाना नहीं है, अब ध्यान इस बात पर भी है कि गांव और शहर कचरे से मुक्त और साफ सुथरे रहें। इसीलिए स्वच्छ भारत मिशन के अगले चरण में ठोस कचरा और गंदे पानी के प्रबंधन पर भी जोर दिया जा रहा है। 17 सितंबर 2026 तक देश में 5.69 लाख से अधिक गांव ODF प्लस हो चुके थे। इनमें 5.25 लाख से ज्यादा गांव ODF प्लस मॉडल की श्रेणी में है। वहीं 5.38 लाख से अधिक गांवों में ठोस कचरा प्रबंधन और 5.65 लाख से अधिक गांवों में तरल कचरा प्रबंधन की व्यवस्था स्थापित की जा चुकी है। अब सवाल है कि ODF प्लस का मतलब क्या है? आसान भाषा में समझें तो इसका मतलब सिर्फ खुले में शौच से मुक्ति नहीं है, गांव में शौचालयों का इस्तेमाल जारी रहे, कचरे का सही प्रबंधन हो, गंदा पानी सही तरीके से संभाला जाए और गांव साफ दिखाई दे, इन सब बातों पर ध्यान दिया जाता है। इसी दिशा में स्वच्छता ही सेवा अभियान भी महत्वपूर्ण है। वर्ष 2026 में ये अभियान 17 सितंबर से 17 अक्टूबर तक चलाया जा रहा है और इसकी थीम है स्वच्छता में सहभाग, स्वच्छ भारत विकसित भारत। इसका जोर लोगों की भागीदारी, सार्वजनिक स्थानों की सफाई, कचरा प्रबंधन, सफाई कर्मचारियों की सुरक्षा तथा सम्मान पर है। श्रोताओं, यहाँ एक और महत्वपूर्ण बात है, स्वच्छता के काम में लगे सफाई कर्मचारियों का सम्मान। सफाई कर्मचारी हमारे गांव और शहरों को साफ रखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं, इसीलिए स्वच्छता के साथ उनकी सुरक्षा, स्वास्थ्य और कल्याण पर भी ध्यान दिया जा रहा है। स्वच्छता ही सेवा 2026 में सफाई मित्र सुरक्षा एवं सम्मान शिविर के माध्यम से स्वास्थ्य जांच, सुरक्षा उपकरण और कल्याणकारी योजनाओं से जोड़ने पर जोर दिया गया है। श्रोताओं, स्वच्छता की ये यात्रा केवल सरकार की जिम्मेदारी नहीं है, इसमें हर नागरिक की भूमिका है। घर का कचरा अलग रखना, सड़क पर कचरा नहीं फेंकना, सार्वजनिक स्थानों को साफ रखना और दूसरे लोगों को भी स्वच्छता के लिए प्रेरित करना, ये छोटे छोटे कदम बड़ा बदलाव ला सकते हैं। इसी सोच को आगे बढ़ाते हुए स्वच्छ भारत मिशन अब केवल शौचालय निर्माण का अभियान नहीं रहा, बल्कि स्वच्छता, कचरा प्रबंधन, लोगों के व्यवहार में बदलाव और जन भागीदारी से जुड़ा एक व्यापक प्रयास बन चुका है। क्योंकि जब हमारा घर साफ होता है तो परिवार स्वस्थ रहता है, जब गांव और शहर साफ होते हैं तो जीवन बेहतर होता है, और जब सफाई करने वाले व्यक्ति को भी सम्मान और सुरक्षा मिलती है तब स्वच्छता वास्तव में सम्मान से जुड़ती है। यही है स्वच्छता से सम्मान तक की यात्रा। उत्पल कुमार की रिपोर्ट के साथ मैं मनोज।
1: अक्षय जी, आपसे इंदौर की अगर बात की जाए तो 7 बार नंबर 1 ये बना, कैसे बना?
3: देखिए, उसका एक मिसाल छोटी सी बताता हूँ। मैं इंदौर बार बार गया हूँ। बोलते हैं झोलाधारी इंदौरी बोलते हैं वहाँ लोगों को।
1: अच्छा।
3: मतलब कोई अगर घर से निकलेगा अपने पास एक झोला लेके जाएगा, क्योंकि रास्ते में कोई कचरा अपना जो अपने जरिए से हो या कहां से कचरा दिखा या अपने कोई खरीदा कुछ छिलके निकले तो उसको झोला में लेके

0: घर में आएगा, उसको डिब्बे जो है उसका निपटान करेगा। जबकि भारत अभी तक भी हारा नीला में जूझ रहा है और स्वच्छ भारत मिशन की जितना काम करते हैं लोग, अर्बन लोकल बॉडीज हो, पंचायत हो, वो लोगों को समझा के थक गए कि भाई हारा नीला, एक सूखा और गीला कचड़े अलग अलग रखो, जो ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक हो, वेट या ड्राई हो। अभी तो सुप्रीम कोर्ट ने और आने वाले जो कचरा प्रबंधन के 26 के रूल्स के मुताबिक चार अनिवार्य कर लिया, दो से नहीं चलेगा, चार करना पड़ेगा। जो स्पेशल कचड़े हैं और सैनिटरी कचड़े हैं उसको अलग अलग रखना पड़ेगा। लेकिन इंदौर में आप जाएंगे, बहुत पहले 6 कचड़ों के डिब्बा होता है लोगों के घर, माने हर कचड़े का अलग अलग तरीके से निकाल कर उसको रोज डालना, उसके लिए समय लगाना पड़ता है, दिमाग लगाना पड़ता है, रिसोर्स लगाना पड़ता है, लेकिन करते हैं लोग। और क्योंकि जो कचड़ा सेग्रीगेट होता है या जो कचड़ा को भाग भाग अपना तरीके से किया जाता है वो सोना बनता है, वो बोलते हैं ना कचड़ा से कांचन बनता है, लेकिन जो सेग्रीगेटेड नहीं होता है वो बीमारी का जड़ बनता है। क्योंकि वो जाके फिर लैंडफिल में डालता है या रास्ते की साइड में छोटे हिप्स बनते हैं, फिर बड़ा लैंडफिल शहर के बाहर बनते हैं और दुनिया भर का उससे प्रॉब्लम निकलता है। जब तक हम लोग, चाहे जो सोर्स है, जो कचरे का सोर्स है, चाहे घर हो, फैक्ट्री हो, कॉलेज हो, मॉल हो या इंस्टीट्यूशनल एरिया हो, जहां अगर जहां से निकलता है कचड़ा वहां से अगर डिवाइड होकर नहीं रहता है तो प्रॉब्लम है। तो इंदौर में वो होता है। इंदौर के लोगों ने अपने सम्मान के साथ, अपना शहर के सम्मान के साथ सफाई को जोड़ा है। यहाँ तक वहाँ सफाई टूरिज्म होता है, लोग आके देखते हैं कि भाई सफाई यहाँ कैसे हुआ। वहाँ पार्क बने हैं सफाई की, जो कचड़े की जो बहुत बड़ा बड़ा होता है जमावड़ा, उसको निकाल कर एकर्स जमीन निकाल के वहाँ पार्क बना जाता है और सबसे बड़ा बायोफ्यूल का वहाँ प्लांट भी बना है, क्योंकि उसी से शहर का ट्रांसपोर्ट भी चलता है। और ये एक देखने की जगह है। एक जगह में तो वहाँ एक फूड मॉल्स उन्होंने बनाया है जो की कचरा की जगह को साफ करके तो वो बना है। और वहाँ की जो सैनिटेशन वर्कर्स की जो डिग्निटी है, लाइफ कंडीशन है, उनको जो फैसिलिटी है, उनका जो तरीके है, वो देखने के लिए बाहर के लोग जब आते हैं, जो तीर्थ में जाते हैं, अलग अलग जगह जाते हैं, उज्जैन वो इंदौर में एक स्टॉप ओवर लेते हैं कि हाँ देखें। लेकिन मैं आपको एक चीज पर क्वेश्चन करता हूँ, एक इंदौर से देश का काम नहीं चलेगा। स्वच्छ भारत मिशन के जो मैनेजर्स हैं और जो पॉलिटिकल लीडरशिप है वो भी इसको समझते हैं, इसीलिए अभी एक नया बनाया गया है कि इनको गोल्ड लेवल डाल के इनको कॉम्पिटिशन से अलग कर दिया जाए और दूसरों को भी मौका दिया जाए, जैसे सूरत, नवी मुंबई, दूसरे शहर भी आ रहे हैं उसके साथ शामिल होने के लिए। और ये सारे चीज के लिए जो गवर्नेंस मॉडल को मैं फिर एम्फसाइज करता हूँ, जो गुजरात से गवर्नेंस और स्वच्छता में खाली कंसंट्रेट नहीं है, पानी के पर भी है और पंचायती सिस्टम पर भी है, वो जीएसटी सिस्टम पर भी है, वुमेन्स एम्पावरमेंट पर भी है, हेल्थ डिलीवरी पर है, बहुत सारी चीज जो कि पब्लिक सर्विसेस होते हैं उसका एक तरीका है काम करने का, उसको मैं पॉलिसी ऑफ इम्प्लीमेंटेशन बोलूंगा। भाई आपका पॉलिसी, सब लोग सोचते हैं कि पॉलिसी और इम्प्लीमेंटेशन दो है, लेकिन मैं ये देख रहा हूँ ये गवर्नेंस मॉडल जो 25 साल से जारी है, ये भाई खाली पॉलिसी नहीं, पूरा देश में होगा, सब जगह होगा और इम्प्लीमेंट बढ़िया से होगा, इस तरह से चल रहा है, इसलिए स्वच्छता में काम हो पाया है, स्वच्छ भारत मिशन का सक्सेस के राज है।
1: बिल्कुल, आपने नागरिकों की बात बताई वहां पर, तो एक बहुत ही जरूरी चीज हो जाती है सरकार और आम नागरिकों के बीच में तालमेल बिठाना, तो जिसे हम सिविक सेंस के तौर पर कह सकते हैं, तो वहां के लोगों में सिविक सेंस कैसे जागा?
0: सिविक सेंस ना, ये जो लोगों ने अगर शहर की, या मेरा शहर की बात छोड़ दीजिए, मेरा घर की, मेरा टोली की, मेरा कॉलोनी की, मेरा आरडब्ल्यूए की, सम्मान के साथ इसको जोड़ूंगा, ये इंदौर वाले जो हैं अपना इज्जत के साथ इसको जोड़ दिए हैं ऐसे। और वहां जो नेचुरल सिटीजन का रिस्पांस जो है ना बहुत अच्छा रहा है। लेकिन बात है कि ये जो चीज है, ये जो इज्जत की जो अपना जो चस्का, ये बाकी शहरों में भी लगना शुरू हुआ है, लेकिन जितना जल्दी हो के लगे तो ये जो शहरी स्वच्छ भारत मिशन और ग्रामीण स्वच्छ भारत मिशन दो अलग अलग इकाई हैं और एक महुआ के अंदर है और दूसरा है जल शक्ति के अंदर, मंत्रालय के अंदर, ये काम तो जारी है, लेकिन एक दो साल में मुझे लग रहा है कि अगर लोगों का निरंतर प्रयास रहा तो हमारे शहर भी आगे आगे ठीक हो जाएंगे।
1: बिल्कुल रोशन जी, हम आपसे जानना चाहेंगे कि स्वच्छता सर्वेक्षण को आपने कैसे जाना और क्या इससे नगर पालिकाओं में वाकई काम करने का डर और सम्मान दोनों आया है?
2: जो सर ने भी बात कही है, इंदौर से ही मैं इसकी शुरुआत करूंगा, क्योंकि जब ये स्वच्छ भारत अभियान शुरू हुआ तो 2016 में कहा गया कि आप स्वच्छ सर्वेक्षण कीजिए और शहरों के बीच में एक कंपटीशन कराया गया कि जो नंबर एक पे आएगा, नंबर दो पर आएगा, तो वो जो है हर शहर ने उसमें पार्टिसिपेट किया। तो शुरुआत में 73 शहर थे उसमें, यही इंदौर जो 25वें नंबर पर था 2016 में और 2017 में नंबर एक पर आ गया। और वो सिर्फ इसलिए आया कि उन्होंने जो मानसिकता बदली कि जो हम लोग क्या करते हैं कि अपने घर से कूड़ा उठा के किसी एक जगह इकट्ठा कर देते हैं और वो एक जगह फिर धीरे धीरे धीरे वो पहाड़ बनता चला जाता है। तो इंदौर में लोगों ने जो घर घर से कूड़ा उठाना शुरू किया और उसमें उन्होंने, जैसे सर ने कहा कि उन्होंने

0: अलग अलग डिब्बे बनाए, गीला कचरा अलग, सूखा कचरा अलग, सैनिटेशन का अलग, हैजार्डियस अलग, तो उनको ठिकाने लगाना का भी इंतजाम फिर ठीक हो गया। तो यहाँ से कंपटीशन शुरू हुआ। तो ये सर्वेक्षण का फायदा हुआ कि अब इसमें सभी इसमें पार्टिसिपेट कर रहे हैं। हमने दिल्ली में देखा कि जो नई दिल्ली नगर पालिका है ये तो साफ रहता है, लेकिन जो हमारा दिल्ली नगर निगम का क्षेत्र है वहां हमने देखा कि अभी भी वहां समस्याएं हैं। तो कंपटीशन में आने से क्या हुआ कि लोगों की पार्टिसिपेशन तो रहा ही, उनके साथ साथ जो इसमें इन्वॉल्व है, क्योंकि इसमें बहुत सारे मंत्रालय हैं, इसमें बहुत सारे जो सेल्फ हेल्प ग्रुप हैं, इसमें सरकार के बहुत सारे जो विंग हैं, वो सबने मिलकर काम किया। तो उसका सर्वेक्षण का फायदा ये हुआ कि सभी शहर इसमें कंपटीशन में आ गए और कंपटीशन में एक दूसरे से अच्छा कैसा करें, इसलिए शहरों में अच्छा काम हो रहा है।
1: अक्षय जी, हम आपसे पूछना चाहेंगे, इंदौर के बाद हम सूरत की बात कर लेते हैं। तो 1994 में सूरत को प्लेग सिटी कहते थे, लोग शहर छोड़कर भाग रहे थे। फिर 2006 में तापी में भयानक बाढ़ आई, सूरत ने इस तबाही को मौके में कैसे बदला?
2: आप दूसरी बात पर अभी चले गए हैं लेकिन रिलेटेड है, एक पानी की बात पर चले गए हैं। जो फ्लड था वो तापी रिवर के साथ कनेक्टेड था और उसका गेट खुलने नहीं खुलने पर था, कभी कभी उसका होता है कि वो नेचुरल डिजास्टर था, एक एस्टिमेट किया गया है। हो सकता है कि कोई लोगों का मैनेजमेंट में भी कुछ दिक्कत हो, लेकिन उसके बाद वो सिक्स है, जैसे भूज का अर्थक्वेक भी हुआ था, मान लीजिए ये एक बहुत बड़ा बाढ़ था, करीब करीब सूरत शहर के काफी एरिया डूब गए थे उसमें। और उससे एक तो एक रिलीफ और रिहेबिलिटेशन क्विक रिस्पॉन्स कैसे हुआ वो एक देखने की बात है। हम अभी स्वच्छ भारत से थोड़ी एक बाहर जा रहे हैं क्योंकि हम फ्लड मैनेजमेंट वाटर गवर्नेंस के बारे में बात कर रहे हैं, क्योंकि मुझे लग रहा है कि जितना गुजरात से स्वच्छ भारत की निर्मल गुजरात के जरिए से सीख आया है जिसे स्वच्छ भारत बनना है, ऐसे ही नर्मदा का वाटर को लाके पहुंचाना डिफिकल्ट एरिया में, ड्रॉट प्रोन एरिया में, और पानी को रोकना जहां रोकना है, फ्लड मैनेजमेंट करना, और जहां सूखा है वहां पानी देना, और घर घर में टैप पहुंचाने का प्रबंधन करना, इसमें भी उसी टाइम में सरकार जो हम लोग बात कर रहे हैं 2000 से 2012 सरकार की बात कर रहे हैं, तो उस टाइम में गवर्नेंस में ये प्रयोग बहुत हुए थे और उसकी नतीजा आगे बढ़ाकर अभी जल जीवन मिशन मान लीजिए, जो कि अभी 80% घरों में टैप वाटर कनेक्शन दिया हुआ है रूरल एरियाज में, माने क्योंकि वो पानी की घर में पानी की फंक्शनल टैप वाटर कनेक्शन देना बहुत बड़ी बात है। वो भी गुजरात की ये सारे प्रयोग जो आपने जिक्र किया सूरत वगैरह से, वो क्योंकि पानी बहुत होता है तो लोगों का विनाश होता है, पानी का कम होता है लोगों का प्यास बढ़ता है, विनाश होता है। तो दोनों की चीज को इससे संतुलन करने का, नर्मदा की जो कैपेसिटी है उस कैपेसिटी को गुजरात के लिए उपलब्ध कराना और जो स्टेट्स इसमें इन्वॉल्व हैं उनमें सहमत लाना, इसमें उस टाइम का गुजरात सरकार जिसमें कि श्री नरेंद्र मोदी चीफ मिनिस्टर के हिसाब से अगुवाई कर रहे थे बहुत बड़ा भूमिका रहा है, उससे सीख मिला है। सूरत प्लेग सिटी के नाम में मैंने कष्ट लोगों को बहुत मिला था, और वो प्लेग क्यों हुआ था, सफाई नहीं होने के कारण, उसका मूल कारण सफाई, इसीलिए बहुत अचंबा की बात है। और लगता है कि भारत कितना आगे बढ़ा है कि जहां प्लेग हुआ था शहर लोग छोड़ दिए थे, शहर का लोग जाना बॉयकट कर दिया था कि भाई गंदगी इतना है कि यहां प्लेग होकर लोग मरते हैं, तो वो हुआ भारत की सबसे स्वच्छ शहर, वही इंदौर के साथ कंपटीशन करके आया, क्योंकि काम ऐसे हुआ है। और वो स्वच्छ भारत मिशन की टाइम में हुआ ज्यादातर वहां न्यू पड़ गया था, लेकिन स्वच्छ भारत मिशन के टाइम में हुआ, वो स्वच्छ सर्वेक्षण के रिजल्ट के हिसाब से सूरत 2 साल पहले पहली बार आया वो पैदान पर, तो बहुत बड़ा अचीवमेंट है। और नवी मुंबई भी आया है, बहुत कुछ शहर और भी कुछ शहर हैं जो आगे बढ़कर आए हैं, इंदौर पहले आया, लेकिन इन्होंने सब क्लब अभी अलग अलग कर दिया है, इनको गोल्ड क्लब अलग कर दिया है, क्योंकि सो दैट कि ऐसे नहीं होगी कुछ शहर बार बार और पॉपुलेशन के हिसाब से करते हैं, छोटे छोटे शहरों को मौका मिलता है। मुझे लेकिन लग रहा है कि फिर भी मान लीजिए 4,800-5,000 शहरों में आज की तारीख में जो 3-स्टार रेटिंग बोला जाता है, जो मिनिमम एलिजिबिलिटी है कि हाँ पूरी तरह स्वच्छ माना जाएगा, मुझे लग जाए कई 100 हैं, 1,000 तक भी नहीं है। तो इसीलिए हमें कुछ सफर और भी बाकी है, रास्ता सही है लेकिन मंजिल थोड़ी और दूर है, लेकिन इतना दूर नहीं है कि हो नहीं पाए, क्योंकि इसका संभावना गुजरात में बना, देश में प्रमाणित हुआ, देश खुले शौच से मुक्त हुआ 2019 में, अभी ये कचड़े से भी मुक्त होगा, क्योंकि नियत और जो मेहनत वो दोनों चल रहा है। लोगों को थोड़ी सी और जोड़ना है, और भी जैसे अब देखिए गांव के लोग जितना बढ़िया से जुड़ गए फेज 1 में, शहर के लोग इतना बढ़िया से अभी जुड़ नहीं पाए हैं, तो इसीलिए फेज वन की जो आग है लोगों की, जो इग्नाइट फायर था, वो फायर को वापस लाना पड़ेगा।
1: बिल्कुल। और महात्मा गांधी जी का मानना भी था कि अपने अंदर की स्वच्छता एक पहली चीज है जिसे पढ़ाया जाना चाहिए, बाकी बातें इसके बाद होनी चाहिए। और वैसे भी हर घर में स्वच्छता पहले ही पढ़ाई जाती है कि स्वच्छ रहना है।
2: क्योंकि एक चीज आप देखिए, जैसे भूख हुआ, नींद हुआ, ये कंजेनिटल है, ये जो बच्चा जन्म होता है उसको जरूर भूख होगा, सोएगा, लेकिन सफाई नहीं करता है। सफाई शिक्षा से आता है।

0: घर के बड़े जो हैं, चाहे बड़े भाई हो, पिताजी हो, माँ बहन हो, तो छोटे बच्चों को सिखाएंगे कि भाई सफाई तुम्हारा काम है, तुम साफ रहो और साफ करते रहो चारों तरफ। ये विदेशों में, सारे ईस्ट एशियन कंट्रीज में, यूरोपियन कंट्रीज में ये इनबिल्ट है। तो हमारे परिवार, क्योंकि ये अपने आप बायोलॉजिकली नहीं आता है, ये सोशियली आता है, एजुकेशनली आता है। इसीलिए जो कैंपेन है, इसलिए प्रधानमंत्री बार बार, कभी ऑफिशियली इसका नाम है स्वच्छ भारत मिशन, लेकिन वो बोलते हैं स्वच्छ भारत अभियान, वो हमेशा बोलते हैं, क्योंकि ये कैंपेन है, निरंतर चलता रहेगा। लोगों को उसकी तरफ पुश करना पड़ेगा। इकोनॉमिक्स में भी, जिसको स्वच्छ भारत मिशन के लिए सक्सेस का न्यू माना गया है, 4 P, फर्स्ट पी है पॉलिटिकल लीडरशिप, वो प्रधानमंत्री जी ने दिखाया, वो हमेशा आगे रहे हैं स्वच्छ भारत मिशन में। सबको, वो सबसे टॉप कम्युनिकेटर, टॉप लीडर्स, वो स्वच्छ भारत मिशन उनका दिल की स्पंदन है, ऐसे मुझे लग रहा है। दूसरा है पब्लिक फाइनेंस। कभी सैनिटेशन के ऊपर, स्वच्छता के ऊपर देश में इतना पैसा नहीं लगा था जितना पैसा इन्होंने दिया है और फाइनेंस मिनिस्टर्स ने भी दिया है। तीसरा है पार्टनरशिप, क्योंकि ये कोई छोटा मंत्रालय का काम नहीं है, सारे मंत्रालय, सारे कॉर्पोरेट, सारे मीडिया, सारे सिविल सोसाइटी लोग और सारे इंटरनेशनल एजेंसी मिलकर करेंगे पार्टनरशिप। चौथा सबसे बड़ा स्तंभ है पीपुल्स पार्टिसिपेशन, और लोग, ये लोगों का मूवमेंट है, लोगों को संभालना पड़ेगा, लोगों को साफ होना पड़ेगा, लोगों को साफ करना पड़ेगा, साफ नहीं तो माफ नहीं।
1: बिल्कुल। अब रोशन जी, अब आपसे हम सवाल करना चाहेंगे कि जब हम सफाई मित्र की बात करते हैं, सुरक्षा, वेस्ट मैनेजमेंट, महिलाओं की गरिमा की बात करते हैं, तो स्वच्छता का अर्थ कैसे बदला?
2: देखिए, इसमें 2-3 बातें समझनी जरूरी है
1: जी।
2: पहले, हम चूंकि मैं गांव से आता हूं, तो हम लोग खुले में ही शौच जाते थे
1: जी।
2: और गांव में तो इतनी समस्या नहीं थी, लेकिन शहरों में मैंने देखा कि महिलाओं के खिलाफ जो अपराध होते थे इसके कारण होते थे, इसलिए महिलाएं अंधेरा का इंतजार करती थी। और प्रधानमंत्री ने जब 2014 में लाल किले की प्राचीर से भी यही कहा था कि महिलाओं को जब इंतजार करना पड़ता है, या तो सुबह उनको जाना पड़ता है और या फिर उनको शाम को इंतजार करना पड़ता है, इसके कारण उनके कई बीमारियों से जूझती हैं। तो अभी मैं आंकड़े पढ़ रहा था WHO के, तो WHO ये कहता है कि कम से कम 3 लाख मौतें हैं जो स्वच्छ भारत अभियान से बची हैं, उनकी बीमारियां दूर हुई हैं। और प्रति घर से अगर हम अनुमान लगाएं तो 50,000 रुपए की दवाइयां जो लोग खाते थे वो बची हैं। और इसके अलावा जो सर्कुलर इकोनॉमी जो भी सर बात कर रहे थे कि कचरा है, कचरे का ढेर लग रहे हैं, तो अभी केवल हम उसको कचरा नहीं मान रहे, यानी जो वेस्ट टू वेल्थ, जो हमारा कचरा है उसको हम कैसे उसकी उपयोगिता करें, तो अभी हम उसे बिजली बना सकते हैं, हम उसे सड़कें बनाने के लिए उसका इस्तेमाल कर रहे हैं, तो सर्कुलर इकोनॉमी पे भी फोकस जा रहा है। तो जब ये अभी स्वच्छ भारत अभियान 2 जब शुरू हुआ था, तो उसका जो स्वच्छ भारत अभियान प्लस जो चल रहा है, तो उसमें यही है कि जो ठोस कचरा है और जो गीला कचरा है, जो आपका तरल कचरा है, उसका इस्तेमाल कैसे किया जाए कि ताकि उसका वेल्थ हम बना सके। और चूंकि अभी अर्बनाइजेशन हो रहा है और इतनी बड़े पैमाने पर है, अगर हम तमिलनाडु की बात करें, तमिलनाडु में तो 90% शहरीकरण हो गया है और ये सब जगह होने वाला है, तो उसमें जो कचरा प्रबंधन है वो सबसे बड़ी चुनौती, जैसे सर अभी कह रहे थे। तो अगर कचरा प्रबंधन, जो अभी हमारे पास आंकड़े हैं कि 1,58,000 टन प्रतिदिन हमारे यहाँ ये कचरा पैदा होता है, जिसमें से हम 1,31,000 टन हम इसको ठिकाने लगाते हैं, लेकिन अभी भी करीबन 27,000 टन प्रतिदिन है जो अभी बच जाता है, तो उसको ठिकाने लगाने की चुनौती है। तो अभी जैसे टेक्नोलॉजी आ रही है कि हम उसका बिजली बना सकते हैं, हम उसका दूसरे उपयोग कर सकते हैं, तो अगर हम उस टेक्नोलॉजी हमारे पास आ गई, तो आप सोचिए कि हम फिर जो हमारा कचरा है, जिसको हम कचरा कहते हैं, वो हो सकता है कि फिर हमारे वो सोना बन जाए।
1: बिल्कुल। तो अगर हमने अभी पहले शौचालय की बात करी और अब कचरा प्रबंधन की आपने उसके बारे में हमें बताया, तो अब हम हाइजीन पर आ जाते हैं। तो हम ये जानना चाहेंगे, हाथ धोना हो चाहे सैनिटरी नैपकिन का सही निपटारा हो, तो ये अभी भी शर्म की बात समझी जाती है, तो इससे आप क्या कहना चाहेंगे?
2: अभी तो जो स्वच्छ भारत अभियान प्लस है उसमें ये अलग है कि आप सैनिटेशन जो पैड वगैरह है इनके लिए इनका प्रबंधन अलग से होना चाहिए। और स्वच्छता के साथ अगर वो सफाई केवल ऐसा नहीं कि आपको जो है शौचालय आपके घर में बना दिए उसकी स्वच्छता, क्योंकि स्वच्छता सीधे आपके स्वास्थ्य से है। और जैसे मैंने कहा कि अभी WHO के जो आंकड़े हैं कि लोगों की जो बीमारियां होती थी, उन बीमारियों से जो हमारी मृत्यु दर है
1: जी,
2: जो बच्चों की जो इन्फेंट्री जो डायरिया है, हैजा है, आंत्रशोध होता था, वो सारों में बचत हो रही है। और हम मोटा मोटा तौर पर लगाएं, अगर आप हॉस्पिटलों में चले जाते थे उस वक्त, आज नहीं, आज से 10 साल पहले, तो मोस्टली जो केसेस होते थे वो डायरिया के होते थे, हैजा के होते थे। अभी तो मुझे नहीं लगता कि 10 साल के अंदर हमने हैजा के केस सुने, पहले कितने केसेस होते थे। तो कम से कम ये स्वच्छ भारत अभियान की बहुत बड़ी सफलता है कि लोगों को हैजा नहीं हो रहा है, डायरिया नहीं हो रहा है।
0: ये सारे जो स्टडीज हैं ये कहता है कि इंडिया को कितना इससे फायदा हुआ है, बच्चों को काफी फायदा हुआ है और एम्प्लॉयमेंट का जो बचत की बात हुआ उनका हुआ है और ग्राउंड वाटर कंटेमिनेशन उसमें बहुत फायदा हुआ है क्योंकि जो खुले में सोच होता है वो ग्राउंड वाटर का अफेक्ट करता है, फिर वो कुछ चीज के जरिए से पानी के जरिए से इंसान के अंदर जाता है, उससे बहुत हेल्थ से फर्क पड़ा है। खाली इंडियन एजेंसीज नहीं, बाहर की एजेंसीज, बाहर की जो बड़े बड़े हेल्थ के मैगजीन्स हैं, रिपोर्ट्स हैं, स्टडीज हैं, वो भी इसको एस्टेब्लिश किए हैं। तो बहुत तरह तरह के फायदा मिला है गंदगी रहने की, या हाइजीन का बात आपने कहा, अगर हैंड वॉश नहीं करें तो हैंड वॉश नहीं करने का इसका सारा जो इम्पैक्ट है कुछ टाइम के बाद होता है और इमीडिएटली नहीं दिखता है, तो वही तो खराब बात है।
1: हाथ जो है मुंह में लगाना, ये सब चीजें
0: हाइजीन का कॉन्सेप्ट है, इसको इसलिए वॉश बोलते हैं। वॉश को एक सेक्टर माना जाता है, वाटर, सैनिटेशन एंड हाइजीन, वो साथ में देखा जाता है। तीनों चीज इंटरनेशनली नेशनली जहां प्रोग्राम होता है ये तीनों चीज एक साथ रहते हैं क्योंकि तीनों चीज का रिलेशनशिप एक दूसरे के साथ है। तो हाइजीन का एक बड़ा कॉन्सेप्ट आपने जैसे कहा कोविड के समय में आया, बिकॉज हाइजीन के बिना आप मर जाएंगे, आपको लगा। और लोगों को उस टाइम में यही तो विडंबना है कि लोग जो अच्छी चीज है वो डर कर ही जानते हैं, भाई ये नहीं करूंगा तो मर जाऊंगा, सोशल डिस्टेंस मेंटेन करना है, मास्क पहनना है, हाथ धोना है, नहीं तो मैं मर जाऊंगा। इसी तरह का अगर इनको लोगों को इस तरह का इसको ट्रिगर्स बोलते हैं, बिहेवियर चेंज के बाद आपने कहा लोगों का, उसमें ट्रिगर्स क्या है, माने कभी आपका जागरूकता किस ट्रिगर से, कभी डर कर करते हैं, कभी बोलते हैं कि नहीं प्यार से, जो भाई बहन का भाई, जब आप जानते हैं शौचालय, शौचालय का जो मूवमेंट चला था पहला 5 साल 14 से 19 तक, उसमें बहुत सारे रक्षाबंधन में भाई बहनों को टॉयलेट्स दिए हैं गिफ्ट में, और शादियों में जैसे गिफ्ट देते हैं तो उसमें भी टॉयलेट्स दिया गया है। तो माँ की बेटे के लिए जो प्यार है, बच्चों को रखने के लिए, बच्चे के आदर करते हैं, बच्चों को प्यार करते हैं, तो उसका एक निशान है कि उसका उसका जो सैनिटेशन एस्पेक्ट है उसको ठीक से ख्याल रखा जाए। ये सब चीजों को मानना पड़े। तो बिहेवियर जो चीज है बहुत बड़ा चीज है क्योंकि सस्टेन करना है अगर आगे, इसमें बिहेवियर को तो मजबूत करना पड़ेगा। खाली एक्सेस से इंफ्रास्ट्रक्चर बना देने से नहीं होगा, इसलिए स्वच्छ भारत मूवमेंट को लार्जेस्ट सैनिटेशन मूवमेंट ऑफ द वर्ल्ड किया जाता है, लार्जेस्ट इन बिहेवियर चेंज मूवमेंट ऑफ द वर्ल्ड भी कहा जाता है।
1: तो सर 2047 तक विकसित भारत के लिए स्वच्छता का अगला लक्ष्य क्या होना चाहिए?
0: कंप्लीट, मतलब मुझे लग रहा है कि स्पॉटलेस कंट्री होना चाहिए। स्पॉटलेस, जैसे आप जाते हैं ना, आप विदेश में क्या जाते हैं, जब कोई आइकॉनिक प्लेस जाते हैं, टूरिस्ट प्लेस जाते हैं, बड़े बड़े, अरे क्या साफ सफाई है बोलते हैं ना, ऐसे भी इंडिया में हर शहर, हर जगह जहां फुटफॉल है, टूरिस्ट सेंटर हो, पिलग्रिमेज सेंटर हो, ऑफिस हो, दफ्तर हो, जहां पब्लिक एरिया हो, पार्क हो, रेलवे स्टेशन हो, लोग जैसे उनको लगे कि ये सबसे साफ साफ जगह है, इंसान कहां भी बैठ सकता है, कहां भी खड़ा हो सकता है, कहां भी बदबू नहीं आ रहा है। जो बोलते हैं अर्थ, एयर, वाटर, तीनों चीज जो है हमारा साथ जुड़ा हुआ है, ये तीनों चीज ही कंप्लीटली साफ रहे, ये मेरा 2047 को मैं जब विकसित भारत देखूंगा, मैं जानूंगा कि मेरा देश की हर मिट्टी, हर हवा, हर पानी साफ हो, हर शहर साफ हो, संपूर्ण तरह से, एक है ना कंप्लीट क्लीनलीनेस, एक है स्वच्छ, एक है कंप्लीट क्लीनलीनेस, और पूरा संपूर्ण तरह से स्वच्छ हो हर गाँव, हर शहर।
1: और रोशन जी, स्वच्छता की हम बात कर रहे हैं तो इसमें सफाई जो कर्मी हैं उनकी भूमिका बहुत अहम होती है, उनको यूनिफॉर्म मिलती है, पीपीई किट मिलती है, उनके बच्चे को स्कॉलरशिप मिलती है, तो उसे लगता है कि देश उसे देख रहा है, तो क्या स्वच्छता से सम्मान तक का सफर यही है?
2: असल में जो सफाई कर्मचारी हमने अपनी आंखों से देखे हैं, और चूंकि जब हम कवर करने जाते हैं तो हमने ऐसी घटनाएं देखी हैं कि सफाई कर्मचारी सीवर में जाते हैं तो उनके गैस के कारण उनकी मौत हो जाती
1: है। ये सबसे बड़ी चुनौती थी, बहुत लोगों की मौतें हो जाती,
2: बहुत मौतें हुई, और उसमें फिर सुधार हुआ कि उनको पीपीई किट मिलना चाहिए, और वहां अभी तो सुप्रीम कोर्ट का भी ऑर्डर है उसमें, गवर्नमेंट ने भी उसमें जो नोटिफिकेशन कर दिया है कि कोई भी इंसान गटर के अंदर नहीं जाएगा, मशीन से सफाई होगी। और देखिये मेंटेलिटी बदलने वाली बात है कि प्रधानमंत्री ने उनको सफाई मित्र कहा कि आप उनको सफाई कर्मचारी मत कहिए, क्योंकि असल में वो आपका कचरा उठा रहे हैं, वो आपके जो काम आपको करना चाहिए आप अपना काम नहीं कर रहे हैं, वो आपका बदले आपका काम कर रहे हैं, तो इसलिए उनकी तो बहुत बड़ी भूमिका है, तो उनको तो जितना सम्मान मिलना चाहिए, जितनी उनको फैसिलिटी मिलनी चाहिए, जितने उनके बच्चों का ध्यान रखना चाहिए, तो उतना मुझे लगता है कमी कम होगा। एक बात और जो अभी आपने कही कि भय जरूरी है, जैसे अभी कोविड में भय था तो लोगों ने अपने हाथ पांव धोना और सैनिटाइज करना जरूरी था, एक भय और दिखाना जरूरी है कि अभी जैसे हमारी सरकार ने कर रखा है कि अगर कोई सार्वजनिक जगहों पर अगर थूकता है तो उस पर 200 रुपए का जुर्माना है, लेकिन असल में हो नहीं रहा है, आप देख रहे हैं कि हमारे यहाँ पान खाने वाले लोग बहुत हैं, और जितना सरकार साफ करे, लोग साफ करे, कोई ना कोई पान की पीक मारकर उसे गंदा कर देता है। तो यहाँ मुझे लगता है कि सरकार को यहाँ पर फोकस करना पड़ेगा। यहाँ दंड और डर दोनों, भय भी जरूरी है और दंड भी जरूरी है। तो मुझे लगता है कि जो हम बात कर रहे हैं, जो 2047 तक पूरा हमारा भारत बहुत सुंदर दिखे और हमारे गाँव बहुत खूबसूरत दिखे, जितने हमारे जो मॉन्यूमेंट है, हमारे जो टूरिस्ट स्थल है, उसमें जो सरकार ने भी पीपीपी मॉडल शुरू कर दिया है कि वो कोई भी कंपनी आकर सीएसआर मॉडल के तहत किसी भी, जैसे लाल किला को, ताजमहल को, किसी को भी वो एडॉप्ट कर ले, उसकी साफ सफाई का अपने हाथ में ले ले।
0: काम तो बहुत हो रहा है, लेकिन बहुत जल्दी और ज्यादा होने की जरूरत है। और लेकिन ये हमेशा डिबेट रहेगा कि ये पनिशेबल क्या जाना चाहिए एजुकेशनली। जनरली हमारे डेमोक्रेटिक इथर्स के साथ ये सारी चीज, क्योंकि इतना 1.5 बिलियन पॉपुलेशन है और इसमें कौन कितना करता है, तो इस तरह का जो लोकल गवर्नमेंट का जो अधिकार के अंदर कुछ कर सकते हैं, लेकिन बेसिकली तो ये फिर अपने आप में रेस्पॉन्ड करने वाले जो है ना, सिविक रेस्पॉन्सिबिलिटी जो है। हम तो कुछ सोचे ना भाई, खाली कंप्लेन करने से थोड़ी होगा। हम कुछ सोचे, प्रदूषण के बारे में कंप्लेन करेंगे, कचरा के बारे में कंप्लेन करेंगे, हम क्या कर रहे हैं, इंडिविजुअल क्या कर रहा है, हम सोसाइटी के लिए क्या कर, वो है एक जिम्मेवारी की बात है, वो बहुत जरूरी है स्वच्छ भारत मिशन के कॉन्टेक्स्ट में।
1: बिल्कुल अक्षय जी, आपने बहुत अच्छी चीज बताई है। तो हम ये भी आपसे जानना चाहेंगे कि भारत को जीरो वेस्ट नेशन बनाने के लिए क्या मंत्र होना चाहिए।
0: जीरो वेस्ट नेशन एक तो है कि बहुत एक गांधीयन फिलोसफी था, वो बहुत अभी भी सरकार की पॉलिसी के तहत है, RRR, रिड्यूस रियूज रिसाइकल। रिड्यूस जो है गांधीवादी है, भाई आप कंजम्पशन को कम करिए ना, लोगों का कंजम्पशन का माहौल बढ़ रहा है, लेकिन रीयूज रिसाइकल जो है, ये दोनों, खासकर रिसाइकल, रीयूज का भी एक लिमिटेशन है, लेकिन रिसाइकल जो है सोने, कुछ भी चीजें, सर्कुलर इकोनॉमी की बात हुआ, सारी चीज को रिसाइकल करने का मैं देख रहा हूँ। वेस्ट कम से कम जनरेट करें, आपने जीरो वेस्ट कंट्री के बारे में बताया, कम से कम जनरेट करें। हमारा घर, हमारा दफ्तर, हमारा जगह से वेस्ट कम निकले, और जो निकले उसका निपटान होने का प्रिंसिपल लेके, स्ट्रैटेजी लेके, टेक्नोलॉजी लेके, रिसोर्स लेके, क्यों इसका निपटान तो जरूरी होगा। जितना निकले कम निकले, और जब निकले निपटान हो, यही होने से जीरो वेस्ट होगा।
1: तो अंत में हम आप दोनों मेहमानों से चाहेंगे कि आप हमारे श्रोताओं के लिए, हमारे आम नागरिकों के लिए कुछ संदेश अगर देना चाहें तो।
2: मैं तो इतना ही कहूंगा कि अभी ई कॉमर्स के जमाने में इतना ज्यादा वेस्ट घर पर आ रहा है, चाहे वो थैली के जरिए आ रहा है, चाहे प्लास्टिक के जरिए आ रहा है, उसका कम से कम इस्तेमाल हो। और जितने हमारी ई कॉमर्स कंपनियां हैं, उनको भी निर्देश दिया जाए कि आप जो अत्यधिक प्लास्टिक भेज रहे हैं, पैकेजिंग भेज रहे हैं, उसको कम से कम किया जाए।
1: बिल्कुल, क्योंकि बेहतर साफ सफाई से ही भारत के सिर्फ गाँव के लिए नहीं, मुझे लगता है अक्षय जी, बल्कि शहरों को भी आदर्श बनाया जा सकता है।
0: मेरा इतना ही मैसेज रहेगा कि आप घर के अंदर साफ सफाई का काम अपने आप करें, और अपना घर के आसपास की साफ सफाई अपने आप करें, और दूसरी बात है कि प्लास्टिक के इस्तेमाल कम से कम करें या नहीं करें, और घर की कूड़े का जरूर सेग्रीगेट करें खुद।
1: तो श्रोताओं, निर्मल गुजरात ने कैसे राह दिखाई आज हमने जाना, स्वच्छ भारत ने उसे कैसे जन आंदोलन बनाया, और सूरत जैसे शहरों ने साबित किया कि अगर जन सेवा की नियत हो तो कचरे से भी कंचन बनता है। स्वच्छ भारत सिर्फ सड़कों की सफाई नहीं, हर नागरिक के सम्मान की कहानी है। इसी के साथ जन सेवा से देश सेवा की आज की कड़ी यहीं समाप्त होती है। आप दोनों मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने अपना कीमती समय हमें दिया और आप स्टूडियो में रहे।
0: धन्यवाद।
2: धन्यवाद।
1: तो फरहत नाज को भी दीजिए इजाजत। नमस्कार।
3: विशेष श्रृंखला जन सेवा से देश सेवा की 7वें संस्करण में आप सुन रहे थे परिचर्चा, स्वच्छता से सम्मान तक। इसमें भाग ले रहे थे स्वच्छ भारत अभियान के पूर्व महानिदेशक अक्षय राउत और वरिष्ठ पत्रकार रोशन गौड़। कार्यक्रम का संचालन कर रही थी आकाशवाणी संवाददाता फरहत नाज। ये कार्यक्रम आकाशवाणी के समाचार सेवा प्रभाग द्वारा प्रस्तुत किया गया। इसे आप हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR और यूट्यूब चैनल न्यूज ऑन AIR ऑफिशियल पर भी सुन सकते हैं। इस कार्यक्रम के संबंध में अपनी प्रतिक्रिया आप हमें ईमेल या व्हाट्सएप के माध्यम से भेज सकते हैं। ईमेल का पता है airnsdtalks@gmail.com और व्हाट्सएप नंबर है 9289094044।

नमस्कार, आकाशवाणी दिल्ली से प्रादेशिक समाचार के साथ मैं फरहत ताज। और अब मुख्य समाचार। दिल्ली मंत्रिमंडल ने महिलाओं और ट्रांसजेंडर्स के आर्थिक सशक्तिकरण और सुरक्षित परिवहन के लिए दुर्गा योजना को स्वीकृति दी। दिल्ली सरकार ने शहरी निकायों के लिए 1,850 करोड़ रुपए की दूसरी किस्त जारी की। आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के आज 8 वर्ष पूरे हो गए हैं। दिल्ली में त्योहारों के मौसम में मिलावटी खोया, पनीर और छेना के खिलाफ अभियान तेज। और दिल्ली सरकार ने इस वर्ष गणपति विसर्जन के लिए राजधानी में 81 कृत्रिम विसर्जन कुंडों की व्यवस्था की है।

0: 700 गुलाबी रंग के इलेक्ट्रिक ऑटो पंजीकृत करने का प्रस्ताव है। इनमें 1170 इलेक्ट्रिक ऑटो महिलाओं के लिए और 130 इलेक्ट्रिक ऑटो ट्रांसजेंडर लाभार्थियों के लिए होंगे। दिल्ली सरकार ने बताया कि आवेदक योजना के लिए बनाए गए ऑनलाइन पोर्टल के माध्यम से आवेदन कर सकेंगे। दुर्गा योजना के अंतर्गत ई ऑटो पर 3 वर्ष की अनिवार्य लॉक इन अवधि होगी। इस अवधि में वाहन को बेचा, हस्तांतरित या अन्य तरीके से निस्तारित नहीं किया जा सकेगा। सौम्या की रिपोर्ट के साथ प्रादेशिक समाचार के लिए नीतिका गुप्ता।
1: दिल्ली सरकार ने अपनी जनकल्याणकारी और जनहित से जुड़ी जानकारी अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाने के लिए एक महत्वपूर्ण पहल की शुरुआत की। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने आज आईटीओ मेट्रो स्टेशन से विभिन्न योजनाओं और नागरिक सुविधाओं की जानकारी से सुसज्जित विशेष मेट्रो ट्रेन को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। इस पहल की शुरुआत सेवा संकल्प अभियान के अंतर्गत की गई। एक रिपोर्ट।
2: इस अभियान के अंतर्गत डिजिटल स्क्रीन पर निर्धारित अंतराल पर योजनाओं और सेवाओं से संबंधित संदेश प्रदर्शित किए जाएंगे। इन स्क्रीन पर 5 मिनट के अंतराल पर 15 सेकंड के लिए संदेश दिखाए जाएंगे। इसके साथ ही मेट्रो स्टेशनों पर स्थायी प्रचार पैनल भी लगाए जाएंगे। प्रत्येक स्टेशन पर पैनलों के माध्यम से योजनाओं और सरकारी पहलों की जानकारी प्रदर्शित की जाएगी। इस अवसर पर श्रीमती गुप्ता ने कहा कि दिल्ली मेट्रो प्रतिदिन बड़ी संख्या में दिल्ली वासियों को जोड़ती है और इस अभियान के माध्यम से योजनाओं की जानकारी पहुंचाने की यह पहल सरकार और जनता के बीच सूचना की दूरी को कम करने में सहायक होगी। दिल्ली सरकार ने बताया कि यह ट्रेन रेड, येलो, ब्लू, ग्रीन और वायलेट लाइनों पर चलाई जाएगी, जिससे दिल्ली के नागरिक अपने लिए बनाई गई योजनाओं के बारे में जान सकेंगे और आसानी से उनका लाभ उठा सकेंगे। प्रादेशिक समाचार के लिए सौम्या शरण।
1: दिल्ली के पर्यटन मंत्री कपिल मिश्रा ने कहा है कि दिल्ली सरकार राजधानी को ट्रांजिट सिटी की छवि से निकालकर एक प्रमुख वैश्विक डेस्टिनेशन सिटी के रूप में स्थापित करने की तरफ अग्रसर है। श्री मिश्रा आज एक निजी मीडिया के पर्यटन समिट में शामिल हुए। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि लाइव कॉन्सर्ट्स और बड़े आयोजनों के लिए स्थान के कायाकल्प, वायबिलिटी गैप फंडिंग और सिंगल विंडो क्लियरेंस जैसी व्यवस्थाएं की गई हैं।
3: हमारे जो हेरिटेज हैं, जो मॉन्यूमेंट्स हैं, उनको डेवलप करना, उनको ठीक करना, उनके रिनोवेशन का काम और साथ ही साथ वहाँ पे सोशल और कल्चरल इवेंट्स, उसकी हम लोग पॉलिसी लेकर आए हैं। सिंगल विंडो क्लियरेंस दिल्ली में इवेंट के लिए हम लोग लेकर आए हैं। फिल्म शूटिंग डेस्टिनेशन के तौर पर दिल्ली को डेवलप करने के लिए हम लोगों ने बहुत सारे नए इनिशिएटिव लिए हैं। फिल्म सब्सिडी की एक पॉलिसी लेकर आए हैं।
1: दिल्ली के श्रम मंत्री कपिल मिश्रा ने आज दिल्ली सचिवालय में दिल्ली भवन और अन्य सन्निर्माण श्रमिक कल्याण बोर्ड के कार्यों की समीक्षा बैठक की। बैठक के दौरान श्री मिश्रा ने विभाग के सचिव तथा वरिष्ठ अधिकारियों के साथ श्रमिक कल्याण योजनाओं, पंजीकरण प्रक्रिया और श्रमिकों को मिलने वाली सुविधाओं को और अधिक सरल और पारदर्शी बनाने पर विस्तृत चर्चा की। दिल्ली सरकार ने राजधानी के शहरी निकायों के लिए 1,850 करोड़ रूपये की दूसरी किस्त जारी कर दी है। ये किस्त वित्तीय वर्ष 2026-27 के लिए दिल्ली के तीनों नगर निकायों, नगर निगम दिल्ली, नई दिल्ली नगर पालिका परिषद और दिल्ली छावनी बोर्ड के लिए स्वीकृत की गई है। दिल्ली के शहरी विकास मंत्री आशीष सूद ने कहा कि ये राशि राजधानी में स्थानीय निकायों की मूलभूत नागरिक सेवाओं और दायित्वों को सुचारू रूप से संचालित करने में उपयोग की जाएगी। इसके साथ ही श्री सूद ने स्थानीय निकायों को वित्तीय अनुशासन का कड़ाई से पालन सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि जारी की गई धनराशि का उपयोग केवल जनहित में किया जाए तथा निर्धारित समय सीमा के भीतर उपयोगिता प्रमाण पत्र प्रस्तुत किए जाएं। भारतीय जनता पार्टी अध्यक्ष नितिन नवीन ने सभी 36 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के लिए पार्टी प्रभारी और सह प्रभारियों की नियुक्ति की है। पूर्व केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी को छत्तीसगढ़ और हरियाणा का प्रभारी बनाया गया है, जबकि हरीश द्विवेदी बिहार का दायित्व संभालेंगे। विनय सहस्रबुद्धे को दिल्ली का प्रभारी नियुक्त किया गया है। जमयांग सेरिंग नामग्याल और दशनाबेन जरदोश को दिल्ली का सह प्रभारी बनाया गया है। दिल्ली विधानसभा अध्यक्ष विजेंद्र गुप्ता ने आज ब्राजील दौरे के दौरान रियो डी जेनेरियो राज्य के कार्यवाहक गवर्नर और अपीलीय न्यायाधीश महामहिम रिकार्डो कॉटो डी कास्त्रो से मुलाकात की। बैठक के दौरान भारत और ब्राजील के बीच संस्थागत जुड़ाव को मजबूत करने पर चर्चा की गई। दोनों नेताओं ने लोकतांत्रिक शासन, सार्वजनिक संस्थानों तथा आपसी हित के विभिन्न विषयों पर विचारों का आदान प्रदान किया। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी दिल्ली से सुन रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर लॉगिन कर सकते हैं।
4: और ज्यादा खबरों के लिए expert@AIRnews हिंदी को फॉलो करें और YouTube पर न्यूज ऑन AIR ऑफिशियल को सब्सक्राइब करें।
1: आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के आज 8 वर्ष पूरे हो गए हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सितंबर 2018 में झारखंड के रांची में इस योजना का शुभारंभ किया था। यह विश्व की सबसे बड़ी सरकारी स्वास्थ्य

0: बीमा योजना बन गई है। प्रधानमंत्री ने कहा कि इस योजना से चिकित्सा खर्च में रिकॉर्ड बचत हुई है और गरीब तथा मध्यम वर्ग को लाभ मिला है। श्री मोदी ने कहा कि 8 वर्ष पहले ये योजना प्रत्येक भारतीय को उच्च गुणवत्ता वाली और किफायती स्वास्थ्य सेवा प्रदान करने के लिए शुरू की गई थी। उन्होंने कहा कि आज 6 करोड़ से अधिक लाभार्थियों को 5 लाख रुपए तक का स्वास्थ्य बीमा लाभ मिल रहा है। इस अवसर पर दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने कहा कि ये योजना प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की संवेदनशील और जनकल्याणकारी सोच का सशक्त उदाहरण है। एक रिपोर्ट।
1: आयुष्मान भारत योजना के तहत पिछले 8 वर्षों में 13 करोड़ से अधिक लोगों ने मुफ्त इलाज का लाभ उठाया है, जिस पर सरकार ने 2 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा खर्च किए हैं। इस योजना के तहत 38,000 सरकारी और निजी अस्पतालों को जोड़ा गया है और यह योजना देश के सभी 36 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में लागू है। इससे देश भर में लोगों को स्वास्थ्य सेवाएं आसानी से मिल रही है और गंभीर बीमारियों के इलाज की सुविधा भी मिल रही है। हाल ही में मोदी सरकार ने इस योजना का लाभ 70 वर्ष और उससे अधिक उम्र के बुजुर्गों के साथ साथ 37 लाख से अधिक आशा कार्यकर्ताओं और आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं के परिवारों तक भी बढ़ाया है। इस योजना का मुख्य उद्देश्य गरीब, जरूरतमंद और कमजोर वर्ग के लोगों को बेहतर स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध कराना है। दीपेंद्र कुमार, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: माई भारत प्लेटफॉर्म पर पंजीकृत युवाओं की संख्या 3 करोड़ से अधिक हो गई है। वर्ष 2023 में शुरू किए गए इस प्लेटफॉर्म पर युवाओं की बढ़ती भागीदारी देखने को मिल रही है। इसके माध्यम से युवा सीखने, स्वयं सेवा, नेतृत्व, नागरिक भागीदारी और युवा केंद्रित गतिविधियों में हिस्सा ले रहे हैं। एक रिपोर्ट।
2: युवा कार्यक्रम और खेल मंत्रालय के युवा कार्यक्रम विभाग के अंतर्गत संचालित माई भारत देश के युवाओं को सीखने, नेतृत्व करने और समाज की सेवा से जुड़ने वाला राष्ट्रीय मंच है। इसका उद्देश्य 2047 तक विकसित भारत के निर्माण में युवाओं की भागीदारी सुनिश्चित करना है। मंत्रालय ने एक बयान में बताया कि पिछले वर्ष अक्टूबर में इस प्लेटफॉर्म पर पंजीकरण की संख्या 2 करोड़ से अधिक हो गई थी। अब ये 3 करोड़ के आंकड़े को पार कर गई है। माई भारत के माध्यम से युवा अनुभव आधारित सीखने के कार्यक्रमों, स्वयं सेवा के अवसरों, क्विज, नेतृत्व गतिविधियों, युवा संवाद और सामुदायिक कार्यक्रमों में भाग ले सकते हैं। मंत्रालय के अनुसार इस वर्ष अगस्त तक 1,22,000 से अधिक युवाओं ने करीब 25,000 अनुभव आधारित सीखने के कार्यक्रमों में पंजीकरण कराया था। अभिनव की रिपोर्ट के साथ प्रादेशिक समाचार के लिए समाचार कक्ष से वैष्णवी।
0: दिल्ली सरकार ने त्योहारों के मौसम में मिलावटी खोया, पनीर और छेना के खिलाफ अपना अभियान तेज कर दिया है। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता के निर्देश पर खाद्य सुरक्षा विभाग ने पिछले 1 महीने के दौरान अब तक 4,000 किलोग्राम से अधिक मिलावटी खोया और पनीर नष्ट किया है। दिल्ली सरकार के अनुसार मोरीगेट खोया मंडी में की गई जांच के दौरान खोया के 30 नमूने लिए गए, जिनमें से 22 नमूने मानव उपभोग के लिए असुरक्षित पाए गए। इसी क्रम में खाद्य सुरक्षा विभाग ने आज खाड़ी बावली, ओखला सब्जी मंडी, पूर्वी दिल्ली के झील क्षेत्र और पश्चिमी दिल्ली की जनकपुरी मंडी समेत विभिन्न स्थानों पर जांच और परिवर्तन कार्रवाई की। विभाग ने स्पष्ट किया है कि त्योहारों का मौसम समाप्त होने तक ये अभियान जारी रहेगा। दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर पंकज कुमार सिंह ने आज जीबी पंत अस्पताल का औचक निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान श्री सिंह ने दवाओं की उपलब्धता, मरीजों को मिल रही सुविधाओं और अस्पताल के विभिन्न विभागों के कार्यों का जायजा लिया। इस अवसर पर श्री सिंह ने अस्पताल में मौजूद मरीजों और डॉक्टरों से बातचीत कर अधिकारियों को जरूरी दवाइयों की 100% उपलब्धता सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि दवाओं की उपलब्धता की नियमित निगरानी की जाएगी और अस्पताल प्रशासन की जिम्मेदारी होगी कि मरीजों को बिना किसी अनावश्यक परेशानी के जरूरी दवाएं उपलब्ध हों। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी दिल्ली से सुन रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर लॉगिन कर सकते हैं।
3: खबरों और अपडेट्स के लिए कभी भी कहीं भी expert@airnewshindi और फेसबुक पर ऑल इंडिया रेडियो न्यूज को फॉलो करें।
0: दिल्ली सरकार ने इस वर्ष गणपति विसर्जन के लिए राजधानी में 81 कृत्रिम विसर्जन कुंडों की व्यवस्था की है। सोशल मीडिया पोस्ट में मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने कहा कि इस पहल का उद्देश्य लोगों की आस्था और भक्ति का सम्मान करते हुए पर्यावरण की रक्षा करना है। श्रीमती गुप्ता ने सभी नागरिकों से अपील की है कि वे गणपति विसर्जन के लिए इन कृत्रिम विसर्जन कुंडों का अधिक से अधिक उपयोग करें और श्रद्धा के साथ साथ दिल्ली के पर्यावरण को सुरक्षित रखने में अपना योगदान दें। गृह मंत्रालय सरकारी कार्यालयों में स्वच्छ और पर्यावरण अनुकूल स्तरीय कार्यस्थल बनाने के विशेष अभियान का छठा चरण चलाएगा। ये अभियान अगले महीने की 2 तारीख से शुरू होकर 31 तारीख तक चलेगा। ये अभियान प्रधानमंत्री के सरकारी कार्यालयों में स्वच्छता को स्थायी रूप देने के दृष्टिकोण को लेकर चलाया जा रहा है। इसका उद्देश्य लंबित मामलों को कम करने के साथ साथ स्वच्छता को बढ़ावा देना, कामकाज को व्यवस्थित करना और

0: लंबित शिकायतों का निपटारा करना है। भारतीय रेलवे ने दक्षिण मध्य रेलवे पर पहली बार कवच के चौथे चरण की शुरुआत करते हुए रेल सुरक्षा के क्षेत्र में महत्वपूर्ण उपलब्धि हासिल की है। एक रिपोर्ट।
1: कवच भारत में विकसित की गई एक स्वचालित ट्रेन सुरक्षा प्रणाली है, जिसका उद्देश्य रेल संचालन को अधिक सुरक्षित बनाना है। यह प्रणाली लोको पायलट को ट्रेन की निर्धारित गति सीमा में चलाने में मदद करती है। यदि किसी स्थिति में लोको पायलट समय पर ब्रेक नहीं लगाता तो जरूरत पड़ने पर कवच अपने आप ब्रेक लगा सकता है। इस तकनीक का मुख्य उद्देश्य खतरनाक परिस्थितियों में ट्रेन की गति को नियंत्रित करना, ट्रेनों के बीच टक्कर के जोखिम को कम करना और खराब मौसम और कम दृश्यता जैसी परिस्थितियों में ट्रेन संचालन को अधिक सुरक्षित बनाना है। दक्षिण मध्य रेलवे पर कवच 4.0 का सफलतापूर्वक संचालन शुरू होना भारतीय रेलवे की स्वदेशी सुरक्षा तकनीक को मजबूत करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। दीपेंद्र कुमार के साथ अमन यादव, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: इंदिरा गांधी राष्ट्रीय कला केंद्र INGNCA में 24 से 26 सितंबर तक सातवें नदी उत्सव का आयोजन किया जाएगा, जिसमें यमुना पर अकादमिक विमर्श केंद्रित रहेगा। कार्यक्रम में नदियों से संबंधित पारंपरिक ज्ञान, समकालीन चिंताओं तथा उनके सांस्कृतिक और सामाजिक महत्व से जुड़ी सामग्री प्रस्तुत की जाएगी। INGNCA के सदस्य सचिव डॉ सच्चिदानंद जोशी ने कहा कि भारत में नदियां केवल जल का स्रोत नहीं बल्कि देश की संस्कृति, परंपराओं और जीवन शैली का अभिन्न हिस्सा है। देश भर में आज 11वां आयुर्वेद दिवस मनाया गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने इस अवसर पर देशवासियों को शुभकामनाएं दी हैं। श्री मोदी ने सोशल मीडिया पोस्ट में बताया कि आयुर्वेद केवल उपचार की पद्धति नहीं बल्कि स्वस्थ और संतुलित जीवन शैली का एक प्रभावी माध्यम है। मुख्यमंत्री ने कहा कि आयुर्वेद भारत की हजारों वर्ष पुरानी ज्ञान परंपरा है, जिसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में विश्व में नई पहचान और नया विस्तार मिला है। मोरारजी देसाई राष्ट्रीय योग संस्थान ने भी स्वस्थ खानपान की आदतों और पर्याप्त प्रोटीन सेवन के महत्व को उजागर करने के लिए 9वें राष्ट्रीय पोषण माह 2026 का उद्घाटन कार्यक्रम आयोजित किया। महिला और बाल विकास मंत्रालय के तत्वाधान में आयोजित इस कार्यक्रम का उद्देश्य खानपान संबंधी जानकारी पूर्ण विकल्प और पर्याप्त पोषण प्रदान करना था। एक महीने तक चलने वाले इस आयोजन के अंतर्गत संस्थान पोषण प्रश्नोत्तरी, पोस्टर निर्माण प्रतियोगिता, स्कूली बच्चों के लिए पोषण जागरूकता कार्यक्रम और मातृ पोषण और प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना पर सामुदायिक जागरूकता कार्यक्रम सहित कई जागरूकता, शैक्षिक और जनसंपर्क कार्यक्रम का आयोजन करेगा। ये आयोजन 8 अक्टूबर को समाप्त होगा। राजधानी दिल्ली में आज दोपहर में तेज धूप खिली रही। मौसम विभाग ने बताया कि कल आसमान साफ रहने की संभावना है। वहीं कल का अधिकतम तापमान 33 से 35 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 23 से 25 डिग्री सेल्सियस के आसपास रह सकता है। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। दिल्ली मंत्रिमंडल ने महिलाओं और ट्रांसजेंडर्स के आर्थिक सशक्तिकरण और सुरक्षित परिवहन के लिए दुर्गा योजना को स्वीकृति दी। दिल्ली सरकार ने शहरी निकायों के लिए 1,850 करोड़ रुपए की दूसरी किस्त जारी की। आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के आज 8 वर्ष पूरे हो गए हैं। दिल्ली में त्योहारों के मौसम में मिलावटी खोया, पनीर और छेना के खिलाफ अभियान तेज। और दिल्ली सरकार ने इस वर्ष गणपति विसर्जन के लिए राजधानी में 81 कृत्रिम विसर्जन कुंडों की व्यवस्था की है। इसके साथ ही प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।

0: नमस्कार, आकाशवाणी संवाद समाचार के साथ मैं वैष्णवी। रक्षा मंत्रालय ने वायुसेना के लिए 160 सैटेलाइट स्मार्ट एंटी एयरफील्ड वेपन और उससे जुड़े उपकरणों की खरीद के लिए भारत डायनेमिक्स लिमिटेड के साथ 810 करोड़ रुपए से अधिक का समझौता किया है। इसकी आपूर्ति वर्ष 2027-28 और 2028-29 के बीच की जाएगी। ये हथियार हवा से जमीन पर मार करने वाला सटीक निर्देशित ग्लाइड बम है। इसे जैगवार, हॉक और सुखोई 30 एमकेआई जैसे विमानों से दागा जा सकता है। ये लंबी दूरी से दुश्मन के हवाई ठिकानों को निष्क्रिय करने में सक्षम है। इस प्रणाली को रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन ने देश में ही डिजाइन और विकसित किया है। इसमें 60% स्वदेशी सामग्री होगी। इससे रक्षा क्षेत्र में आत्मनिर्भरता को और बढ़ावा मिलेगा। रक्षा मंत्रालय ने कहा कि इसके वायुसेना में शामिल किए जाने से उसकी परिचालन क्षमता बढ़ेगी। इससे देश की रक्षा तैयारियों को भी मजबूती मिलेगी। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर संयुक्त अरब अमीरात और फ्रांस के विदेश मंत्री के साथ त्रिपक्षीय बैठक में शामिल हुए। न्यूयॉर्क में संयुक्त राष्ट्र महासभा के सत्र से अलग इस बैठक में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, अंतरिक्ष, स्वास्थ्य विज्ञान, ऊर्जा और संस्कृति के क्षेत्र में सहयोग पर चर्चा की गई। तीनों नेताओं ने संस्कृति और विरासत सहित पारस्परिक हित के क्षेत्रों में त्रिपक्षीय सहयोग की प्रगति की समीक्षा की। वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने कहा है कि आगामी कुछ वर्षों में बहुपक्षीय कर वार्ताओं में लिए गए निर्णय एक पीढ़ी के लिए सीमा पार कराधान को आकार देंगे। नई दिल्ली में ब्रिक्स कर समूह की बैठक में उन्होंने कहा कि ब्रिक्स देश बड़ी विकासशील अर्थव्यवस्थाएं हैं और उन्होंने महत्वपूर्ण घरेलू कर क्षमता का निर्माण किया है। वित्त मंत्री ने कहा कि इन वार्ताओं को निष्पक्ष और स्थायी बनाने के लिए उनका दृष्टिकोण आवश्यक है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने गुजरात के वडोदरा में ब्रह्म कुमारियों के ग्लोबल स्पिरिचुअल पैलेस रिट्रीट सेंटर का लोकार्पण किया। उन्होंने विकसित भारत के लिए युवा, राष्ट्र निर्माण के लिए आंतरिक शक्ति के जागृति अभियान का भी शुभारंभ किया। राष्ट्रपति ने कहा कि देश को ऐसी युवा शक्ति की आवश्यकता है जो ईमानदारी, जिम्मेदारी, करुणा, सह अस्तित्व और देशभक्ति की भावना से प्रेरित हो।
1: अस्सी से ज्यादा देशों में युवाओं को जागरूक करने का, युवाओं को आध्यात्मिक रूप से अवेकनिंग करने का संदेश दिए। जब जुगा जब फेरी और विश्व में जो सपना ब्रह्म कुमारी दिखे स्वर्णिम भारत का सपना देख रहे हैं और जो पूर्ण होगा।
0: राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने गुजरात के वडोदरा में ब्रह्म कुमारियों के स्पिरिचुअल पैलेस रिट्रीट सेंटर का भी लोकार्पण किया। वहीं इससे पहले राष्ट्रपति वडोदरा के महाराजा सयाजीराव विश्वविद्यालय के दीक्षांत समारोह में शामिल हुए। कार्मिक लोक शिकायत और पेंशन मंत्री जितेंद्र सिंह ने कहा है कि कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग ने पिछले 12 वर्ष में 23,000 से अधिक पदोन्नतियों को स्वीकृति दी है। डॉक्टर सिंह ने कहा कि सरकार कर्मचारियों को काम के लिए एक बेहतर और अनुकूल माहौल देने के लिए प्रतिबद्ध है ताकि वे प्रेरित रहें और अपने दायित्वों को प्रभावी ढंग से निभा सकें। भारत ने इस्लामी सहयोग संगठन OIC के तथाकथित जम्मू कश्मीर संपर्क समूह के संयुक्त घोषणा पत्र में भारत के संदर्भ में की गई निराधार और तथ्यात्मक रूप से गलत टिप्पणियों को सिरे से खारिज कर दिया है। विदेश मंत्रालय ने कहा कि भारत के आंतरिक मामलों पर टिप्पणी करने का OIC का कोई कानूनी अधिकार नहीं है। मंत्रालय ने स्पष्ट किया कि संपूर्ण जम्मू कश्मीर और लद्दाख केंद्र शासित प्रदेश भारत का अभिन्न और अटूट हिस्सा है और राजनीतिक रूप से प्रेरित झूठे प्रचार को बार बार दोहराने से ये वास्तविकता नहीं बदल सकती। भारतीय जनता पार्टी अध्यक्ष नितिन नवीन ने सभी 36 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के लिए पार्टी प्रभारी और सह प्रभारियों की नियुक्ति की है। पूर्व केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी को छत्तीसगढ़ और हरियाणा का और हरीश द्विवेदी को बिहार का प्रभारी बनाया गया है। विनय सहस्त्रबुद्धे को दिल्ली का और विनोद तावड़े को उत्तर प्रदेश का प्रभारी बनाया गया है। एशियाई खेलों में रोशिबीना देवी नाउरोम वुशो के फाइनल में पहुंच गई हैं। 60 किलो के सेमीफाइनल में उन्होंने इंडोनेशिया की थानिया कुसुम निंग तियास को हराया। भारतीय पुरुष बैडमिंटन टीम ने कांस्य पदक अपने नाम किया। भारत 1 स्वर्ण, 5 रजत और 6 कांस्य सहित 12 पदकों के साथ 13वें स्थान पर है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: दिस इज आकाशवाणी द न्यूज रेड बाय आशीष पी इब्राहिम। The Defence Ministry has signed a contract of over 810 crore rupees with Bharat Dynamics Limited for the procurement of 160 satellite smart anti-airfield weapons SAT-SAAW along with associated equipment for Indian Air Force. The contract was signed in the presence of Defence Secretary Rajesh Kumar Singh in New Delhi today. SAT-SAW is an air-to-ground precision guided glide bomb which can be launched from platforms like Jaguar, Hawk and Su-30 MKI and has the capability to neutralize enemy airfields from a long standoff range. New Delhi has categorically rejected the unwarranted and factually incorrect references to India in the joint communique of the so-called Organization of Islamic Cooperation, OIC, contact group on Jammu and Kashmir. In a statement, Ministry of External Affairs said the OIC has no locus standi to pronounce on matters that are strictly internal to India. It said the entire Union Territories of Jammu and Kashmir and Ladakh are integral and inalienable part of India and no amount of repetition of politically motivated

जी हाँ, सावन की रातें जा चुकी हैं, भादो भी अभी चल रहा है, असोज यानी अश्विन मास जो है वो आने वाला है। आज इस गीत से इस प्रोग्राम की शुरुआत का एक बहुत अहम कारण ये था कि आज हम बात करने वाले हैं राग मुल्तानी तोड़ी पर। भारतीय शास्त्रीय संगीत में राग मुल्तानी तोड़ी एक अत्यंत गंभीर और मधुर साथ ही लोकप्रिय राग है। दिन के तीसरे पहर यानी दोपहर बाद लगभग दोपहर के 12 बजे से 3 या 4 बजे के बीच में गाया जाता है, यानी इसका जो गायन का जो समय है वो ये है। आकाशवाणी दिल्ली का एफएम गोल्ड चैनल प्रोग्राम चल रहा है मधुरिमा, और आज मधुरिमा में बात राग मुल्तानी की।

0: चांदा है भरेगा। मुकेश जी की खूबसूरत आवाज में आपने गीत सुना। आज हम बात कर रहे हैं राग मुल्तानी की, जिसमें थाट तोड़ी है, इसकी जाति ओडल संपूर्ण है, यानी कि आरोह में 5 स्वर और अवरोह में 7 स्वर हैं। वादी स्वर इसका पंचम प है और संवादी स्वर षड्ज है। गायन का समय हमने आपको बता ही दिया कि दिन का तीसरा पहर लगभग 12 बजे से 4 बजे के समय का। इसमें वर्जित है आरोह में ऋषभ रे और धैवत ध। इसमें ऋषभ रे, गंधार ग और धैवत ध कोमल।
1: पर्सनल लोन ऑफर
2: फिर से ब्लॉक करता हूँ।
1: फ्री ट्रिप टू दुबई
2: ये भी ब्लॉक। कितना ब्लॉक करूँ यार?
3: सिर्फ फोन पे ब्लॉक करने से स्पैम खत्म नहीं होता, हर बार नया नंबर आ जाता है।
2: तो क्या करूँ?
3: कॉल उठाओ, फिर ट्राई DND ऐप पर रिपोर्ट करो, कैटेगरी सेलेक्ट करो, बैंकिंग, ट्रैवल, इंश्योरेंस और सबमिट। बस कुछ सेकंड्स का काम।
2: मतलब सबका स्पैम कम होगा?
3: हाँ, रिपोर्ट्स मिलते ही एक्शन होता है। सिर्फ ब्लॉक नहीं, रिपोर्ट जरूर करें। ट्राई DND ऐप, डाउनलोड नाउ फ्रॉम प्ले स्टोर और ऐप स्टोर एंड स्टार्ट रिपोर्टिंग।

0: मधुरिमा प्रोग्राम में आज बात राग मुल्तान की, और इस राग की शुरुआत आमतौर पर मंद्र सप्तक के निषाद नी से होती है, जैसे कि नी सा ग म प। मीड़ का इसमें प्रयोग होता है, कोमल गंधार और तीव्र मध्यम का मीड़ के साथ साथ बार बार प्रयोग इस राग की खास पहचान है। प्रकृति इस राग की गंभीर है, जिसमें भक्ति शांति और करुण रस की अनुभूति होती है। आकाशवाणी दिल्ली के FM गोल्ड चैनल पर आप सुन रहे हैं प्रोग्राम मधुरिमा। लौटते हैं एक छोटे से अंतराल के बाद।
1: आप सब ये बॉक्स देख रहे हो, इस बॉक्स में आप सबके लिए कुछ एनवेलप्स हैं। आप सब यहाँ आओ और ये एनवेलप्स ले लो।
2: मैम, मेरे वाले में तो HIV से रिलेटेड अलग अलग मैसेजेस हैं, और इसमें लिखा है कि असुरक्षित यौन संबंध से HIV हो सकता है।
3: मेरे वाले में निडलिया इंजेक्शन शेयर करने से HIV फैलने की बात लिखी है,
4: और इसमें लिखा है कि संक्रमित रक्त और रक्त उत्पादों से HIV हो सकता है।
5: मल्टीपल पार्टनर्स मतलब HIV का ज्यादा रिस्क।
1: हम अपनी जिंदगी में अच्छा बुरा सब जानते हैं, लेकिन फिर भी कुछ बातें इग्नोर कर देते हैं। तो मैंने सोचा जाते जाते याद दिला जाओ, ताकि पूरी जिंदगी इग्नोर नहीं याद रखोगे।
6: HIV/AIDS से संबंधित अधिक जानकारी के लिए नजदीकी सरकारी अस्पताल के ICTC में संपर्क करें, या नेशनल टोल फ्री AIDS हेल्पलाइन 1097 पर कॉल करें। नैको, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा जनहित में जारी।
7: एक कदम लोकतंत्र के नाम।
8: यदि आपका नाम मतदाता सूची में शामिल नहीं है तो फॉर्म 6 भरकर आज ही अपना नाम मतदाता सूची में पंजीकृत कराएं।
7: फॉर्म 7 गलत या अपात्र नाम पर आपत्ति दर्ज करने हेतु प्रावधान।
8: फॉर्म 8 से मतदाता सूची में अपनी जानकारी करें दुरुस्त बार बार।
7: फॉर्म 6, 7 और 8 भरें 30 सितंबर 2026 तक। मतदाता सूची को सही और अद्यतन बनाएं।
8: मुख्य निर्वाचन अधिकारी दिल्ली द्वारा जनहित में जारी।
9: पर्सनल लोन ऑफर
10: फिर से ब्लॉक करता हूँ।
9: फ्री ट्रिप टू दुबई
10: ये भी ब्लॉक। कितना ब्लॉक करूँ यार?
11: सिर्फ फोन पे ब्लॉक करने से स्पैम खत्म नहीं होता, हर बार नया नंबर आ जाता है।
10: तो क्या करूँ?
11: कॉल उठाओ, फिर ट्राई DND ऐप पर रिपोर्ट करो। कैटेगरी सेलेक्ट करो, बैंकिंग, ट्रैवल, इंश्योरेंस और सबमिट। बस कुछ सेकंड्स का काम।
10: मतलब सबका स्पैम कम होगा?
11: हाँ, रिपोर्ट्स मिलते ही एक्शन होता है। सिर्फ ब्लॉक नहीं, रिपोर्ट जरूर करें। ट्राई DND ऐप, डाउनलोड नाउ फ्रॉम प्ले स्टोर और ऐप स्टोर एंड स्टार्ट रिपोर्टिंग।

मन की बात है जन जन की, सभी की कुछ अपनी सी, संघर्षों के कुछ किस्से, कहानी कुछ सफलताओं की, अनकही विरासत की, उम्मीदें नए भारत की। महीने के आखिरी रविवार का रहता है इंतजार, मलयाचल के आंचल से विंध्याचल के आंगन तक, ब्रह्मपुत्र के घाट से हिमालय के विस्तार तक होती है मन की बात प्रधानमंत्री के साथ। तो सुनिए इस महीने 27 सितंबर सुबह 11 बजे मन की बात, आकाशवाणी दूरदर्शन के सभी चैनलों और प्रसार भारती के OTT प्लेटफॉर्म वेव्स पर। इसके अतिरिक्त आकाशवाणी और दूरदर्शन के YouTube चैनल और प्रसार भारती के ऐप न्यूज ऑन एयर और OTT प्लेटफॉर्म वेव्स पर सजीव प्रसारण लाइव स्ट्रीमिंग के माध्यम से। तो याद रखें, रविवार 27 सितंबर सुबह 11 बजे मन की बात।

0: नमस्कार, स्पोर्ट्स कैन के आज के अंक में मैं आप सभी का श्रोताओं का अभिनंदन करता हूं। मैं हूं प्रशांत कुमार और मेरे साथ हैं मेरे सहयोगी विशेष शुक्ला।
1: नमस्कार प्रशांत, और हम एक बार फिर मौजूद हैं खेल के मैदान की हर खबर के साथ, जहां हमारे साथ होगी हर मैच की अपडेट, हर मैदान का हाल, वो भी सब कुछ अधिक विस्तार के साथ।
0: तो शुरू करते हैं स्पोर्ट्स कैन का ये सफर। सबसे पहले एक नजर स्पोर्ट्स हेडलाइंस पर। एशियाई खेलों के भारोत्तोलन में 28 साल का सूखा खत्म, मीराबाई चानू ने रजत पदक जीता।
1: रोशिबीना देवी ने महिलाओं के 60 किलोग्राम वुशू प्रतियोगिता के फाइनल में जगह बनाई, भारत के लिए पदक सुनिश्चित।
0: भारतीय पुरुष बैडमिंटन टीम ने कांस्य पदक अपने नाम किया, सेमीफाइनल मुकाबले में चीन से मिली हार।
1: भवतेक सिंह गिल, अनंतजीत सिंह नारुका और मेराज अहमद खान की पुरुष स्कीट में कांस्य पदक जीता।
0: वहीं जय मीणा ने सॉफ्ट टेनिस में ऐतिहासिक प्रदर्शन करते हुए भारत को पहला पदक दिलाया। कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं भारोत्तोलन

0: रन से, जहां मीराबाई चानू ने बेहतरीन प्रदर्शन करते हुए देश के नाम एक पदक कर दिया है। एशियाई खेलों में भारोत्तोलन प्रतियोगिता में मीराबाई चानू ने 28 साल का सूखा समाप्त करते हुए रजत पदक जीत लिया है। यह भारत का भारोत्तोलन में 1998 के बाद पहला पदक है।
1: बहुत ही ज्यादा खुश हूँ कि एशियन गेम्स में मेरा मेडल नहीं थे, पर आज फाइनली मुझे मिल गया है। कॉमनवेल्थ गेम्स के बाद काफी, इससे पहले भी मैं काफी इंजरी हुई थी, तो यहाँ तक पहुँचना बहुत मुश्किल होता है एक प्लेयर्स के बाद। मैं इधर आके मैंने सिल्वर मेडल जीते, तो इससे अच्छा खुशी क्या हो सकता है।
2: मीराबाई ने 49 किलोग्राम वर्ग में कुल 198 किलोग्राम का भार उठाते हुए एशियन गेम्स में अपना पहला मेडल जीता। पिछले संस्करण में चौथे स्थान पर रही मीराबाई ने स्नैच राउंड के अपने पहले प्रयास में 83 किलोग्राम का वजन उठाया। इसके बाद दूसरे प्रयास में वह 85 किलोग्राम का भार उठाने में कामयाब रही। तीसरे प्रयास में मीराबाई ने 87 किलोग्राम वजन उठाया। वहीं क्लीन एंड जर्क राउंड के पहले प्रयास में 107 किलो का भार उठाया। वहीं दूसरी कोशिश में वह 111 किलो का वजन उठाने में भी सफल रही। वहीं नॉर्थ कोरिया की खिलाड़ी री सोंगम ने गोल्ड मेडल अपने नाम किया। साल 1998 में कर्णम मलेश्वरी ने भारत के लिए वेटलिफ्टिंग में आखिरी मेडल जीता था। इसके बाद से कोई भी खिलाड़ी एशियन गेम्स में देश के लिए मेडल नहीं ला सका था। मीराबाई चानू ने एशियन गेम्स में अपने मेडल का सूखा भी खत्म कर दिया है। मीराबाई से पहले ओलंपिक, कॉमनवेल्थ गेम्स और वर्ल्ड चैंपियनशिप में भी मेडल जीत चुकी हैं। फरहत नाज, स्पोर्ट्स कैन।
3: बहुत ही शानदार प्रदर्शन रहा प्रशांत। मीराबाई ने ओलंपिक में, राष्ट्रमंडल खेलों में और अन्य कई प्रतियोगिताओं में पदक जीते थे, लेकिन अपने करियर का पहला एशियन गेम्स मेडल जीतकर उन्होंने इतिहास रच दिया।
1: बहुत ही ज्यादा खुश हूँ कि एशियन गेम्स में मेरा मेडल नहीं थे, पर आज फाइनली मुझे मिल गया है। कॉमनवेल्थ गेम्स के बाद काफी, इससे पहले भी मैं काफी इंजरी हुई थी, तो यहाँ तक पहुँचना बहुत मुश्किल होता है एक प्लेयर्स के बाद। मैं इधर आके मैंने सिल्वर मेडल जीते, तो इससे अच्छा खुशी क्या हो सकता है।
0: बिल्कुल विशेष। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और खेल मंत्री मनसुख मांडविया ने पदक जीतने वाले भारतीय खिलाड़ियों को बधाई दी है। और अब बात वुशु पर करते हैं विशेष।
3: जी हाँ प्रशांत, और भारत की रोशुबीना देवी ने महिलाओं के 60 किलोग्राम वुशु के सांडा के फाइनल में पहुंच गई हैं। सेमीफाइनल मुकाबले में रोशुबीना ने इंडोनेशिया की थानिया कुसुमा निंगत्यास को 2-0 से हराया। अब रोशुबीना कल चीन की झांग शियाऊ से स्वर्ण पदक के लिए मुकाबला करेंगी। सुनते हैं कैसा रहा उनका सफर।
4: रोशिबीना ने प्रतियोगिता में शानदार प्रदर्शन करते हुए फाइनल तक का सफर तय किया है। रोशिबीना ने प्री क्वार्टर फाइनल में बांग्लादेश की शिखा खातून को हराया था। इसके बाद क्वार्टर फाइनल में उन्होंने मकाओ की चू मैन सिन को 5-0 से हराकर सेमीफाइनल में जगह बनाई थी। अब लगातार 3 मुकाबले जीतने के बाद वह सीधे गोल्ड मेडल के मुकाबले में पहुंच गई हैं। रोशिबीना के लिए यह एशियन गेम्स में लगातार तीसरा पदक होगा। उन्होंने 2018 के जकार्ता एशियन गेम्स में कांस्य और 2023 के हांगझोउ एशियन गेम्स में रजत पदक जीता था। रोशिबीना की नजर अब अपने पहले एशियन गेम्स गोल्ड पर होगी। अगर वह फाइनल जीतती है तो वुशु में भारत के लिए एशियन गेम्स में यह पहला गोल्ड मेडल होगा। वहीं पुरुष वर्ग की बात करें तो 56 किलोग्राम वर्ग में भारत के आर्यन को क्वार्टर फाइनल में उज्बेकिस्तान के साइदुल्लो अब्दू राशितोव से 1-2 से हार का सामना करना पड़ा और भारत का अभियान इस वर्ग में समाप्त हो गया। करिश्मा राय, स्पोर्ट्स कैन।
0: बेहतरीन प्रदर्शन किया है रोशिबीना ने आज सेमीफाइनल में और कल स्वर्ण पदक के लिए मुकाबला करेंगी। सभी प्रशंसकों की निगाहें उनका मुकाबला जो चीन की झांग शियाऊ से है उस पर होगा, जहां सबकी उम्मीदें उन पर टिकी होगी कि वे स्वर्ण पदक जीतकर भारत को एक और पदक दिलाएं। बैडमिंटन कोर्ट की ओर, एशियाई खेलों में भारतीय पुरुष बैडमिंटन टीम ने कांस्य पदक अपने नाम कर लिया है। सेमीफाइनल मुकाबले में आज चीन के खिलाफ भारत को 1-3 से हार का सामना करना पड़ा।
2: भारतीय पुरुष बैडमिंटन टीम ने सेमीफाइनल में कड़ा मुकाबला किया, लेकिन उन्हें जीत में तब्दील करने में नाकामयाब रहे। इस हार के साथ ही भारत का टूर्नामेंट में सफर समाप्त हो गया। यह दूसरा मौका है जब भारत ने एशियन गेम्स में बैडमिंटन में पोडियम पर जगह बनाई है। मुकाबले की शुरुआत में लक्ष्य सेन पूर्व विश्व चैंपियन शी यूकी से 16-12, 18-21 से हार गए। इसके बाद सात्विक और चिराग ने लियांग वेईकेंग और वांग चांग के खिलाफ 21-11, 22-20 से जीत हासिल कर मुकाबला बराबरी पर ला दिया। तीसरे गेम में आयुष

0: सिटी को ली शिफेंग से 19-21, 13-21 से हार का सामना करना पड़ा। चौथे और निर्णायक मुकाबले में हे जी टिंग और लियू ई ने भारतीय जोड़ी एम आर अर्जुन और हरिहरन अमसा करुणन पर 21-16, 17-21, 21-9 से जीत दर्ज की। नेहा गोस्वामी, स्पोर्ट्स कैम।
1: कांस्य पदक जीत लिया है भारतीय टीम ने, बेहतरीन प्रदर्शन किया पूरे टूर्नामेंट में। आज किन खिलाड़ियों ने कैसा किया प्रदर्शन विशेष?
2: प्रशांत, अगर आज के प्रदर्शन की बात करें तो लक्ष्य सेन ने पहला मुकाबला खेला जहां उनको हार का सामना करना पड़ा प्रतिद्वंदी खिलाड़ी से, लेकिन उसके बाद सात्विक साईराज रंकी रेड्डी और चिराग शेट्टी ने भारत को वापसी कराई मुकाबले में, लेकिन उसके बाद आयुष शेट्टी और एम आर अर्जुन और हमसा करुणन की जोड़ी जो है वो हार गई, जिसके कारण से भारत का सफर जो है वो खत्म हो गया।
1: भारत का बैडमिंटन में सफर जरूर खत्म हो गया, लेकिन एक पदक उन्होंने देश के नाम कर दिया है।
2: बात करते हैं स्कीट की। भारतीय पुरुष स्कीट टीम ने शानदार प्रदर्शन करते हुए कांस्य पदक अपने नाम कर लिया है। भवतेक सिंह गिल, अनंतजीत सिंह नारुका और मेराज अहमद खान की तिकड़ी ने यह पदक देश के लिए जीता है। भारत की स्कीट टीम ने फाइनल में कुल 346 का स्कोर करते हुए कांस्य पदक पर कब्जा जमाया। कुवैत ने 348 के स्कोर के साथ रजत, जबकि कतर ने 353 के स्कोर के साथ स्वर्ण पदक जीता।
1: वहीं विशेष, अनंतजीत ने इस स्पर्धा के व्यक्तिगत फाइनल के लिए भी क्वालिफाई कर लिया है। इससे पहले भारत की महिला स्कीट टीम ने भी देश को इसी स्पर्धा में कांस्य पदक दिलाया था। परिनाज धालीवाल, रजिया ढिल्लो और महेश्वरी चौहान ने कुल 331 का स्कोर करते हुए तीसरा स्थान हासिल किया।
2: जी हां प्रशांत, वहीं मनु भाकर 10 मीटर एयर पिस्टल व्यक्तिगत इवेंट में मेडल लाने से चूक गई। मनु 181.1 के स्कोर के साथ फाइनल मुकाबले में पांचवें स्थान पर रहीं। मनु अपने प्रदर्शन से खुद निराश नजर आईं। इसके साथ ही 10 मीटर एयर पिस्टल के टीम इवेंट में भी मनु, ईशा और सुरुचि की तिकड़ी मेडल जीतने से मामूली अंतर से चूक गई। भारतीय महिला टीम चौथे स्थान पर रही।
1: बिल्कुल, मनु भाकर से सभी को उम्मीदें थी, हालांकि बहुत ही कम अंतर से वो पदक जीतने से रह गई। और अब बात करते हैं सॉफ्ट टेनिस पर। सॉफ्ट टेनिस में जय मीणा ने इतिहास रच दिया। उन्होंने पुरुषों के सॉफ्ट टेनिस में भारत के लिए पहला पदक अपने नाम किया। हालांकि सेमीफाइनल में उन्हें जापान के ताकुया कुरुसोका से 2-4 से हार का सामना करना पड़ा।
3: सेमीफाइनल में हार के बावजूद जय मीणा कांस्य पदक अपने नाम करने में सफल रहे। जय ने क्वार्टर फाइनल में शेरविन नोगोइट के खिलाफ शानदार वापसी करते हुए एशियन गेम्स के सॉफ्ट टेनिस में भारत का पहला मेडल पक्का किया था। सेमीफाइनल में जय कोरुसाका से हार गए और ऐतिहासिक ब्रॉन्ज मेडल के साथ अपना सफर समाप्त किया। जय के सफर की बात करें तो 14 साल की उम्र में ही उन्होंने जापान में अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिताओं में हिस्सा लिया था। मीणा ने 2022 में गुजरात में हुए 36वें नेशनल गेम्स में पुरुष सिंगल्स वर्ग का गोल्ड मेडल जीतकर अपनी पहचान बनाई। इसके बाद 2025 में वे पुरुष सिंगल्स के नेशनल चैंपियन बने। एशियन गेम्स 2022 में जय पुरुष सिंगल्स के क्वार्टर फाइनल तक पहुंचे थे। 2024 में मीणा और आध्या तिवारी की जोड़ी ने वर्ल्ड सॉफ्ट टेनिस चैंपियनशिप के मिक्स डबल्स में ब्रॉन्ज मेडल जीता था। इस उपलब्धि के साथ उन्होंने भारत को इस टूर्नामेंट का पहला मेडल दिलाकर इतिहास रचा था। इसके बाद 2025 में उन्होंने एशियन सॉफ्ट टेनिस चैंपियनशिप में भी शानदार प्रदर्शन किया था। पुरुष सिंगल्स के सेमीफाइनल तक पहुंचकर उन्होंने मेडल अपने नाम किया और इस प्रतियोगिता में मेडल जीतने वाले पहले भारतीय खिलाड़ी भी बने। जय मीणा का तीसरा एशियाई खेल है। इससे पहले भी वे जकार्ता एशियन गेम्स 2018 और हांगझो एशियन गेम्स 2022 में भारत का प्रतिनिधित्व कर चुके हैं। वैष्णवी, स्पोर्ट्स कैन।
1: विशेष, अलग अलग गेम में जो कि इतने प्रचलित नहीं उसमें भी पदक आ रहे हैं। सॉफ्ट टेनिस हो, सेपक टैक्रो जैसे नए नए जो उभरते खेल हैं उसमें भी भारत अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अच्छा प्रदर्शन कर रहा है और देश के लिए पदक भी ला रहा है।
2: प्रशांत, और अब बात करते हैं स्क्वॉश की, जहां भारत ने शानदार आगाज करते हुए राउंड ऑफ 16 में प्रवेश कर लिया है। अभय सिंह, वीर चोटरानी और तन्वी खन्ना ने अपने शुरुआती मुकाबले जीत लिए हैं। इन खिलाड़ियों में दूसरे सीड अभय का प्रदर्शन सबसे दमदार रहा, जिन्होंने थाईलैंड के अर्काडेक अकारा हिरुन्या को 11-1, 11-2, 11-2 से हराया।
1: विशेष, अगर वीर चोटरानी की भी बात करें तो वो भी बिना कोई गेम हारे अगले दौर में पहुंचे हैं। हालांकि श्रीलंका के शामिल वकील के खिलाफ उन्हें शुरुआती दौर में कड़ी टक्कर मिली, लेकिन आखिरकार भारतीय खिलाड़ी ने राउंड ऑफ 32 में 11-8, 11-3, 11-3 से जीत दर्ज की। तन्वी खन्ना ने साउथ कोरिया की दामी किम को 11-5, 11-7, 11-5 से पराजित किया।
2: और प्रशांत, इन नतीजों के साथ भारत के तीन खिलाड़ी राउंड ऑफ 16 में पहुंच गए हैं। अब सभी की

0: राहें अनाहत सिंह पर होंगी, जिनका अभियान कल से शुरू होगा। 17वीं रैंकिंग वाली भारत की शीर्ष खिलाड़ी अनाहत अपने शुरुआती मैच में सिंगापुर की ओ योंग वाई लिम का सामना करेंगी।
1: और अब बात मुक्केबाजी पर। भारतीय मुक्केबाज अंकुश पंघाल ने अंतिम 16 में जगह बना ली है। अपने पहले एशियन गेम्स में अंकुश ने आज बहरीन के हमसा वोगेल को 5-0 के सर्वसम्मत फैसले से हराकर क्वार्टर फाइनल में जगह बना ली है। क्वार्टर फाइनल में भारतीय बॉक्सर का मुकाबला तजाकिस्तान के नेक्रूज सलीमोव से होगा।
0: 21 वर्षीय बॉक्सर ने राउंड ऑफ 32 में ब्रुनोई के वोगोल पर 3-0 से जीत के साथ अपने अभियान की शुरुआत की थी, जिसके बाद अगले दौर में वह पूरे आत्मविश्वास के साथ उतरे। कॉमनवेल्थ गेम्स के गोल्ड मेडलिस्ट पंघाल ने पिछले साल वर्ल्ड बॉक्सिंग कप फाइनल में रजत पदक जीता था और अब वे नागोया में मेडल पक्का करने से बस एक जीत दूर है। प्रशांत,
1: लगातार अच्छा प्रदर्शन रहा है मुक्केबाजों का। हाल के दिनों में भी उन्होंने कई पदक देश के नाम किए थे और इस प्रतियोगिता में भी सभी प्रशंसकों की निगाहें उन पर होगी कि वे पदक जीते और देश का मान बढ़ाएं। और अब बात हॉकी पर। भारतीय महिला हॉकी टीम का शानदार प्रदर्शन जारी है। आज पूल बी के मैच में भारत ने थाईलैंड को 20-1 से हराया। इस जीत के साथ ही भारत का टूर्नामेंट में अजेय रिकॉर्ड बरकरार है और टीम पूल स्टैंडिंग में मजबूती से शीर्ष पर बनी हुई है। ये भारत की लगातार तीसरी जीत है। विशेष, भारत का अगला मुकाबला शुक्रवार को जापान से होगा।
0: और इससे पहले प्रशांत, भारतीय टीम ने उज्बेकिस्तान को 19-0 और फिर इंडोनेशिया को 17-1 के बड़े अंतर से शिकस्त दी। थाईलैंड के खिलाफ दीपिका का प्रदर्शन शानदार रहा और उन्होंने मैच में कुल 9 गोल दागे। फॉरवर्ड और ड्रैग फ्लिक स्पेशलिस्ट दीपिका ने अपने सभी 9 गोल पेनल्टी कॉर्नर से किए। नवनीत कौर ने शानदार प्रदर्शन करते हुए 4 गोल दागे, जबकि ऋतुजा पिसल ने हैट्रिक पूरी की। भारत की नजर हांगझोउ एशियन गेम्स में जीते गए ब्रॉन्ज मेडल से बेहतर प्रदर्शन करने पर है। टीम 1982 के बाद महिला हॉकी में अपना पहला एशियाई खेलों का गोल्ड मेडल जीतने की कोशिश कर रही है।
1: और अब बात क्रिकेट पर। एशियन गेम्स में शानदार प्रदर्शन के बाद भारतीय सलामी बल्लेबाज शेफाली वर्मा आईसीसी वुमेन्स टी20 बल्लेबाजी रैंकिंग में चौथे पायदान पर पहुंच गई है। शेफाली वर्मा ने एशियन गेम्स में जापान के खिलाफ नाबाद 40 रन की पारी खेली थी। सेमीफाइनल में बांग्लादेश के खिलाफ नाबाद 100 रन बनाए थे और फाइनल मैच में उन्होंने श्रीलंका के खिलाफ 48 रन की पारी खेली थी। और अब भारतीय पुरुष टीम भी तैयार है एशियन गेम्स में पदक लाने के लिए। महिलाओं ने स्वर्ण पदक पहला पदक जिताया है, देश को दिया है। और टीम में कौन कौन से खिलाड़ी हैं विशेष जो भारत को पदक दिलाने में अहम भूमिका निभाएंगे?
0: प्रशांत, भारतीय टीम अभी टी20 में विश्व चैंपियन है और अभिषेक शर्मा और संजू सैमसन की जोड़ी पर बहुत दारोमदार होगा कि वो भारतीय टीम को बहुत ही बेहतरीन शुरुआत दिलाएं। और उसके बाद कप्तान श्रेयस अय्यर, तिलक वर्मा, वैभव सूर्यवंशी, अक्षर पटेल, शिवम दुबे जैसे कई खिलाड़ी टीम को मजबूत स्थिति में पहुंचाकर भारत की स्वर्ण पदक की उम्मीदों को पक्का करने के लिए खेले।
1: बिल्कुल, और ऐसा ही कुछ उम्मीद होगा प्रशंसकों को भी। और श्रोताओं, समय हो रहा है आपसे विदा लेने का। कल स्पोर्ट्स कैन में इसी समय आपसे फिर मुलाकात होगी खेल मैदान की हर खबर के साथ। आपको ये कार्यक्रम कैसा लगा, इस पर अपनी राय और सुझाव में स्पोर्ट्स कैन की ईमेल sportscan.air@gmail.com पर हमें भेज सकते हैं। तब तक के लिए मुझे और विशेष को अनुमति दीजिए।
0: नमस्कार।
2: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार संध्या के साथ मैं वैष्णवी। मुख्य समाचार। भारत ने रूस से तेल और गैस खरीदने वाले देशों पर शुल्क लगाने के अमरीकी फैसले पर अपने हितों और चिंताओं को दोहराया। भारत ने इस्लामिक सहयोग संगठन के जम्मू कश्मीर के संदर्भ को खारिज किया, कहा इसका भारत के आंतरिक मामलों से कोई लेना देना नहीं। रक्षा मंत्रालय ने वायुसेना के लिए 160 सैटेलाइट स्मार्ट एंटी एयरफील्ड हथियारों के लिए भारत डायनेमिक्स लिमिटेड के साथ 800 करोड़ रुपए से अधिक का अनुबंध किया। भाजपा ने सभी 36 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के लिए पार्टी प्रभारी और सह प्रभारी की घोषणा की। बंगाल की खाड़ी में बना गहरा कम दबाव का क्षेत्र और करीब आया। ओडिशा और आंध्र प्रदेश के तटीय क्षेत्र में तेज बारिश हुई। और एशियाई खेलों में भारतीय पुरुष बैडमिंटन टीम ने कांस्य पदक हासिल किया। भारत ने अब तक 1 स्वर्ण, 5 रजत और 6 कांस्य सहित 12 पदक जीते। अब समाचार विस्तार से। भारत ने रूस और ईरान से तेल खरीदने वाले देशों पर शुल्क लगाने के अमरीकी कानून पर

0: किसी को कोई कानूनी अधिकार नहीं है। मंत्रालय ने स्पष्ट किया कि संपूर्ण जम्मू कश्मीर और लद्दाख केंद्र शासित प्रदेश भारत का अभिन्न और अटूट हिस्सा है और राजनीतिक रूप से प्रेरित झूठे प्रचार को बार बार दोहराने से ये वास्तविकता नहीं बदल सकती। इस तरह के प्रेरित बयानों का बार बार समर्थन करना संगठन की विश्वसनीयता पर ही गंभीर सवाल खड़े करता है। रक्षा मंत्रालय ने वायुसेना के लिए 160 सैटेलाइट स्मार्ट एंटी एयरफील्ड हथियार और उससे जुड़े उपकरणों की खरीद के लिए भारत डायनेमिक्स लिमिटेड के साथ 810 करोड़ रुपए से अधिक का समझौता किया है। इसकी आपूर्ति वर्ष 2027-28 और 2028-29 के बीच की जाएगी।
1: ये सैटेलाइट स्मार्ट एंटी एयरफील्ड हथियार हवा से जमीन पर मार करने वाला एक सटीक निर्देशित ग्लाइड बॉम्ब है। इसे जगुआर, हॉक और सुखोई 30 एमकेआई जैसे विमानों से दागा जा सकता है। ये लंबी दूरी से दुश्मन के हवाई ठिकानों को निष्क्रिय करने में सक्षम है और इस प्रणाली को रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन ने देश में ही डिजाइन और विकसित किया है। इसमें 60% सामग्री स्वदेशी होगी। इससे रक्षा क्षेत्र में आत्मनिर्भरता को और बढ़ावा मिलेगा। रक्षा मंत्रालय ने कहा है कि इसके वायुसेना में शामिल किए जाने से उसकी परिचालन क्षमता और बढ़ जाएगी। इससे देश की रक्षा तैयारियों को भी मजबूती मिलेगी। प्रिया की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से मुनीश शर्मा।
0: ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं।
2: लगातार खबरों से जुड़े रहने के लिए expert@AIRnewsHindi को फॉलो करें और हमारे व्हाट्सएप चैनल आकाशवाणी समाचार से जुड़ें।
0: समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने गुजरात के वडोदरा में ब्रह्मकुमारियों के ग्लोबल स्पिरिचुअल पैलेस रिट्रीट सेंटर का लोकार्पण किया। उन्होंने विकसित भारत के लिए युवा, राष्ट्र निर्माण के लिए आंतरिक शक्ति की जागृति अभियान का भी शुभारंभ किया। राष्ट्रपति ने कहा कि देश को युवा शक्ति की आवश्यकता है।
3: युवाओं को सशक्त प्रतिस्पर्धन, आत्मनिर्भर, शांतिपूर्ण और दीनता बढ़ाना हम सब की जिम्मेदारी। अब ऐसे युवा तैयार करना है जो ज्ञान, टेक्निक और कौशल से साथ ही आत्मविश्वास, आत्मअनुशासन, सकारात्मक सोच, संवेदनशीलता और नैतिक मूल्य से भी परिपूर्ण।
0: इससे पहले राष्ट्रपति वडोदरा के महाराजा सयाजीराव विश्वविद्यालय के दीक्षांत समारोह में शामिल हुई। कार्मिक लोक शिकायत और पेंशन मंत्री जितेंद्र सिंह ने कहा है कि कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग ने पिछले 12 वर्ष में 23,000 से अधिक पदोन्नतियों को स्वीकृति दी है। डॉ. सिंह ने कहा कि सरकार कर्मचारियों को काम के लिए एक बेहतर और अनुकूल माहौल देने के लिए प्रतिबद्ध है। निर्वाचन आयोग ने कहा है कि मतदाता सूची में संशोधन सहित सभी निर्णय सर्वसम्मति से लिए गए हैं। आयोग ने हाल के महीनों में देशभर में 40 नई पहल शुरू की है और विशेष गहन पुनरीक्षण सहित कई चुनावी सुधार किए हैं। आयोग ने कहा कि उसके सभी अधिकारी चुनाव प्रणाली में सुधार के लिए सुझाव देने के लिए पूरी तरह से अधिकृत हैं। भारतीय जनता पार्टी अध्यक्ष नितिन नवीन ने सभी 36 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के लिए पार्टी प्रभारी और सह प्रभारियों की नियुक्ति की है। पूर्व केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी को छत्तीसगढ़ और हरियाणा का और हरीश द्विवेदी को बिहार का प्रभारी बनाया गया है। विनय सहस्रबुद्धे को दिल्ली का और विनोद तावड़े को उत्तर प्रदेश का प्रभारी बनाया गया है। राम माधव तमिलनाडु और उत्तराखंड के और तरुण चुग गुजरात के प्रभारी होंगे। सतीश पुनिया को जम्मू कश्मीर और पंजाब का और अनिल एंटनी गोवा और नागालैंड का दायित्व संभालेंगे। माई भारत प्लेटफॉर्म पर पंजीकृत युवाओं की संख्या 3 करोड़ से अधिक हो गई है। वर्ष 2023 में शुरू किए गए इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से युवा सीखने, स्वयं सेवा, नेतृत्व, नागरिक भागीदारी और युवा केंद्रित गतिविधियों में शामिल हो रहे हैं। इस प्लेटफॉर्म का उद्देश्य 2047 तक विकसित भारत के निर्माण में युवाओं की भागीदारी सुनिश्चित करना है। आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के आज 8 वर्ष पूरे हो गए हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सितंबर 2018 में झारखंड के रांची में इस योजना का शुभारंभ किया था। ये विश्व की सबसे बड़ी सरकारी स्वास्थ्य बीमा योजना बन गई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि इस योजना से चिकित्सा खर्च में रिकॉर्ड बचत हुई है और गरीब तथा मध्यम वर्ग को लाभ मिला है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जनसेवा में 25 वर्ष पूरे कर रहे हैं। उनकी यात्रा जनसेवा से देश सेवा के मंत्र और निरंतर समर्पण से जुड़ी रही है। इसी सेवा और सुशासन की सोच के साथ सरकार 2047 तक विकसित भारत के लक्ष्य को हासिल करने के लिए लगातार काम कर रही है। समावेशी विकास और

0: सामाजिक सशक्तिकरण के जरिए ये प्रतिबद्धता लोगों के जीवन में बदलाव ला रही है। विशेष श्रृंखला में आज अटल इनोवेशन मिशन की।
1: अटल इनोवेशन मिशन, जिसे वर्ष 2016 में स्थापित किया गया था, देश में नवाचार और उद्यमिता की संस्कृति को बढ़ावा देने के लिए भारत सरकार की एक प्रमुख पहल है। नीति आयोग के अंतर्गत यह मिशन एक समग्र दृष्टिकोण के साथ काम कर रहा है। इसका उद्देश्य स्कूलों में समस्या के समाधान और नवाचार की सोच विकसित करना तथा विश्वविद्यालयों, अनुसंधान संस्थानों, निजी क्षेत्र और MSME में उद्यमिता का एक सशक्त इकोसिस्टम तैयार करना है। वर्ष 2016 में आकाशवाणी पर प्रसारित मन की बात कार्यक्रम में अपने विचार साझा करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा था कि सरकार ने अटल इनोवेशन मिशन के माध्यम से नई पीढ़ी को विज्ञान और अनुसंधान की ओर आकर्षित करने के लिए कदम उठाए हैं।
2: नई पीढ़ी में विज्ञान के प्रति आकर्षण, टेक्नोलॉजी के प्रति रिसर्च और इनोवेशन, और इसी के लिए सरकार ने भी कई कदम उठाए, और इसलिए तो मैं कहता हूँ लेटेस्ट एम टू इनोवेट। और जब मैं लेटेस्ट एम टू इनोवेट कहता हूँ तो मेरा एम का मतलब है अटल इनोवेशन मिशन। नीति आयोग के द्वारा अटल इनोवेशन मिशन को बढ़ावा दिया जा रहा है। एक इरादा है कि इस एम के द्वारा, अटल इनोवेशन मिशन के द्वारा, पूरे देश में एक इकोसिस्टम तैयार हो, इनोवेशन, एक्सपेरिमेंट, एंटरप्रेन्योरशिप, ये एक सिलसिला चले।
1: आकाशवाणी समाचार से बातचीत में स्कूल छात्र सार्थक गुप्ता ने बताया कि पिछले 3 वर्षों से अटल इनोवेशन मिशन के अटल टिंकरिंग लैब्स के माध्यम से उन्होंने बहुत कुछ सीखा है।
3: पिछले 3 वर्षों से अटल टिंकरिंग लैब्स का हिस्सा बनना मेरे लिए एक बहुत ही खास लर्निंग एक्सपीरियंस रहा है। इस दौरान मैंने सिर्फ नई टेक्नोलॉजीज नहीं बल्कि उन्हें प्रैक्टिकली इस्तेमाल करना सीखा, नए आइडियाज पर काम करा और अपने हाथों से प्रोटोटाइप्स बनाए।
1: अटल इनोवेशन मिशन देश भर में नवाचार और उद्यमिता की एक जीवंत संस्कृति विकसित करने और उसको बढ़ावा देने का काम कर रहा है। अनुपम मिश्र, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन AIR ऐप पर भी उपलब्ध है।
4: आकाशवाणी समाचार से जुड़े रहिए, एक्स पर @AIRNews हिंदी को फॉलो करें और ताजा खबरों के लिए newsonair.gov.in पर जाएं।
0: ये आकाशवाणी है। बंगाल की खाड़ी के ऊपर बना गहरे दबाव का क्षेत्र उत्तरी आंध्र प्रदेश और दक्षिणी ओडिशा तट की ओर बढ़ रहा है। इसके आज रात तट से टकराने की संभावना है। एक रिपोर्ट।
5: IMD ने दक्षिणी जिलों के लिए रेड वार्निंग जारी की है। कुछ जगहों पर बहुत ज्यादा बारिश हो सकती है और 60 से 70 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवाएं चलने की चेतावनी भी दी गई है। उम्मीद है कि डीप डिप्रेशन आज रात और कल सुबह के बीच कलिंगपट्टनम के पास से गुजरेगा और कोरापुट और रायगढ़ समेत दक्षिणी उड़ीसा के अंदरूनी इलाकों की ओर बढ़ेगा। मुख्यमंत्री मोहन चरण मांझी ने आज भुवनेश्वर में हालात का जायजा लिया और प्रशासन को पूरी तरह तैयार रहने का निर्देश दिया। कई संवेदनशील जिलों में स्कूल और आंगनवाड़ी केंद्र बंद कर दिए गए हैं, जबकि प्रभावित इलाकों में सरकारी कर्मचारियों की छुट्टियां रद्द कर दी गई है। प्रकाश दास, आकाशवाणी समाचार, भुवनेश्वर।
0: मौसम विभाग ने पश्चिम बंगाल, झारखंड, तेलंगाना, छत्तीसगढ़, तटीय आंध्र प्रदेश और ओडिशा में कल मूसलाधार वर्षा का रेड अलर्ट जारी किया है। बिहार, विदर्भ और सिक्किम में भी मूसलाधार बारिश की आशंका है। अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, असम, मेघालय, पूर्वी मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, कर्नाटका, केरलम, माहे और मराठवाड़ा में भी तेज बारिश का अनुमान है। वहीं छत्तीसगढ़, तटीय आंध्र प्रदेश, ओडिशा और तेलंगाना में कल आंधी चल सकती है। पश्चिम बंगाल के बांकुड़ा में आज 2 महिलाओं समेत 3 शीर्ष माओवादी कमांडरों ने आत्मसमर्पण कर दिया। पुलिस के अनुसार ये तीनों पिछले 2 दशकों से अधिक समय से माओवादी आंदोलन में सक्रिय थे और कथित तौर पर लगभग 80 हिंसक घटनाओं से जुड़े हुए थे। सरकार पश्चिम बंगाल में प्याज की उपलब्धता बढ़ाने के लिए कदम उठा रही है। प्याज लेकर चलने वाली कांदा एक्सप्रेस कल कोलकाता पहुंचेगी। त्योहारों के मौसम को देखते हुए ये कदम महत्वपूर्ण है। राज्य में मोबाइल वैन के जरिए करीब 1,400 मीट्रिक टन प्याज वितरित किया जा चुका है। इनकी बिक्री 35 रूपए प्रति किलो की दर से की जा रही है। आंध्र प्रदेश में श्रीकाकुलम जिले के रविवलसा के पास रानी एक्सप्रेस की चपेट में आने से 4 विद्यार्थी मारे गए और 1 अन्य घायल हो गया। नागर विमानन मंत्री के राम मोहन नायडू ने घटना पर दुख व्यक्त किया है। श्री नायडू ने अधिकारियों से दुर्घटना के बारे में जानकारी ली और घायलों को बेहतर उपचार की व्यवस्था करने का निर्देश दिया।

0: पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू कश्मीर में स्थिति लगातार बिगड़ती जा रही है और विरोध प्रदर्शन लगातार चल रहे हैं। जबरन गुमशुदगी के मामलों में कथित तौर पर वृद्धि हुई है। प्रदर्शनकारियों ने पाकिस्तानी सुरक्षा बलों पर आंदोलन को दबाने के लिए अत्यधिक बल प्रयोग करने का आरोप लगाया है। और अब एशियाई खेल खबरों के साथ है विशेष शुक्ला।
1: एशियाई खेलों में रोशोबिना देवी वुशू के फाइनल में पहुंच गई हैं। भारतीय पुरुष बैडमिंटन टीम ने कांस्य पदक अपने नाम किया। इससे पहले भारोत्तोलक मीराबाई चानू ने 49 किलोग्राम वर्ग में रजत पदक जीता। मीराबाई ने 28 वर्ष का सूखा खत्म करते हुए भारत को पदक दिलाया।
2: बहुत ही ज्यादा खुश हूँ कि एशियन गेम्स में मेरा मेडल नहीं थे, पर आज फाइनली मुझे मिल गया है। कॉमनवेल्थ गेम्स के बाद मैं काफी इंजुरी हुई थी, तो यहाँ तक पहुँचना बहुत मुश्किल होते। मैं इधर आके मैंने सिल्वर मेडल जीते, तो इससे अच्छा खुशी क्या हो सकता है।
1: वहीं जयमीना ने सॉफ्ट टेनिस के सिंगल्स का कांस्य पदक जीतकर नया इतिहास रचा। निशानेबाजी में स्कीट स्पर्धा में माहेश्वरी सिंह, परिणाश धालीवाल और राइजा ढिल्लों की महिला टीम और अनंतजीत सिंह नरुका, महराज अहमद खान और भवतेक सिंह गिल की पुरुष टीम ने कांस्य पदक जीते। भारत 1 स्वर्ण, 5 रजत और 6 कांस्य सहित 12 पदकों के साथ 13वें स्थान पर है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और खेल मंत्री मनसुख मांडविया ने पदक जीतने वाले भारतीय खिलाड़ियों को बधाई दी है।
0: प्रधानमंत्री स्मृति चिन्हों की ई नीलामी में इस वर्ष बिहार की सांस्कृतिक विरासत और आध्यात्मिक परंपराओं को दर्शाने वाले 65 स्मृति चिन्ह शामिल किए गए हैं। इनमें मधुबनी और मिथिला चित्रकला, सिक्की और मंजूषा कला, ऐतिहासिक व्यक्तित्व तथा राज्य से जुड़े धार्मिक स्थल शामिल हैं। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। भारत ने रूस से तेल और गैस खरीदने वाले देशों पर शुल्क लगाने के अमरीकी कानून पर अपने हितों और चिंताओं को दोहराया। भारत ने इस्लामिक सहयोग संगठन के जम्मू कश्मीर के संदर्भ को खारिज किया, कहा इसका भारत के आंतरिक मामलों से कोई लेना देना नहीं। रक्षा मंत्रालय ने वायुसेना के लिए 160 सैटेलाइट स्मार्ट एंटी एयरफील्ड हथियारों के लिए भारत डायनेमिक्स लिमिटेड के साथ 800 करोड़ रुपए से अधिक का अनुबंध किया। भाजपा ने सभी 36 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के लिए पार्टी प्रभारी और सह प्रभारी की घोषणा की। बंगाल की खाड़ी में बना गहरा कम दबाव का क्षेत्र और करीब आया। ओडिशा और आंध्र प्रदेश के तटीय क्षेत्र में तेज बारिश हुई। इसके साथ ही समाचार संध्या का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
3: Good evening. This is Akashwani. I am VC Pramod with the news at 9. The headlines. India reiterates its interests and concerns with United States regarding act imposing tariffs on countries buying Russian oil and gas. New Delhi rejects Organization of Islamic Cooperation's Jammu and Kashmir reference, says it has nothing to do with internal matters of India. Defence Ministry signs over 810 crore rupees contract with Bharat Dynamics Limited for 160 satellite smart anti-airfield weapons for Indian Air Force. BJP announces party in-charges and co-in-charges for all 36 states and union territories. Deep depression over Bay of Bengal intensifies. Heavy rains lash coastal Odisha and Andhra Pradesh. And in Asian Games, Indian men's badminton team settle for bronze, taking overall tally to 12 medals, including one gold. India today reiterated its interests and concerns with regard to sanctioning Russia and Iran Act. External Affairs Minister S. Jaishankar met U.S. Secretary of State Marco Rubio on the sidelines of the UN General Assembly session this evening and raised concerns regarding the act. Both leaders also discussed India-U.S. bilateral relations and Gulf and Ukraine situations. U.S. President Donald Trump signed into law the sanctioning Russia and Iran last week, which authorizes him to impose tariffs of up to 100% on countries buying Russian oil and gas. In response, New Delhi said that it will take all necessary steps to protect its economic interests and ensure energy security for the nation. Jaishankar, who arrived in New York City on Sunday, is leading the Indian delegation for the 81st session of the UN General Assembly. External Affairs Minister S. Jaishankar, UAE Foreign Minister Sheikh Abdullah bin Zayed Al Nahyan, and French Foreign Minister Jean-Noël Barrot participated

0: चर्चा का विषय है।
1: ये आकाशवाणी है, चर्चा का विषय है। कार्यक्रम में प्रस्तुत है भारत में समग्र स्वास्थ्य की पहल आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना पर परिचर्चा। इसमें भाग ले रहे हैं राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राधिकरण के मुख्य कार्यकारी अधिकारी डॉक्टर सुनील कुमार बर्नवाल और पत्रकार सौरभ शुक्ला।
2: चर्चा में आपका स्वागत है, मैं हूं सौरभ शुक्ला। आयुष्मान भारत को शुरू हुए 8 साल पूरे हो गए हैं। योजना के विस्तार के साथ अब 70 साल और उससे अधिक उम्र के लोगों को भी इस दायरे में लाया गया है। ऐसे में सवाल ये है कि 8 साल में आयुष्मान भारत ने आम लोगों के स्वास्थ्य सुविधाओं और इलाज के खर्च को किस हद तक बदला है और आगे इसकी दिशा क्या रहेगी, इन्हीं मुद्दों पर नेशनल हेल्थ अथॉरिटी के CEO डॉक्टर सुनील कुमार बर्नवाल जी हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे बातचीत करेंगे। सर, आपका स्वागत है।
3: धन्यवाद।
2: सबसे पहले जानना चाहेंगे कि आयुष्मान भारत को 8 साल पूरे हो चुके हैं, सरकार 60 करोड़ से ज्यादा लाभार्थियों की बात कर रही है, इनमें से आप क्या मानते हैं कि असल में फायदा कितने लोगों को, कितने परिवारों को हुआ है, कितने लोगों को इस योजना का लाभ मिला है?
3: अभी तक के जो आंकड़े हैं जो 8 साल पूरे होने पे उपलब्ध हैं, आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना, जैसा अधिकतर लोग जानते होंगे, ये विश्व की सबसे बड़ी गवर्नमेंट फंडेड हेल्थ इंश्योरेंस प्रोग्राम है। इसके तहत भारत सरकार देश की आबादी के बॉटम 40% पॉपुलेशन को 5 लाख रुपए की प्रति परिवार प्रति वर्ष हेल्थ कवर उपलब्ध कराती है और आज तक 13 करोड़ से अधिक लोगों को इस योजना का लाभ मिल चुका है। तो 13 करोड़ से अधिक लोगों ने विभिन्न अस्पतालों में, जो सूचीबद्ध अस्पताल हैं हमारे 38,000 से ज्यादा अस्पताल हैं, जहां इनका इलाज हुआ है और विभिन्न प्रकार की बीमारियों के लिए इसके इलाज हुए हैं। तो 13 करोड़ से ज्यादा लोगों ने लाभ उठाया है और अगर इसे मनी के टर्म्स में देखें तो 2 लाख करोड़ से ज्यादा की बचत इन 13 लाख लोगों के परिवारों को हुई है। तो ये एक बहुत बड़ी सुविधा है जो सरकार के माध्यम से गरीब परिवारों तक पहुंचाने का कार्य किया जा रहा है।
2: आम आदमी के लिए सर सबसे बड़ा सवाल ये होता है कि आयुष्मान कार्ड होने पर 5 लाख रुपए तक का एक कवर मिलता है उसे, तो ये कवर वास्तव में काम कैसे करता है और किन किन बीमारियों के इलाज में फायदा होता है? क्या कुछ ऐसा भी है जहाँ ये कार्ड काम नहीं आता है?
3: देखिए, सबसे पहले तो ये कार्ड काम ही करता है जहाँ जो सूचीबद्ध अस्पताल है। तो जो 38,000 सूचीबद्ध अस्पताल हैं, जिसमें लगभग 18,000 प्राइवेट अस्पताल हैं और 20,000 करीब सरकारी अस्पताल हैं। दूसरा, ये जो कार्ड है ये केवल इंडोर पेशेंट के लिए कार्य करता है, ये सर्दी खांसी के इलाज की तरह आउटडोर पेशेंट के लिए नहीं है, बल्कि इसके लिए एडमिट होना होता है। भले ही वो एडमिशन केवल एक दिन भर के लिए ही हो, जैसे एनिमल बाइट है या फिर डायलिसिस है, इसमें जरूरी नहीं है कि पूरे 24 घंटा एडमिट होते हैं, लेकिन एडमिशन लेना होता है, आईपीडी पेशेंट के रूप में ही इसमें ट्रीटमेंट हो सकता है। तीसरा, ये कार्ड जिनको मिला है, जो लाभार्थी की सूची में है, इन्हें एडमिशन के समय, रादर रजिस्ट्रेशन के समय, अपने आप को आइडेंटिफाई करना होता है बायोमेट्रिक के माध्यम से, वो चाहे फिंगरप्रिंट के माध्यम से हो, फेस ऑथ के माध्यम से हो, और जहां कहीं नेटवर्क नहीं उपलब्ध हो पाता है, इवन OTP के माध्यम से हो, परंतु उसे ऑथेंटिकेट होना पड़ता है कि ये जेन्युइन पेशेंट है जिसकी पहले से लाभार्थी की सूची में नाम है और इन्हें उस इलाज की जरूरत है। इसके बाद ये जैसे ही इलाज की जरूरत है, अगर वो सर्टिफाई करते हैं डॉक्टर, तो उससे संबंधित कागजातों को अपलोड करना होता है NHA के IT सिस्टम पे, ताकि ये वेरीफाई हो सके कि इन्हें उस इलाज की जरूरत है, और तभी जब प्लेटफॉर्म से हम उसे ऑथराइज करते हैं, जिसे प्री ऑथराइजेशन कहा जाता है, जब ऑथराइज करते हैं तब वो ट्रीटमेंट शुरू होता है। इमरजेंसी के मामलों में जहां पे ट्रीटमेंट शुरू करना अत्यंत आवश्यक है, वैसे में ये फ्लेक्सिबिलिटी दी हुई है कि आप एडमिशन ले लें, ट्रीटमेंट शुरू कर दें, उसके बाद आप प्री ऑथराइज कर दें, जो कि ट्रीटमेंट शुरू होने के 3 दिन के अंदर का होना चाहिए। तो इस तरह की व्यवस्था की गई है, व्यवस्था इसलिए की गई है कि वो लाभार्थियों का सही आइडेंटिफिकेशन हो सके, दूसरा एक्सेस या अंडर ट्रीटमेंट नहीं हो, तीसरा ये है कि ट्रीटमेंट जो है वो जितने पैकेजेज हैं, जितने हमने आइडेंटिफाई किए हुए हैं, और अभी तक जो हमारा लेटेस्ट पैकेज है उसके अनुसार 1961 लगभग 2000 ट्रीटमेंट प्रोसीजर हैं जो कि इसके तहत एडमिसिबल हैं, और इसमें अधिकतर बीमारियां शामिल हैं, कैंसर, हार्ट डिजीज, लीवर, किडनी, इवन जो फीवर होते हैं जिसमें एडमिशन कराना होता है, डायलिसिस, ये सारे अधिकतर पैकेजेस शामिल हैं। कैंसर के ही काफी सारे पैकेजेस हैं जिसमें है, इसमें शामिल है। कई ऑर्गन ट्रांसप्लांट के भी पैकेजेस हैं, कैटरैक्ट है, नी ट्रांसप्लांट है, इस तरह के भी पैकेजेस जिसमें शामिल है। तो ये बहुत बड़ा लाभ है जिस बीमारी की इलाज गरीब आदमी कभी सोच नहीं पाता था, और रीजन ये था कि उस बीमारी के इलाज के लिए कोई ना कोई चीजें उन्हें छोड़नी पड़ती थी, चाहे वो जमीन बेचना होता था या बच्चों की पढ़ाई छोड़नी होती थी, और कई बार तो बुजुर्गों के लिए इलाज छोड़ ही देना होता था और सारी आवश्यकताओं को देखते हुए। इसके साथ ही साथ कई बार महिलाओं का इलाज पोस्टपोन होता रहता था, जो कि इस योजना के आने के बाद से, और योजना के आंकड़ों से भी पता चलता है कि लगभग 50% इलाज महिलाओं के द्वारा लिया गया है। तो ये शो करता है कि बहुत सारी बीमारियां जो कि दबा दी जाती थी, पोस्टपोन कर दी जाती थी, उनका इलाज इस योजना के आने के बाद संभव हो सका है। तो एक बहुत बड़ी सुविधा सरकार के माध्यम से लोगों तक पहुंचाई जा रही है, और लोग भी इसका लाभ उठा रहे हैं, और हमारी सिस्टम भी ऐसी है जिसमें कि आईटी प्लेटफॉर्म के माध्यम से ये सारे ट्रांजैक्शन संभव हो पाते हैं।
2: सर, इससे जुड़ा मेरा अगला सवाल था कि जब अस्पताल व्यक्ति पहुंचता है तो बहुत ही इमरजेंसी होती है, उसे अंदाजा नहीं होता है कि हम सही अस्पताल में जा रहे हैं नहीं जा रहे हैं, आयुष्मान में कवर है ये हॉस्पिटल नहीं, तो ये वो कैसे पता कर सकता है?
3: इसके लिए हम लोगों ने सिटीजन एंगेजमेंट के लिए एक अच्छे पुख्ता व्यवस्था किया है, जो रोबस्ट सिस्टम है, और इसके 4 मेजर चैनल है जिससे ये सारी जानकारियां मिल सकती है, न केवल अस्पताल की और बीमारी की, इस योजना से संबंधित कोई भी जानकारी इससे ली जा सकती है। सबसे पहला तो जो सिटीजन के लिए सबसे आसान भी है, 1-4-555 टोल फ्री नंबर है पूरे देश के लिए, और इस नंबर पे फोन करने से हमारा

0: कॉल सेंटर जो 24/7 काम करता है, इसके माध्यम से योजना की सारी जानकारी ले सकते हैं, कौन सा हॉस्पिटल इम्पैनल्ड है, कौन सी बीमारी कवर्ड है, किस अपने जहां उपस्थित हैं उसके आसपास का कौन सा हॉस्पिटल है, ये भी जानकारी ले सकते हैं कि अगर किसी को हार्ट की प्रॉब्लम है तो हार्ट स्पेशलिटी वाली कौन सी सूचीबद्ध हॉस्पिटल है, तो ये सारी जानकारी उससे ली है। सिमिलर जानकारी ये पोर्टल पे भी उपलब्ध रहती है, तो जिनको पोर्टल का एक्सेस है, खास करके नए जनरेशन के लोगों को जो देख पाते हैं, वो आसानी से उस पे भी सर्च कर सकते हैं। हम लोगों ने एक आयुष्मान ऐप बनाया है, जो आयुष्मान ऐप को अपग्रेड करके ऐसा सिस्टम बनाया है कि व्यक्ति अपनी एलिजिबिलिटी चेक कर सकता है, अपना कार्ड डाउनलोड कर सकता है, अपने नियर बाय हॉस्पिटल की जानकारी ले सकता है और इसके साथ साथ अपना फीडबैक भी दे सकता है। और सेम चीज हम लोगों ने व्हाट्सएप जो है चैटबॉट के माध्यम से एक आयुष्मान सारथी भी शुरू किया है कि अगर चैटबॉट पे जैसे ही हाई करेंगे आपको बेसिक इन्फॉर्मेशन आ जाएगा।
1: तो आइए सुनते हैं आयुष्मान भारत के 8 साल पूरे होने पर ये खास रिपोर्ट।
2: आयुष्मान भारत योजना के आज 8 वर्ष पूरे हो गए हैं, तो भारत सार्वभौमिक स्वास्थ्य कवरेज की अपनी यात्रा में एक बड़ा पड़ाव पार कर रहा है। नगद रहित अस्पताल उपचार से लेकर डिजिटल स्वास्थ्य आईडी तक, यह योजना लाखों लोगों के इलाज तक पहुंचने के तरीके को बदल रही है। 8वें वर्ष में प्रवेश करते हुए आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना ABPMJ भारत की प्रमुख स्वास्थ्य बीमा योजना के रूप में उभरी है, जो हर परिवार को सालाना 5 लाख रुपए तक का नगद रहित अस्पताल उपचार कवर देती है। 23 सितंबर 2018 को शुरू हुई इस योजना के तहत अब तक देश की लगभग 33% आबादी शामिल है और 21 सितंबर 2026 तक 48 करोड़ 51 लाख से अधिक आयुष्मान कार्ड जारी किए जा चुके हैं। 38,000 से अधिक सरकारी और निजी अस्पतालों के नेटवर्क के जरिए ABPMJ अब तक 13 करोड़ 25 लाख अस्पताल भर्तियों को कवर कर चुका है, जिनकी कुल लागत 2.03 लाख करोड़ रुपए है। इससे कमजोर तबके के परिवारों पर पड़ने वाला निजी स्वास्थ्य खर्च काफी कम हुआ है। योजना 27 विशेषताओं में 1961 प्रक्रियाओं को कवर करती है और अब आशा कार्यकर्ता, आंगनवाड़ी स्टाफ, 70 वर्ष और उससे अधिक उम्र के सभी वरिष्ठ नागरिकों समेत कई अन्य वंचित समूहों को भी शामिल करती है। लेकिन आयुष्मान भारत सिर्फ अस्पताल कवर नहीं है, यह 4 स्तंभों पर टिका है जो मिलकर काम कर रहे हैं। आयुष्मान आरोग्य मंदिर प्राथमिक स्वास्थ्य सेवाओं को समुदायों के करीब लाते हैं, जहां मुफ्त दवाएं, जांच और डेली परामर्श उपलब्ध हैं। इन केंद्रों पर अब तक 540 करोड़ से अधिक फुटफॉल और 50 करोड़ टेली परामर्श दर्ज किए गए हैं। आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन के तहत 97 करोड़ 61 लाख से अधिक आभा स्वास्थ्य आईडी बनाई गई है, जिनसे लगभग 120 करोड़ स्वास्थ्य रिकॉर्ड जुड़े हैं, ताकि अस्पतालों में कागज रहित और सुचारू इलाज संभव हो सके। वहीं पीएम आयुष्मान भारत स्वास्थ्य इंफ्रास्ट्रक्चर मिशन 64,180 करोड़ रुपए के बजट के साथ शहरी और ग्रामीण भारत में लैबों, क्रिटिकल केयर ब्लॉक और रोग निगरानी प्रणालियों को मजबूत कर रहा है। इन सभी पहलों के जरिए गांव के स्वास्थ्य केंद्रों से लेकर जिला अस्पतालों और डिजिटल प्लेटफॉर्म तक एक सतत देखभाल प्रणाली तैयार हो रही है, जो भारत को सबके लिए स्वास्थ्य के लक्ष्य के करीब ले जा रही है। 8 साल बाद आयुष्मान भारत सिर्फ एक योजना नहीं, बल्कि लाखों लोगों के लिए एक सुरक्षा कवच बन चुका है, जो यह सुनिश्चित करता है कि किसी भी परिवार को स्वास्थ्य और वित्तीय सुरक्षा के बीच चुनाव ना करना पड़े।
1: कई बार लोगों की शिकायत ये होती है कि योजना का दायरा तो उन्हें पता है, लेकिन अस्पताल में उनसे ज्यादा पैसे मांग लिए जाते हैं, तो ऐसी स्थिति में क्या मैकेनिज्म हमने बनाया है कि उनकी शिकायतों को का निपटारा हो सके या शिकायतें सही जगह पहुंचे कैसे?
0: 4 माध्यम रखा है जिससे कोई भी व्यक्ति न केवल जानकारी प्राप्त कर सकता है बल्कि शिकायत भी कर सकता है, तो शिकायत के लिए भी ये 4 चैनल्स ओपन है। दूसरी बात कि ये जो शिकायत स्पेसिफिक केस है जिसमें किसी व्यक्ति को एलिजिबल रहने के बावजूद ट्रीटमेंट डिनाई कर दिया गया या फिर पैसे मांगे गए या कार्ड एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं, ऐसे केसेस को हम लोग SOS कैटेगरी में रखते हैं और इन केसेस को 5 घंटे के अंदर ही निपटारा करना होता है, क्योंकि अगर ये ज्यादा समय लगेगा तो वो एक तरह से जो शिकायत है वो चाहे उसका रिजल्ट आउट मतलब ऑलरेडी हो जाएगा,

0: है तो ट्रीटमेंट नहीं होगा या फिर पैसे दे देगा या कुछ इस तरह का होगा। तो इसलिए इन्हें SOS कैटेगरी में रखा गया है और 5 घंटे के अंदर इसका निपटारा करना है। और ऐसे केसेस को हम लोग न केवल ये IT सिस्टम में रखते हैं बल्कि हम डायरेक्टली नेशनल लेवल से स्टेट को और डिस्ट्रिक्ट को कॉल करते हैं, साथ ही साथ हॉस्पिटल को भी कॉल करते हैं ताकि उन्हें पता चले कि इस तरह का कंप्लेन आया है। और हमने देखा है कि 90% से ज्यादा केसेस में ये चीजें रिजॉल्व हो गई हैं। और ये मैं नागरिकों को भी अवगत कराना चाहता हूं कि ये सुविधा उन्हें उपलब्ध है। जहां भी आयुष्मान कार्ड देने के बावजूद 1 रुपए की भी मांग की जाती है तो वो पहले तो उनसे रसीद मांगे ताकि ये पता चले किस चीज के लिए उन्होंने पैसे मांगे हैं। वो इलाज अगर आयुष्मान भारत में कवर्ड है तो 1 रुपए भी नहीं लगने चाहिए। और अगर वो रसीद दिए बिना पैसे की मांग कर रहा है तो निश्चित रूप से इस पे शिकायत की जाए और इसका निपटारा 5 घंटे के अंदर नेशनल हेल्थ अथॉरिटी की जो पूरी टीम है कॉल सेंटर और ये लग करके करती है और हमें अधिकतर मामलों में सफलता मिल जाती है।
1: आज के दौर में तकरीबन कितने सरकारी और निजी क्षेत्र के अस्पताल आयुष्मान योजना से जुड़े हुए हैं और क्या ग्रामीण और छोटे शहरों में इसे और बढ़ाने की योजना है हमारी?
0: देखिए, ये जो अब तक की स्थिति है 38,000 से ज्यादा हॉस्पिटल जो है ये आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना में सूचीबद्ध है, इम्पैनल्ड है। इसमें से 18,000 प्राइवेट हॉस्पिटल्स हैं, 20,000 के आसपास सरकारी अस्पताल हैं जिसमें मेडिकल कॉलेज हॉस्पिटल, डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल, सब डिविजनल हॉस्पिटल, CHCs ये सारे इम्पैनल्ड है। ये 38,000 हॉस्पिटल पूरे देश में स्प्रेड आउट हैं। जाहिर सी बात है कि शहरों में ज्यादा हॉस्पिटल हैं, परंतु इस योजना के माध्यम से जिसको सरकार फंड कर रही है हमने इवन रूरल एरिया में बहुत ज्यादा हेल्थ सर्विस की डिमांड बढ़ाई है। मतलब लोग जो है अब इलाज करने आ रहे हैं जो पहले इलाज नहीं कर पा रहे थे, और जब इलाज करने आ रहे हैं तो जाहिर सी बात है कि जो हेल्थ केयर प्रोवाइडर हैं, हॉस्पिटल्स हैं, उनके लिए ये अपॉर्चुनिटी है कि जिस क्षेत्र में डिमांड है वहां हॉस्पिटल स्थापित करें। तो इस योजना के माध्यम से रिमोट एरियाज में, ग्रामीण क्षेत्रों में काफी हॉस्पिटल्स खुले हैं, कई खुलने की भी प्रक्रिया में है। शायद ही कुछ जिले बचे हों जहां पे कोई प्राइवेट हॉस्पिटल अभी तक ना पहुंचा। सरकारी अस्पताल तो निश्चित रूप से सरकार की योजना के तहत ही खुल रही हैं, परंतु ये सुविधा इस योजना के आने के बाद से बढ़ी है। इवन सरकारी अस्पताल जो इसमें सूचीबद्ध हैं, वो ऐसे तो निःशुल्क इलाज सभी लोगों की करते हैं लेकिन वो आयुष्मान कार्ड धारी को आयुष्मान कार्ड मांग करके इलाज करना है ताकि इलाज तो उन्हें निःशुल्क मिलेगा लेकिन सरकारी अस्पताल को बाद में इस योजना के तहत राशि मिल जाएगी, क्लेम अमाउंट मिलेगा और इसका उपयोग करके सरकारी अस्पताल अपने आप को ज्यादा सुदृढ़ कर सकते हैं। जो आकांक्षी जिले हैं उसमें जो हॉस्पिटल स्थापित हैं वहां अगर कोई इलाज करता है तो जो क्लेम अमाउंट होता है उस पे हम एक्स्ट्रा इंसेंटिव देते हैं ताकि वो वहां पे न केवल सर्वाइव करे वो बेहतर कार्य कर सके।
1: इन अस्पतालों में जो इंफ्रास्ट्रक्चर जरूरी होता है किसी इलाज के लिए उसकी मॉनिटरिंग नेशनल हेल्थ अथॉरिटी किस तरह से करती है?
0: देखिए, हम लोग जब भी किसी हॉस्पिटल को सूचीबद्ध करते हैं, इम्पैनल करते हैं, तो उसके विभिन्न क्राइटेरियाज रखे हैं। जैसे मिनिमम नंबर ऑफ बेड्स होने चाहिए, ज्यादातर स्पेशलिटी में 20 बेड है। दूसरा, हमें ये पता होना चाहिए कि क्या क्या स्पेशलिटीज हैं जिसके लिए वो इम्पैनल कर रहे हैं। मतलब अगर एक हॉस्पिटल में 4 स्पेशलिटी है तो उन्हें चारों के लिए इम्पैनल होना पड़ेगा। एक चूज नहीं कर सकते कि जिसमें ज्यादा फायदा है, जिस बीमारी के इलाज में उसको चूज नहीं कर सकते, बल्कि जो स्पेशलिटी है सभी को रखना पड़ेगा। स्पेशलिटी जैसे ही डालेंगे उन्हें बताना पड़ेगा डॉक्टर्स कौन कौन है, उनके क्वालिफिकेशंस क्या है, ये जो डॉक्टर्स हैं ये फुल टाइम है या पार्ट टाइम है। और ये चीज हम लोगों ने अब इवन हेल्थ प्रोफेशनल रजिस्ट्री पे उन डॉक्टरों का रजिस्टर होना मैंडेटरी किया है ताकि वहां से हम सारे इंफॉर्मेशन निकाल पाए कि जो डॉक्टर की ये नाम बता रहे हैं वो डॉक्टर सच में वेरीफाइड है, वो डॉक्टर और कहां कहां है। इसके अलावा हेल्थ फैसिलिटी रजिस्ट्री पे भी उसे रजिस्टर्ड होना चाहिए। इसके अतिरिक्त जो स्टैट्यूटरी रिक्वायरमेंट है, जिन राज्यों में क्लिनिकल एस्टैब्लिशमेंट एक्ट है उसके तहत रजिस्टर होना चाहिए, फायर की जो क्लियरेंसेस हैं, बिल्डिंग लॉज के क्लियरेंसेस हैं, बायोमेडिकल वेस्ट के क्लियरेंसेस हैं, ये सब मैंडेटरीली जो रिक्वायर्ड है वो उसमें निश्चित रूप से होना चाहिए। साथ ही साथ हमने इस वर्ष अब

0: नए हॉस्पिटल इम्पैनल करने के लिए हॉस्पिटल मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम, उसे भी मैंडेटरी किया है।
1: सर, इस योजना में रोज आपने बताया कि किस तरह से 70-80 हजार का आंकड़ा रहता है जहां पर इलाज चल रहा होता है, दावे आ रहे होते हैं आप लोगों के पास में क्लेम्स में, तो ऐसे में एक आशंका ये भी रहती है कि कहीं ये दावे फर्जी तो नहीं आ रहे हैं, कहीं अनावश्यक इलाज तो नहीं किया जा रहा है।
0: अच्छी बात है इस आयुष्मान भारत पीएमजे में कि हर इलाज को बंडल्ड पैकेज के रूप में बनाया गया है। मतलब अगर आपने कैटरेक्ट सर्जरी कराई है तो उसमें दवा का

0: पैसे नहीं मिलेंगे। मतलब अगर कोई हॉस्पिटल सोचता है कि इसे ज्यादा इलाज करा दें, ज्यादा दिन रख लें, तो उससे ज्यादा पैसे नहीं मिलेंगे क्योंकि उसके कॉस्ट फिक्स्ड हैं। दूसरी बात यह है कि अब जब वो क्लेम सबमिट करते हैं तो ऐसे कई शिकायतें आई और कई ऐसे पाए भी गए जिसमें हॉस्पिटल्स ने क्लेम गलत सबमिट किए, एक्स्ट्रा सबमिट किए, गलत डॉक्यूमेंट सबमिट किए। इसमें तीन कैटेगरी आता है। एक तो है जिसमें एरर्स मिल जाते हैं, दूसरा है जिसमें एब्यूज हुआ है, मतलब कि ट्रीटमेंट चाहिए था थोड़ा सा, उसको और दो तीन पैकेज बुक करके ट्रीटमेंट कर दिया, इलाज एक चीज के लिए गए थे साथ में दो और इलाज कर दिए, एक्स्ट्रा बुक कर दिए, इस तरह के एब्यूज हैं। थर्ड है फ्रॉड है, जिसमें पेशेंट कोई और है, ऑथराइजेशन किसी का है, फोटो किसी और का लगाया है, डॉक्यूमेंट जो लगाया है कैटरेक्ट में लेंस या नी ट्रांसप्लांट में जो इम्प्लांट लगाया है वो पता चला कि वो लगा ही नहीं है, या लगा है तो एक ही इम्प्लांट चार जगह लगाए हैं या एक ही लेंस चार जगह लगाए, वो पकड़ना जरूरी है
1: जी, डुप्लीकेसी हो गई,
0: डुप्लीकेसी हो गई
1: या कह लीजिए
0: तो डबल। हम लोगों ने एक नेशनल एंटी फ्रॉड यूनिट बनाया और जिस तरह से वो दिमाग लगा रहे किस तरह से चीट कर सकते हैं, हमारी टीम ने इस पे टेक्नोलॉजी का उपयोग करके बहुत सारे ऐसे केसेस को सबसे पहले क्लेम प्रोसेसिंग शुरू होने के पहले इसे नाफू ट्रिगर से गुजरना पड़ता है और ऐसे हम लोगों ने 61 ट्रिगर्स लगाए हैं और इसमें वो सारे चीजें जिसमें फोटोग्राफ्स बदले गए हैं, डॉक्यूमेंट गलत लगाए गए हैं, इम्प्लांट के बार कोड मिसमैच हो रहे हैं या बार कोड कई जगह यूज हुए हैं, ऐसे करके हम लोगों ने कई सारे केसेस को पकड़े हैं और अब तक 670 करोड़ के आसपास का क्लेम हम लोगों ने प्रिवेंट किया, वो क्लेम को हम पे नहीं करके उसे रिजेक्ट किया और ऐसे मामले को हम लगातार वॉच करते हैं। जो भी हमारा ट्रिगर जो है सस्पिशियस बताता है उनसे हम स्टेट्स को भेजते हैं कि उसे वेरीफाई किया जाए। उनके यहाँ भी स्टेट एंटी फ्रॉड यूनिट है जिसमें डॉक्टर्स होते हैं जो चेक करते हैं फिर से, या जरूरत पड़ने पे हॉस्पिटल इंस्पेक्ट भी करते हैं और अगर वो फ्रॉड निकलता है तो उसे न केवल क्लेम रिजेक्ट होता है, फ्रॉड के केस में वो डी इम्पैनल हो सकते हैं, 5 times तक उस पे पेनल्टी लग जाती है क्लेम के अमाउंट पे। तो इस तरह की कार्रवाइयां भी होती है, कुछ केसेस में इवन FIR भी दर्ज होते हैं। तो ये चेक्स है, अब इसमें हमारे ट्रिगर्स और ज्यादा एक्यूरेट हो रहे हैं बिकॉज हम अब मशीन लर्निंग और AI का यूज कर रहे हैं जिससे कि टूल भी ये समझने लगता है कि इस तरह की टेंडेंसी बढ़ रही है, इस तरह के क्लेम्स ज्यादा आ रहे हैं और हम जो डॉक्यूमेंट हैं उसको OCR टेक्नोलॉजी से पढ़ पाते हैं और इसलिए इस तरह के ट्रिगर्स को अप्लाई कर पाते हैं। तो ऐसी कई व्यवस्थाएं की गई है। इसके अलावा हम लोगों ने एक नई चीजें और शुरू की है जिसमें हमारे पास बहुत सारे ऐसे क्लेम हैं जो बहुत छोटे अमाउंट के हैं, वॉल्यूम बहुत है, वैल्यू बहुत कम है, तो अब हम लोगों ने AI को यूज करके ऑटो एडजुडिकेशन करना शुरू किया है कि सिस्टम ही उसको एडजुडिकेट कर देती है बेस्ड ऑन जो रिपोर्ट्स देते हैं। तो ऑटो एडजुडिकेशन के बाद से लगभग 30% ऑफ द क्लेम्स इन वॉल्यूम टर्म्स अब ये ऑटो एडजुडिकेशन से क्रॉस कर रहा है। तो ये एक अच्छा सिस्टम बना है, आने वाले दिनों में और भी सारे पैकेजेस जो कि हाई वैल्यू भी हों उनको भी ऑटो एडजुडिकेशन के माध्यम से ले जाने का प्रयास किया जाएगा और इसके लिए हम लोगों ने एक हैकाथॉन किया था जिससे हमें अच्छे सॉल्यूशंस मिले और तभी हम इस चीज को लागू कर पाए हैं। आने वाले वर्षों में जब हम 9th year में जा रहे हैं इस योजना के, इसका उपयोग और बढ़ाएंगे।
1: सर, कोई ऐसा भी जिला या राज्य है जहां पे लग रहा है आपको कि इस योजना को लागू करना चुनौतीपूर्ण है, उन जगहों पे किस तरह से काम कर रहे हैं क्या? और
0: हमारे लिए जो एक तो अब पूरा देश इस योजना से लाभान्वित हो रहा है, जो अंतिम राज्य था वो पश्चिम बंगाल था जो कि 16 अगस्त को इस योजना पे आ गया है, तो अब तो पूरे देश में इसे लागू किया गया है। जो हमारी कठिनाई आती है वो किसी राज्य विशेष में ज्यादा नहीं है, बट कुछ क्षेत्र जरूर हैं जो काफी रिमोट हैं, वो ट्राइबल एरियाज में भी हो सकते हैं, हिली रीजन्स में आते हैं, फॉरेस्ट रीजन्स में आते हैं, जहां पे नेटवर्क की प्रॉब्लम आती है और ये नेटवर्क की प्रॉब्लम हॉस्पिटल्स तो जब बनाते हैं तो हॉस्पिटल किसी न किसी व्यवस्था से नेटवर्क सुनिश्चित कर लेती है, बट हमें आयुष्मान कार्ड बनाने में कई बार कठिनाई का सामना करना पड़ता है, क्योंकि कार्ड भी ऑनलाइन ही ऑथेंटिकेशन के बाद बनता है। तो हम लोगों ने ऐसे केसेस में ऑफलाइन भी व्यवस्था की है। इसके अलावा जो चैलेंज ये आ रही है कि कुछ रिमोट क्षेत्रों में अभी भी सभी स्पेशलिटी

0: हॉस्पिटल्स नहीं मिल पाते हैं। जो हमारी सुपर स्पेशलिटी है जैसे कैंसर है, हार्ट डिजीज है, किडनी, लीवर, कई दूरस्थ क्षेत्रों में ये स्पेशलिटी नहीं हो पाती है और इसलिए लोगों का डिपेंडेंस फिर दूसरे बाहर जाकर के इलाज कराने पे हो जाता है। तो ये चैलेंजेज हैं बट इसको धीरे धीरे हम ओवरकम कर रहे हैं और हमें लगता है आने वाले दिनों में ये बेहतर ही होता चला जाएगा। दूसरी एक ये स्थिति है कि हम डिजिटल मिशन जो रखे हैं, आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन, इसके माध्यम से पेशेंट को हम एम्पावर कर रहे हैं सो दैट कि दे हैव ऑल हेल्थ रिकॉर्ड्स ऑन देयर मोबाइल। अब ऐसा होने से इनका लाभ ये हो रहा है कि वो कहीं भी इलाज करते हैं तो उन्हें रिकॉर्ड कैरी करने की जरूरत नहीं पड़ती, वो मोबाइल से शेयर कर पाते हैं। इससे ये बेहतर डायग्नोसिस में फायदा होता है और ये पीएमजे के भी बेनिफिशियरीज को बहुत लाभ हो रहा है। तो हम इसके माध्यम से लोगों को ये भी बताने की कोशिश कर रहे हैं कि जैसे जो पर्सनल हेल्थ रिकॉर्ड ऐप है और भारत सरकार ने जो लॉन्च किया है आरोग्य सेतु 2.0, ये लोगों के लिए बहुत बड़ा सुविधा है जिसके माध्यम से सारे रिकॉर्ड अपने मोबाइल में रहता है और उससे हिस्ट्री भी बनती जाती है, इलाज भी बेहतर हो पाता है, डायग्नोसिस बेहतर हो पाता है। तो ऐसे थोड़े बहुत अभी चैलेंजेस हैं परंतु हमारा देश काफी बड़ा है, आबादी बहुत है, क्षेत्र भी अलग अलग तरह का है, चैलेंजेज अलग है, कल्चरली डिफरेंट है, ज्योग्राफिकली डिफरेंट है, इसलिए इस योजना में हमेशा थोड़ी बहुत तो चैलेंज रहेगी परंतु हम उसे इतने बड़े सिस्टम में नेशनल लेवल पे काफी हद तक सॉल्व करने में सफल रह रहे हैं।
1: सर, 70 साल और उससे ज्यादा की उम्र के लोगों को भी योजना के दायरे में लाया गया है अब, तो ये क्या मुश्किल रहा, कुछ चैलेंजेस आए यहाँ भी?
0: एक तरह से चैलेंज से ज्यादा ये अपॉर्चुनिटी है। हम 70 वर्ष से ज्यादा उम्र के लोगों को, जबकि ऐसे उम्र में प्राइवेट इंश्योरेंस कंपनीज भी इंश्योरेंस देना बंद कर देती है,
1: बिल्कुल,
0: कई घरों में परिवार वाले भी इलाज कराना नहीं चाहते हैं और वो बुजुर्ग व्यक्ति भी छोड़ देता है कि अब हमारा समय आ गया, बच्चों पे ध्यान दो, इस तरह की बात करने लगते हैं। ऐसी स्थिति में भारत सरकार ने ये योजना वय वंदना आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के अधीन लाई है और ये अब 2 वर्ष पूरा होने को है, अक्टूबर 2024 में चालू किया गया था। 6 करोड़ से ज्यादा बुजुर्ग को इसमें लाभ मिलेगा ऐसी उम्मीद की जा रही है। 1.36 करोड़ कार्ड लोगों ने क्रिएट कर लिया है। लगभग 20 लाख से ज्यादा लोगों ने, 70 वर्ष से ज्यादा के लोगों ने इलाज का लाभ भी लिया है और 5000 करोड़ तक की राशि का उनका बचत भी हो चुका है जो सरकारें खर्च कर रही है। तो ये देख के लग रहा है कि जिन लोगों को स्वास्थ्य की सबसे जरूरत है सबसे ज्यादा, उनके लिए सरकार उनके साथ खड़ी हुई है। और हमें सबसे ज्यादा क्वेरी ऐसे ही लोगों से आती है जो कि 70 वर्ष से ज्यादा है, चाहे वो गरीब हो, अमीर हो, किसी भी आय वर्ग से हो, उनको ये लाभ मिल पा रहा है, ये बहुत बड़ी उपलब्धि है। और इसमें चैलेंजेस थोड़ी आती है क्योंकि काफी बुजुर्ग लोग जब हॉस्पिटल पहुंचते हैं तो कई बार उनका फिंगरप्रिंट नहीं काम करता, तो हम लोगों ने फेस ऑथ की व्यवस्था की है। इस तरह से हमें छोटे मोटे व्यवस्थाएं और इम्प्रूव कर रहे हैं। हॉस्पिटल में जैसे वो पहुंचते हैं तो उनकी बैठने की व्यवस्था, उन्हें ऐसा सुविधा हो जिससे वो अनकंफर्टेबल नहीं हो हॉस्पिटल में जाकर के ट्रीटमेंट के लिए, क्योंकि कई बुजुर्ग है कई बार अकेले ही आते हैं।
1: बिल्कुल।
0: तो ये जरूरी है कि हम आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत जो सूचीबद्ध अस्पताल है उनमें भी उनकी आवश्यकता के अनुरूप व्यवस्थाएं सुनिश्चित करें। तो ये कार्य भी NHA कोशिश कर रहा है करने का।
1: एक आखिरी सवाल सर, जल्दी से उसका जवाब आपसे चाहूंगा कि 8 सालों में क्या सीखने को मिला हमें और अगले 4-5 सालों की अगर बात करें तो क्या प्राथमिकताएं रहेंगी?
0: पिछले 8 वर्षों की जर्नी में ये पता चला कि हमें अगर इतने बड़े स्केल पे लोगों को स्वास्थ्य की सुविधा उपलब्ध करानी है तो IT सिस्टम रोबस्ट होना चाहिए जिससे कि हम हर तरह के डिफरेंट टाइप के केसेस को हैंडल कर सकें। अब जो आने वाले समय में हमें ये अपॉर्चुनिटी दिख रही है कि पिछले 8 सालों में जैसे हम लोगों ने 13 करोड़ पेशेंट का इलाज करा है, इनके ट्रीटमेंट की हिस्ट्री से रिलेटेड आंकड़े उपलब्ध हैं। इन आंकड़ों को एनोनिमाइज करके, इससे पर्सनल इन्फॉर्मेशन हटा करके, इन आंकड़ों की बहुत ज्यादा वैल्यू है रिसर्च के लिए, डिजीज सर्विलेंस के लिए, पूरे देश की डिजीज मैपिंग के लिए, किस क्षेत्र में किस तरह की बीमारियां बढ़ी है या है, किस एज ग्रुप में किस तरह की बीमारी है, किस जेंडर में कौन सी बीमारी बढ़ रही है, ऐसी तरह की एक्सरसाइज की जा सकती है। और हम जल्द ही एक ऐसा सिस्टम ला रहे हैं जिससे कि जो सिक्योर डेटा एनवायरनमेंट कहलाता है,

0: होता है जिसमें हम इन आंकड़ों को बिना दिए, बिना इसका एक्सेस किए, हम रिसर्च ऑर्गेनाइजेशंस को, यहाँ तक कि जो प्राइवेट कंपनीज भी हो सकती हैं, टर्म्स कंडीशन ऑफ कोर्स अलग से डिसाइड की जाएगी, मतलब ये डेटा पे अपने एल्गोरिदम रन करके रिजल्ट्स ले सकते हैं। ये आने वाले दिनों में एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी हमारे सामने आई है और ये फर्दर इमर्जिंग टेक्नोलॉजी को लेवरेज करने में फायदा आएगा, जो हम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को बढ़ावा देने, इसके माध्यम से नए नए टूल्स, चाहे वो स्क्रीनिंग का हो, डायग्नोसिस का हो, डेवलप करने में भी सुविधा होगी। तो आने वाले वर्षों में हम नेशनल हेल्थ अथॉरिटी एक बहुत ही डेटा ड्रिवन आईटी एक्सपर्टीज हासिल करेगा और इसका उपयोग इस योजना के बेहतर और क्वालिटी हेल्थ केयर डिलीवरी में कर पाएगा।
1: जाहिर है इसका फायदा आम लोगों को भी होगा। सर बहुत बहुत धन्यवाद, आपने समय दिया।
0: थैंक यू।
2: अभी आप सुन रहे थे भारत में समग्र स्वास्थ्य की पहल, आयुष्मान भारत, प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना पर परिचर्चा। इसमें भाग ले रहे थे राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राधिकरण के मुख्य कार्यकारी अधिकारी डॉक्टर सुनील कुमार बर्नवाल और पत्रकार सौरभ शुक्ला। ये कार्यक्रम आकाशवाणी के समाचार सेवा प्रभाग द्वारा प्रस्तुत किया गया। इसे आप हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR और यूट्यूब चैनल न्यूज ऑन AIR ऑफिशियल पर भी सुन सकते हैं।
3: चर्चा का विषय है।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं अंजलि। भारत ने रूस और ईरान से तेल खरीदने वाले देशों पर शुल्क लगाने के अमरीकी कानून पर अपने हितों और चिंताओं को एक बार फिर दोहराया है। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने आज संयुक्त राष्ट्र महासभा के सत्र से अलग अमरीका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो से मुलाकात की। डॉ जयशंकर ने इस कानून पर भारत की चिंताएं स्पष्ट की। दोनों नेताओं ने द्विपक्षीय संबंधों के साथ साथ खाड़ी देशों और यूक्रेन के हालात पर भी व्यापक चर्चा की। श्री रूबियो ने कहा कि भारत और अमरीका प्रमुख क्षेत्रीय प्राथमिकताओं पर मिलकर काम कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि दोनों देश रणनीतिक साझेदारी को मजबूत कर रहे हैं। भारत ने इस्लामी सहयोग संगठन के तथाकथित जम्मू कश्मीर संपर्क समूह के संयुक्त घोषणा पत्र में भारत पर की गई निराधार और तथ्यात्मक रूप से गलत टिप्पणियों को खारिज कर दिया है। विदेश मंत्रालय ने कहा है कि भारत के आंतरिक मामलों पर टिप्पणी करने का ओआईसी को कोई कानूनी अधिकार नहीं है। मंत्रालय ने स्पष्ट किया कि संपूर्ण जम्मू कश्मीर और लद्दाख केंद्र शासित प्रदेश भारत का अभिन्न और अटूट हिस्सा है और राजनीतिक रूप से प्रेरित झूठे प्रचार को बार दोहराने से ये वास्तविकता नहीं बदल सकती। इस तरह के प्रेरित बयानों को बार बार समर्थन करना संगठन की विश्वसनीयता पर ही गंभीर सवाल खड़े करता है। रक्षा मंत्रालय ने वायुसेना के लिए 160 सैटेलाइट स्मार्ट एंटी एयरफील्ड हथियार और उससे जुड़े उपकरणों की खरीद के लिए भारत डायनेमिक्स लिमिटेड के साथ 810 करोड़ रुपए से अधिक का समझौता किया है। इसकी आपूर्ति वर्ष 2027-28 और 2028-29 के बीच की जाएगी। ये सैटेलाइट स्मार्ट एंटी एयरफील्ड हथियार हवा से जमीन पर मार करने वाला सटीक निर्देशित ग्लाइड बम है। इसे जगुआर हॉक और सुखोई 30 MKI जैसे विमानों से दागा जा सकता है। ये लंबी दूरी से दुश्मन के हवाई ठिकानों को निष्क्रिय करने में सक्षम है। इस प्रणाली को रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन ने देश में ही डिजाइन और विकसित किया है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने गुजरात के वडोदरा में ब्रह्मकुमारियों के ग्लोबल स्पिरिचुअल पैलेस रिट्रीट सेंटर का लोकार्पण किया। उन्होंने विकसित भारत के लिए युवा, राष्ट्र निर्माण के लिए आंतरिक शक्ति की जागृति अभियान का भी शुभारंभ किया। राष्ट्रपति ने कहा कि देश को युवा शक्ति की आवश्यकता है।
1: युवाओं को सशक्त, आत्मनिर्भर, शांतिपूर्ण और जिम्मेदार बनाना हम सब की जिम्मेदारी। अब ऐसे युवा तैयार करना है जो ज्ञान, टेक्निक और कौशल से साथ में आत्मविश्वास, आत्मअनुशासन, सकारात्मक सोच, संवेदनशीलता और नैतिक मूल्य से भी परिपूर्ण।
0: निर्वाचन आयोग ने कहा है कि मतदाता सूची में संशोधन सहित सभी निर्णय सर्वसम्मति से ले गए हैं। आयोग ने हाल के महीनों में देश भर में 40 नई पहल शुरू की है और विशेष

0: चयन पुनरीक्षण सहित कई चुनावी सुधार किए हैं। आयोग ने कहा है कि उसके सभी अधिकारी चुनाव प्रणाली में सुधार के लिए सुझाव देने के लिए पूरी तरह से अधिकृत हैं। भारतीय जनता पार्टी अध्यक्ष नितिन नवीन ने सभी 36 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के लिए पार्टी प्रभारी और सह प्रभारियों की नियुक्ति की है। पूर्व केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी को छत्तीसगढ़ और हरियाणा का तथा हरीश द्विवेदी को बिहार का प्रभारी बनाया गया है। विनय सहस्रबुद्धे को दिल्ली का और विनोद तावड़े को उत्तर प्रदेश का प्रभारी बनाया गया है। राम माधव तमिलनाडु और उत्तराखंड के तथा तरुण चुग गुजरात के प्रभारी होंगे। सतीश पूनिया को जम्मू कश्मीर और पंजाब का तथा अनिल एंटनी गोवा और नागालैंड का दायित्व संभालेंगे। भारत ने आज ओमान के पूर्वी तट के पास वाणिज्यिक जहाज एमवी केप डाउ पर हुए हमले की कड़ी निंदा की है। विदेश मंत्रालय ने कहा है कि जहाज पर सवार 20 भारतीय नाविकों में से 19 को सुरक्षित बचा लिया गया है, जबकि एक भारतीय नागरिक की दुर्भाग्यपूर्ण मृत्यु हो गई। मंत्रालय ने मृतक के परिवार के प्रति गहरी संवेदना व्यक्त की है। विदेश मंत्रालय ने कहा कि ओमान में भारतीय दूतावास स्थिति पर नजदीकी से नजर रख रहा है और भारतीय नाविकों की जल्द स्वदेश वापसी के लिए ओमानी अधिकारियों के साथ सक्रिय रूप से समन्वय कर रहा है। बंगाल की खाड़ी के ऊपर बने गहरे दबाव का क्षेत्र उत्तरी आंध्र प्रदेश और दक्षिणी ओडिशा तट की ओर बढ़ रहा है। इसके आज रात तट से टकराने की संभावना है। आईएमडी ने दक्षिणी जिलों के लिए रेड वार्निंग जारी की है। कुछ जगहों पर बहुत ज्यादा बारिश हो सकती है और 60 से 70 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवाएं चलने की चेतावनी दी गई है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: This is Akashvani. The news read by V.C. Pramod. India today reiterated its interest and concerns with regard to sanctioning Russia and Iran Act. External Affairs Minister S. Jayashankar met U.S. Secretary of State Marco Rubio on the sidelines of the UN General Assembly session this evening and raised concerns regarding the act. Both leaders also discussed India-U.S. bilateral relations and Gulf and Ukraine situations. U.S. President Donald Trump signed into law the Sanctioning Russia and Iran Act last week, which authorizes him to impose tariffs of up to 100% on countries buying Russian oil and gas. In response, New Delhi said it will take all necessary steps to protect its economic interests and ensure energy security for the nation. Jayashankar, who arrived in New York on Sunday, is leading the Indian delegation for the 81st session of the UN General Assembly. After meeting with Jayashankar, Rubio said that India and the US are coordinating on key regional priorities. He added, together, both countries are building strategic partnership and coordinating on key regional priorities and upcoming multilateral efforts. New Delhi has categorically rejected the unwarranted and factually incorrect references to India in the joint communique of the so-called Organization of Islamic Cooperation, OIC, contact group on Jammu and Kashmir. In a statement, Ministry of External Affairs said the OIC has no locus standi to pronounce on matters that are strictly internal to India. It said the entire union territories of Jammu and Kashmir and Ladakh are integral and inalienable part of India, and no amount of repetition of politically motivated propaganda can change this reality. The ministry said repeated endorsement of such motivated narratives only raises serious questions on the credibility of the OIC. It said instead of offering a platform to Pakistan to peddle its fabricated and motivated propaganda, OIC will be better advised to counsel Pakistan, which has a well-documented record of supporting and sponsoring terrorism, to look inwards and address the continuing threat of terrorism emanating from territories under its control. The Defence Ministry has signed a contract of over 810 crore rupees with Bharat Dynamics Limited (BDL) for the procurement of 160 satellite smart anti-field weapons (SAT-SAAW) along with associated equipment for the Indian Air Force. The contract was signed in the presence of Defence Secretary Rajesh Kumar Singh in New Delhi today. The delivery of SAT-SAAW

0: BMW is scheduled between 2027-2028 and 2028-2029. SAT-SAAW is an air-to-ground precision-guided glide bomb which can be launched from platforms like Jaguar, Hawk and Su-30 MKI and has the capability to neutralize enemy airfields from a long standoff range. Election Commission has said that written notes and internal checks are standard ongoing practice meant to ensure transparency and legal compliance, and these are not signs of dysfunction. In a statement, Election Commission said all official orders and decisions carry full legal sanction under the 2023 Act governing the Commission's conduct of business. It said every officer of the Commission, not just the three commissioners, is authorized to give suggestions for improving the electoral system. A deep depression over the Bay of Bengal is moving towards the North Andhra Pradesh, South Odisha coast and is expected to cross tonight. The system is likely to cross near Kalingapatnam between tonight and the early hours of tomorrow, bringing very heavy to extremely heavy rain and squally winds. Indian men's badminton team settled for the bronze medal after facing a 1-3 defeat to China in the semi-final in Aichi, Japan today. Indian player Lakshya Sen lost the opening match 21-16, 21-18 to Shi Yuki before Sattvik Sairaj Rankireddy and Chirag Shetty leveled the tie. And that is the end of this news bulletin.
1: नमस्कार, आकाशवाणी से विश्व दर्पण के साथ मैं अंजलि। मुख्य समाचार। भारत ने रूस से तेल और गैस खरीदने वाले देशों पर शुल्क लगाने के अमरीकी फैसले पर अपने हितों और चिंताओं को दोहराया। भारत ने ओमान के पास वाणिज्यिक पोत एमवी केपडाओ पर हुए हमले की निंदा की। एक भारतीय नाविक की मौत। भारत ने इस्लामिक सहयोग संगठन के जम्मू कश्मीर के संदर्भ को खारिज किया, कहा इसका भारत के आंतरिक मामलों से कोई लेना देना नहीं। अमेरिका के प्रतिबंधों की धमकी के बाद इराक ने बगदाद जाने वाली ईरानी उड़ानों पर रोक लगाई। और एशियाई खेलों में भारतीय पुरुष बैडमिंटन टीम ने कांस्य पदक हासिल किया। भारत ने अब तक 1 स्वर्ण, 5 रजत और 6 कांस्य पदक सहित 12 पदक जीते। अब समाचार विस्तार से। भारत ने रूस और ईरान से तेल खरीदने वाले देशों पर शुल्क लगाने के अमरीकी कानून पर अपने हितों और चिंताओं को एक बार फिर दोहराया है। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने आज संयुक्त राष्ट्र महासभा के सत्र से अलग अमरीका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो से मुलाकात की। डॉ जयशंकर ने इस कानून पर भारत की चिंताएं स्पष्ट की। दोनों नेताओं ने द्विपक्षीय संबंधों के साथ साथ खाड़ी देशों और यूक्रेन के हालात पर भी व्यापक चर्चा की। एक रिपोर्ट।
2: राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने पिछले हफ्ते रूस और ईरान प्रतिबंध कानून को मंजूरी दी थी। भारत ने कहा कि वह अपने आर्थिक हितों की रक्षा और देश के लिए ऊर्जा सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए सभी जरूरी कदम उठाएगा। न्यूयॉर्क पहुंचे विदेश मंत्री जयशंकर संयुक्त राष्ट्र महासभा के 21वें सत्र में भारतीय प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व कर रहे हैं। श्री रूबियो ने कहा कि भारत और अमरीका प्रमुख क्षेत्रीय प्राथमिकताओं पर मिलकर काम कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि दोनों देश रणनीतिक साझेदारी को मजबूत कर रहे हैं और आगामी बहुपक्षीय प्रयासों पर एक दूसरे के साथ तालमेल बिठा रहे हैं। विश्व दर्पण के लिए समाचार कक्ष से करिश्मा राय।
1: भारत ने घरेलू निर्माताओं को सस्ते आयात से बचाने के लिए चीन से आयात होने वाले सजावटी कागज पर एंटी डंपिंग शुल्क अगले वर्ष मार्च तक बढ़ा दिया है। राजस्व विभाग ने दिसंबर 2021 में 5 वर्ष के लिए सजावटी कागज पर 110 अमरीकी डॉलर से 542 अमरीकी डॉलर प्रति टन की दर से एंटी डंपिंग शुल्क लगाया था। विभाग ने अब अधिसूचना में संशोधन करते हुए चीन से आयात या वहां से निर्यात किए जाने वाले सजावटी कागज पर यह शुल्क 26 मार्च 2027 तक बढ़ा दिया है। इस कदम का उद्देश्य सस्ते आयात से घरेलू डेकोर पेपर निर्माताओं के हितों की रक्षा करना है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने कहा है कि आगामी कुछ वर्षों में बहुपक्षीय कर वार्ताओं के लिए निर्णय एक पीढ़ी के लिए सीमा पार कराधान को आकार देंगे। नई दिल्ली में ब्रिक्स कर प्रमुखों की बैठक में उन्होंने कहा कि ब्रिक्स देश बड़ी विकास

0: शील अर्थव्यवस्थाएं हैं और उन्होंने महत्वपूर्ण घरेलू कर क्षमता का निर्माण किया है। वित्त मंत्री ने कहा कि इन निर्वार्ताओं को निष्पक्ष और स्थायी बनाने के लिए उनका दृष्टिकोण आवश्यक है। उन्होंने इस वर्ष ब्रिक्स कर सत्र से उभरने वाली तीन व्यापक क्षेत्रों की जानकारी दी।
1: Look at what has emerged from the BRICS.
2: इस साल ब्रिक्स के टैक्स ट्रैक में विशेष रूप से टेक्नोलॉजी, डेटा का इस्तेमाल और डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर पर विशेष ध्यान दिया गया है, जिससे टैक्स एडमिनिस्ट्रेशन को ज्यादा सटीक और आसान बनाया जा सके और ये लोगों के मनमाने फैसलों पर कम निर्भर रहे। प्रशासन, गवर्नेंस का ढांचा, साझा मानक और व्यावहारिक टूल्स, ये सब मिलकर सहयोग को एक मजबूत संस्थागत रूप प्रदान करते हैं।
1: A durable institutional shape.
0: पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री भूपेंद्र यादव ने आज नई दिल्ली में ऑस्ट्रेलिया के जलवायु परिवर्तन और ऊर्जा मंत्री तथा कॉप 31 वार्ता के अध्यक्ष क्रिस बोवेन से मुलाकात की। श्री यादव ने बताया कि उन्होंने फिजी में होने वाली आगामी प्री कॉप और तुर्की में होने वाले कॉप 31 के प्रमुख एजेंडा बिंदुओं पर भी चर्चा की। भारत ने आज ओमान के पूर्वी तट के पास वाणिज्यिक जहाज एमवी केप डाउ पर हुए हमले की कड़ी निंदा की है। विदेश मंत्रालय ने कहा कि जहाज पर सवार 20 भारतीय नाविकों में से 19 को सुरक्षित बचा लिया गया है, जबकि एक भारतीय नागरिक की मृत्यु हो गई। मंत्रालय ने मृतक के परिवार के प्रति गहरी संवेदना व्यक्त की है। विदेश मंत्रालय ने कहा कि ओमान में भारतीय दूतावास स्थिति पर नजदीकी नजर रख रहा है और भारतीय नाविकों की जल्द स्वदेश वापसी के लिए ओमानी अधिकारियों के साथ सक्रिय रूप से समन्वय कर रहा है। विश्व दर्पण समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं।
3: और ज्यादा खबरों के लिए expert@AIRNewsHindi को फॉलो करें और यूट्यूब पर न्यूज ऑन AIR ऑफिशियल को सब्सक्राइब करें।
0: विश्व दर्पण में आपका फिर स्वागत है। पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू कश्मीर में स्थिति लगातार बिगड़ती जा रही है और विरोध प्रदर्शन लगातार चल रहे हैं। जबरन गुमशुदगी के मामलों में कथित तौर पर वृद्धि हुई है। प्रदर्शनकारियों ने पाकिस्तानी सुरक्षा बलों पर आंदोलन को दबाने के लिए अत्यधिक बल प्रयोग करने का आरोप लगाया है। इस सप्ताह रावलकोट में दो अलग अलग घटनाओं में एक की मौत हो गई और एक घायल हो गया। पाकिस्तानी सुरक्षा बलों ने मृतक का शव परिजनों को सौंपने से इंकार कर दिया। भारत ने इस्लामी सहयोग संगठन के तथाकथित जम्मू कश्मीर संपर्क समूह के संयुक्त घोषणा पत्र में भारत पर की गई निराधार और तथ्यात्मक रूप से गलत टिप्पणियों को खारिज कर दिया है। विदेश मंत्रालय ने कहा कि भारत के आंतरिक मामलों पर टिप्पणी करने का ओआईसी को कोई कानूनी अधिकार नहीं है। मंत्रालय ने स्पष्ट किया कि संपूर्ण जम्मू कश्मीर और लद्दाख केंद्र शासित प्रदेश भारत का अभिन्न और अटूट हिस्सा है और राजनीतिक रूप से प्रेरित झूठे प्रचार को बार बार दोहराने से ये वास्तविक नहीं बदल सकती। इस तरह के प्रेरित बयानों का बार बार समर्थन करना संगठन की विश्वसनीयता पर ही गंभीर सवाल खड़े करता है। इराक ने अपने नागर विमानन प्राधिकरण को बगदाद हवाई अड्डे के लिए ईरानी उड़ानों को तत्काल प्रभाव से रोक दिया है। इराक का यह फैसला सीधे तौर पर अमरीका की ओर से दी गई द्वितीयक प्रतिबंधों की चेतावनी का नतीजा है। स्थानीय मीडिया रिपोर्टों के अनुसार इराक के अधिकारी उड़ानों को बगदाद के बजाय नजफ अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे की ओर मोड़ने पर विचार कर रहे हैं। यह कदम इराक के वाणिज्यिक हवाई संपर्कों को एक और झटका है, क्योंकि अमरीका देश के विमानन क्षेत्र को अलग थलग करने के प्रयासों को तेज कर रहा है। ईरान के राष्ट्रपति मसूद पेजेश्कियान ने दावा किया है कि उनके देशवासी अमरीकी आतंकवाद के शिकार हुए हैं। संयुक्त राष्ट्र महासभा में अपने संबोधन के दौरान राष्ट्रपति पेजेश्कियान ने दिवंगत सर्वोच्च नेता अली खेमेनेई और युद्ध के शुरुआती दिनों में मारे गए 150 से अधिक स्कूली बच्चों की तस्वीरें भी दिखाई। पेजेश्कियान ने संयुक्त राष्ट्र महासभा में यह भाषण अमरीकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के उस बयान के एक दिन बाद दिया है, जिसमें ट्रंप ने कहा था कि अमरीका ईरान को पूरी तरह पराजित कर सकता है। नेपाल के प्रधानमंत्री बालेंद्र शाह ने देश के कई हिस्सों में इस सप्ताह के अंत में तेज बारिश की आशंका को देखते हुए लोगों से सतर्क रहने की अपील की है। अधिकारियों ने कई प्रांतों में बारिश और तेज हवाओं की चेतावनी दी है, साथ ही बाढ़, भूस्खलन और सड़कों के बंद होने की आशंका भी जताई है। कोशी, बागमती, मधेश, करनाली और सुदूर पश्चिम प्रांतों के कुछ हिस्सों में मूसलाधार बारिश होने की संभावना है। हिमालयी क्षेत्रों की यात्रा की योजना बना रहे पर्यटकों और ट्रैकिंग करने वाले लोगों को मौसम में सुधार होने तक अपनी यात्रा स्थगित करने या उस पर पुनर्विचार करने की सलाह दी गई है। ये चेतावनी नेपाल के उत्तरी हिमालय

0: क्षेत्र में करीब 4 सप्ताह पहले हुई भीषण आपदा के बाद आई है। और अब एशियाई खेल खबरों के साथ हैं विशेष शुक्ला।
1: एशियाई खेलों में रोशोबीना देवी वुशु के फाइनल में पहुंच गई हैं। भारतीय पुरुष बैडमिंटन टीम ने कांस्य पदक अपने नाम किया। इससे पहले भारोत्तोलक मीराबाई चानू ने 49 किलोग्राम वर्ग में रजत पदक जीता। मीराबाई ने 28 वर्ष का सूखा खत्म करते हुए भारत को पदक दिलाया।
2: बहुत ही ज्यादा खुश हूँ कि एशियन गेम्स में मेरा मेडल नहीं थे, पर आज फाइनली मुझे मिल गया है। कॉमनवेल्थ गेम्स के बाद मैं काफी इंजुरी हुई थी, तो यहाँ तक पहुँचना बहुत मुश्किल होते। मैं इधर आके मैंने सिल्वर मेडल जीते, तो इससे अच्छा खुशी क्या हो सकता है।
1: वहीं जयमी ने सॉफ्ट टेनिस के सिंगल्स का कांस्य पदक जीतकर नया इतिहास रचा। निशानेबाजी में स्कीट स्पर्धा में माहेश्वरी सिंह, परिणाज धालीवाल और राइजा ढिल्लों की महिला टीम और अनंतजीत सिंह नरुका, महराज अहमद खान और भवतेक सिंह गिल की पुरुष टीम ने कांस्य पदक जीते। भारत 1 स्वर्ण, 5 रजत और 6 कांस्य सहित 12 पदकों के साथ 13वें स्थान पर है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और खेल मंत्री मनसुख मांडविया ने पदक जीतने वाले भारतीय खिलाड़ियों को बधाई दी है।
0: अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। भारत ने रूस से तेल और गैस खरीदने वाले देशों पर शुल्क लगाने के अमरीकी फैसले पर अपने हितों और चिंताओं को दोहराया। भारत ने इस्लामिक सहयोग संगठन के जम्मू कश्मीर के संदर्भ को खारिज किया, कहा इसका भारत के आंतरिक मामलों से कोई लेना देना नहीं। और एशियाई खेलों में भारतीय पुरुष बैडमिंटन टीम ने कांस्य पदक हासिल किया। भारत ने अब तक 1 स्वर्ण, 5 रजत और 6 कांस्य पदक सहित 12 पदक जीते। इसके साथ ही विश्व दर्पण का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।

पर हमें तो बिल्कुल प्यार है आकाशवाणी दिल्ली के एफएम गोल्ड चैनल से, है ना? सही कहा ना? आपने सुना ये गीत फिल्म रंग से, जो कि 1993 में आई। अलका याग्निक, कुमार सानू की आवाज और नदीम श्रवण का संगीत और समीर का लिखा ये गीत, और इसे फिल्माया गया दिव्या भारती और कमल सदाना पर। मैं स्वागत करती हूँ आप सभी का आकाशवाणी दिल्ली के एफएम गोल्ड चैनल पर। जी हाँ, आपका अपना मनपसंद कार्यक्रम हर श्रृंगार में, और मैं हूँ आपके साथ रितिका।

मन की बात है जन जन की, सभी की कुछ अपनी सी, संघर्षों के कुछ किस्से, कहानी कुछ सफलताओं की, अनकही विरासत की, उम्मीदें नए भारत की। महीने के आखिरी रविवार का रहता है इंतजार, मलयाचल के आंचल से विंध्याचल के आंगन तक, ब्रह्मपुत्र के घाट से हिमालय के विस्तार तक होती है मन की बात प्रधानमंत्री के साथ। तो सुनिए इस महीने 27 सितंबर सुबह 11 बजे मन की बात आकाशवाणी दूरदर्शन के सभी चैनलों और प्रसार भारती के OTT प्लेटफॉर्म वेव्स पर। आप भी माननीय प्रधानमंत्री के मन की बात का हिस्सा बन सकते हैं। इसके लिए आप अपने सुझाव 25 सितंबर तक टोल फ्री नंबर 1800117800 पर रिकॉर्ड कर सकते हैं या फिर 1922 पर भी कॉल कर सकते हैं। नमो ऐप या MyGov के ओपन फोरम में पोस्ट कर सकते हैं या पोस्ट बॉक्स नंबर 111 आकाशवाणी दिल्ली पर भेज सकते हैं। तो याद रखें, रविवार 27 सितंबर सुबह 11 बजे मन की बात।

कैसे चुनें सही बीज, कैसे करें फसलों की उचित देखभाल, कीटनाशकों का कैसे करें संतुलित इस्तेमाल, कृषि से जुड़े हर पहलू पर लीजिए हमारे कृषि एक्सपर्ट से सलाह, वो भी लाइव। सुनिए प्रोग्राम हेलो फार्मर्स आकाशवाणी के FM गोल्ड पर हर सोमवार शाम 5:30 बजे। प्रायोजक कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार।

अभी आपने ये गीत सुना रामलखन फिल्म से। जी हाँ, मनहर उदास और अनुराधा पौडवाल की आवाज और इस गीत को संगीत से सजाया लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने और इस गीत को लिखा आनंद पक्षी ने। जैकी श्रॉफ और डिंपल कपाड़िया पर फिल्माया ये गीत। हर श्रृंगार में आज बस इतना ही। अब से थोड़ी ही देर में आप सुनेंगे समाचार। बनी रहिए आकाशवाणी दिल्ली के FM गोल्ड चैनल के साथ।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं अंजलि। भारत ने रूस और ईरान से तेल खरीदने वाले देशों पर शुल्क लगाने के अमरीकी कानून पर अपने हितों और चिंताओं को एक बार फिर दोहराया है। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने आज संयुक्त राष्ट्र महासभा के सत्र से अलग अमरीका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो से मुलाकात की। डॉ जयशंकर ने इस कानून पर भारत की चिंताएं स्पष्ट की। दोनों नेताओं ने द्विपक्षीय संबंधों के साथ साथ खाड़ी देशों और यूक्रेन के हालात पर भी व्यापक चर्चा की। श्री रूबियो ने कहा कि भारत और अमरीका प्रमुख क्षेत्रीय प्राथमिकताओं पर मिलकर काम कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि दोनों देश रणनीतिक साझेदारी को मजबूत कर रहे हैं। भारत ने इस्लामी सहयोग संगठन के तथाकथित जम्मू कश्मीर संपर्क समूह के संयुक्त घोषणा पत्र में भारत पर की गई निराधार और तथ्यात्मक रूप से गलत टिप्पणियों को खारिज कर दिया है। विदेश मंत्रालय ने कहा कि भारत के आंतरिक मामलों पर टिप्पणी करने का ओआईसी को कोई कानूनी अधिकार नहीं है। मंत्रालय ने स्पष्ट किया कि संपूर्ण जम्मू कश्मीर और लद्दाख केंद्र शासित प्रदेश भारत का अभिन्न और अटूट हिस्सा है और राजनीतिक रूप से प्रेरित झूठे प्रचार को बार बार दोहराने से ये वास्तविकता नहीं बदल सकती। इस तरह से के प्रेरित बयानों का बार बार समर्थन करना संगठन की विश्वसनीयता पर भी गंभीर सवाल खड़े करता है। विदेश मंत्री डॉ एस जयशंकर ने सेंट लूसिया के विदेश मंत्री अल्वा बैप्टिस्ट के साथ संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में सुधार को लेकर L69 परामर्शी मंत्री स्तरीय बैठक की सह अध्यक्षता की। डॉ जयशंकर ने बैठक को संबोधित करते हुए कहा कि दुनिया में हो रहे अभूतपूर्व बदलावों का सबसे अधिक असर विकासशील देशों पर पड़ रहा है, जबकि संयुक्त राष्ट्र इन अपेक्षाओं पर खरा उतरने में विफल रहा है। L69 परामर्शी मंत्री स्तरीय बैठक एक उच्च स्तरीय राजनयिक बैठक है जिसमें संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में व्यापक सुधार पर विशेष रूप से चर्चा की जाती है। रक्षा मंत्रालय ने वायुसेना के लिए 160 सैटेलाइट स्मार्ट एंटी एयरफील्ड हथियार और उससे जुड़े उपकरणों की खरीद के लिए भारत डायनेमिक्स लिमिटेड के साथ 810 करोड़ रुपए के से अधिक का समझौता किया है। इसकी आपूर्ति वर्ष 2027-28 और 2028-29 के बीच की जाएगी। ये सैटेलाइट स्मार्ट एंटी एयरफील्ड हथियार हवा से जमीन पर मार करने वाले सटीक निर्देशित ग्लाइड बम है। इसे जगुआर, हॉक और सुखोई 30 MKI जैसे विमानों से दागा जा सकता है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने गुजरात के वडोदरा में ब्रह्म कुमारियों के ग्लोबल स्पिरिचुअल पैलेस रिट्रीट सेंटर का लोकार्पण किया। उन्होंने विकसित भारत के लिए युवा राष्ट्र निर्माण के लिए आंतरिक शक्ति की जागृति अभियान का भी शुभारंभ किया। राष्ट्रपति ने कहा कि देश को युवा शक्ति की आवश्यकता है।
1: युवाओं को अवसर संस्थागत आत्मनिर्भर शांतिपूर्ण और जिम्मेदार बनाना हम सब की जिम्मेदार। अब ऐसे युवा तैयार करना है जो ज्ञान टेक्निक और कौशल से साथ में आत्मविश्वास आत्म अनुशासन सकारात्मक सोच संवेदनशीलता और नैतिक मूल्य से भी परिपूर्ण।
0: भारतीय जनता पार्टी अध्यक्ष नितिन नवीन ने सभी 36 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के लिए पार्टी प्रभारी और सह प्रभारियों की नियुक्ति की है। पूर्व केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी को छत्तीसगढ़ और हरियाणा का और हरीश द्विवेदी को बिहार का प्रभारी बनाया गया है। विनय सहस्रबुद्धे को दिल्ली का और विनोद तावड़े को उत्तर प्रदेश का प्रभारी बनाया गया।

0: Good evening, listeners, and welcome to Market Mantra. Along with my co-anchor Subodh Mishra, I am Sarabjit Kaur.
1: धन्यवाद सरबजीत और नमस्कार श्रोताओं. कारोबारी खबरों के साथ मार्केट मंत्र हाजिर है. आज की खबरों पर चर्चा करने के लिए स्टूडियो में हमारे साथ हैं वरिष्ठ आर्थिक विशेषज्ञ दीपशिखा सिकरवार. दीपशिखा, कार्यक्रम में आपका स्वागत है.
2: धन्यवाद सुबोध जी. गुड इवनिंग सरबजीत.
0: गुड इवनिंग मैम.
1: पहले हेडलाइंस सरबजीत से.
0: बेंचमार्क डोमेस्टिक इंडिसेस राइज, सेंसेक्स गेन्स 299 पॉइंट्स, निफ्टी सेटल्स नियरली 24,450. Global rating agencies Fitch and S&P Global raise India's GDP growth forecast to 6.9% and 7% respectively for this fiscal year. And global crude oil prices slip to near two-week low. Brent hovers around $100 per barrel.
1: प्रमुख शेयर सूचकांकों में बढ़त. सेंसेक्स 299 अंक बढ़ा. निफ्टी 24,450 के पास पहुंचा. वैश्विक रेटिंग एजेंसियों फिच और S&P ग्लोबल ने चालू वित्त वर्ष के लिए भारत का GDP विकास अनुमान क्रमशः 6.9% और 7% ठहराया. और कच्चे तेल की वैश्विक कीमतें लगभग दो हफ्ते के न्यूनतम स्तर पर. ब्रेंट क्रूड लगभग $100 प्रति बैरल पर.
0: And listeners, before we take you through the economic news of the day, may we remind you that the views and opinions expressed by experts in this program are their own and not those of Akashvani. Akashvani advises its listeners to do their own research or consult a registered professional before taking any investment decision. We also advise our listeners to exercise due diligence and rely on their own judgment for taking any financial decision.
1: चले अब खबरों का सिलसिला शुरू करते हैं. देश के प्रमुख शेयर सूचकांकों में आज बढ़त का रुख रहा. सेंसेक्स 299 अंक यानी 0.4% बढ़कर 74,828 पर बंद हुआ. निफ्टी 118 अंक यानी आधा प्रतिशत ऊपर 23,447 पर आ गया. नेशनल स्टॉक एक्सचेंज के अन्य सूचकांक निफ्टी मिड कैप इंडेक्स में 0.7% और निफ्टी स्मॉल कैप 100 में 0.9% की बढ़त दर्ज की गई. सकारात्मक वैश्विक संकेतों और कच्चे तेल की कीमतों में गिरावट की वजह से आज बाजार बढ़त के साथ खुले और दोपहर में थोड़े उतार चढ़ाव के साथ और ऊपर बढ़ते गए. लेकिन क्लोजिंग ऑक्शन सेशन कैश के बाद बाजारों के बंद स्तर में थोड़ी और बढ़त दिखाई दी.
0: Benchmark domestic equity indices rebounded today. The Sensex rose 299 points or 0.4% to close at 74,828. The Nifty jumped 118 points or 0.5% to settle at

0: 23,447. In the broader market at the National Stock Exchange, the mid-cap 100 index climbed 0.7%, while the small-cap 100 index gained 0.9%. Earlier, markets opened with marginal gains, tracking positive global cues and easing crude oil prices, then extended those gains into the afternoon before pairing some of the advance. However, after the closing auction session, CAS, the benchmark indices closed slightly higher than their pre-CAS levels.
1: जी, और देखें कि सेंसेक्स में शामिल कंपनियों का क्या हाल रहा है. 30 में से 21 कंपनियों के शेयरों में बढ़त दर्ज की गई. सबसे अच्छा प्रदर्शन करने वाली कंपनियों पर नजर डालें. टाटा स्टील में 3.3%, बजाज फाइनेंस में 3.1% और आईटीसी के शेयरों में 1.8% की बढ़त हुई. इसके उलट एचसीएल टेक में 1.1%, इंफोसिस और टीसीएस में 1.1% और टाइटन में 0.6% की गिरावट देखी गई.
0: इन द सेक्टोरल इंडिसेस ऑन द बीएसई, 26 आउट ऑफ 28 सेक्टर्स एज्ड अपवर्ड. अमंग द टॉप गेनर्स, मेटल क्लाइम्ड 2.4%, कमोडिटीज इंक्रीज्ड 1.6% एंड मिड स्मॉल प्राइवेट बैंक्स रोज 1.5%. इन कॉन्ट्रास्ट, फोकस्ड आईटी लॉस्ट 0.9% एंड आईटी फेल बाय 0.8%. The overall market breadth at the BSE was positive as shares of 2,752 companies advanced, 1,655 declined and 190 remained unchanged. Deepshika, after these figures...
1: हाँ, इस ये चर्चा शुरू करने से पहले एक और चीज़ जोड़ दूँ मैं. सरबजीत, रुपए का हाल हम बता दें.
0: जी.
1: अंतर बैंकिंग विदेशी मुद्रा बाजार में एक अमेरिकी डॉलर की तुलना में भारतीय रुपया 16 पैसे घटकर 95.75 रुपए पर बंद हुआ.
0: Deepshikha, coming back to you, we just went in detail with the figures and we spoke about the various sectors. So when benchmark indices rebound after a period of weakness, what does this movement generally indicate about the market sentiment?
2: Sarabjit, if you actually see the way markets have behaved, and today should not be seen in isolation. There has been a pattern, if you see, which has been there for a while. It gets battered continuously, and then there will be some, some upward movement that comes in with some buying interest, you know, which comes around. But I think investors need to make a very cautious call at this juncture in view of what the global factors are. A, there is crude, which is there on the horizon. It has inched up in view of the West Asia crisis. The other crucial factor is what happens in the US. We've seen the Fed has raised rates. There's also indication that there could be another rate increase coming in. Impact of that, which is being felt in the currency market also. So all these factors need to be sort of taken into account when you actually are betting or buying, particularly for short term.
1: जी, दीपशिखा, आपने कुछ कारक तो गिना ही दिए अभी जिनका उल्लेख मैं करना चाहता था, लेकिन इसके अलावा अगर हम देखें तो बाकी हर जगह के जितने भी हम मार्केट्स पर नज़र डालते हैं, जिनको हम मॉनिटर करते हैं लगातार, आपने अमेरिका का उल्लेख किया अभी, फेड रेट्स का उल्लेख किया आपने, इसके बाद हम देख रहे हैं जैसे कल नैसडेक या पिछले दो दिनों में काफी सकारात्मक रहा और बिल्कुल काफी
2: बहुत
1: अच्छा
2: रेजिलियंस
1: रहा,
2: बहुत जबरदस्त रही है.
1: वो हमारे बाजारों पर दिखाई नहीं देता है.
2: बिल्कुल, जैसा कि मैंने कहा कि हमारी अर्थव्यवस्था जो है एक बहुत अजीब, कहना चाहिए बहुत ही एक पैराडॉक्सिकल सिचुएशन है. अर्थव्यवस्था अगर आप देखें तो काफी मजबूत स्थिति में है. आज भी जिस तरह के प्रोजेक्शंस आ रहे हैं बहुत बेहतर हैं, लेकिन जो चुनौतियां हैं अर्थव्यवस्था के सामने, खास तौर पे अगर हम देखें क्रूड को लेके या वेस्ट एशिया क्राइसिस को देखें, तो वो एक भारत के लिए बहुत बड़ी चुनौती है. तो ये ओवरहैंग जो बाजार पर बना हुआ है, और ये काफी कुछ समय हो गया है इसको चलते हुए, दूसरा कि टेक्नोलॉजी क्षेत्र में, आईटी क्षेत्र में जो आशंकाएं हैं वो बराबर बनी हुई हैं.

0: एल नीनो का जो है आउटपुट पर कृषि के उस पर क्या असर होगा, वो आशंकाएं हैं उस पे अर्निंग्स में, कंजम्पशन में. हालांकि अभी मजबूत है कंजम्पशन, लेकिन कुछ एक ओवरहैंग सेंटिमेंट में ऐसा बिल्ट अप हो रहा है. तो मुझे लगता है कि जो फेस्टिव सीजन आने वाला है, हो सकता है कि थोड़ा उस तक अगर वैश्विक स्थिति थोड़ी सुधरती है तो शायद बाजार भी थोड़ा मजबूती की तरफ बढ़ेगा.
1: Deepshikha, since you touched upon the projections part, let's first see what have been the projections as of now. Fitch Ratings has raised its forecast for India's GDP growth in the current fiscal year to 6.9%, up from its earlier projection of 6.4%. In its June Global Economic Outlook, the agency attributed the upward revision to strong first quarter growth and the resilience of the Indian economy. However, Fitch expects economic momentum to moderate during the second half of the fiscal year. It also anticipates that the Reserve Bank of India may raise interest rates by 25 basis points at its October monetary policy meeting, citing strong domestic demand, rising prices, and adverse supply side developments. Consumer spending growth is expected to slow to 5.7% in financial year 27, compared with 7.2% in the previous financial year. Fitch projects India's GDP growth to ease further to 6.5% in financial year 28, while inflation could rise to 5.5% by December 2026.
2: जी, और इसके साथ ही स्टैंडर्ड एंड पुअर्स S&P ग्लोबल रेटिंग्स ने भी चालू वित्त वर्ष में भारत की जीडीपी वृद्धि का अपना अनुमान 6.6% से बढ़ाकर 7% कर दिया है. एशिया प्रशांत क्षेत्र के लिए आर्थिक गतिविधि पर अपनी रिपोर्ट में S&P ने बताया कि विकास को बढ़ावा देने वाले प्रमुख कारक हैं मजबूत औद्योगिक गतिविधि, स्वस्थ उपभोक्ता मांग, मजबूत वस्तु निर्यात और बढ़ता सरकारी निवेश. उसका अनुमान है कि वित्त वर्ष 2027 में उपभोक्ता मुद्रास्फीति औसतन 5.1% रहेगी. हालांकि S&P ने चेतावनी दी है कि इस वित्त वर्ष की दूसरी छमाही में विकास कमजोर हो सकता है, क्योंकि GST को युक्तिसंगत बनाने और आयकर कटौती का लाभ धीरे धीरे कम होता जाएगा. एजेंसी ने मौसम संबंधी जोखिमों का भी उल्लेख किया है. उसके आकलन के समय कुल वर्षा सामान्य से 15% कम थी, इसलिए कृषि उत्पादन और खाद्य मुद्रास्फीति पर नजर रखना महत्वपूर्ण होगा. दीपशिखा, अभी आप जिसका उल्लेख कर रही थी, मौसम, एल नीनो और अब इसमें जीएसटी का जिक्र आ ही गया है, आयकर कटौती का भी उल्लेख आ गया है. इसके अलावा लेकिन जो खासकर हम फिच रेटिंग्स पर तो बाद में हम चर्चा करेंगे, इसके अलावा भी अगर हम देखें तो कुछ और भी रेटिंग्स आई हैं दुनिया में. माहौल है कि भारत की,
0: हाँ बिल्कुल, अगर आप देखें तो आज जो है OECD ने भी अपना आउटलुक निकाला है, एशियन डेवलपमेंट बैंक ने, और दोनों ने इंडिया की जो ग्रोथ है उसको बढ़ा दिया है. तो OECD ने उसको 7.1% कर दिया है 6.3% से, और ADB ने भी 7% कर दिया है 6.6% से. और सभी एजेंसियां ये कह रही हैं कि भारत में एक तो सर्विस क्षेत्र जो है, उसके अलावा निर्यात क्षेत्र ने जिस तरह का मजबूती दिखाया है, खासतौर से हम जानते हैं कि किस तरह की चुनौतियां इस क्षेत्र के सामने आई थी, तो उसके अलावा सरकार की तरफ से खासतौर से कैपिटल एक्सपेंडिचर जो है जिस तरह का बढ़ाया गया और जिस क्षेत्रों पे खर्चा किया गया, तो उसका असर जो है अब निजी क्षेत्र के भी निवेश पर नजर आ रहा है, जो कि GDP के आंकड़ों में भी सामने आया था, और इन एजेंसियों ने भी यही चीज दोहराई है आज.
2: जी,
1: so Deepshikha, we'd like to take you back to the Fitch ratings, and we'd like to have your word on this. What does this upward revision tell us about the underlying strength of the Indian economy?
0: Sarabjit, we've been discussing this, and like I said earlier, Indian economy is in a very strong position. The data is clearly showing that there is strong consumption, which the data showed us. Private investment, which was one of the key challenges, is now begin to show some movement there. So which was the greatest news? So despite all the challenges which these agencies have highlighted, it needs to be seen that overall the situation of the economy remains robust despite the risks which have been flagged. There is inflation risk which has been flagged, and also the El Nino risk, which can impact farm output, which can therefore have some implications for the demand. Whether this would translate to markets, like I said, maybe you could see the festive season sort of brings in back that kind of strength which the economy is showing in the markets.
2: जी देवशिखा, जो जिसका उल्लेख अभी एसएनपी ने किया है, जो चार फैक्टर्स बताए हैं कि मजबूत औद्योगिक गतिविधियां हैं हमारे यहाँ और उपभोक्ता मांग काफ़ी अच्छी है और वस्तुओं का निर्यात काफ़ी मजबूत हालत में है और इसके साथ बढ़ता सरकारी निवेश भारत में और हमारे जीडीपी में, अगर हमेशा से हम देखें तो ये सरकारी निवेश वाला फैक्टर बहुत इम्पॉर्टेंट रहता है हमेशा से। अभी क्या हालत है और कहाँ कहाँ इसमें बढ़ोतरी हुई है जिसका असर हम देख सकते हैं, जो इन प्रोजेक्शंस में दिखाई दे रहा है?
0: अगर आप देखें सरकारी जो निवेश है या कैपिटल एक्सपेंडिचर है कोविड के समय से, और चूंकि सरकार ने ये देखा कि जो जिस तरह का संकट देश के सामने था, उस समय निजी क्षेत्र जो है वो निवेश नहीं कर सकता था, तो सरकार ने खास तौर से इंफ्रास्ट्रक्चर, सोशल सेक्टर स्पेंडिंग अपना बढ़ाया, इंफ्रास्ट्रक्चर में खास तौर से निवेश किया गया। अगर आप देखें तो कैपिटल एक्सपेंडिचर जो है हाईवे सेक्टर, रेलवे सेक्टर, सभी क्षेत्रों में कैपिटल एक्सपेंडिचर को काफी हद तक पुश किया गया। अगर आप देखें रेलवे का उदाहरण ले, रेलवे काफी हद तक अपना कैपिटल एक्सपेंडिचर, इस साल का जो बजट है उसको काफी हद तक वो टारगेट्स अचीव कर चुका है। तो ये एक जो पुश है बराबर सरकार की तरफ से की जा रही थी और उससे ग्रोथ को काफी बल मिला है। जो क्षेत्र जहां पर खासतौर से जो इंफ्रास्ट्रक्चर को सपोर्ट करते हैं वहां पर बहुत बल मिला, डिमांड वहां क्रिएट हुई है और अब उसका असर जो है फाइनली नजर आ रहा है। जिस तरह से निजी क्षेत्र का निवेश अब थोड़ा थोड़ा चालू हो गया है कुछ क्षेत्रों में, तो उम्मीद की जाती है कि ये आगे मजबूती पकड़ेगा। और जैसा कि हम कह रहे थे कि हो सकता है आने वाले समय में ये मजबूती जो अर्थव्यवस्था की है वो निवेशकों को बाजार की तरफ और आकर्षित करे और बाजार में मजबूती आए। लेकिन हाँ, बाजार का एक सेंटिमेंट जो है, जैसा कि हम पहले डिस्कस कर रहे थे, उस पर बातचीत कर रहे थे, वैश्विक स्थिति जो है बहुत अनुकूल नहीं है, बहुत चुनौतियां हैं वहां पर। तो अगर वैश्विक स्थिति जो है वो अनुकूल रहती तो हो सकता है भारतीय बाजार बहुत अच्छा परफॉर्मेंस दे रहा हो।
2: जी, हम कह सकते हैं कि हम टिके हुए हैं और खास करके जो जीडीपी के अनुमान है ये तमाम संकटों के बावजूद बेहतर
0: है। भारतीय अर्थव्यवस्था काफी अच्छी स्थिति में टिकी हुई है, आंकड़े कम से कम यही बता रहे हैं।
2: जी, और अगली खबर है भारत कनाडा व्यापार पर। कनाडा के प्रधानमंत्री मार्क कार्नी ने कहा है कि भारत के साथ व्यापार वार्ता अच्छी प्रगति कर रही है और दोनों देश दिसंबर के मध्य में होने वाले G20 शिखर सम्मेलन तक बातचीत पूरी करने का लक्ष्य लेकर चल रहे हैं। कार्नी ने यह भी कहा कि उनके अनुसार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उस समय के आसपास कनाडा की यात्रा करेंगे, हालांकि इसकी तारीख अभी तय नहीं हुई है। कनाडा के प्रधानमंत्री ने यह बात कल न्यूयॉर्क में संयुक्त राष्ट्र महासभा से अलग आयोजित एक संवाददाता सम्मेलन में कही। प्रधानमंत्री कार्नी अगले दशक में अमेरिका को छोड़कर अन्य देशों के साथ कनाडा के व्यापार को दोगुना करना चाहते हैं। उन्होंने भारत को उस व्यापक प्रयास का हिस्सा बनाया है जिसका उद्देश्य अमेरिका पर कनाडा की निर्भरता को कम करना है। दीपशिखा, ये

0: India CELAC cooperation, a greater voice for the global south. Deepshikha, we'd like to know from you, against the backdrop of changing global equation, how important is greater cooperation between India and the Latin American and Caribbean region?
1: See, like we discussed earlier, you know, India is trying to forge alliances with different countries and global south. Definitely, this was the theme at G20 also. That's a big focus area for India. Latin America, as we know, they have some critical minerals, and we are trying to reach an agreement with them on supply of critical minerals. So definitely, a big focus area for India is forging these multiple trade alliances with multiple trade partners to secure resilience of its own supply chains.
2: जी, और नया मर्चेंट डिस्काउंट रेट ढांचा अगले महीने की 15 तारीख से लागू होगा। इस ढांचे के तहत 2,000 रुपए तक के यूपीआई लेन देन पर शून्य एमडीआर लगेगा। आपको ये शंका हो सकती है कि क्या यूपीआई के माध्यम से दोस्तों या परिवार को पैसे भेजने पर कोई शुल्क लगता है। भारतीय राष्ट्रीय भुगतान निगम ने कहा है कि पर्सन टू पर्सन लेन देन भुगतान करने वाले यानी पैसा भेजने वाले और लाभार्थी यानी पैसा प्राप्त करने वाले दोनों के लिए पूरी तरह से मुफ्त रहेगा। यूपीआई का उपयोग करके किसी भी व्यक्ति द्वारा किसी अन्य व्यक्ति को कोई भी राशि ट्रांसफर करने या प्राप्त करने या यहाँ तक कि खुद के खातों में भी ट्रांसफर करने पर कोई शुल्क नहीं लगेगा। नागरिक बिना किसी लेन देन शुल्क के किसी भी स्वीकृत राशि का यूपीआई पर स्वतंत्र रूप से ट्रांसफर कर सकते हैं।
0: Global crude oil prices rose today but remained near a two-week low as concerns over rising supplies continued to weigh on the market. Brent crude was trading 1% higher at $100.19 per barrel. West Texas intermediate crude was trading 0.1% up at $90.61 per barrel at the time of writing this report.
2: तेल पर छोटी सी बात बता दें दीपशिखा।
1: तेल तो बहुत ही अनसर्टेन हो गया है। हम देख रहे हैं वेस्ट एशिया का कॉन्फ्लिक्ट जब तक रिजॉल्व नहीं होता है तब तक तेल पर प्रेशर बना रहेगा। भारत के लिए थोड़ी चुनौतीपूर्ण स्थिति बन रही है।
2: और भारतीय सराफा बाजार में 24 कैरेट सोने का मूल्य समाचार तैयार किए जाने तक 0.1% गिरकर 152,016 रुपए प्रति 10 ग्राम पर चल रहा था। चांदी मामूली गिरावट के साथ 232,766 रुपए प्रति किलोग्राम पर चल रही थी। और दीपशिखा, आज वक्त इतना ही है, हालांकि चलते चलते हम जरूर कहना चाहेंगे कि ये जो सोने और चांदी का हाल था पिछले 1-2 सालों में हमने जो हाल देखा था कई लोगों के लिए बहुत अच्छा निवेश साबित हुआ था, लेकिन अब देख रहा हूँ वो शायद उतनी ज़्यादा संभावना दिखाई नहीं दे रही है या इतने पीक पर पहुँचा हुआ है कि अब लोग बहुत ज़्यादा इस पर भाव नहीं दे रहे।
1: बिल्कुल, जो एकदम तेजी जो आई थी दोनों सोने और चांदी के दामों में वो थोड़ी सी ठहर गई है, थोड़ा ठहराव है। तो अब जो अगर निवेश भी है वो लॉन्ग टर्म और पोर्टफोलियो में डाइवर्सिफिकेशन के लिए, उस पर आपको देखना होगा।
2: जी, दीपशिखा कार्यक्रम में आने और महत्वपूर्ण चर्चा के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।
1: धन्यवाद।
0: Listeners, before we wrap up, a reminder of the headlines. Benchmark domestic indices rise, Sensex gains 299 points, Nifty settles nearly 24,450. Global rating agencies Fitch and S&P Global raise India's GDP growth forecast to 6.9% and 7% respectively for this fiscal year. And global crude oil prices slip to near two-week low. And that's all in today's edition of Market Mantra. See you tomorrow. Goodbye.
3: इस कार्यक्रम में विशेषज्ञों द्वारा विचार उनके अपने हैं। आकाशवाणी अपने श्रोताओं को सलाह देता है कि निवेश का निर्णय करने से पहले स्वयं रिसर्च करें या किसी पंजीकृत सलाहकार से राय लें।

1958 में आई फिल्म मधुमती से आपने ये गीत सुना। सलील चौधरी का संगीत, लता मंगेशकर और मन्ना डे की आवाज में, लिखा ये गीत शैलेंद्र ने। एक बार फिर से मैं रितिका आप सभी का स्वागत करती हूँ। आप सुन रहे हैं आकाशवाणी दिल्ली का एफएम गोल्ड चैनल सिर्फ और सिर्फ 100.1 मेगाहर्ट्ज पर। कार्यक्रम है गीत मेरे मनमीत।

मन की बात है जन जन की, सभी की कुछ अपनी सी, संघर्षों के कुछ किस्से, कहानी कुछ सफलताओं की, अनकही विरासत की, उम्मीदें नए भारत की। महीने के आखिरी रविवार का रहता है इंतजार, मलयाचल के आंचल से विंध्याचल के आंगन तक, ब्रह्मपुत्र के घाट से हिमालय के विस्तार तक होती है मन की बात प्रधानमंत्री के साथ। तो सुनिए इस महीने 27 सितंबर सुबह 11 बजे मन की बात आकाशवाणी दूरदर्शन के सभी चैनलों और प्रसार भारती के OTT प्लेटफॉर्म वेव्स पर। इसके अतिरिक्त आकाशवाणी और दूरदर्शन के YouTube चैनल और प्रसार भारती के ऐप न्यूज ऑन एयर और OTT प्लेटफॉर्म वेव्स पर सजीव प्रसारण लाइव स्ट्रीमिंग के माध्यम से। तो याद रखें, रविवार 27 सितंबर सुबह 11 बजे मन की बात।

तो दोस्तों, गीत मेरे मनमीत में बस इतना ही। अंजू आ चुकी हैं स्टूडियो में निशिगंधा लेकर। आप सबको छोड़ जाती हूँ उन्हीं के साथ। सुनते रहिए आकाशवाणी दिल्ली का FM गोल्ड चैनल। जी हाँ, जिसे सुन रहे हैं आप सिर्फ और सिर्फ 100.1 मेगाहर्ट्ज पर। मुझे दीजिए इजाजत और अब से थोड़ी ही देर में

नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं अंजलि। भारत ने रूस और ईरान से तेल खरीदने वाले देशों पर शुल्क लगाने के अमरीकी कानून पर अपने हितों और चिंताओं को एक बार फिर दोहराया है। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने संयुक्त राष्ट्र महासभा के सत्र से अलग अमरीका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो से मुलाकात की। डॉ जयशंकर ने इस कानून पर भारत की चिंताएं स्पष्ट की। दोनों नेताओं ने द्विपक्षीय संबंधों के साथ साथ खाड़ी देशों और यूक्रेन के हालात पर भी व्यापक चर्चा की। श्री रूबियो ने कहा कि भारत और अमरीका प्रमुख क्षेत्रीय प्राथमिकताओं पर मिलकर काम कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि दोनों देश रणनीतिक साझेदारी को मजबूत कर रहे हैं। भारत ने इस्लामी सहयोग संगठन के तथाकथित जम्मू कश्मीर संपर्क समूह के संयुक्त घोषणा पत्र में भारत पर की गई निराधार और तथ्यात्मक रूप से गलत टिप्पणियों को खारिज कर दिया है। विदेश मंत्रालय ने कहा कि भारत के आंतरिक मामलों पर टिप्पणी करने का OIC को कोई कानूनी अधिकार नहीं है। मंत्रालय ने स्पष्ट किया कि संपूर्ण जम्मू कश्मीर और लद्दाख केंद्र शासित प्रदेश भारत का अभिन्न और अटूट हिस्सा है और राजनीतिक रूप से प्रेरित झूठे प्रचार को बार बार दोहराने से ये वास्तविकता नहीं बदल सकती। इस तरह के प्रेरित बयानों का बार बार समर्थन करना संगठन की विश्वसनीयता पर भी गंभीर सवाल खड़े करता है। रक्षा मंत्रालय ने वायुसेना के लिए 160 सैटेलाइट स्मार्ट एंटी एयरफील्ड हथियार और उससे जुड़े उपकरणों की खरीद के लिए भारत डायनेमिक्स लिमिटेड के साथ 810 करोड़ रुपए से अधिक का समझौता किया है। इसकी आपूर्ति वर्ष 2027-28 और 2028-29 के बीच की जाएगी। ये सैटेलाइट स्मार्ट एंटी एयरफील्ड हथियार हवा से जमीन पर मार करने वाला सटीक निर्देशित ग्लाइड बम है। इसे जगुआर, हॉक और सुखोई 30 MKI जैसे विमानों से दागा जा सकता है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने गुजरात के वडोदरा में ब्रह्मकुमारियों के ग्लोबल स्पिरिचुअल पैलेस रिट्रीट सेंटर का लोकार्पण किया। उन्होंने विकसित भारत के लिए युवा, राष्ट्र निर्माण के लिए आंतरिक शक्ति की जागृति अभियान का भी शुभारंभ किया। राष्ट्रपति ने कहा कि देश की युवा शक्ति की आवश्यकता है। भारतीय जनता पार्टी अध्यक्ष नितिन नवीन ने सभी 36 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के लिए पार्टी प्रभारी और सह प्रभारियों की नियुक्ति की है। पूर्व केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी को छत्तीसगढ़ और हरियाणा का, हरीश द्विवेदी को बिहार का प्रभारी बनाया गया है। विनय सहस्रबुद्धे को दिल्ली का और विनोद तावड़े को उत्तर प्रदेश का प्रभारी बनाया गया है। राम माधव तमिलनाडु और उत्तराखंड के और तरुण चुग गुजरात के प्रभारी होंगे। सतीश पुनिया को जम्मू कश्मीर और पंजाब का और अनिल एंटनी गोवा और नागालैंड का दायित्व संभालेंगे। भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड के अध्यक्ष तुहिन कांत पांडे ने कहा कि बाजार नियामक सेबी लंबी अवधि वाले डेरिवेटिव उत्पादों के लिए मार्जिन आवश्यकताओं को तर्कसंगत बनाने पर विचार कर रहा है। इसका उद्देश्य वायदा एवं विकल्प खंड में जोखिम प्रबंधन और वित्तीय क्षमता अनुसार तथा दीर्घकालिक भागीदारी को प्रोत्साहित करना है, जिससे निवेशक सुरक्षित ट्रेड करें और धीरे धीरे मुनाफा कमाएं। राजस्थान के जोधपुर में कल एक केमिकल फैक्ट्री में आग लग गई, जिसमें आग बुझाने के प्रयासों के दौरान विस्फोट में 13 अग्निशमन कर्मी घायल हो गए। पुलिस ने बताया कि परिसर में रखे ज्वलनशील रसायन के ड्रमों में आग पकड़ने से ये तेजी से फैल गई, जिससे कई विस्फोट हुए। घटना की सूचना मिलते ही करीब 10 दमकल गाड़ियां मौके पर पहुंच गई। घायलों को तुरंत अस्पताल पहुंचाया गया। मौसम विभाग ने पश्चिम बंगाल, झारखंड, तेलंगाना, छत्तीसगढ़, तटीय आंध्र प्रदेश और ओडिशा में आज मूसलाधार बारिश का रेड अलर्ट जारी किया है।

बिहार, विदर्भ और सिक्किम में भी मूसलाधार बारिश की आशंका है। अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, असम, मेघालय, पूर्वी मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, कर्नाटक, केरलम, माहे और मराठवाड़ा में भी तेज बारिश का अनुमान है। वहीं छत्तीसगढ़, तटीय आंध्र प्रदेश, ओडिशा और तेलंगाना में आज आंधी चल सकती है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

समय हुआ है 12:11 और 3 सेकंड और आपने ट्यून किया है आकाशवाणी दिल्ली का एफएम गोल्ड चैनल 100.1 MHz पर। मैं हूँ आज अंजू आपके साथ, लेकर आई हूँ आपका पसंदीदा कार्यक्रम जिसका नाम है निशिगंधा। प्यार भरे नमस्कार के साथ शुरुआत कर रही हूँ इस कार्यक्रम की और खूबसूरत गीतों की। इस दुनिया की दौड़ में सब कुछ कुछ ना कुछ ढूंढ रहे हैं, कोई पैसा, कोई शोहरत और कोई कामयाबी, पर मेरी तलाश तो उसी दिन तुम पर खत्म हो गई जब तुम मिले, और अब कुछ पाने की ख्वाहिश ही नहीं बची। इसीलिए तो किसी ने क्या खूब कहा है, तुम्हें पाया तो जैसे खुद को पा लिया, तुम्हें पाया तो जैसे खुद को पा लिया, तेरी धड़कन को अपने दिल में ही बसा लिया। अब जमाने से मुझे कोई तमन्ना ही नहीं, खुदा से जो मांगा था वो मैंने तुमसे पा लिया।

अच्छा सुनो, दुनिया ला खूबसूरत सही, तेरे मेरे लिए सबसे हसीन नजारा तुम्हारी ये आंखें हैं। जब तक इनमें मेरे लिए मोहब्बत है ना, मुझे जिंदा रहने के लिए भला किसी और चीज की क्या जरूरत। तेरी नजरों के साए में मिला है मुझे वो सुकून जिसे ढूंढती फिरती रही। अब हर लम्हा बस मेरी यही चाहत है कि तू ही मेरी जिंदगी में रहे और तू ही बने मेरा सुकून।

मन की बात है जन जन की, सभी की कुछ अपनी सी, संघर्षों के कुछ किस्से, कहानी कुछ सफलताओं की, अनकही विरासत की, उम्मीदें नए भारत की। महीने के आखिरी रविवार का रहता है इंतजार, मलयाचल के आंचल से विंध्याचल के आंगन तक, ब्रह्मपुत्र के घाट से हिमालय के विस्तार तक होती है मन की बात प्रधानमंत्री के साथ। तो सुनिए इस महीने 27 सितंबर सुबह 11 बजे मन की बात आकाशवाणी दूरदर्शन के सभी चैनलों और प्रसार भारती के OTT प्लेटफॉर्म वेव्स पर। आप भी माननीय प्रधानमंत्री के मन की बात का हिस्सा बन सकते हैं। इसके लिए आप अपने सुझाव 25 सितंबर तक टोल फ्री नंबर 1800-11-7800 पर रिकॉर्ड कर सकते हैं या फिर 1922 पर भी कॉल कर सकते हैं। नमो ऐप या MyGov के ओपन फोरम में पोस्ट कर सकते हैं या पोस्ट बॉक्स नंबर 111 आकाशवाणी दिल्ली पर भेज सकते हैं। तो याद रखें, रविवार 27 सितंबर सुबह 11 बजे मन की बात।

दोस्तों आपने ट्यून किया है आकाशवाणी दिल्ली का एफएम गोल्ड चैनल और कार्यक्रम चल रहा है निशिगंधा। मैं हूं आपके साथ अंजू।

पता नहीं क्या जादू है तुम्हारी इन आंखों में और इस सादगी में। मैं लाख संभालूं इस दिल को, पर तुम्हें देखते ही न जाने कहां खो जाता है। तुम्हें देख न जाने क्या हो जाता है, हर एक पल में ये दर्द कहीं खो जाता है। तुम मुस्कुराकर बस देख भर लो हमें, तो ये बिखरा हुआ समा भी खूबसूरत हो जाता है।

एक बात याद रखना, आजमाने के लिए तो तुम्हें बहुत मिल जाएंगे इस दुनिया में, पर मेरी तड़प कर भी, मेरी तरह तड़प कर मुस्कुराने वाला भी कोई नहीं मिलेगा। इस तरह ना आजमाओ मुझे कि मैं पत्थर हो जाऊं, इस तरह ना आजमाओ कि मैं पत्थर हो जाऊं, तेरी यादों के समंदर में कहीं खो जाऊं। रख लो मुझे समेट कर अपने पास ही यहीं कहीं, ऐसा ना हो कि मैं गुजरा हुआ कल हो जाऊं।

बीज कैसे करें, फसलों की उचित देखभाल, कीटनाशकों का कैसे करें संतुलित इस्तेमाल, कृषि से जुड़े हर पहलू पर लीजिए हमारे कृषि एक्सपर्ट से सलाह, वो भी लाइव। सुनिए प्रोग्राम हेलो फार्मर्स आकाशवाणी के FM गोल्ड पर हर सोमवार शाम 5:30 बजे। प्रायोजक कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार।

अगर बुरा ना मानो तो अपने दिल की बात कह दूं आज कि इश्क है तुमसे कोई दिल लगी नहीं, तुम्हारे बिना अब ये जिंदगी जिंदगी नहीं। खोल देना चाहते हैं आज दिल के किताब को, कह दें वो बात जो अब तक किसी से कही नहीं।

अब तो बस इस दिल की एक ही जिद है कि तुम्हें बस अपनी आंखों में बसाना चाहते हैं, दुनिया की हर नजर से तुम्हें छुपाना चाहते हैं, कोई और अक्स ना आ सके इन नजरों में, इसलिए खुद को तुम्हारे साथ बसाना चाहते हैं।

दुनिया की कोई भी चीज अब उतनी खूबसूरत नहीं लगती जितना तुम्हारा चेहरा लगता है जब भी अब आंखें बंद होती हैं सिर्फ तुम्हें ही देख।

दोस्तों अब समय है समाचारों का, 1:10 पर फिर से आपसे मुलाकात होगी। कहीं जाइएगा मत, सुनते रहिए आकाशवाणी दिल्ली का FM गोल्ड चैनल 100.1 MHz पर।

0: भारत ने रूस और ईरान से तेल खरीदने वाले देशों पर शुल्क लगाने के अमरीकी कानून पर अपने हितों और चिंताओं को एक बार फिर दोहराया है। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने संयुक्त राष्ट्र महासभा के सत्र से अलग अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो से मुलाकात की। डॉ जयशंकर ने इस कानून पर भारत की चिंताएं स्पष्ट की। दोनों नेताओं ने द्विपक्षीय संबंधों के साथ साथ खाड़ी देशों और यूक्रेन के हालात पर भी व्यापक चर्चा की। श्री रूबियो ने कहा कि भारत और अमरीका प्रमुख क्षेत्रीय प्राथमिकताओं पर मिलकर काम कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि दोनों देश रणनीतिक साझेदारी को मजबूत कर रहे हैं। भारत ने इस्लामी सहयोग संगठन के तथाकथित जम्मू कश्मीर संपर्क समूह के संयुक्त घोषणा पत्र में भारत पर की गई निराधार और तथ्यात्मक रूप से गलत टिप्पणियों को खारिज कर दिया है। विदेश मंत्रालय ने कहा कि भारत के आंतरिक मामलों पर टिप्पणी करने का ओआईसी को कोई अधिकार नहीं है। मंत्रालय ने स्पष्ट किया कि संपूर्ण जम्मू कश्मीर और लद्दाख केंद्र शासित प्रदेश भारत का अभिन्न और अटूट हिस्सा है। इस तरह के प्रेरित बयानों का बार बार समर्थन करना संगठन की विश्वसनीय पर ही गंभीर सवाल खड़े करता है। रक्षा मंत्रालय ने वायुसेना के लिए 160 सैटेलाइट स्मार्ट एंटी एयरफील्ड हथियार और उनसे जुड़े उपकरणों की खरीद के लिए भारत डायनामिक्स लिमिटेड के साथ 810 करोड़ रुपए से अधिक का समझौता किया है। इसकी आपूर्ति वर्ष 2027-28 और 2028-29 के बीच की जाएगी। ये सैटेलाइट स्मार्ट एंटी एयरफील्ड हथियार हवा से जमीन पर मार करने वाला सटीक निर्देशित ग्लाइड बम है। इसे जगुआर, हॉक और सुखोई 30 MKI जैसे विमानों से दागा जा सकता है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने गुजरात के वडोदरा में ब्रह्म कुमारियों की ग्लोबल स्पिरिचुअल पैलेस रिट्रीट सेंटर का लोकार्पण किया। उन्होंने विकसित भारत के लिए युवा राष्ट्र निर्माण के लिए आंतरिक शक्ति की जागृति अभियान का भी शुभारंभ किया। राष्ट्रपति ने कहा कि देश को युवा शक्ति की आवश्यकता है।
1: शांतिपूर्ण और जिम्मेदार बनाना हम सब की जिम्मेदारी। हमें ऐसे युवा तैयार करना है जो ज्ञान, टेक्निक और कौशल से साथ ही आत्मविश्वास, आत्मअनुशासन, सकारात्मक सोच, संवेदनशीलता और नैतिक मूल्य से भी परिपूर्ण।
0: भारतीय जनता पार्टी अध्यक्ष नितिन नवीन ने सभी 36 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के लिए पार्टी प्रभारी और सह प्रभारियों की नियुक्ति की है। पूर्व केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी को छत्तीसगढ़ और हरियाणा का और हरीश द्विवेदी को बिहार का प्रभारी बनाया गया है। विनय सहस्रबुद्धे को दिल्ली का और विनोद तावड़े को उत्तर प्रदेश का प्रभारी बनाया गया है। राम माधव तमिलनाडु और उत्तराखंड के, तरुण चुग गुजरात के प्रभारी होंगे। सतीश पूनिया को जम्मू कश्मीर और पंजाब का और अनिल एंटनी गोवा और नागालैंड का दायित्व संभालेंगे। राजस्व खुफिया निदेशालय ने सीमा सुरक्षा बल BSF के साथ मिलकर बांग्लादेश से तस्करी से लाए गए 12 किलो सोना जब्त किया है। वित्त मंत्रालय ने कहा कि भारत बांग्लादेश सीमा पर सोने की तस्करी रोकने के लिए कई बार कार्रवाई की गई है। मंत्रालय ने बताया कि बिहार और बंगाल की बांग्लादेश से लगी सीमा पर लगभग 17 करोड़ रूपये मूल्य का 12 किलोग्राम विदेशी सोना जब्त किया गया है। एशियाई खेलों में रोशिबीना देवी ना ओरेम वुशू के फाइनल में पहुंच गई हैं। 60 किलोग्राम वर्ग के सेमीफाइनल में उन्होंने इंडोनेशिया की थानिया कुसुमानिंग त्यास को हराया। भारतीय पुरुष बैडमिंटन टीम ने कांस्य पदक अपने नाम किया। सेमीफाइनल में भारतीय टीम को चीन से हार का सामना करना पड़ा। इससे पहले भारतोलक मीराबाई चानू ने 49 किलोग्राम वर्ग में रजत पदक जीता। निशानेबाजी में स्कीट स्पर्धा के माहेश्वरी सिंह, परिनाज धालीवाल और राइजा ढिल्लो की महिला टीम और अनंतजीत सिंह नरुका मेराज अहमद खान और भवतेक सिंह गिल की पुरुष टीम ने कांस्य पदक जीते। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पुरुषों की निशानेबाजी स्की टीम स्पर्धा में कांस्य पदक जीतने पर अनंतजीत सिंह नरुका, भवतेक सिंह गिल और मेराज अहमद खान को बधाई दी है। श्री मोदी ने एक सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि खिलाड़ियों ने एकाग्रता और बेहतरीन टीम वर्क प्रदर्शित किया। प्रधानमंत्री ने भविष्य के प्रयासों के लिए भी उन्हें शुभकामनाएं दी। मौसम विभाग ने पश्चिम बंगाल, झारखंड, तेलंगाना, छत्तीसगढ़, तटीय आंध्र प्रदेश और ओडिशा में आज मूसलाधार वर्षा का रेड अलर्ट जारी किया है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: दिस इज आकाशवाणी, द न्यूज रेड बाय आशीष पी इब्राहिम।

रात के सुहाने सफर में शुरुआत हो चुकी है अपने आपके अपने खूबसूरत कार्यक्रम जिसका नाम है गीत सुहाने। एक बार फिर से मैं अंजू स्वागत करती हूँ आप सभी का। समय हुआ है 1:11:23। इस घंटे आप सुनेंगे बहुत ही मधुर गीत। स्वीकार कीजिए मेरा प्यार भरा नमस्कार। चंद अल्फाज शायरी लिए हुए। जब थाम लिया तुम्हारा हाथ तो इस जमाने से क्या डरना, जब थाम लिया तुम्हारा हाथ तो इस जमाने से क्या डरना, और क्या ही खौफ हो किसी का जब ये मोहब्बत बहुत शिद्दत से की हो।

अजीब बात है ना कि ये चांद आज ना जाने क्यों हवा में कहीं खोया सा है। तेरा चेहरा इसे दिखाई नहीं दिया तो इसका नूर भी आज फीका सा है।

पता है, कभी कभी लगता है कि हम अपनी जिंदगी खुद लिख रहे हैं, पर मोहब्बत के रास्ते पर पैर रखते ही समझ आता है कि कलम तो भाई किसी और के हाथ में है, हम बस चलते जाते हैं ये जाने बिना कि मंजिल कहाँ है। तभी तो किसी शायर ने क्या खूब कहा है कि मोहब्बत की कहानी भी बड़ी अजीब है, न जाने कहाँ रुकती है। मोहब्बत की कहानी भी बड़ी अजीब है, न जाने कहाँ रुकती है, कभी पल भर में मुकम्मल तो कभी ये उम्र भर की कसक छोड़ जाती है।

मन की बात है जन जन की, सभी की कुछ अपनी सी, संघर्षों के कुछ किस्से, कहानी कुछ सफलताओं की, अनकही विरासत की, उम्मीदें नए भारत की। महीने के आखिरी रविवार का रहता है इंतजार, मलयाचल के आंचल से विंध्याचल के आंगन तक, ब्रह्मपुत्र के घाट से हिमालय के विस्तार तक होती है मन की बात प्रधानमंत्री के साथ। तो सुनिए इस महीने 27 सितंबर सुबह 11 बजे मन की बात आकाशवाणी दूरदर्शन के सभी चैनलों और प्रसार भारती के OTT प्लेटफॉर्म वेव्स पर। माननीय प्रधानमंत्री के प्रसारण के तुरंत बाद मन की बात का प्रादेशिक भाषाओं में अनुवाद आप सुन सकते हैं आकाशवाणी और दूरदर्शन के संबद्ध प्रादेशिक चैनलों पर। मन की बात के प्रादेशिक भाषाओं में अनुवाद का पुनः प्रसारण आप सुन सकते हैं रात 8 बजे आकाशवाणी और दूरदर्शन के सभी प्रादेशिक चैनलों पर। तो याद रखें, रविवार 27 सितंबर सुबह 11 बजे मन की बात।

दोस्तों समय हुआ है 1:28:13। कार्यक्रम चल रहा है गीत सुहाने और मैं हूं आपके साथ अंजू। तेरा मेरी जिंदगी में आना जैसे किसी दुआ का कबूल होना है। अब इस दिल का हर लम्हा बस तेरे ही इर्द गिर्द घूमता है।

दूरी तो सिर्फ फासलों की होती है, दिल के रिश्तों में तो जब भी किसी को महसूस करो तो वो धड़कनों में हाजिर होता है। आसपास ही महसूस करती हूँ तुम्हें हर लम्हे में, आसपास ही महसूस करती हूँ तुम्हें हर लम्हे में, जब भी सोचती हूँ तुम्हें तो तुम मिल ही जाते हो मुझे मेरे ही दिल में।

आपको रोकने की जिद नहीं करेंगे, क्योंकि जो दिल से रुकना ना चाहे उसे जबरदस्ती रोका नहीं जाता। बस कुछ पल और बैठिए, फिर शौक से चले जाइएगा। चले जाइएगा शौक से, पर अभी जरा ठहरिए तो सही। इस दिल को आपकी मौजूदगी से थोड़ा बहलने तो दीजिए सही।

हम राहों में खड़े हैं तेरी, कोई शिकवा नहीं जमाने से, बस एक बार तुम मिल जाओ तो लौटाएंगे हम इसी बहाने से।

जो सिर्फ लफ्ज में बयां हो जाए वो मोहब्बत कैसी, और जिसे मापा जा सके वो शिद्दत कैसी। हमारा इश्क तो पैमाने से बहुत ऊपर है। मोहब्बत को मापना हमें नहीं आता, बस निभाना आता है। तुम्हें पाकर खो जाना और खोकर तुम्हें ही पाना आता है।

कार्यक्रम का ये आखिरी गीत है, अभी होंगे हिंदी और अंग्रेजी में समाचार। 2:10 पर फिर से मिलूंगी कार्यक्रम रात सुर में ही लेकर। कहीं जाइएगा मत, सुनते रहिए आकाशवाणी दिल्ली।

नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं अंजलि। भारत ने रूस और ईरान से तेल खरीदने वाले देशों पर शुल्क लगाने के अमरीकी कानून पर अपने हितों और चिंताओं को एक बार फिर दोहराया है। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने संयुक्त राष्ट्र महासभा के सत्र से अलग अमरीका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो से मुलाकात की। डॉक्टर जयशंकर ने इस कानून पर भारत की चिंताएं स्पष्ट की। दोनों नेताओं ने द्विपक्षीय संबंधों के साथ साथ खाड़ी देशों और यूक्रेन के हालात पर भी व्यापक चर्चा की। श्री रूबियो ने कहा कि भारत और अमरीका प्रमुख क्षेत्रीय प्राथमिकताओं पर कर काम कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि दोनों देश रणनीतिक साझेदारी को मजबूत कर

0: रहे हैं। भारत ने इस्लामी सहयोग संगठन के तथाकथित जम्मू कश्मीर संपर्क समूह के संयुक्त घोषणा पत्र में भारत पर की गई निराधार और तथ्यात्मक रूप से गलत टिप्पणियों को खारिज कर दिया है। विदेश मंत्रालय ने कहा कि भारत के आंतरिक मामलों पर टिप्पणी करने का ओआईसी को कोई कानूनी अधिकार नहीं है। मंत्रालय ने स्पष्ट किया कि संपूर्ण जम्मू कश्मीर और लद्दाख केंद्र शासित प्रदेश भारत का अभिन्न और अटूट हिस्सा है। इस तरह के प्रेरित बयानों का बार बार समर्थन करना संगठन की विश्वसनीयता पर ही गंभीर सवाल खड़े करता है। रक्षा मंत्रालय ने वायुसेना के लिए 160 सैटेलाइट स्मार्ट एंटी एयरफील्ड हथियार और उससे जुड़े उपकरणों की खरीद के लिए भारत डायनेमिक्स लिमिटेड के साथ 810 करोड़ रुपए से अधिक का समझौता किया है। इसकी आपूर्ति वर्ष 2027-28 और 2028-29 के बीच की जाएगी। ये सैटेलाइट स्मार्ट एंटी एयरफील्ड हथियार हवा से जमीन पर मार करने वाला सटीक निर्देशित ग्लाइड बम है। इसे जगुआर, हॉक और सुखोई 30 MKI जैसे विमानों से दागा जा सकता है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने गुजरात के वडोदरा में ब्रह्मा कुमारियों के ग्लोबल स्पिरिचुअल पैलेस रिट्रीट सेंटर का लोकार्पण किया। उन्होंने विकसित भारत के लिए युवा राष्ट्र निर्माण के लिए आंतरिक शक्ति की जागृति अभियान का भी शुभारंभ किया। राष्ट्रपति ने कहा कि देश को युवा शक्ति की आवश्यकता है।
1: आत्मविश्वास, आत्मअनुशासन, सकारात्मक सोच, संवेदनशीलता और नैतिक मूल्य से भी परिपूर्ण।
0: भारतीय जनता पार्टी अध्यक्ष नितिन नवीन ने सभी 36 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के लिए पार्टी प्रभारी और सह प्रभारियों की नियुक्ति की है। पूर्व केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी को छत्तीसगढ़ और हरियाणा का और हरीश द्विवेदी को बिहार का प्रभारी बनाया गया है। विनय सहस्रबुद्धे को दिल्ली का, विनोद तावड़े को उत्तर प्रदेश का प्रभारी बनाया गया है। राम माधव तमिलनाडु और उत्तराखंड के, तरुण चुग गुजरात के प्रभारी होंगे। सतीश पूनिया को जम्मू कश्मीर और पंजाब का, अनिल एंटनी गोवा और नागालैंड का दायित्व संभालेंगे। सरकार पश्चिम बंगाल में प्याज की उपलब्धता बढ़ाने के लिए कदम उठा रही है। प्याज लेकर चलने वाली कांधा एक्सप्रेस आज कोलकाता पहुंचेगी। त्योहारों के मौसम को देखते हुए यह कदम महत्वपूर्ण है। राज्य में मोबाइल वैन के जरिए करीब 1400 मीट्रिक टन प्याज वितरित की जा चुकी है। इनकी बिक्री 35 रुपए प्रति किलो की दर से की जा रही है। आंध्र प्रदेश सरकार ने राज्य में संशोधित उड़ान योजना लागू करने के लिए नागरिक उड्डयन मंत्रालय के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए। नई दिल्ली में आयोजित समारोह में राज्य सरकार की ओर से आंध्र प्रदेश हवाई अड्डा विकास निगम लिमिटेड के प्रबंध निदेशक ने इस पर हस्ताक्षर किए। केंद्रीय नागर विमानन मंत्री के राम मोहन नायडू कार्यक्रम में मुख्य अतिथि थे। आंध्र प्रदेश उन 21 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में शामिल है जिन्होंने इस योजना के तहत समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। संशोधित उड़ान योजना का उद्देश्य किफायती हवाई संपर्क का विस्तार करना और कम सेवा वाले और सेवा रहित क्षेत्रों में विमानन बुनियादी ढांचा मजबूत करना है। एशियाई खेलों में रोशिबीना देवी ना ओरेम वुशु के फाइनल में पहुंच गई हैं। 60 किलोग्राम भार वर्ग के सेमीफाइनल में उन्होंने इंडोनेशिया की थानिया कुसुमा निंगत्यास को हराया। भारतीय पुरुष बैडमिंटन टीम ने कांस्य पदक अपने नाम किया। सेमीफाइनल में भारतीय टीम को चीन से हार का सामना करना पड़ा। इससे पहले भारतोलक मीराबाई चानू ने 49 किलोग्राम वर्ग में रजत पदक जीता। निशानेबाजी में स्कीट स्पर्धा के माहेश्वरी सिंह, परिनाज धालीवाल और राइजा डिल्लो की महिला टीम और अनंतजीत सिंह नरुका, मेराज अहमद की पुरुष टीम ने कांस्य पदक जीते। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: दिस इज आकाशवाणी, द न्यूज रेड बाय आशीष पी इब्राहिम। India has reiterated its interests and concerns with regard to sanctioning Russia and Iran Act. External Affairs Minister S. Jaishankar met U.S. Secretary of State Marco Rubio on the sidelines of the UN General Assembly session last evening and raised concerns regarding the act. Both leaders also discussed India-U.S. bilateral relations and Gulf and Ukraine situations. U.S. President Donald Trump signed into law the Sanctioning Russia and Iran Act last week, which authorizes him to impose tariffs of up to 100%

दोस्तों, समय हुआ है 2:11 और 5 सेकंड। ये समय है कार्यक्रम रात सुरमई का। एक बार फिर से मैं अंजू करती हूँ आपका बहुत बहुत स्वागत। लेकर आई हूँ बहुत ही खूबसूरत गीतों का गुलदस्ता। तो चलिए शुरुआत करते हैं इस कार्यक्रम की बहुत ही मधुर गीत के साथ।

कुछ रिश्ते जमीन पर बनते हैं और कुछ कहते हैं कि आसमान है, पर हमारा रिश्ता तो सीधा दिल से दिल के बीच बना है। इसलिए इस दुनिया को क्यों बताऊं कि क्या रिश्ता है तेरा मेरा, ये तो लफ्जों में बयां भी नहीं होता। लेकिन तू पास ना हो तो इस दिल का कोई ठिकाना भी नहीं होता।

कहते हैं जो आपका होता है वो कहीं ना कहीं घूम फिर कर आपके पास आ ही जाता है, और आज तुम्हें अपने सामने देखकर बस यही ख्याल आ रहा है कि यूं मिल जाओगे तुम मुझे, मैंने तो कभी सोचा ही नहीं था। यूं मिल जाओगे तुम मुझे, मैंने तो कभी सोचा ही नहीं था। तेरी एक मुस्कुराहट मेरी पूरी दुनिया ही बदल देगी, ये तो मुझे एहसास ही नहीं था।

मन की बात है जन जन की, सभी की कुछ अपनी सी, संघर्षों के कुछ किस्से, कहानी कुछ सफलताओं की, अनकही विरासत की, उम्मीदें नए भारत की। महीने के आखिरी रविवार का रहता है इंतजार, मलयाचल के आंचल से विंध्याचल के आंगन तक, ब्रह्मपुत्र के घाट से हिमालय के विस्तार तक होती है मन की बात प्रधानमंत्री के साथ। तो सुनिए इस महीने 27 सितंबर सुबह 11 बजे मन की बात, आकाशवाणी दूरदर्शन के सभी चैनलों और प्रसार भारती के OTT प्लेटफॉर्म वेव्स पर। इसके अतिरिक्त आकाशवाणी और दूरदर्शन के YouTube चैनल और प्रसार भारती के ऐप न्यूज ऑन एयर और OTT प्लेटफॉर्म वेव्स पर सजीव प्रसारण लाइव स्ट्रीमिंग के माध्यम से। तो याद रखें, रविवार 27 सितंबर सुबह 11 बजे मन की बात।

जुबान खामोश है तो क्या हुआ, आंखें तो सब सच बोल ही देती है ना। जब दिल में कोई बस जाता है तो ये नजरें अपने आप गवाही देने लगती हैं। तभी तो किसी ने कहा है कि चुपके से नजरों का मिलना और मुस्कुरा देना, चुपके से नजरों का मिलना और मुस्कुरा देना, देखो देखो जरा इन निगाहों को, सीख लिया है किस तरह से दिल चुरा लेना।

वैसे तो अक्सर हम खुद को बहुत संभाल कर रखते हैं, हर बात पर काबू रखते हैं, लेकिन जब तुम सामने आते हो तो ये सारी समझदारी धरी की धरी रह जाती है। सच तो ये है कि तुम्हें देखकर हम कहीं खो जाते हैं, या फिर यूं कहें कि तुम्हें देखकर इस कदर हम होश खो बैठे हैं, तुम्हें देखकर इस कदर हम होश खो बैठे हैं कि ये जो दिल है हमारा, हमारा है ही नहीं, हम तो तुम्हारे ही हो बैठे हैं।

समंदर चाहे कितना भी गहरा हो, मिल ही जाते हैं दो किनारे। समंदर चाहे कितना भी गहरा हो, मिल ही जाते हैं दो किनारे। और मिल जाते हैं वो जिन्हें मिलना होता है, कभी ना कभी तकदीर के सहारे।

दोस्तों अब हो गया है वक्त चलने का, क्योंकि स्टूडियो में आ चुकी हैं भारती अगला कार्यक्रम लेकर हम रही। अभी होंगे हिंदी और अंग्रेजी में समाचार। सुनते रहिए आकाशवाणी दिल्ली का एफएम गोल्ड चैनल 100.1 मेगाहर्ट्ज़ पर। आप सभी को मेरा नमस्कार और शुभ रात्रि।

नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं अंजलि। भारत ने रूस और ईरान से तेल खरीदने वाले देशों पर शुल्क लगाने के अमरीकी कानून पर अपने हितों और चिंताओं को एक बार फिर दोहराया है। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने संयुक्त राष्ट्र महासभा के सत्र से अलग अमरीका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो से मुलाकात की। डॉ जयशंकर ने इस कानून पर भारत की चिंताएं स्पष्ट की। दोनों नेताओं ने द्विपक्षीय संबंधों के साथ साथ खाड़ी देशों और यूक्रेन के हालात पर भी व्यापक चर्चा की। श्री टोबियो ने कहा कि भारत और अमरीका प्रमुख क्षेत्रीय प्राथमिकताओं पर मिलकर काम कर रहे हैं। भारत ने इस्लामी सहयोग संगठन के तथाकथित जम्मू कश्मीर संपर्क समूह के संयुक्त घोषणा पत्र में भारत पर की गई निराधार और तथ्यात्मक रूप से गलत टिप्पणियों को खारिज कर दिया। विदेश मंत्रालय ने कहा कि भारत के आंतरिक मामलों पर टिप्पणी करने का ओआईसी को कोई कानूनी अधिकार नहीं है। मंत्रालय ने स्पष्ट किया कि संपूर्ण जम्मू कश्मीर और लद्दाख केंद्र शासित प्रदेश भारत का अभिन्न और अटूट हिस्सा है। इस तरह के प्रेरित बयानों का बार बार समर्थन करना संगठन की विश्वसनीयता पर ही गंभीर सवाल खड़े करता है। रक्षा मंत्रालय ने वायुसेना के लिए 160 सैटेलाइट स्मार्ट एंटी स्मार्ट एयरफील्ड हथियार और उससे जुड़े उपकरणों की खरीद के लिए भारत डायनेमिक्स लिमिटेड के साथ 810 करोड़ रुपए से अधिक का समझौता किया है। इसकी आपूर्ति वर्ष 2000

0: 2027-28 और 2028-29 के बीच की जाएगी। ये सैटेलाइट स्मार्ट एंटी एयरफील्ड हथियार हवा से जमीन पर मार करने वाला सटीक निर्देशित ग्लाइड बम है। इसे जगुआर, हॉक और सुखोई 30 MKI जैसे विमानों से दागा जा सकता है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने गुजरात के वडोदरा में ब्रह्मा कुमारियों के ग्लोबल स्पिरिचुअल पैलेस रिट्रीट सेंटर का लोकार्पण किया। उन्होंने विकसित भारत के लिए युवा, राष्ट्र निर्माण के लिए आंतरिक शक्ति की जागृति अभियान का भी शुभारंभ किया। राष्ट्रपति ने कहा कि देश को युवा शक्ति की आवश्यकता है।
1: युवाओं को सशक्त प्रतिस्पर्धन, आत्मनिर्भर, शांतिपूर्ण और दीनता बनाना हम सब की जिम्मेदारी। हमें ऐसे युवा तैयार करना है जो ज्ञान, टेक्निक और कौशल से साथ ही आत्मविश्वास, आत्मअनुशासन, सकारात्मक सोच, संवेदनशीलता और नैतिक मूल्य से ही परिपूर्ण।
0: निर्वाचन आयोग ने कहा है कि मतदाता सूची में संशोधन सहित सभी निर्णय सर्वसम्मति से लिए गए हैं। आयोग ने हाल के महीनों में देशभर में 40 नई महल शुरू की है और विशेष गहन पुनरीक्षण सहित कई चुनावी सुधार किए हैं। आयोग ने कहा कि उसके सभी अधिकारी चुनाव प्रणाली में सुधार के लिए सुझाव देने के लिए पूरी तरह से अधिकृत हैं। भारतीय जनता पार्टी अध्यक्ष नितिन नवीन ने सभी 36 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के लिए पार्टी प्रभारी और सह प्रभारियों की नियुक्ति की है। पूर्व केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी को छत्तीसगढ़ और हरियाणा का और हरीश द्विवेदी को बिहार का प्रभारी बनाया गया है। विनय सहस्रबुद्धे को दिल्ली का, विनोद तावड़े को उत्तर प्रदेश का प्रभारी बनाया गया है। राम माधव तमिलनाडु और उत्तराखंड के, तरुण चुग गुजरात के प्रभारी होंगे। सतीश पूनिया को जम्मू कश्मीर और पंजाब का, अनिल एंटनी गोवा और नागालैंड का दायित्व संभालेंगे। इंदिरा गांधी राष्ट्रीय कला केंद्र IGNCA ने आज से 26 सितंबर तक 7वें नदी उत्सव का आयोजन किया जाएगा, जिसमें यमुना पर अकादमिक विमर्श केंद्रित रहेगा। कार्यक्रम में नदियों से संबंधित पारंपरिक ज्ञान, समकालीन चिंताओं और उनके सांस्कृतिक और सामाजिक महत्व से जुड़ी सामग्री प्रस्तुत की जाएगी। भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड BCCI के सचिव देवजीत सौकिया ने कहा है कि मौजूदा चयन समिति के अध्यक्ष अजीत अगरकर का कार्यकाल 4 अक्टूबर को समाप्त होने तक बोर्ड के पास पर्याप्त समय है और इसके बाद ही इस पद को लेकर कोई फैसला किया जाएगा। अजीत अगरकर ने 18 सितंबर को BCCI को बताया था कि वे भारतीय पुरुष क्रिकेट टीम की चयन समिति के अध्यक्ष के तौर पर अपने 3 साल के कार्यकाल को आगे बढ़ाने के इच्छुक नहीं है। श्री सोकिया ने मीडिया से कहा कि BCCI जब भी निर्णय लेगा उसे सार्वजनिक रूप से घोषित किया जाएगा। एशियाई खेलों में रोशिबीना देवी नाओमिन बुशु के फाइनल में पहुंच गई हैं। 60 किलोग्राम भार वर्ग के सेमीफाइनल में उन्होंने इंडोनेशिया की थानिया कुसुमा निंगत्यास को हराया। भारतीय पुरुष बैडमिंटन टीम ने कांस्य पदक अपने नाम किया। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

आप सुन रहे हैं आकाशवाणी दिल्ली का एफएम गोल्ड चैनल 100.1 मेगाहर्ट्ज़ पर और समय हो गया है प्रोग्राम हमराही का। मैं हूं आज आपके साथ आपके दोस्त भारती और आप सबका स्वागत करती हूं। शुरुआत करते हैं प्रोग्राम हमराही की इस प्यारे से गीत के साथ।

रात की खामोशी में जब दिल अपने सबसे करीब होता है, अपनी ही सुनता है, तब कुछ रिश्तों की यादें चांदनी की तरह मन को रोशन कर देती हैं।

आप सुन रहे हैं आकाशवाणी दिल्ली का FM गोल्ड चैनल 100.1 मेगाहर्ट्ज पर और प्रोग्राम है हमराही। आधी आधी रात सरकती जाती है, घड़ी की सुइयां आगे बढ़ती रहती हैं, लेकिन कुछ मीठी यादें हैं जो वक्त के साथ और गहरी होती जाती हैं।

मन की बात है जन जन की, सभी की कुछ अपनी सी, संघर्षों के कुछ किस्से, कहानी कुछ सफलताओं की, अनकही विरासत की, उम्मीदें नए भारत की। महीने के आखिरी रविवार का रहता है इंतजार, मलयाचल के आंचल से विंध्याचल के आंगन तक, ब्रह्मपुत्र के घाट से हिमालय के विस्तार तक होती है मन की बात प्रधानमंत्री के साथ। तो सुनिए इस महीने 27 सितंबर सुबह 11 बजे मन की बात आकाशवाणी दूरदर्शन के सभी चैनलों और प्रसार भारती के OTT प्लेटफॉर्म वेव्स पर। आप भी माननीय प्रधानमंत्री के मन की बात का हिस्सा बन सकते हैं। इसके लिए आप अपने सुझाव 25 सितंबर तक टोल फ्री नंबर 1800117800 पर रिकॉर्ड कर सकते हैं या फिर 1922 पर भी कॉल कर सकते हैं। नमो ऐप या माई गॉव के ओपन फोरम में पोस्ट कर सकते हैं या पोस्ट बॉक्स नंबर 111 आकाशवाणी दिल्ली पर भेज सकते हैं। तो याद रखें, रविवार 27 सितंबर सुबह 11 बजे मन की बात।

कैसे चुने सही बीज, कैसे करें फसलों की उचित देखभाल, कीटनाशकों का कैसे करें संतुलित इस्तेमाल, कृषि से जुड़े हर पहलू पर लीजिए हमारे कृषि एक्सपर्ट से सलाह, वो भी लाइव। सुनिए प्रोग्राम हेलो फार्मर्स आकाशवाणी के FM गोल्ड पर हर सोमवार शाम 5:30 बजे। प्रायोजक कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार।

कितने ही साल गुजर जाएं, सच्चे साथ की गर्माहट कभी पुरानी नहीं होती। कुछ रिश्ते वक्त के साथ बदलते नहीं, बल्कि हर बीतते साल के साथ और मजबूत होते जाते हैं।

जब कोई कहे साथिया तुम मेरे सपनों के मीत हो, तो लगता है जैसे रात की तन्हाई में दिल ने अपने सबसे खूबसूरत एहसास को शब्द दे दिए हों।

इन मधुर गीतों के साथ इस सुहानी रात की यादों को, मोहब्बत को और खूबसूरत एहसासों को यहीं विराम देते हैं, क्योंकि समय कह रहा है कि अब आपसे अनुमति ले ली जाए। जी हाँ, 4:10 पर फिर से हाजिर होंगी लेकर प्रोग्राम अरुणिमा। अब मुझे दीजिए अनुमति छोड़ के जा रही बहुत ही प्यारे से गीत के साथ। नमस्कार। गीत के बाद आप सुनेंगे हिंदी और अंग्रेजी में समाचार।

नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं अंजलि। भारत ने रूस और ईरान से तेल खरीदने वाले देशों पर शुल्क लगाने के अमरीकी कानून पर अपने हितों और चिंताओं को एक बार फिर दोहराया है। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने संयुक्त राष्ट्र महासभा के सत्र से अलग अमरीका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो से मुलाकात की। डॉ जयशंकर ने इस कानून पर भारत की चिंताएं स्पष्ट की। दोनों नेताओं ने द्विपक्षीय संबंधों के साथ साथ खाड़ी देशों और यूक्रेन के हालात पर भी व्यापक चर्चा की। श्री रूबियो ने कहा, भारत और अमरीका प्रमुख क्षेत्रीय प्राथमिकताओं पर मिलकर काम कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि दोनों देश रणनीतिक साझेदारी को मजबूत कर रहे हैं। भारत ने इस्लामी सहयोग संगठन के तथाकथित जम्मू कश्मीर संपर्क समूह के संयुक्त घोषणा पत्र में भारत पर की गई निराधार और तथ्यात्मक रूप से गलत टिप्पणियों को खारिज कर दिया है। विदेश मंत्रालय ने कहा कि भारत के आंतरिक मामलों पर टिप्पणी करने का ओआईसी को कोई कानूनी अधिकार नहीं है। मंत्रालय ने स्पष्ट किया कि संपूर्ण जम्मू कश्मीर और लद्दाख केंद्र शासित प्रदेश भारत का अभिन्न और अटूट हिस्सा है। इस तरह के प्रेरित बयानों का बार बार समर्थन करना संगठन की विश्वसनीयता पर ही गंभीर सवाल खड़े करता है। रक्षा मंत्रालय ने वायुसेना के लिए 160 सैटेलाइट स्मार्ट एंटी एयरफील्ड हथियार और उससे जुड़े उपकरणों की खरीद के लिए भारत डायनेमिक्स लिमिटेड के साथ 810 करोड़ रुपए से अधिक का समझौता किया है। इसकी आपूर्ति वर्ष 2027-28 और 2028-29 के बीच की जाएगी। ये सैटेलाइट स्मार्ट एंटी एयरफील्ड हथियार हवा से जमीन पर मार करने वाला सटीक निर्देशित ग्लाइड बम है। इसे जगुआर, हॉक और सुखोई 30 एमकेआई जैसे विमानों से दागा जा सकता है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने गुजरात के वडोदरा में ब्रह्मा कुमारियों के ग्लोबल स्पिरिचुअल पैलेस रिट्रीट सेंटर का लोकार्पण किया। उन्होंने विकसित भारत के लिए युवा, राष्ट्र निर्माण के लिए आंतरिक शक्ति की जागृति अभियान का भी शुभारंभ किया।

0: शुभारंभ किया। राष्ट्रपति ने कहा कि देश को युवा शक्ति की आवश्यकता है।
1: युवाओं को अवसर सब तक संस्थागत आत्मनिर्भर शांतिपूर्ण और जिम्मेदार बनाना हम सब की जिम्मेदार। हमें ऐसे युवा तैयार करना है जो ज्ञान टेक्निक और कौशल से साथ में आत्मविश्वास आत्म अनुशासन सकारात्मक सोच संवेदनशीलता और नैतिक मूल्य से ही परिपूर्ण।
0: निर्वाचन आयोग ने कहा है कि मतदाता सूची में संशोधन सहित सभी निर्णय सर्वसम्मति से लिए गए हैं। आयोग ने हाल के महीनों में देश भर में 40 नई पहल शुरू की है और विशेष गहन पुनरीक्षण सहित कई चुनावी सुधार किए हैं। आयोग ने कहा है कि उसके सभी अधिकारी चुनाव प्रणाली में सुधार के लिए सुझाव देने के लिए पूरी तरह से अधिकृत हैं। भारतीय जनता पार्टी अध्यक्ष नितिन नवीन ने सभी 36 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के लिए पार्टी प्रभारी और सह प्रभारियों की नियुक्ति की है। पूर्व केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी को छत्तीसगढ़ और हरियाणा का, हरीश द्विवेदी को बिहार का प्रभारी बनाया गया है। विनय सहस्त्रबुद्धे को दिल्ली का, विनोद तावड़े को उत्तर प्रदेश का प्रभारी बनाया गया है। राम माधव तमिलनाडु और उत्तराखंड के तथा तरुण चुग गुजरात के प्रभारी होंगे। सतीश पूनिया को जम्मू कश्मीर और पंजाब का, अनिल एंटनी गोवा और नागालैंड का दायित्व संभालेंगे। सरकार पश्चिम बंगाल में प्याज की उपलब्धता बढ़ाने के लिए कदम उठा रही है। प्याज लेकर चलने वाली कांधा एक्सप्रेस आज कोलकाता पहुंचेगी। त्योहारों के मौसम को देखते हुए यह कदम महत्वपूर्ण है। राज्य में मोबाइल वैन के जरिए करीब 1400 मीट्रिक टन प्याज वितरित की जा चुकी है। इनकी बिक्री 35 रूपये प्रति किलो की दर से की जा रही है। इंदिरा गांधी राष्ट्रीय कला केंद्र IGNCA में आज से 26 सितंबर तक 7वें नदी उत्सव का आयोजन किया जाएगा, जिसमें यमुना पर अकादमिक विमर्श केंद्रित रहेगा। कार्यक्रम में नदियों से संबंधित पारंपरिक ज्ञान, समकालीन चिंताओं तथा उनके सांस्कृतिक और सामाजिक महत्व से जुड़ी सामग्री प्रस्तुत की जाएगी। मौसम विभाग ने पश्चिम बंगाल, झारखंड, तेलंगाना, छत्तीसगढ़, तटीय आंध्र प्रदेश और ओडिशा में आज मूसलाधार वर्षा का रेड अलर्ट जारी किया। बिहार, विदर्भ और सिक्किम में भी मूसलाधार बारिश की आशंका है। अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, असम, मेघालय, पूर्वी मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, कर्नाटक, केरलम, माहे और मराठवाड़ा में भी तेज बारिश का अनुमान है। वहीं छत्तीसगढ़, तटीय आंध्र प्रदेश, ओडिशा और तेलंगाना में आज आंधी आ सकती है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: दिस इज आकाशवाणी, द न्यूज रेड बाय आशीष एब्राहम। India has reiterated its interests and concerns with regard to sanctioning Russia and Iran Act. External Affairs Minister S. Jaishankar met US Secretary of State Marco Rubio on the sidelines of the UN General Assembly session last evening and raised concerns regarding the act. Both leaders also discussed India-US bilateral relations and Gulf and Ukraine situations. US President Donald Trump signed into law the Sanctioning Russia and Iran Act last week, which authorizes him to impose tariffs of up to 100% on countries buying Russian oil and gas. In response, New Delhi said that it will take all necessary steps to protect its economic interests and ensure energy security for the nation. Jaishankar, who arrived in New York City on Sunday, is leading the Indian delegation for the 81st session of the UN General Assembly. After meeting with Jaishankar, Rubio said both countries are building strategic partnership and coordinating on key regional priorities and upcoming multilateral efforts. External Affairs Minister Dr. S. Jaishankar co-chaired the L69 Consultative Ministerial Interaction on UNSC Reform along with his St. Lucian counterpart Alva Baptist. Addressing the meeting, Dr. Jaishankar noted that the Global South is at the receiving end of the unprecedented changes that the world is undergoing, with the UN falling short of expectations. He also underlined the inability of the UN Security Council to address ongoing conflicts and threats to international peace and security, only highlight the urgency of reform. New Delhi has categorically rejected the unwarranted and factually incorrect references to India in the joint communique of the so-called Organization of Islamic Cooperation, OIC, contact group on Jammu and Kashmir. In a statement, Ministry of External Affairs said the OIC has no locus standi to pronounce on matters that are strictly internal to India. It said the entire union territories of Jammu and Kashmir and Ladakh are integral and inalienable part of India, and no amount of repetition of politically motivated propaganda can change this reality. The Election Commission has said that all the decisions, including the electoral roll revision, were taken unanimously. The Commission informed that it has taken numerous decisions, introduced around 40 new initiatives, and undertaken many electoral reforms, including special intensive revision, in the recent months across the country. The Commission emphasized that difference in views and observations are a normal part of deliberation in any institution, and it is a part of the decision-making process before taking a final decision. It said every officer of the commission is fully authorized to give his suggestions to the commission for improving the electoral system. Uttar Pradesh Chief Minister Yogi Adityanath has launched Bharat Taxi and the Mukhya Mantri Krishak Samriddhi Yojana aimed at supporting taxi drivers and farmers. Under Bharat Taxi, two-wheeler, taxi and three-wheeler drivers can register without paying any commission. They will also get social security cover of 5 lakh rupees. Under the Mukhya Mantri Krishak Samriddhi Yojana, the interest rate on loans provided to farmers through the Uttar Pradesh Cooperative Gramya Vikas Bank has been reduced from 11% to 6%. Delhi government has approved the Durga scheme aimed at providing safe, clean and dignified employment opportunities to women and transgender persons in the capital. This decision was taken at a cabinet meeting chaired by Chief Minister Rekha Gupta in New Delhi yesterday. Under this scheme, 1,300 pink electric autos will be allocated in the first phase of these. 1,170 will be reserved for women and 130 for transgender beneficiaries. The Ministry of Finance has informed that all public sector banks and regional rural banks will remain open on Sunday, 27 September. The Ministry said that this step has been taken in view of the proposed three-day nationwide bank strike called by the United Forum of Bank Unions from 28th to 30th of this month, coinciding with the preceding weekend holidays of 26th and 27th September. It said that the Reserve Bank of India has granted approval for all bank branches, offices, ATM link branches and currency chests to remain fully operational on Sunday. India's men's badminton team settled for the bronze medal after facing 1-3 defeat to China in the semi-final in Aichi, Japan. And that is the end of this news bulletin.

एक बार फिर से आप सबका मैं स्वागत करती हूँ। आप सुन रहे हैं आकाशवाणी दिल्ली का एफएम गोल्ड चैनल 100.1 मेगाहर्ट्ज पर और समय हो गया है प्रोग्राम अरुणिमा का। शुरुआत करते हैं प्रोग्राम की फिल्म डिस्को डांसर के इस गीत के साथ। गीत को अपनी आवाज से सजाया है पप्पी लहरी ने और संगीतकार पप्पी लहरी।

अगला गीत सुनते हैं फिल्म अंगूर से आशा भोसले की आवाज में, संगीतकार आरडी बर्मन, गीतकार गुलजार।

मन की बात है जन जन की, सभी की कुछ अपनी सी, संघर्षों के कुछ किस्से, कहानी कुछ सफलताओं की, अनकही विरासत की, उम्मीदें नए भारत की। महीने के आखिरी रविवार का रहता है इंतजार, मलयाचल के आंचल से विंध्याचल के आंगन तक, ब्रह्मपुत्र के घाट से हिमालय के विस्तार तक होती है मन की बात प्रधानमंत्री के साथ। तो सुनिए इस महीने 27 सितंबर सुबह 11 बजे मन की बात, आकाशवाणी दूरदर्शन के सभी चैनलों और प्रसार भारती के OTT प्लेटफॉर्म वेव्स पर। माननीय प्रधानमंत्री के प्रसारण के तुरंत बाद मन की बात का प्रादेशिक भाषाओं में अनुवाद आप सुन सकते हैं आकाशवाणी।

दूरदर्शन के संबद्ध प्रादेशिक चैनलों पर। मन की बात के प्रादेशिक भाषाओं में अनुवाद का पुनः प्रसारण आप सुन सकते हैं रात 8 बजे आकाशवाणी और दूरदर्शन के सभी प्रादेशिक चैनलों पर। तो याद रखें, रविवार 27 सितंबर सुबह 11 बजे मन की बात।

आप सुन रहे हैं आकाशवाणी दिल्ली का एफएम गोल्ड चैनल 100.1 मेगाहर्ट्ज पर और प्रोग्राम है अरुणिमा। अभी आपने गीत सुना फिल्म जुर्म से कुमार सानू और साधना सरगम की आवाज में।

प्रोग्राम को आगे बढ़ाते हैं, सुनते हैं अगला गीत। फिल्म शौकीन से किशोर कुमार की आवाज में संगीतकार आर डी बर्मन, गीतकार योगेश।

आगे बढ़ते हैं, सुनते हैं अगला गीत, फिल्म मोहम्मद रफी, क्षमा कीजिएगा, फिल्म आमने सामने से मोहम्मद रफी की आवाज में, संगीतकार कल्याण जी आनंद जी, गीतकार आनंद बख्शी।

अगला गीत सुनते हैं फिल्म चलती का नाम जिंदगी से मोहम्मद रफी, किशोर कुमार और मन्ना डे की आवाज में। गीतकार इशात और संगीतकार किशोर कुमार।

और समय कह रहा है कि अब आपसे अनुमति ले ली जाए। जाने से पहले बस यही कहूंगी कि आप कहीं मत जाइएगा। जी हाँ, आप सुनते रहिए आकाशवाणी दिल्ली का एफएम गोल्ड चैनल 100.1 मेगाहर्ट्ज पर। मुलाकात होगी 5:10 पर प्रोग्राम भोर सुहानी में। छोड़ के जा रही हूँ बहुत ही प्यारे गीत के साथ। गीत है फिल्म दो दिशाएं से, यशुदास की आवाज में, संगीतकार लक्ष्मीकांत प्यारेलाल। तो मैं आपसे लेती हूँ अनुमति। नमस्कार।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं मनोज। भारत ने रूस और ईरान से तेल खरीदने वाले देशों पर शुल्क लगाने के अमरीकी कानून पर अपने हितों और चिंताओं को एक बार फिर दोहराया है। विदेश मंत्री डॉक्टर सुब्रमण्यम जयशंकर ने संयुक्त राष्ट्र महासभा के सत्र से अलग अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो से मुलाकात की। डॉक्टर जयशंकर ने इस कानून पर भारत की चिंताएं स्पष्ट की। दोनों नेताओं ने द्विपक्षीय संबंधों के साथ साथ खाड़ी देशों और यूक्रेन के हालात पर भी व्यापक चर्चा की। श्री रूबियो ने कहा कि भारत और अमरीका प्रमुख क्षेत्रीय प्राथमिकताओं पर मिलकर काम कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि दोनों देश रणनीतिक साझेदारी को मजबूत कर रहे हैं। भारत ने इस्लामी सहयोग संगठन OIC के तथा कथित जम्मू कश्मीर संपर्क समूह के संयुक्त घोषणा पत्र में भारत पर की गई निराधार और तथ्यात्मक रूप से गलत टिप्पणियों को खारिज कर दिया है। विदेश मंत्रालय ने कहा कि भारत के आंतरिक मामलों पर टिप्पणी करने का OIC को कोई कानूनी अधिकार नहीं है। मंत्रालय ने स्पष्ट किया कि संपूर्ण जम्मू कश्मीर और लद्दाख केंद्र शासित प्रदेश भारत का अभिन्न और अटूट हिस्सा है। इस तरह के प्रेरित बयानों का बार बार समर्थन करना संगठन की विश्वसनीयता पर ही गंभीर सवाल खड़े करता है। रक्षा मंत्रालय ने वायुसेना के लिए 160 सैटेलाइट स्मार्ट एंटी एयरफील्ड हथियार और उससे जुड़े उपकरणों की खरीद के लिए भारत डायनेमिक्स लिमिटेड के साथ 810 करोड़ रुपए से अधिक का समझौता किया है। इसकी आपूर्ति वर्ष 2027-28 और 2028-29 के बीच की जाएगी। यह सैटेलाइट स्मार्ट एंटी एयरफील्ड हथियार हवा से जमीन पर मार करने वाला सटीक निर्देशित ग्लाइड बम है। इसे जगुआर, हॉक और सुखोई 30 MKI जैसे विमानों से दागा जा सकता है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने गुजरात के वडोदरा में ब्रह्मा कुमारियों के ग्लोबल स्पिरिचुअल पैलेस रिट्रीट सेंटर का लोकार्पण किया। उन्होंने विकसित भारत के लिए युवा राष्ट्र निर्माण के लिए आंतरिक शक्ति की जागृति अभियान का भी शुभारंभ किया। राष्ट्रपति ने कहा कि देश को युवा शक्ति की आवश्यकता है।
1: युवाओं को अवसर से स्वस्थ बन, आत्मनिर्भर, शांतिपूर्ण और जिम्मेदार बनाना हम सब की जिम्मेदार। अब ऐसे युवा तैयार करना है जो ज्ञान, टेक्निक और कौशल से साथ ही आत्मविश्वास, आत्मअनुशासन, सकारात्मक सोच, संवेदनशीलता और नैतिक मूल्यों से भी परिपूर्ण।
0: निर्वाचन आयोग ने कहा है कि मतदाता सूची में संशोधन सहित सभी निर्णय सर्वसम्मति से लिए गए हैं। आयोग ने हाल के महीनों में देश भर में 40 नई पहल शुरू की है और विशेष गहन पुनरीक्षण सहित कई चुनावी सुधार किए हैं। आयोग ने कहा कि उसके सभी अधिकारी चुनाव प्रणाली में सुधार के लिए सुझाव देने के लिए पूरी तरह से अधिकृत हैं। सरकार पश्चिम बंगाल में प्याज की उपलब्धता बढ़ाने के लिए कदम उठा रही है। प्याज लेकर चलने वाली कांदा एक्सप्रेस आज कोलकाता पहुंचेगी। त्योहारों के मौसम को देखते हुए ये कदम महत्वपूर्ण है। राज्य में मोबाइल वैन के जरिए करीब 1400 मीट्रिक टन प्याज वितरित किया जा चुका है। इनकी बिक्री 35 रुपए प्रति किलो की दर से की जा रही है। इंदिरा गांधी राष्ट्रीय कला केंद्र IGNCA में आज से 26 सितंबर तक सातवें नदी उत्सव का आयोजन किया जाएगा, जिसमें यमुना पर अकादमिक विमर्श केंद्रित रहेगा। कार्यक्रम में नदियों से संबंधित पारंपरिक ज्ञान, समकालीन चिंताओं तथा उनके सांस्कृतिक और सामाजिक महत्व से जुड़ी सामग्री प्रस्तुत की जाएगी। एशियाई खेलों में रोशिबीना देवी नाओरेम वुशु के फाइनल में पहुंच गई हैं। 60 किलोग्राम वर्ग के सेमीफाइनल में उन्होंने इंडोनेशिया की थानिया कुसुमा निंग त्यास को हराया। भारतीय पुरुष बैडमिंटन टीम ने कांस्य पदक अपने नाम किया। सेमीफाइनल में भारतीय टीम को चीन से हार का सामना करना पड़ा। इससे पहले भारोत्तोलक मीराबाई चानू ने 49 किलोग्राम वर्ग में रजत पदक जीता। निशानेबाजी में स्कीट स्पर्धा के माहेश्वरी सिंह, परिनाज धालीवाल और राइजा ढिल्लों की महिला टीम और अनंतजीत सिंह, नरुका महराज, अहमद खान और भवतेग सिंह गिल के पुरुष टीम ने कांस्य पदक जीते। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: This is Akashvani. The news read by Ashish P. Abraham. India has reiterated its interests and concerns with regard to sanctioning Russia and Iran Act. External Affairs Minister S. Jaishankar met U.S. Secretary of State Marco Rubio on the sidelines of the UN General Assembly session last evening and raised concerns regarding the act. Both leaders also discussed India-U.S. bilateral relations and Gulf and Ukraine situations. U.S. President Donald Trump signed into law the Sanctioning Russia and Iran Act last week, which authorizes him to impose tariffs of up to 100% on countries buying Russian oil and gas. In response, New Delhi said that it will take all necessary steps to protect its economic interests and ensure energy security for the nation. Jaishankar, who arrived in New York City on Sunday, is leading the Indian delegation for the 81st session of the UN General Assembly. After meeting with Jaishankar, Rubio said both countries are building strategic partnership and coordinating on key regional priorities and upcoming multilateral efforts. External Affairs Minister Dr. S. Jaishankar co-chaired the L69 Consultative Ministerial Interaction on UNSC Reform along with his St. Lucian counterpart Alva Baptist. Addressing the meeting, Dr. Jaishankar noted that the Global South is at the receiving end of the unprecedented changes that the world is undergoing, with the UN falling short of expectations. He also underlined the inability of the UN Security Council to address ongoing conflicts and threats to international peace and security, only highlight the urgency of reform. He stressed that continuing to delay reform perpetuates historical injustice. New Delhi has categorically rejected the unwarranted and factually incorrect references to India in the joint communique of the so-called Organization of Islamic Cooperation Contact Group on Jammu and Kashmir. In a statement, Ministry of External Affairs said the OIC has no locus standi to pronounce on matters that are strictly internal to India. It said the entire Union Territories of Jammu and Kashmir and Ladakh are integral and inalienable part of India, and no amount of repetition of politically motivated propaganda can change this reality. The Election Commission has said that all the decisions, including the electoral roll revision, were taken unanimously. The Commission informed that it has taken numerous decisions, introduced around 40 new initiatives, and undertaken many electoral reforms, including special intensive revision, in the recent months across the country. The Commission emphasized that difference in views and observations are a normal part of deliberation in any institution, and it is a part of the decision-making process before taking a final decision.

आप सुन रहे हैं आकाशवाणी दिल्ली का एफएम गोल्ड चैनल 100.1 मेगाहर्ट्ज पर और समय हो गया है प्रोग्राम भोर सुहानी का। मैं हूं आपके साथ आपकी दोस्त भारती और शुरुआत करते हैं प्रोग्राम की इस गीत के साथ।

और सुगंध से वातावरण को खुशनुमा बनाती है, जिससे हमारे जीवन को आनंद और शांति मिलती है। तो इसलिए नेचर की जो सुंदरता होती है ना, उसे देखकर हम अपनी परेशानियाँ, अपने दुख थोड़े कम कर जाते हैं, कम हमारे कम हो भी जाते हैं। तो इसलिए नेचर का हमें थोड़ा सा ही सही पर ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है।

मन की बात है जन जन की, सभी की कुछ अपनी सी, संघर्षों के कुछ किस्से, कहानी कुछ सफलताओं की, अनकही विरासत की, उम्मीदें नए भारत की। महीने के आखिरी रविवार का रहता है इंतजार, मलयाचल के आंचल से विंध्याचल के आंगन तक, ब्रह्मपुत्र के घाट से हिमालय के विस्तार तक होती है मन की बात प्रधानमंत्री के साथ। तो सुनिए इस महीने 27 सितंबर सुबह 11 बजे मन की बात आकाशवाणी दूरदर्शन के सभी चैनलों और प्रसार भारती के OTT प्लेटफॉर्म वेव्स पर। इसके अतिरिक्त आकाशवाणी और दूरदर्शन के YouTube चैनल और प्रसार भारती के ऐप न्यूज ऑन एयर और OTT प्लेटफॉर्म वेव्स पर सजीव प्रसारण लाइव स्ट्रीमिंग के माध्यम से। तो याद रखें, रविवार 27 सितंबर सुबह 11 बजे मन की बात।

जीवन में एक अच्छे दोस्त का होना बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। सुख हो या दुख, हमेशा साथ देते हैं दोस्त हमारे।